0: शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया। अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधू का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और मधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम् कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण प्रथमं स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथो चित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया।

दिव्यरत्न समन्वितं वलयानि महारानि शुद्धश्चामि कराणि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में है, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेड़िया नगारे बड़े ढोल गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में यह नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है।
कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जा

0: जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्तया नीराजनम अथा करोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: इसीलिए लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था, प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोगों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच शंभुश्च विलोकयन्त्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
2: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
2: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
2: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरिया मास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासि च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मादेव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो।
2: बहुत
0: सुंदर, देख नहीं पाते।
2: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: दोस्तों। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने, तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
3: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
3: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
4: बिल्कुल। और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
5: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
4: जी।
5: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
4: जी।
5: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना

0: है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर माना कर्मों से अतीत होकर कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं,
0: वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो

0: उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छे एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे

0: पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
0: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
0: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग. अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो, पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज़ जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग
0: बींग.
1: दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके. देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स ऑल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. फ्लो करो और आपके फ्लो होने में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है
0: उन्हें
1: नरिश. और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा? डू आई हैव टू थिंक सैटिस्फैक्शन क्या होती है, कंटेंटमेंट क्या होती है,
0: स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है? आई थिंक स्ट्रेस हैज गॉन समवेयर अप, यू नो. इट्स लाइक इन दिस होल कन्वर्सेशन आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सोल्यूशन. ये सोल्यूशन है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव
0: नहीं मिलता.
1: स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है।
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होगी।
1: आई फील ब्यूटिफुल,
0: आई नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपने इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई है इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वो ही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड, कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, that's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside.
0: Okay.
1: Simple things. सुनने में immediately लग रहा होगा नहीं simple नहीं बहुत difficult, तो भी simple.
0: हाँ, और हर बार की तरह
1: start doing that.
0: हर बार की तरह वो experimentation करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं. But yes, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस, और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, the gussa baar baar karna या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है। दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय इरिटेशन, या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया

0: ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
1: watch it and see it.
0: तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है. अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
1: फ्यूल करते रहते हैं ना. वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी.
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन. It builds up more and more, and it can stay with me till a very, very long time. So, usse detach ho jayenge, and then come back to my stage, to the center. Ki main kaun? Om Shanti. Ye bhi agar yaad rahe, to it means main ek shant swaroop atma hu. So, I come back to my stage that I am a peaceful being. The awareness, acknowledge, accept ke haan aa raha hai. फिर उससे डिटैच हो जाए, एंड देन कम बैक टू माय ओरिजिनल स्टेज. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान भी कर सकते.
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज्ड एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. So again, it may not go completely in one day, but the moment we start watching and going through these 5 steps, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि awareness जाएगी. You know, awareness चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है, and then it will go. And ये justification खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वजह से गुस्सा है, then I will not change. Then I will keep waiting for you to change.
1: Yes, you know, we've always been saying it's just a thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, even if उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा करते हैं. मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
1: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी ऑफन but rarely understood. You know, we are all looking for peace. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए. But we are not aware कि what are we looking for. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. Actually, अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक natural स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. यू नो, एंड एट दैट टाइम वी से आई वांट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बीइंग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज. You know? तो पीस doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: मेरे ओपिनियन से. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लो, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं, अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो, औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं आज संडे का दिन है और संडे वाले दिन भी आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें करती हूँ सुबह। देखिए ये जो टाइम है ना सुबह सुबह का, ये तो टाइम हो जाता है कि जल्दी से आप रेडी हो जाइए, उठ जाइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, खुद को टाइम दीजिए। आज संडे का दिन है, कहीं घूम कर आइए, कुछ देखिए नया कीजिए, अपनी किसी हॉबी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। और साथ ही अगर कुछ गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है आपकी, गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आज खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि एलर्जी का मतलब सिर्फ धूल मिट्टी या किसी खास खाने से होने वाली परेशानी है, और हम इन चीज़ों से बचते भी हैं कि भाई हमें धूल मिट्टी से बचना है, एलर्जी ना हो जाए, या कुछ खास खाने से भी हम बचते हैं। लेकिन फिर भी अचानक नाक बंद होना, छींके आना, या त्वचा पर लाल चकते यानी कि कुछ रैशेस जो हैं वो पड़ जाना, ऐसा कुछ हो जाता है फिर भी। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि एक खास जो जानकारी आपके लेकर के आई हूं, और आज मैं आपको कुछ ऐसे देखिए एलर्जी ट्रिगर्स के बारे में बताने वाली हूं जो कि बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाले हैं। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतलब आज ना हम कुछ एलर्जी के कारण के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी वजह के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, फिलहाल आप भी कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, फील।

जो जो है उन पे हो सकता है, और डस्ट माइट्स जो है नाम के ऐसे कुछ जीव होते हैं, सूक्ष्म छोटे जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि पलते रहते हैं और जिन्हें हम अपनी आंखों से, हम अपनी बिल्कुल बैर अपने जो बिल्कुल नंगी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये हो गया एलर्जी का, इस तरह से जो है वो ट्रिगर होती है, कारण जो है आपका बेड बनता है अगर वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हर 2 से 3 दिन में आपको अपनी बेडशीट धोनी है, आपको अपने गद्दों को जो है धूप लगानी है, आपके तकियों को धूप लगानी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको सुबह उठते ही सबसे ज्यादा छींकें आती है या नाक बंद लगती है तो समझ जाइए ये समस्या बिस्तर से ही आ रही है। इसी के साथ साथ अपनी चादरों को और तकियों के जो गिलाफ होते हैं, उनके जो कवर होते हैं, हर हफ्ते आपको जो है वो गर्म पानी से धोने हैं और धूप में अच्छे से सुखाने हैं। बेडरूम से जो कालीन है उसको हटाना है, और देखिए इसमें भी जो है बैक्टीरिया जो है वो हो सकता है, और साथ ही आप जो है इसको भी धूप लगाइए, और हर 2 से 3 दिन में आपको ऐसा करना है। इसी के साथ साथ ये तो रही एक ट्रिगर पॉइंट की बात, जो कि आती है बिस्तर से, बेड से। अब और भी क्या कोई ऐसे पॉइंट्स है, चलिए वो भी बताती हूँ। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रही और सुन रही है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ बातें हमारी चल रही हैं और मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूं जो बढ़ावा देते हैं एलर्जी को. और साथ ही देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया बेड के बारे में, अब नेक्स्ट आती है हवा. गर्मियों में सुकून देने वाला एयर कंडीशनर या कूलर भी एलर्जी का एक बड़ा रीजन बन सकता है. अगर इनके फिल्टर समय पर साफ नहीं किए जाएं तो ये पूरे घर में धूल और फफूंद और साथ ही एलर्जी का कारण जो है ये बन सकते हैं. अब ऐसे में कैसे होगी पहचान कि आप जैसी ही एसी या कूलर चालू करते हैं अगर आपकी तबीयत बिगड़ने लगे, तुरंत आप सतर्क हो जाइए कि ये जो है वो एसी या कूलर की वजह से ही हो रहा है. हर 1 से 2 दिन या 3 दिन में आपको फिल्टर जो है इसको अच्छे से साफ करना है. और साथ ही अगर संभव हो तो HEPA ग्रेड वाले फिल्टर का ही चुनाव आप करें. ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, आप देख लीजिए और वही आप फिल्टर को चुने. चलिए इसी के साथ कुछ और भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और आज है संडे का दिन और हमारे देखिए आज खास यहाँ पर एक जो है वो बातें हमारी चल रही हैं, खास टॉपिक जो है हमारी जो है मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए. और ट्रिगर पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे एलर्जी की, क्या रीज़न हो सकते हैं एलर्जी होने के. तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एसी और कूलर की जो हवा अगर साफ फिल्टर ना हो इसकी वजह से, और एक है आपका बेड जो कि अगर आप अच्छे से साफ क्लीन नहीं रखते हैं तो भी इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो कि सीधा आपके अंदर चल जाएंगे. जब आप रात को सोते हैं सांस लेते हैं तो वो चले जाते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है. अब नेक्स्ट जो आता है, देखिए आपके महकते घर के पीछे ना जहरीला सच आज आपको बताती हूँ. हम घर को महकाने के लिए रूम फ्रेशनर, नॉर्मल सी बात है, हम यूज़ करते हैं, या कोई मोमबत्तियाँ हो गई सुगंधित, जो सेंटेड कैंडल्स हो गई, या कपड़ों में जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है, ये जो खुशबू है इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सच ये है कि ये जो चीज़ें हैं हवा में ऐसे रसायन छोड़ती है जो हमारी सांस लेने की जो नली है उसको बुरी तरह से परेशान करती है. क्योंकि देखिए हमारे जो घर में जो खिड़कियां हैं अक्सर बंद रहती हैं हमारे इंडियन घरों में, और इसीलिए इन जो रसायनों का असर जो है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है. और नया पेंट हो गया, नया फर्नीचर हो गया, या फिर जो पेंट फर्नीचर पे भी जो है वो करा जाता है, एक जो पॉलिश है वो लगाई जाती है, या फिर बनावटी फर्श की बात की जाए उसमें हफ्तों तक हवा में हानिकारक गैस जो है वो छोड़ती है. अगर घर के अंदर रहने पर आपको एलर्जी ज़्यादा महसूस होती है तो इन कुछ देखिए आप जो है अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप जो है पैकेट वाले जो है आजकल जो मार्केट में मिल रहा है उसका इस्तेमाल ना करके आप नेचुरल जो है वो फूल आप रख सकते हैं. सेंटेड कैंडल्स का इस्तेमाल ना करके कुछ नेचुरली आप अगर जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. कपूर हो गया, ये सही रहता है, कैम्फर जो है वो सही रहता है, वो एलर्जी उससे नहीं होगी बल्कि उससे आपको अच्छा महसूस होगा. यूकेलिप्टस आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी जो पेड़ होता है उसका जो एसेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जिससे आपकी नाक भी खुल जाएगी. तो ये कुछ फ़ायदे हैं. चलिए इसी के साथ और भी होंगी बहुत सारी बातें, कुछ और भी आपको ट्रिगर पॉइंट्स बताऊंगी और वो भी एलर्जी की. तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं, खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं। आज संडे का दिन है और साक्षी आपके साथ है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी एलर्जी के बारे में। अब देखिए, बात करते हैं पैकेज वाले खाने में जो रंग होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और स्वाद बढ़ाने वाले जो तत्व डाले जाते हैं, ये कई बार जो है वो हिडन एलर्जीज का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को कच्चे फल या सब्जियां खाने के बाद बिल्कुल वैसे ही एलर्जी होने लगती है जैसे धूल, या फिर देखिए आपको किसी और चीज से हो रही हो, एलर्जी हो रही हो, अगर खाना खाने के बाद आपको दिक्कत होती है तो ये एक डायरी आप बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और इससे असली कारण जो है पकड़ने में आपको आसानी होगी। आप सारी चीजें लिख दीजिए, दोबारा से वो चीज खाइए, दोबारा से अगर आपको ऐसा तो सारी लिख लिख के चीजों आपको जो है वो पता चल जाएगी। नहीं तो एक एलर्जी टेस्ट भी होता है, वो आप करा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वो टेस्ट करा लीजिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि कुछ और भी एलर्जीज के बारे में आपसे बात करूंगी, जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।
1: समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए मैं आपको बता दूँ, अब बातें जो हैं वो हमारी चल रही हैं एलर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ, क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं एलर्जीज के। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हमने बात करी जो पैकेट बंद जो रंग वाले फूड आइटम्स होते हैं, या हवा के ज़रिए भी जो है बैक्टीरिया फैलता है, या फिर कुछ ऐसे एसेंस हो गए उनकी वजह से भी ऐसा होता है, जो कि हम अपने घर में खुशबू के लिए डालते हैं उसकी वजह से होता है। अगर ठंडी हवा एसी की सफाई ना हुई हो फिल्टर की या फिर कूलर की, तब भी ऐसा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ बेड आपका, यहाँ पर भी जो बैक्टीरिया है वो पनपता है। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं कि भारत की लगभग 77% आबादी ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर है जहाँ प्रदूषण PM2.5 का स्तर WHO के सुरक्षित पैमानों में से जो है वो कहीं ज्यादा है। ये जो प्रदूषण है ना सिर्फ फेफड़ों को कमजोर करता है बल्कि सांस लेने की नली की भी सुरक्षा परत को तोड़कर एलर्जी को भयंकर बना देता है। अब इसी के साथ साथ देखिए बात करें कि अगर परीक्षा की टेंशन है या फिर आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस की बात करें, अगर ऑफिस के काम की बात करें, घर में झगड़े की बात करें, ये सब सिर्फ आपके दिमाग को नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और तनाव की जो समस्या है, ये जो समय है, शरीर से आपका कॉर्टिसोल और साथ ही एंड्रेनल जैसे हार्मोन जो है वो बढ़ाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें कंट्रोल करना। और आपको जो है भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए, आपको जो है साफ़ सफाई अपने पास जितनी हो सके उतनी रखिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जो है वो साफ़ सफाई ना होने की वजह से जो है वो हाइजीन ना मेंटेन रखने की वजह से होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हाइजीनिकली हर चीज़ आपके पास मेंटेन रहेगी, आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, चाहे वो आपका बेड हो, आपका सिटिंग ऑफिस में स्पेस जो है वहाँ पर हुआ, हर जगह साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना और 7.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैंने रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मैंने रचना, जिसके बाद ढेर सारे जो है आपको पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस जानकारी बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देर किस बात की, जल्दी से देखिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको डाउनलोड कीजिए हमारे इंटरनेट ऐप को और साथ ही कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बात अब मैं कर रही हूँ स्पोर्ट्स की। जी हाँ, लेकर के आ गई हूँ सेगमेंट पावर प्ले विद आर जे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं बहुत सारी। और एक बहुत ही खास आपके पास फिर से लेकर के आ गई हूँ एक स्टोरी जो है, एक कहानी, एक जर्नी जो है वो लेकर के आ गई हूँ। और अब मैं बात कर रही हूँ अमित पंघाल की। जी हाँ, जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी रिंग में लड़ रहा होता है। किसी की फाइट पैशन के लिए होती है, किसी की हालातों से होती है और किसी की खुद से। लेकिन असली चैंपियन वही बनता है जो हर राउंड के बाद दोबारा खड़ा हो जाए। और आज की कहानी जो है हरियाणा के एक ऐसे बॉक्सर की, जिन्होंने सिर्फ पंचेज ही नहीं मारे बल्कि हर मुश्किल को नॉकआउट कर दिया। हरियाणा के रोहतक के पास के एक छोटे से गांव में अमित के बचपन जो है उनका ये गुजरा। उनके पिता किसानी और छोटी मोटी नौकरी जो है वो किया करते थे घर चलाने के लिए। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन सपनों की कमी भी बिल्कुल भी नहीं थी।

जरूरी हो जाती हैं बातें, ये जान लेनी कब आपको बचना है, कब पेशेंस रखना है। और एक बॉलर को पहले अपने डर को जो है वो हराता है और फिर सामने वाले को। तो अमित ने भी यही किया, अमित ने लोकल टूर्नामेंट्स में अपनी पहचान बनानी शुरू करी। आगे क्या हुआ बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ अमित की मैं बात कर रही हूँ। अमित ने लोकल टूर्नामेंट से अपनी पहचान बनानी शुरू करी, हर जीत के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उनकी स्पीड और स्मार्ट बॉक्सिंग ने कोचेस को इम्प्रेस कर दिया। नेशनल कैंप का बुलावा आया उसके बाद और फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। हर बार जब उन्होंने इंडिया की जर्सी पहनी, उन्होंने अपना गांव, अपना परिवार और अपना बचपन, वो देखिए बचपन के वो जो वो पुराने ग्लव्स थे उनको याद किया जो भाई से उन्होंने लिए थे। अमित पंघल ने एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीत कर हिस्ट्री रची और वो दुनिया के टॉप बॉक्सर्स में शामिल हुए। इसी के साथ ओलंपिक्स में भी इंडिया का प्रतिनिधित्व कि उन्होंने किया। हर बार रिंग में जो है वो उतरते वक्त उनके कंधों पर सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स ही नहीं, पूरे भारत का जो है वो एक विश्वास जो है वो होता है। लेकिन हर जीत के पीछे कई सारी कहानियां जो है वो छुपी हुई हैं। कभी इंजरीज, कभी सिलेक्शन का प्रेशर, कभी एक क्लोज डिफीट। ओलंपिक्स में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला और किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अमित ने हार जो है वो हार बिल्कुल नहीं मानी, अपनी पहचान जो है वो बनने दी। उन्होंने फिर से ट्रेनिंग शुरू करी क्योंकि उनके लिए सफ़र जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसी के साथ कुछ और भी बातें हैं जो कि बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन और संडे वाला दिन साक्षी आपके साथ है और मैं आपसे बात कर रही हूँ एक खास खिलाड़ी के बारे में। देखिए, बॉक्सिंग हमें जो है वो एक बहुत बड़ी बात जो है वो सिखाती है। और देखिए, ये जो बात है ये सिखाती है कि जिंदगी आपको पंच जरूर मारेगी, कभी फेलियर के रूप में, कभी रिजेक्शन के रूप में, कभी डिसअपॉइंटमेंट के रूप में, लेकिन जीत उसी की होती है जो गिरकर भी रेफरी के 10 काउंट से पहले उठ खड़ा होता है। अमित पंघल की कहानी सिर्फ एक बॉक्सर की कहानी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी मुश्किलों के सामने जो है कभी हार नहीं मारी। और साथ ही याद रखिए, रिंग सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं होती है, हर ऑफिस, हर क्लासरूम, हर घर और हर सपने के बीच भी एक रिंग होती है। और हर दिन हम सब अपना अपना मैच खेल रहे होते हैं, तो जब जिंदगी भी जो है आपको गिराए तो एक बात याद रखिएगा कि चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, चैंपियन वो है जो हर बार उठकर खड़ा हो जाता है एक राउंड और। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ आपको बता दूं, खास जानकारी आपके लेकर के आई आज मैं. और अगर ये सारी जानकारी आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे इंटरनेट ऐप पर आप जा सकते हैं और सुन सकते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट और एक्सपर्ट एडवाइस, और साथ ही साथ बहुत सारी स्टोरीज, प्यारे प्यारे गाने आप सुन सकते हैं. तो बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है ऐप को. ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है और सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, बस आपको डाउनलोड कर लेना है. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, यानी कि आप मुलाकात होगी आपसे कल, होंगी ढेर सारी बातें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। एंड दिस शो इज रियली स्पेशल क्योंकि यहाँ पर हम आपको एजुकेट करते हैं। सो हम आपको बताते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। वी टॉक अबाउट डिफरेंट केस स्टडीज, वी टॉक अबाउट कंपनीज, वी टॉक अबाउट फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ दैट कंपनी, वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड सो ऑन। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपको एजुकेट करते हैं, आपको साथ साथ एक रोड मैप के तौर पे हम बताते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है दुनिया में, सो दैट अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो यू गेट दैट आइडिया। सो दिस इज अ रियली स्पेशल एपिसोड। अगेन हम लेकर के आए एक और केस स्टडी, करेंगे डिस्कस, बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, देन विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योर टेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योर टेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योर टेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योर टेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योर टेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है, चीज़ों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योर टेक की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 operating model जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योरटेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नज़र आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली 3 models हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया

अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में, बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो ID प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो है वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव।

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्वेस्टर 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहां पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशंस के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अभी तक आप इंडस्ट्री को समझ गए हैं, तमाम चीजें आप जान चुके हैं। आइए अब शो को आगे लेकर चलते हैं और फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की जो हमारी कंपनी है वो है ग्राम कवर। ग्राम कवर नाम से काफी कुछ आपको पता लगता है, राइट? क्या है ग्राम कवर? इंश्योरटेक के बारे में आप जान चुके हैं। सो बेसिकली ग्राम कवर एक इंडियन इंश्योरटेक स्टार्टअप है जो 2016 में स्टार्ट हुआ, नोएडा से स्टार्ट हुआ, और टेक इनेबल्ड इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है ये, जहां पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है जो इंडिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉब्लम है, विच इज द लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस इन रूरल इंडिया। देखिए, अर्बन फोकस जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, बट ग्राम कवर ने यहाँ पर डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा है ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली फार्मर्स, रूरल फैमिलीज, डेयरी फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम FPO बोलते हैं, उनके साथ अलाइन हो सके। ये काम करता है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ताकि सेम प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बट उनकी जो नीड है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि फसलों का इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सब कुछ तो होता ही है। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ, ग्राम कवर ने एक, आप कह सकते हो, लाइसेंस इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम किया, लेकिन एक कैटेगरी के ऊपर भी ध्यान दिया जहां पर उन्होंने कस्टमर्स को इंश्योरर्स से मिलवाया और उनके हिसाब से इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मॉडिफाई कराए। तो एग्जैक्टली गैप था जिसको भरा इस कंपनी ने। सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ ग्राम कवर। देखिए, ग्राम कवर से पहले क्या होता था, इंश्योरेंस इंडिया में एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम थी, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी जो है फोकस करती थी सिटीज के ऊपर और रूरल कस्टमर्स जो हैं वो नहीं ले पाते थे, उनके लिए इंश्योरेंस एक, आप कह सकते हैं, एलियन बॉडी हो गया था या बहुत महंगा हो जाता था, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ले पाते थे। सो फार्मर्स को मल्टीपल रिस्क जो है फेस करने पड़ते थे, अगर फसल खराब हो गई तो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, या लाइफ स्टॉक जो है वो खराब हो गया, या फसल खराब हो गई, या कीड़े लग गए फसल में, या मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस की जरूरत तो सबको है ना। एंड देर वर अ फ्यू रीजंस एज वेल, ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत लिमिटेड एजेंट्स हुआ करते थे, उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड थे, प्रीमियम कन्फ्यूजिंग हुआ करते थे, क्लेम बहुत मुश्किल थे, सो पीपल डिड नॉट इवन ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसलिए यहां पर इसे गैप को फिल किया ग्राम कवर ने। आई होप इट हेल्प्स। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा है गानों के साथ आपको। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं आइडिया क्या था ग्राम कवर के पीछे। सो आइडिया वॉज रियली सिंपल। एक सिंपल रियलिटी को ऑब्जर्व किया गया। देखिए, रूरल इंडिया डजंट लाइक रिस्क, इट लैक्स एक्सेस टू प्रोटेक्शन। ठीक है, कंपनी के जो फाउंडर हैं जतिन सिंह, उन्होंने ऑलरेडी स्काईमेट वेदर सर्विसेज जो है बिल्ड किया हुआ था, जो आप कह सकते हो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट वेदर फॉरकास्टिंग कंपनीज में कंसीडर किया जाएगा। प्राइवेट था ये, ठीक है। तो जब उन्होंने क्लोजली काम किया एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के साथ, ठीक है, वेदर डेटा उन्होंने कंपाइल किया, तो इन्हें एक चीज दिखाई दी कि कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है वेदर। फार्मर्स की इनकम को, पूरी इनकम, चार चार महीने, छह छह महीने की जो उनकी लागत होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ओवरनाइट। तो ऐसे में वेदर फॉरकास्टिंग कुड वार्न फार्मर्स, बट वार्निंग्स अलोन कुडंट कंपेंसेट फाइनेंशियल लॉसेस। इसलिए फार्मर्स को जरूरत थी इंश्योरेंस की। दैट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राम कवर। तो यहां पर इन्होंने वेट करना ठीक नहीं समझा कि इंश्योरेंस ऑफिस में जाएं वो करें। ग्राम कवर ने क्या किया, सिंपल, इंश्योरेंस को डायरेक्टली गांव में ले गए। अमूमन ऐसा होता है ना कि गांव में इंश्योरेंस आएगा, कंपनी खुलेगी, ब्रांच खुलेगी, कोई एजेंट आएगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है, या फिर गांव वाले वहां पर जाएंगे। इन्होंने बीच में वो जो सफर था उसको छोटा कर दिया और खुद काम करना शुरू कर दिया उनके लिए। ग्राम कवर फॉलोज अ फिजिटल मॉडल, बेसिकली फिजिकल प्लस डिजिटल, इट बिकम्स फिजिटल। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एवरीथिंग ऑनलाइन जैसे कि बाकी और कंपनीज करती हैं, इन्होंने टेक, लोकल इंश्योरेंस एडवाइजर्स, विलेज एंटरप्रेन्योर्स, फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, एनजीओस, इन सब को कंपाइल किया। तो एक फार्मर को कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा या सिर नहीं खपाना पड़ेगा। एक एजेंट होगा जो ट्रस्टेड होगा, जो उनको सही से ब्रीफ करेगा, एक लोकल एडवाइजर होगा जो सब यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करेगा। पॉलिसी जो है डिजिटल इशू की जाएगी, क्लेम्स जो है डिजिटली सपोर्ट किए जाएंगे। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन एंड दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग जो इस कंपनी ने करी। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड ग्राम कवर एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: दो।
1: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। बात करते हैं ग्राम कवर कैसे अलग है, व्हाट मेक्स ग्राम कवर डिफरेंट। तो ये बहुत सारे जो इंश्योरेंस स्टार्टअप्स हैं वो इंश्योरेंस सेल करते हैं, बट ग्राम कवर यहां पर एक्सेस सेल करता है। इसका सबसे बड़े डिफरेंशिएटर्स हैं कुछ। फर्स्ट इज रूरल फर्स्ट अप्रोच। यहां पर मोस्टली इंश्योरटेक जो कंपनीज हैं वो अर्बन कस्टमर्स के साथ स्टार्ट होती हैं, ग्राम कवर जो है गांव से स्टार्ट होती है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, सो दे आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। जो वहां पर वहां की लाइवलीहुड के हिसाब से चीजें हैं वैसे इन्होंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे क्रॉप का इंश्योरेंस, लाइव स्टॉक आपके पास है उसका इंश्योरेंस, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, यूनिक बट गांव में जाकर आप देखेंगे तो जरूरी है। 60% से ज्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है, लगभग इतना आप बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर आया, टेक विद ह्यूमन ट्रस्ट। तो यहां पर इन्हें एक ऐसा इंसान भी दिया गया जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी देख सके और उनका एक्सप्लेन भी कर सके। तो ग्राम कवर ने लोगों को एलिमिनेट नहीं किया, इंक्लूड किया, लोकल एजेंट्स को जो है एम्पावर किया, टेक के साथ उनको अलाइन किया और साथ साथ लोगों की हेल्प करी। वहां पर ट्रस्ट फैक्टर हो गया, टेक फैक्टर हो गया, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है उसको लो किया, तो टेक की मदद से यहां पर रिमोट विलेजेस तक पहुंचा जाना आसान हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लोकल एजेंट्स अपने साथ जोड़े जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। B2B2C मॉडल है इनका, तो यहां पर ये कंपनी के साथ भी डील

करते हैं और फार्मर्स के साथ भी डील करते हैं, B2B भी है, B2C भी है, FPOs के साथ काम करते हैं, कोऑपरेटिव्स के साथ काम करते हैं, एग्री कंपनीज के साथ काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं और डायरेक्टली फार्मर्स के साथ भी काम करते हैं. सो दैट इज अ यूनिक मॉडल. सो इट मेक्स कस्टमर एक्विजिशन फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव. उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझा पाया हूँ. आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। बिना किसी देरी के बात करते हैं ग्राम कवर के फाउंडर्स की। पहला नाम है जतिन सिंह, रोल है फाउंडर एंड डायरेक्टर। ग्राम कवर के पहले इन्होंने स्काईमेट वेदर सर्विसेज एक कंपनी स्टार्ट करी, जो जानी जाती है प्राइवेट वेदर इंटेलिजेंस कंपनीज के तौर पर। उस लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। इनका एक्सपीरियंस जो है वेदर फोरकास्टिंग में रहा, बट वहां पर इन्होंने देखा कि गैप है, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, जो कि फार्मर्स के द्वारा बियर किया जाता है। सो विच इवेंचुअली लेड टू द आइडिया ऑफ ग्राम कवर। इनकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्होंने मास्टर्स की डिग्री की इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी। एंड इनकी एक्सपर्टीज है एग्रीकल्चर, वेदर इंटेलिजेंस, क्लाइमेट रिस्क, रूरल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा नाम आता है ध्यानेश भट्ट, को फाउंडर एंड CEO। ध्यानेश भट्ट इस कंपनी को लीड करते हैं, इसके ऑपरेशंस एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी पार्ट को। पब्लिक इंटरव्यूज बताते हैं कि इनके जो फोकस एरिया हैं वो हैं रूरल इंश्योरेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक लेड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप। एंड यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करूँ और भी कुछ फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, जिसमें अगला नाम जो आता है वो ऋषभ गर्ग का आता है, जिनको CTO के तौर पर जाना जाता है। ये यहाँ पर जो फिजिटल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल, उसको इनेबल करने में इन्होंने हेल्प करी है। सो गर्ग ने ये पूरा जो टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है इसको डिजाइन किया है, और फिजिकल जो वहां पर एजेंट्स हैं उनके हिसाब से इसको अलाइन किया गया है। अगला नाम आता है नीलम कुमार गुप्ता। नीलम कुमार गुप्ता इज अ फाउंडेशनल मेंबर ऑफ द कोर टीम। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनिशियली ऑपरेशनल पार्ट में रहा, टेक पार्ट में रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में रहा, पूरी कंपनी को खड़ा करने में रहा। और भी कुछ लोग हैं जो इनिशियली इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उनको क्रेडिट जाना चाहिए, जिसमें नलिन रावल हैं, स्वरूप बेरिया हैं एंड ऋषि राज वशिष्ठ भी हैं। तो कंपनी दोस्तों ऐसे बनती है, कंपनी ओवरनाइट नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन रिजल्ट आपको समटाइम्स ओवरनाइट नजर आता है, बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो इनके काफी सारे फेलियर्स रहे होंगे अपने अपने, इनके फेल्ड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बहुत सारी लर्निंग रही होगी, तब जाकर के लोग यहां तक पहुंचे और ये कंपनी बिल्ड कर पाए। दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्राम कवर। आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, फील गुड फील लाइफ। अगला पॉइंट आता है हमारा ग्राम कवर में, ग्रोथ ड्राइवर्स, ह्यूज अनटैप्ड रूरल मार्केट। भारत की रूरल पॉपुलेशन को अभी भी बहुत कम टैप कर पाए हैं लोग, याद रखिएगा। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनडिजर्व्ड इंश्योरेंस मार्केट्स में कंसिडर किया जाएगा इंडिया की रूरल पॉपुलेशन को। यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी इनके पास रहा, ठीक है, क्योंकि स्कीम्स ऐसी बहुत सारी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने अवेयरनेस तो बढ़ाई कि फसलों का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे आप कह सकते हैं एक पीआर या मार्केटिंग वाला काम कर दिया सरकार ने। तो वहां पर कंपनियां एक प्रोडक्ट लेकर, सोल्यूशन लेकर कि देखो जी, लोगों को बहुत मुश्किल नहीं हुई क्योंकि सरकार ऑलरेडी अवेयर कर रही थी। तीसरा पॉइंट आता है स्मार्टफोन एडॉप्शन। इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया, गांव गांव पहुंचा, तो लोगों को समझ में आया कि भाई बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पर ट्रस्ट किया जा सकता है इस फोन पे। और जिन कंपनीज को ये बात समझ में आ गई, उन्होंने स्मार्टफोन के जरिए ही अपने पूरे पूरे पोर्टल्स प्लेटफॉर्म तैयार करके रख दिए। पार्टनरशिप मॉडल बहुत अच्छा है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो इन्होंने खुद ने अपने ब्रांचेज नहीं खोली, खुद ने अपना प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया, कंपनीज की मदद से फार्मर्स को वहां पर अलाइन किया और उनको उनके हिसाब के प्रोडक्ट्स दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फोकस ऑन ट्रस्ट। लोकल एडवाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके सामने एक बंदा मौजूद नहीं है तो थोड़ा सा वहां पर लैक हो सकता है, बट अगर सामने एक बंदा मौजूद है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपर बता रहा है, जिसको आप जानते हैं, घर से जानते हैं, तो आई थिंक इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ टूडेज कंपनी ग्राम कवर। मैटर करती है, हर एक प्रॉब्लम मैटर करती है, हर एक गैप मैटर करता है, इट्स जस्ट कि आप कितना फिगर आउट कर पाते हो। अब आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, अपने शो को यहाँ पर पार्क करता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम ऑल इज वेल, और ऑल इज वेल में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उस विषय पर हमने कई बार बात करी है, लेकिन इस प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि हर घर में हर कोई परेशान रहता है। मौसम जैसे ही बदलता है, फ्लू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। और आप भी देख सकते हैं कि आपके आसपास वाले क्लिनिक्स में पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है। पर मौसम बदलते ही ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है, ये फ्लू आखिर आता कहाँ से है और क्यों हमें इतना परेशान करता है हर बार, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि हमारे खास मेहमान हैं आज के। सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
2: सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम फ्लू की बात कर रहे हैं और अब जैसे कि बारिश का सीजन आ गया है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जैसे कि हर साल होती है, सो हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन लगी होती है फ्लू के पेशेंट्स की। अब ये फ्लू एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये बताएं, और फिर ये मौसम बदलने के साथ इतना ज्यादा क्यों आ जाता है?
3: तो मैम, बेसिकली मौसम बदलने से फ्लू का रिलेशन ये है कि जब मौसम बदलना कहते हैं, मतलब समर्स के बाद जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो वायरस जो एयर में हमारा सस्पेंडेड होता है, इसके लिए परफेक्ट एनवायरमेंट है टू ग्रो एंड टू स्प्रेड। क्यों? क्योंकि वायरस फ्लरिशेज और आई वुड से थ्राइव्स इन अ लो टेम्परेचर एनवायरमेंट। वो गर्मियों में आप कभी नहीं देखोगे कि अप्रैल मई में किसी को फ्लू हो रहा है, अनलेस उसका कोल्ड एक्सपोजर ना हुआ हो। तो यूजली वायरस जो होते हैं यही फ्लू के जड़ के कारण होते हैं, वायरस इन्फेक्शन जिन्हें हम कहते हैं। तो जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है सीजन चेंज पे, तब ये ज्यादा आप देखते हो कि 1-2 सेकेंड, 2-3 स्प्रेड करता है, ये जंप करता है। तो यूजली मैम कॉमन वायरसेस होते हैं हमारे पूरे सस्पेंडेड एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, सच एज राइनो वायरस करके होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यूजली राइनो एंड इन्फ्लुएंजा आर द मोस्ट कॉमनली कॉजिंग वायरसेस कॉजिंग फ्लू इन्फेक्शंस।
2: अक्सर हम देखते हैं कि ये जो बुखार है या ये जो सीजनल फ्लू है, ये अपने साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स लाता है। तो सीजनल फ्लू और नॉर्मल बुखार जो कभी वैसे ही हो गया, उन दोनों को डिफरेंस कैसे पहचाने?
3: मैम, जो वायरल का जो इन्फेक्शन का जो फीवर होता है, यूजुअली मैम अगर सपोज करो कि वायरस का ना बेसिकली प्रॉपर्टी होती है अपने आप को चेंज करता रहता है, जिसको हम कहते हैं हमारी साइंटिफिक भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये मैम जैसे बार बार हर साल 2 साल में अपना अपने एक मेम्ब्रेन को या अपने आउटर कवरिंग को ही चेंज करता रहता है टू बी एबल टू अवॉइड और इवेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब ताकि शरीर में ये आराम से स्प्रेड कर पाए। तो जब एक नया एंटीजेनिक ड्रिफ्ट से चेंज हुआ वायरस आपको अटैक करेगा, तो आपका फीवर एक हाई ग्रेड का आएगा, 101, 102, मे बी शायद कन्वेंशनल पैरासिटामोल को ये रिस्पॉन्स भी ना दे। बहुत ज्यादा आपको बॉडी एक होगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपसे काम नहीं होगा, सर दर्द होगा, ये सारी चीजें। और अगर ये अपर रेस्पिरेटरी के माध्यम से आएगा, यानी नाक से या गले से, तो गले में दुखन होती है, नाक का बहना होता है। हाँ। और अगर ये थोड़े समय अनट्रीटेड रहे, तो ये नीचे भी अपने आप को ट्रांसग्रेस करता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ, ये फिर ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, जैसे कि खांसी में बलगम, और जो ऑलरेडी जो पीड़ित लोग होते हैं, जैसे अस्थमा या सीओपीडी, या जिनको निमोनिया पहले हो चुका, जिनका स्ट्रक्चरली लंग डिजीज है, तो उनमें ये सांस की भी प्रॉब्लम कर देता है।
2: यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ के साथ चलती रहती हैं, और ये मुझे लगता है कि आज के समय में जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे आपने कहा कि गर्मी से थोड़ा ठंडा होता है, ये बहुत कॉमनली होता है। आप अपने ऑफिस में अपने आसपास लोगों को देखेंगे जिनको खांसी आ रही है और 4-5 दिन से नॉनस्टॉप आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इलाज आप खुद घर में कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? क्योंकि आपका इलाज अगर कहीं उल्टा पड़ गया तो प्रॉब्लम क्या बढ़ सकती है, ऐसी बातें भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वक्त है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और नॉलेज पार्टनर है हमारे एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आज फ्लू के बारे में, वो फ्लू जो मौसम बदलते ही हो जाता है और आपको लगभग एक हफ्ता तक तो परेशान करता ही है। कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है या फिर इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा समय तक हो सकते हैं। खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये बहुत कॉमन है और हम इनको बहुत लाइटली भी लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान से सोचा है कि ये मौसम बदलते ही आखिर हो क्यों जाता है, सर्दियों में या फिर ठंडे मौसम में ही क्यों होता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर रोहित, मौसम बदलते ही फ्लू हो जाता है, आपने कहा कि ये ठंडे मौसम में ही होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, अभी तक हम 41-42 के बीच में थे और अब अचानक से ये जो वेदर है ये 30 के आसपास पहुंच गया है, ठंड हो गई है, एसी का इस्तेमाल लोग थोड़ा कम करने लगे हैं, अब ऐसे में बीमार बहुत कॉमनली हुआ जा रहा है। सो ये क्यों ऐसा वायरस, ये वायरस क्या है जो सिर्फ और सिर्फ ठंडे मौसम में ही होता है?
1: तो मैम, इसको समझने के लिए ना बेसिकली आप समझो कि अगर कोई वायरस पार्टिकल सस्पेंडेड है एयर में, मतलब तो मैं कहीं बैठा हूँ जहाँ पे किसी को है इन्फेक्शन, उसने खांसी करी, छींका या बात करी और उससे उसके वायरस जो है एयर ड्रॉपलेट से सस्पेंड हो गए एयर में। अब वो मैंने इनहेल करे या तो मेरे नोज के नोज की लेयर पे जाके उन्होंने डिपॉजिट हुआ या फिर मेरे गले की लेयर पे जाके डिपॉजिट हुए। अब क्योंकि अगर मैम सपोज करो वेदर थोड़ा कूल है या वेदर चेंजिंग है तो मेरी बॉडी एज इट इज स्ट्रेस में है, जो अडेप्ट करने में एनर्जी खर्च कर रही है टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वेदर। अब इस चक्कर में मैम क्या होता है, हमारी जो बैरियर मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे गले में या नाक में जो प्रोटेक्ट करते हैं हमको, वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो मैम वो जो अटैच्ड वायरस पार्टिकल है वो अगर मैम उसको वहाँ पे एक बैरियर अगर वीक मिलेगा तो इजीली मैम वो वहाँ से फिर ट्रांसफर होके वो अंदर चला जाएगा, जिससे फिर वो एक बारी सिस्टम में उसने अपना एक बारी बेसिकली अपना प्रेजेंस जमा लिया तो फिर वहाँ पे मैम वो सिस्टमिकली स्प्रेड करके वो कहीं पे भी कुछ भी इन्फेक्शन जैसे होता है वो कर सकता है। इसके साथ क्या होता है मैम कि जब आपका फिर बॉडी अब वेदर से अडेप्ट हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब वायरस को भी एक हल्का सा ही वायरस, कोई भी अगर सपोज करो अगर एक राइनो वायरस है या कोई भी वायरस है उसको भी अगर लड़ने में अगर एनर्जी जा रही है तो जो थोड़े से जो घातक वायरस हैं वो भी सस्पेंडेड हैं, वो भी अटैच थे, अब उन्होंने भी एंट्री गेन कर ली तो इस चक्कर में मैम एक वायरस ने गेट खोल दिया दूसरे ज्यादा घातक वायरस के लिए कि उसकी एंट्री हो जाने पे अब मेजर सिम्टम्स उसकी वजह से आते हैं।
0: तो इसलिए मैम ये शुरुआत में था उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम आगे वालों से।
1: यूजुअली मैम यूजुअली यही पैथोफिजियोलॉजी होती है एक बीमारी वायरस इन्फेक्शन की। तो जब आपको मैम सर्दियां होती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हमेशा हैंड हाइजीन, जिससे कि आप अपने हाथ से अपने नाक पे या मुंह पे आप वो वायरस को ट्रांसफर ना करें। जब आप एक पब्लिक स्पेस पे हैं, चेंजिंग वेदर है, कोल्ड है और देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब लोग पीड़ित हैं तो अपना मास्क पहन के रखें। प्लस जब आप घर पहुंचे आपको लग रहा है आज आपका गला हल्का सा दुख रहा है, प्लस मैम ये वायरस का क्या है कि ये इट डजंट लाइक हॉट एनवायरनमेंट एट ऑल, ये उसमें फ्लरिश नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन जब आप देखते हो कि लोग स्टीमिंग क्यों करते हैं, कि जब आप बाहर से आए हो अंदर अभी तो आप इट इज एडवाइजेबल कि आप एक क्विक 5-3 मिनट्स का एक सेशन नेजली या ओरली एक अच्छा स्टीम का सेशन करोगे तो आपको चांस प्रोग्रेस करने का बीमारी का कम हो जाता है।
0: बिल्कुल। सो यही चीज़ें जो थी कोविड में जनरली हमें कही जाती थी कि आप स्टीम लीजिए, गागल्स कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी गर्म चीज़ों से इस वायरस को खतरा है वो ख़त्म हो जाता है और ठंडी चीज़ों में ये पनपता है। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो मौसम अगर ठंडा है तो फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ऐसे में आपको खुद को, अगर आप इन्वायरमेंट वाइज गर्म नहीं रख पा रहे हैं तो अपने आप को एटलीस्ट वो चीज़ें या थेरेपीज दीजिए जिससे आपकी बॉडी गर्म रह सकती है, जैसे कि आप गागल्स कीजिए, स्टीम लीजिए या हल्का गुनगुना पानी भी पीजिए तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर मुखर्जी, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लू होने के। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जो फ्लू है वो आगे जाकर कई बार निमोनिया में भी बदल जाता है, विच इज़ वेरी रिस्की। बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई है पर बच्चों की थैंकफुली वैक्सीनेशन है सो उससे निमोनिया जो है बच्चों में आजकल काफ़ी रुक रहा है।
1: तो यूजली मैम आपने देखा होगा जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बिलो दी एज ऑफ 5 or 6-7 ईयर्स हम लोग उनकी वैक्सीनेशन बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं। दैट इज द रीजन जिस घर में बच्चे वैक्सीनेटेड हैं दे डोंट फॉल वेरी सिक और क्रिटिकली सिक नहीं होते, उनको एक पासिंग वायरल फ्लू इन्फेक्शन होता है एंड देन दे आर एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। एल्डरलीज में बात करूँ मैम तो एज वी एज वी फॉरगेट अबाउट वैक्सीनेशन, वी रिलाई ओनली ऑन आर बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे हम लोग अपना बाहर निकलना कम करेंगे, डाइट थोड़ी ध्यान रखेंगे, बट वैक्सीनेशन मैम बहुत ही क्रिटिकल है इस चीज में, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन जो आपके अंदर आने वाला है उसकी अगर प्रेपरेशन मैंने अगर आपकी बॉडी को करवाई है तो एटलीस्ट कुछ तो फाइट माउंट करेगा बॉडी, तो एटलीस्ट कल को इन्फेक्ट अगर आप होते भी हो तो सिवियरली इन्फेक्ट नहीं हो गए आप.
0: ओके,
1: तो यूजली वैक्सीनेशन का रोल ये नहीं है प्रिवेंट करना इन्फेक्शन, इट इज टू लेसन द लोड ऑफ इन्फेक्शन इंसल्ट जो होने वाला है एंड टू प्रिपेयर योर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्वेडिंग वायरस पैथोजन. तो ये वैक्सीनेशन का मैम अपना प्रिंसिपल है. एंड यूजली आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि हु शुड टेक केयर मोस्ट इन दीज सिचुएशन, सो मैम आई वुड सजेस्ट एनीबॉडी हु हैज इम्यूनिटी, हुज इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि एस्थमेटिक्स हो गए या कोई अगर सीओपीडी का पेशेंट है या फिर किसी को अगर पुराना लंग का इन्फेक्शन बार बार होता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको लंग्स के लिए दवाइयों के लिए बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, इनको तो प्राइमरली इनको वैक्सीनेट ईयरली जुलाई में होना ही चाहिए, सो दैट ये जो नेक्स्ट 8-9 मंथ्स है चेंजिंग वेदर के, इसमें इनकी बॉडी थोड़ी प्रिपेयर्ड रहे.
0: बिल्कुल,
1: डायबिटिक्स हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, इन सबको
0: इनको ज्यादा चांसेस होते हैं बार बार इन्फेक्शन होने के. और डॉक्टर साहब, क्या बार बार इन्फेक्शन होता है, जैसे अभी बरसातों में हुआ एक बार, फिर 3-4 महीने बाद सर्दी आएगी, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इन्फेक्शन हो गया, क्या ये बहुत

0: रिस्की होता है, इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं।
1: मैम रिपीटेड इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सिवेरिटी बढ़ती जाएगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस ऑर्गेनिज्म अटैच हुआ था और किसने आपको उस वक्त इन्फेक्ट किया था, प्लस बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट येस इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप एक बार इन्फेक्ट हुए हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे ये अगली बार हो तो बहुत कम हो या हो ही ना। तो बहुत सी चीज़ें मैम, जैसे हम लोग अपनी डाइट में विटामिन डी हमारा बहुत लो हो जाता है जब ठंड होती है, क्योंकि या तो क्लाउडी वेदर होता है या फिर विंटर होता है, तो हम लोग को सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी अपडेटेड रखना जरूरी है। दूसरा मैम अपना एक्सरसाइज करनी जरूरी है, क्योंकि ये यूजली रेस्पिरेटरी अफ्लिक्शन होता है, तो आपको अपना कार्डियो और पल्मोनरी जो थ्रेशोल्ड है वो अच्छे से हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए, ताकि अपनी एक्सरसाइज करते रहोगे तो अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होगा, बॉडी रिकवर कर जाएगी। डाइट हो गया, एक्सपोजर टू एनी आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स, बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए,
0: खासतौर पर से बदलते मौसम में ठंड आने पर या हल्का ठंडा मौसम होने पर। तभी कहा जाता है कि अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि डाइट का असर सीधा आपकी बॉडी को ठीक फील कराने में होता है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर से हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि आजकल लोग खुद ही मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का या तो वक्त नहीं होता या फिर डॉक्टर की लंबी लाइन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बट एक्चुअली में करना क्या चाहिए, इस सिंपल से दिखने वाले फ्लू में आपको क्या करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आप किसी भी शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। बस ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातचीत चल रही है फ्लू के बारे में. फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फिर और कोई वायरस जब अटैक करता है बॉडी पे तो आप हो जाते हैं बीमार. लगभग एक हफ्ता इसका असर रहता है इन जनरल केसेस. लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए, ये कोल्ड और कफ बढ़ जाए, तो ये निमोनिया भी बन सकता है. अब ये निमोनिया बन सकता है या फिर आप इसको लेकर ज़्यादा सतर्क हैं और खुद ही दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है? हर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में धड़ल्ले से मिल रही एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में शायद आपने विस्तार से कभी सोचा नहीं होगा. तो आज सोचिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. तो डॉक्टर रोहित, मेडिकेशन की बात करते हैं. जनरली क्या होता है, जब बुखार होता है तो हम पैरासिटामोल ले लेते हैं. एक दो दिन तक तो हम इसी से ही काम चला लेते हैं. खांसी जुकाम होते हैं तो खुद ही जाकर दवाइयाँ जो है वो कफ सिरप लेकर आते हैं और पीना शुरू कर देते हैं. अब जब 3 दिन तक इन चीज़ों का असर नहीं दिखता, फिर हम केमिस्ट के पास जाके जनरल केसेस में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं. 3 दिन का वो कोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, आपको थोड़ी नींद भी आती है, आप थोड़ा थका हुआ भी फील करते हैं, पर 3 दिन के बाद आप काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर सकते हैं. क्या ये तरीका ठीक है केमिस्ट के पास जाकर दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स लेने का फ्लू में?
1: तो यूजली मैम, कभी भी किसी को फ्लू होगा तो पहले जो सबसे प्रमुख सिम्टम आएगा वो बॉडी एक आएगा, फॉलोड बाय फीवर होगा, थोड़ा सा गले में दर्द होगा या फिर नाक का स्टफीनेस हो जाना होगा. तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि फर्स्ट डे यू शुड लाइन अप आउटसाइड अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक. आप इसको बेसिक मैनेज कर सकते हो एक पैरासिटामॉल से. हमारे घर पे होना ही चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स, पैरासिटामॉल होनी चाहिए. हमारे पास स्टीम के लिए कार्बोल की कैप्सूल्स आती हैं, जो मेंथॉल होता है इनके अंदर. आप क्लोव भी डाल सकते हो, आप जीरा डाल सकते हो. ये सारे देसी नुस्खे हैं जिनसे आपके गले में अटका हुआ जो बलगम है वो क्विकली इसको बाहर निकालेगा, जिसको म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहते हैं हम लोग. तो इट हेल्प्स इन डूइंग दैट, जिससे इनिशियल वायरल लोड न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो एक्सपेल हो जाता है. एटलीस्ट बेसिक जो हम कर सकते हैं. अगर मैं अज्यूम करो ये फीवर day 1, day 2, day 3 तक अगर परसिस्ट कर रहा है, यानी हाई ग्रेड फीवर है, 101-102 का है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसके बाद अब आप फार्मेसी पे जाके अपनी दवाई लो. आई वुड सजेस्ट यू रीच योर जो आपका हाउस होल्ड डॉक्टर है, he will probably maybe start you on maybe an antibiotic, because if by day 3rd the fever is not settling and it is only increasing, that means your body needs help. आप उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ सकते. तो maybe he'll start you on a basic antibiotic based on your history. And assume करें मैम कि उसके बाद भी day 4th, day 5th हो गया, 2 दिन antibiotic के भी हो गए, fever settle नहीं हो रहा है, खांसी है, then I would suggest to maybe proceed for investigations such as blood tests or a chest x-ray. आप अपने आप से नहीं करा सकते ये, क्योंकि ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही डिस्कस करने के बाद आप नतीजे पे आते हो कि किसी को एक्सरे कराना है या नहीं कराना है. आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करानी है, नहीं करानी है, एंटीबायोटिक कौन सी स्टार्ट करनी है. हर क्लास ऑफ पेशेंट के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है. इट इज नॉट लाइक कि वन शू फिट्स ऑल. कोई किडनी पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई एज ग्रुप अलग है, कोई फीमेल है, कोई प्रेगनेंसी में है. सो एवरी एंटीबायोटिक हैज टू बी चोजन एग्जैक्टली एज पर द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. दवाई मैम कभी भी क्लिनिक फार्मेसी से डायरेक्टली जाके आप एक फार्मासिस्ट की सजेशन से तो नहीं लेनी चाहिए.
0: ये रिस्की हो जाता है बहुत सारे केसेस में, और बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि ये आदत ही होती है कि मेडिकल स्टोर से जाके ले लिया और उसके बाद काम पे चले गए.
1: हम 10 में से 9 बार आप शायद निकल जाओगे, बट एक बार अगर आप उसमें अगर आप फंस गए तो दैट विल लीड टू सम ऑर द अदर इवेंचुअलिटी, जिसमें आपको फिर मेजर कोई प्रॉब्लम होने का चांस है.
0: इसमें क्या नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आपको ये सारी आदत पड़ गई कि आप खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं?
1: तो मैम हर बारी तो बॉडी माउंट नहीं कर पाएगी वो फाइट जो जरूरी है. एक ना एक दिन मैम वो इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जब शुरू में होता है तो वो सेल्फ लिमिटिंग ही होता है. बट अगर कोई बहुत ही घातक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए या बी है, वो भी चेंज्ड इन्फ्लुएंजा ए बी जो अभी नया सीजन में आया है, तो मैम वो हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करा के निमोनिया तक प्रोग्रेस करा दे. आपको इनिशियली पता ही नहीं चलेगा कि निमोनिया हुआ है नहीं हुआ है, और आप एंटीबायोटिक ले रहे थे किसी के कहने पर जिसने एग्जामिन भी नहीं किया. तो बाय द टाइम यू रीच टू अ डॉक्टर हु इज इन अ हॉस्पिटल और वो एक्सरे कराता है, तो आपको पैच दिखना शुरू हो जाता है एक्सरे पे. इन दैट केस नाउ यू आर नोवेयर. मतलब आपको इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे एक आपको एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल्स एडवाइस हो जाएंगी, आपके ब्लड टेस्ट बढ़ जाएंगे, आपके शायद मे बी CT कराना हो, बलगम की जांच करानी हो. तो ये अननेसेसरली अवॉइड हो सकता है अगर आप टाइमली एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डॉक्टर से अगर आप लो.
0: जी बिल्कुल, यानी एक अच्छे डॉक्टर से मिलना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी हो या छोटी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. डॉक्टर रोहित, मैं जानना चाहती हूँ कुछ कफ सिरप्स के बारे में, कफ सिरप या फिर कुछ ऐसे सिरप्स जिनको हम खांसी जुकाम में इस्तेमाल करते हैं, हम खुद जाते हैं और खुद खरीद लेते हैं। अब बहुत सारे कफ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है, आपको नींद आती है, और ऐसे में अगर आपको खांसी जुकाम है और आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं या एंटी एलर्जिक कोई दवाई आपने ले ली, तो उसके बाद आप ना ड्राइव कर सकते हैं ना आप काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि खांसी जुकाम की दवाइयों में इतनी ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है?
1: तो मैम, हर कफ सिरप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स केमिकल्स जो होते हैं ना, उनका अलग एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो जैसे मैम, एक ड्रग है, लेट्स से ए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ड्रग है ए जो कफ सिरप ब्रांड के नाम से आता है, वो उसका काम है बलगम को निकालना, सांस की नलकियों को खोलना और बेसिकली कफ को सेंट्रली दिमाग से सप्रेस करना। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पेशेंट के लिए हुआ। दूसरा होता है मैम जो ड्राई कफ होता है, लेट्स से वो एक ड्राई कफ किसी रीजन से है जिसमें कोई बलगम ही नहीं बनता है, तो उसको मैम हम लोग सप्रेस फिर अगेन सेंट्रली करते हैं, यानी ब्रेन से करते हैं, तो वो थोड़ा ड्राउजी करता है। अब इस सोचो मैम, इस ब्रांड की दवाई को मैंने वो दे दिया उस पेशेंट को जिसको खांसी बलगम वाली थी, तो ये मैम ये कौन डिसाइड करेगा किसको कौन सी लेनी है? तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। अब एक फार्मासिस्ट को इतनी नॉलेज तो होगी नहीं, वो तो मे बी शायद जो दवाई सबसे ज्यादा निकल रही है, चल रही है, जो पड़ी हुई है शेल्फ में, वो दे देगा आगे। अब उस पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली कि पुरानी उसको कोई मेडिकल बैकग्राउंड है कि नहीं है, उसका वर्किंग ऑक्यूपेशन कैसा है, बहुत ही क्लिनिकल या फिर बहुत ही प्रिसीजन वाला है, तो उसको बी ब्रांड की दवाई देनी ही नहीं है। सो मैम, एक और ब्रांड की दवाई आती है जो सी होती है, तो इस ब्रांड ऑफ सी मेडिसिन में मैम किसी किसी को बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। तो ये जब होती है तो बता के रखना होता है पेशेंट को कि हाथ में कंपन, घबराहट, दिल का धड़कन बढ़ जाना, महसूस होना हो, तो ये बंद होनी चाहिए। अब पेशेंट ने अगर एक दो चम्मच लिया और ये हो रही है, तो उसके बाद उसको दोबारा डोज नहीं लेनी, ये बताना होता है। तो मैम ये सारी चीजें एक डॉक्टर के साथ बैठ के टेबल पे कंसल्ट हो सकती हैं। ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेके घर आ जाओगे एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर अ डे और टू, एंड बाय डे टू यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे प्रोग्रेस कर चुकी है मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट है। तो जो बीमारी का साइड इफेक्ट जो था वो तो अलग, अब एक दवाई का भी साइड इफेक्ट आ गया। तो ये चीजें मैम,
0: तो ये तभी खुद से जो दवाइयां ले लेते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो दवाई है, आपके घर में बच्चा या बड़ा बीमार है, उसको वो प्रिस्क्राइब की गई है, जरूरी नहीं है कि वो ही कफ सिरप आपको भी सूट करे। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत सारी और भी बातें हैं, आगे बात करें।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हम बात करें हैं आपकी हेल्थ के बारे में, खास तौर पर से फ्लू बदलते मौसम में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर किसी को कभी ना कभी तो परेशान करती है। लेकिन अगर ये फ्लू बहुत ज्यादा होता है तो फिर इसका सोल्यूशन है वैक्सीनेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए वैक्सीन्स हैं मार्केट में, लेकिन वैक्सीन अगर आपने लगवाई नहीं है तो फिर कैसे बच पाएंगे। सो यही सारी बातें हम जान रहे हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी से, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर रोहित, वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन जो है वो अपने आप में एक रामबाण कहते हैं जिसको, कि अगर आपने लगवा ली तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि किस उम्र में लगवानी चाहिए। जैसे बच्चों में जनरली इन्फ्लुएंजा के डोजेस लगी होती हैं और आजकल जो चार्ट बन रहा है उसमें निमोनिया की भी वैक्सीन होती है, लेकिन बड़ों में आते आते आजकल जो हमारी जनरेशन है इनको शायद बचपन में हम लोगों को नहीं लगी है सारी वैक्सीन्स। तो क्या उम्र होती है फ्लू से बचने की वैक्सीन की और कितने ड्यूरेशन में लगवानी चाहिए?
1: मैम, बच्चों में तो खैर वैक्सीनेशन फ्लू की कवर होती ही है, अप टू द एज ऑफ 5 तक तो चलती ही है। उसके बाद मैम आई वुड सजेस्ट जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं ईयरली एक वैक्सीन हमारी जुलाई में लग जानी चाहिए बच्चों को, सो दैट उनको रिपीटेड ईयरली इन्फेक्शंस ना हो। स्पेशली उन बच्चों में जिनको एस्थमा है या जिनको एलर्जी है या जिनको कोई भी ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से वो शायद उनकी इम्यूनिटी डाउन है, या मे बी शायद स्टेरॉइड्स पे हैं या मे बी शायद किसी और मेडिसिन पे हैं जिनसे उनकी

0: कम्युनिटी लो चल रही है या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि मैम ग्रोथ
1: ज्यादा लोगों में आ जाते हैं
0: मैम, जहाँ पे ग्रोथ अगर हैम्पर नहीं चाहिए अपने बच्चे की, जिसमें है कि 12 महीने उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, एक क्लासिकल ग्राफ अपवर्ड रहे, तो आप नहीं चाहोगे बच्चा कभी भी ज्यादा समय के लिए बीमार रहे, तो आपको वैक्सीनेशन करा के अगर एक वो आपको एक प्रॉब्लम फ्री पीरियड मिल रहा है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। रही बात मैम अबव 18, तो यूजली मैम अबव 18 का अब इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो फिजिशियंस हैं वो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि ईयरली जुलाई में लगा लेनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोफेशन कैसा है या आपका वर्क कल्चर कैसा है या फिर आपकी इम्यून बॉडी का क्लिनिकल हिस्ट्री कैसी है। अगर आप डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, रिपीटेडली डायलिसिस पे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, या आपका पब्लिक इवेंट्स पे आपका रहता है एक्सपोजर रहता है, तो यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड सो दैट टू अवॉइड कि आपका कभी भी सिवियर इन्फेक्शन ना हो। यूजली मैम इसकी कोई एज नहीं डिफाइंड है इसमें, इट इज एडवाइजेबल एज पर पेशेंट टू पेशेंट, यू कैन हैव एनीबॉडी टेक द वैक्सीन एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल, जिसमें ये है कि बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कल को इन्फेक्शन होगा तो बहुत सिवियर नहीं होगा, बहुत ही माइल्ड होगा, ओपीडी बेसिस पे या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन पे घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: यूजली मैम वैक्सीनेशन का अप टू द एज ऑफ 60-65 तक यही रहता है, बट अब 65 के अगर ऊपर चले जाते हो तो डिपेंडिंग ऑन अगेन ऑन हिस्ट्री मैम, सपोज करो किसी को किडनी डिजीज ही नहीं है, अस्थमा नहीं है, डायबिटिक नहीं है, दैट मींस वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, बट स्टिल इट डजंट मीन कि उसको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। नाउ ही हैज एज्ड, हिज ऑर्गन्स हैव एज्ड,
1: सो ऑलरेडी वो एक इम्यूनिटी तो वीक
0: हो गई है, सो इवन दे शुड टेक वैक्सीन्स, जो कि हमारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स जो है, जो मैम एवरी सेकेंड और थर्ड ईयर हमारी वैक्सीन्स का जो स्ट्रेन होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये लोग हमेशा अपडेटेड वैक्सीन्स जो होती है अपने डॉक्टर से पता करके कौन सा स्ट्रेन का वैक्सीन लगवाना है वो जुलाई अगस्त में लग जाना चाहिए।
1: यानी हर साल आपको ये लगवा लेना चाहिए, और एज कोई भी हो, आप बच्चों की जो उम्र है 10-11 साल से शुरू करके हम 70 तक आराम से 70-75 जैसे भी डॉक्टर,
0: as long as you are alive, I would say कि वैक्सीन अगर लग जाए तो कोई आपको नुकसान है ही नहीं वैक्सीन का।
1: बिल्कुल, यानी वैक्सीन लगवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ख़ासतौर पर से फ्लू से बचने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो देखा है अभी तक फ्लू हर किसी को कभी ना कभी तो इफ़ेक्ट करता ही है, और उस इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जो कि बहुत ईजिली आपके डॉक्टर लगा सकते हैं आपको, और बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी तरफ तो ज़रूर बढ़ लेना चाहिए।
0: एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मैम, जैसे मेरी डेली प्रैक्टिस में जैसे मैं निमोनिया के पेशेंट्स देखता हूँ, तो मैंने अगर मैं एक कंपैरेटिव एक ग्रुप्स बनाऊं पीपल हु आर वैक्सीनेटेड वर्सेस पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो जो अधिकतर लोग जो एडमिट होते हैं 99% जो लोग होते हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप से होते हैं, 1% या 2% होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हो, या उनका शायद कोई अंडरलाइंग कोमॉर्बिड डिजीज जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर या रिकरेंट किडनी की वजह से डायलिसिस हो या हॉस्पिटल एक्सपोजर है, तो वो कभी निमोनिया की गिरफ्त में आ गए और वो एडमिट हो गए। नहीं तो 99% मैम वही लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, क्योंकि पहले वायरस अंदर आता है, फिर वो बैक्टीरिया को अंदर आने देता है, और फिर वो अंदर बैक्टीरिया जो है पूरा अपना निमोनिया की तरफ उसको ले जाता है पेशेंट।
1: जी बिल्कुल, यानी वैक्सीन के बहुत से फायदे हैं, तो आगे कोई प्रॉब्लम बड़ी ना हो उससे बचने के लिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं टीनेजर्स की या बच्चों की, अगर इनको हम फ्लू की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे जिससे बच्चा जो है वो 2-4 दिन या फीवर आएगा? जनरली वैक्सीन में ये होता है
0: मैम, यूजली ये वैक्सीन्स ना लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं, बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि इनके अंदर एक वायरस पार्टिकल होता है जो लाइव होता है, बट वो बहुत ही उसको सबड्यू कर दिया गया होता है कि ताकि वो क्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं करा सकता, बट सब क्लिनिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि हल्का सा बॉडी एक आध दिन का या मे बी रनिंग नोज हो, इट इज सो एज टू चैलेंज द बॉडी, जब बॉडी चैलेंज होती है तभी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, तो यूजली मैम ये उस पेशेंट में अगर आप लगाओगे जिसको कोई अगर एलर्जी है तो बहुत देख के लगाना होता है, बता के लगाना होता है, अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आप उसको लगाओ, मे बी एक दिन का उसको आप बता सकते हो कि घर पे अगर सिम्टम्स आएंगे तो एक पैरासिटामोल लेनी है, और कोई इसका मैम थर्ड साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई।
1: बिल्कुल, यानी बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब साइड इफेक्ट ही किसी चीज के इतने खास नहीं है और आप इससे बच भी पा रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो इसकी तरफ बढ़ना जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद एक खास सोल्यूशन आपके लिए, कैसा होना चाहिए लाइफस्टाइल, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें चल रही हैं फ्लू के बारे में। फ्लू यानी मौसम बदलते ही होने वाला इन्फेक्शन, जो कि बहुत ईजिली आपको कोल्ड का फीवर दे सकता है, बॉडी एक दे सकता है, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित मुखर्जी हैं, हमारे खास मेहमान, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। सो डॉक्टर रोहित, अब मैं चलते चलते आपसे सिर्फ दो तीन चीज़ें ही जानना चाहती हूँ कि आखिर जब किसी को फ्लू हो जाता है सो वो ऐसी सबसे बड़ी गलती क्या करता है जो बहुत नेगेटिव हो जाती है उसके लिए।
1: मैम, यूजली जो मैं ओपीडी में इंकाउंटर करता हूँ, जो सबसे बड़ी गलतियाँ लेके पेशेंट मेरे पास आते हैं कि खुद ही सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं भाई, डे 3, 4, 5, 6, 7 तक करते हैं, फिर एक लोकल क्वैक के पास जाके कोई बहुत ही भारी एंटीबायोटिक लेके उसको लेके आते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते और वो तब तक प्रोग्रेस कर चुकी होती है बीमारी टू दी स्टेज ऑफ निमोनिया और मे बी समथिंग एल्स, जहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ ऐसी ना करें। जैसे मैंने बताया कि डे 2 तक घर पे अपना बेसिक फर्स्ट एड केयर, पैरासीटामोल, स्टीमिंग, बाय डे 3 अपना लोकल डॉक्टर को दिखा के, बाय डे 5 तक है तो फिर इन्वेस्टिगेट करके इसको हम लोग टाइमली चेक करके इसको प्रोग्रेस नहीं होने देंगे फिर हम। सेकेंड मिस्टेक है मैम कि जो मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग कभी कभार जब हमें जो एडल्ट मेल्स हैं वो कहते हैं कि सर कभी कभार हमने ब्रांडी ले ली या रम ले लिया, तो मैम वो इट्स आई वुडंट से इट्स क्या कहते हैं इट्स मिथ है, लेकिन मैम ये चीज़ कोई कोई डिफाइंड या फिर कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ब्रांडी से या रम से कहीं पे भी फ्लू ट्रीट होता है। इनफैक्ट रादर अल्कोहल ओनली गोज ऑन टू डिप्रेस योर इम्यूनिटी साइकिल, जो थोड़ा सा भी फाइट करने की जो माउंट करने की कोशिश कर रही थी वो सप्रेस हो जाता है, जिससे कि अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑनस्लॉट नेक्स्ट वायरल का जो है बैक्टीरियल इन्वेजन है वो और ईजी हो जाता है बॉडी के लिए। थर्ड में मिस्टेक है कि आप अपना क्या कहते हैं खुद ही घर पे आप इसको वेट कर रहे हो, या आप एस्थमेटिक हो या फिर आपकी कोई इम्यूनिटी आपकी वीक है, स्टेरॉइड्स पे हो, डायलिसिस पे हो, सीओपीडी पेशेंट है, और आपके डॉक्टर्स के कहने पे भी आपकी जो दवाइयाँ वो ठीक से नहीं चल रही हैं, आप ले नहीं रहे हो घर पे, तो ये चीज़ों से मैम आपका अंडरलाइंग लंग का जो आपका प्रिजर्व है रिजर्व है वो पुअर होता जाता है, जिससे अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो आपका बिल्कुल ही सांस जो है फूलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो दवाइयाँ लिखी हैं डॉक्टर से वो बिना उनके बोले बताए कम भी नहीं करनी, बंद तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये तीन चीजें
0: जी, यानी दवाइयां मिस ना करें और साथ ही अल्कोहल की तरफ ना जाएं। ब्रांडी जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये ठंड में ले लेनी चाहिए ठीक रहता है, तो जब आप ठीक हैं तब अगर ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जब आप बीमार हैं और फिर इसको ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए? जैसे अक्सर हमने देखा है स्कूल जाते हुए बच्चों को पेरेंट्स छुट्टी नहीं करवाते हैं कि अटेंडेंस कम हो जाएगी, लेकिन उनको कोल्ड कफ रहता है, तो क्या ये ठीक है?
1: मैम मेरी राय यही है कि बच्चे अगर बात कर रहे हैं घर पे हम लोग जो कर सकते हैं मैम, उनकी डाइट में उनका विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के उनका विटामिन डी पूरा रखना ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक रखना ज़रूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में होने चाहिए, ना कि फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड। डेफिनेटली मैम अगर बच्चे को कोई फीवर विद अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे छींकें हैं, खांसी है, उनको मैम अवॉइड करना चाहिए भेजना स्कूल, ताकि दूसरे बच्चों को ना हो, नहीं तो आप देखें मैम इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन कि एक को होता है और पूरी क्लासरूम इज caught in the grip of viral infections. Secondly, मैं कहूँगा कि हमारे जो घर पे हम जो चीज़ें कर सकते हैं टू सेव ourselves फ्रॉम दिस वेरी कॉमन इन्फेक्शन विच मे प्रोसीड टू अ सीरियस इन्फेक्शन, कि हम लोग मैम अपना एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, अपनी मेडिसिन अगर कोई चल रही हैं तो टाइमली लेते रहें, वैक्सीनेट बिल्कुल कराना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। एंड मैम लास्ट थिंग इज कि अगर कभी घर पे अगर हम लोग आते हैं बाहर से किसी पब्लिक गैदरिंग से या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, जब सीजन चेंज चल रहा है, जब पता है कि आसपास लोग खांस रहे थे, तो एक क्विक सेशन ऑफ स्टीमिंग विद मे बी क्लोव और मे बी जीरा, ये हम करके 5 to 7 minutes करके ये हम लोग अपने आप को थोड़ा सा एटलीस्ट प्रोटेक्शन इम्पेयर कर सकते हैं, अपने इम्पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे कोई वायरल लॉज हुआ था तो वो डीनेचर हो जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए।
0: बिल्कुल, यानी वायरल को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप जनरली अवॉइड कर जाते हैं प्लीज़ मत कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। सो डॉक्टर रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपने बहुत जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है ना वायरस को लेकर, वायरल इन्फेक्शंस को लेकर, फ्लू को लेकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चीज़ें आपने बताई कि किस प्रोसेस से ठीक होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
0: तो फिलहाल फ्लू के बारे में बात हमने कर ली है, उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने मैसेजेस में बता सकते हैं अपनी राय 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते प्रोग्राम ऑल इज वेल में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। फील गुड फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय जगत की एक बेहद सम्मानित हस्ती, जिनका नाम है रामजी बाली। रामजी बाली सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वहीं एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप थिएटर वाला के माध्यम से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, कई चर्चित नाटक भी लिखे हैं और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच को एक नई पहचान देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको वर्ष 2011 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा यंग प्लेराइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर, प्लेराइट एंड टीचर, ही इज आल्सो अ टैलेंटेड एक्टर हु हैज अपीयर्ड इन फिल्म्स, वेब सीरीज एंड टेलीविजन प्रोजेक्ट्स सच एज दिल्ली क्राइम, कमांडो, साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 एंड रिसेंटली द केरला स्टोरी 2 where he portrayed the role of Neha's father. थिएटर के प्रति इनकी लगन, स्टूडेंट्स को दिया गया इनका मार्गदर्शन और कला के प्रति इनका समर्पण इनके एक कंप्लीट थिएटर पर्सनालिटी को बनाता है। आज हम इनके सफर, इनके अनुभवों और थिएटर से लेकर सिनेमा तक की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज जॉइन मी इन गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्टर, प्ले राइट, डायरेक्टर, थिएटर मेंटर एंड NSD प्रोफेसर श्री रामजी बाली जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: शुक्रिया बहुत बहुत।
0: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई।
1: मेरे सफर की शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ रामलीला से हुई है। जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे आसपास काफ़ी रामलीलाएं होती थी
0: जी।
1: तो बहुत छोटे थे तो देखने जाते थे, थोड़े से बड़े हुए थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई
0: जी। मतलब आपका बचपन से ही रुझान एक्टिंग की तरफ ही था।
1: एक्टिंग की तरफ रुझान था बचपन से ही, और सिनेमा देखते थे तो उससे ही प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ का कोई फोक थिएटर तो हमने देखा नहीं था तो, और फोक थिएटर के नाम पे हमारे आसपास अगर कुछ हो रहा था तो वो रामलीला थी
0: जी। जी जी। तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एक्टिंग में हो या कोई ऐसी चीज में हो जिसके प्रति आपका थोड़ा और इंटरेस्ट आया और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है, या ये खुद एक मन से आया, एक बच्चे का ये था भाव?
1: मुझे लगता है कि ये बच्चे के मन का भाव ही था
0: जी,
1: जो आगे आया। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे किसी की ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई जुड़ा हुआ हो
0: जी।
1: और मैं बहुत सिनेमा से बहुत मैं कहूँ प्रभावित था, बहुत इंस्पायर था। तो उन दिनों ये राजेश खन्ना और इन लोगों की फिल्में, ये आराधना और ये टीवी पे आती थी और ये चित्रहार आते थे, तो उसी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे लगा
0: जी। तो सर, जैसे NSD तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और क्या ये आपका कुछ बचपन का ही सपना था कि आपने NSD जाना है, या धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला इन सब चीजों के बारे में?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि एक्टिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है। बचपन में तो रामलीला करते रहे और एक्टिंग का मन में जैसे जैसे रामलीला की, बड़ी बड़े लोगों के साथ काम किया तो लगा कि इसमें बहुत मजा सा आता है, कुछ ये अलग चीज है
0: जी।
1: अच्छा, मैं गा नहीं सकता था, मुझे डांस नहीं आता था, तो लगता ये मैं कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस का अंदर कहीं रहा होगा। और मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, स्कूल्स में छोटी छोटी स्किट्स होती थी
0: जी।
1: तो एक दो दोस्त थे उनके साथ मिलकर हम करते थे, तो वो कहीं रहा। और बाद में आते आते जब हम 10th 12th तक पहुंचे तो किसी एक दोस्त ने, जो मेरे थोड़े बड़े थे, सीनियर थे, कॉलेज और दिल्ली जाते थे पढ़ने, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो फिर तो ट्रेनिंग लो। और उन दिनों फिल्मी कलियां और इस तरह की, जब हम कॉमिक्स किराए पे लेते थे, वो जमाना था, तो उस वक्त वो फिल्मी कलियां में कुछ एक्टर्स के इंटरव्यूज आते थे कि कोई FTI से पास आउट है
0: जी।
1: कोई NSD से पास आउट है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं NSD करूंगा, क्योंकि कुछ सोर्स ही नहीं था, कुछ कनेक्शन ही नहीं था, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, लेकिन उनको पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, अच्छा इसकी भी लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं
0: जी।
1: तो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए तो ऐसा हो गया पॉसिबल।
0: वो एक लाइन पकड़ ली फिर आपने?
1: हाँ, वो पकड़ी गई। वो ऐसे कि मेरे एक दोस्त थे, पता चला कि NSD तो हम सोच ही नहीं पाते कि इतने नसीरुद्दीन शाह,
0: बिल्कुल
1: इनके नाम
0: बहुत
1: सुनते
0: बड़े
1: थे।
0: बड़े एक्टर,
1: हाँ, राज बब्बर, ये लोग निकले हैं, तो हम कहाँ सोचते थे कि फरीदाबाद के, तब इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी दिल्ली से कि कहाँ कौन जाएगा एक्टिंग कोर्स करेगा। बड़ी मुश्किल से एक दिन मेरे को किसी ने उसका एड्रेस ला के दिया एनएसडी का, मेरे एक दोस्त ने
0: जी।
1: तो मैं 12th में था, तो मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा और वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है।
0: अच्छा।
1: तो मैं बड़ा उदास हुआ और नाराज भी हुआ कि अरे ग्रेजुएशन करेंगे तो इतनी एज हो जाएगी, फिर हीरो कब बनेंगे। तो मतलब जो भाव होता है एक छोटे,
0: मतलब वो 3 साल ग्रेजुएशन में निकल
1: करेंगे,
0: जाएंगे,
1: फिर वहाँ करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
0: और तब तक मूड बदल जाए, ये
1: मूड बदल जाए या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी हमारी कि मतलब कि हम कहीं भी जब आंख खुलेगी तभी कोई कोर्स कर लेंगे टाइप। सर्वाइवल वाली जिंदगी थी कि कैसे सर्वाइवल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी
0: जी। तो अब जैसे आप एनएसजी में एक प्रोफेसर हैं, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर और आर्टिस्ट इन दोनों रोल्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं।
1: मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि मुझे एनएसजी पास किए ही 20-25 साल हो गए हैं और मैं 2001 में एनएसजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक्टिंग का, और ऐसा संयोग रहा कि 2001 से निकलने के बाद से मुझे अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में हम करते रहे घूम घूम के, तो वो एक तरह की टीचिंग ही होती है
0: जी।
1: जब हम किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके साथ थिएटर की बेसिक्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो वो टीचिंग का ऐसा अनकॉन्शियसली कहना चाहिए कि वो आ गई, नेचर में आ गई
0: जी।
1: और फिर मुझे बाद में अभी 2018 से लेके मैं 5 साल में को बनारस का डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला एनएसडी का, तो वहाँ फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब देखना था और एकेडमिक्स भी देखना था, तो वो टीचिंग वो फिर अनोइंगली आ गई, तो ऐसा कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। और एनएसडी की टीचिंग बहुत डिफरेंट है, एनएसडी की वो स्टीरियोटाइप टीचिंग नहीं है
0: जी।
1: इसीलिए वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम 2+2=4 नहीं पढ़ाते,
0: अच्छा
1: वहाँ 2+2=5 भी हो जाता है और 3 भी हो जाता है।
0: तो जैसे आपने बोला टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंट होता है?
1: डिफरेंट ये कि वो हमारा जो कोर्स है वो मशहूरी इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का है और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, तो ज्यादातर हमारा 80% तो प्रैक्टिस होती है
0: जी।
1: और हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, 20% थ्योरी है, बाकी जो है सब परफॉर्मेंस करना है, करके सीखना है, क्या गलती हो रही है, अलग अलग एक्टिंग के मेथड्स हैं, है ना, अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं
0: जी।
1: तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जो अलग अलग रीजन से आती हैं, तो वो तो करने से होगा
0: जी।
1: वो कोई ब्लैकबोर्ड पे लिखने से वाली हमारे वहाँ की टीचिंग का फलसफा वहाँ है ही नहीं
0: जी। तो जैसे आपने बताया बनारस में भी आपको डायरेक्टर रहने का मौका मिला 5 साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
1: वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था शुरू में जब हम गए
0: जी।
1: और दूसरी बात मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वो नाट्यशास्त्र पे बेस्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट है,
0: अच्छा
1: एनएसडी का है, लेकिन हम पूरी जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो पूरी हमारी एंशियंट जो 4,000-5,000 साल पुराना जो हमारे पास एक मेथड है
0: जी।
1: उस पे बेस्ड वो ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके तैयार करना था, तो और इत्तेफाकन मैंने वहाँ जाने से पहले कई संस्कृत प्लेस किए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा वहाँ एज ए डायरेक्टर सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक बहुत आज़ादी मिली उस सेंटर को डेवलप करने में
0: जी।
1: और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मिलके काम करने में कि कैसे उसको शेपअप कैसे करें, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। नाट्यशास्त्र ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम सब समझ गए हैं, और उस पर अभी भी उसकी बहुत लेयर्स हैं
0: जी।
1: तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मैं उसको अपना एक अच्छा गोल्डन टाइम मानता हूँ अपने 5 साल जो मैंने वहाँ निदेशक के तौर पर काम किया।
0: तो फिर जब आप वहां से यहाँ आए दिल्ली दोबारा, तो कुछ मिस नहीं किया वहां का आपने?
1: ऑब्वियसली जब आप एक नया सेंटर या नई चीज बनाते हैं वो एक आपके बेबी की तरह होता है, जब वो जीरो से शुरू करते हैं, आज वहाँ कई अच्छी चीजें हैं, एक स्टूडियो बनाया, मतलब एक शेपअप हुआ, उसके बाद हमारे अंदर एक थिएटर वालों को आदत रहती है कि एक वर्कशॉप खत्म अब आगे बढ़ना है
0: जी।
1: तो हम अब फंसते नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा मिस नहीं होता। हाँ वो शहर भी गजब है,
0: शहर है। जैसे बहुत अच्छा है ना बनारस, बिल्कुल।
1: और बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं, तो वो तो हमेशा लगता ही है, लेकिन हमेशा थिएटर कहता है कि आगे बढ़ो
0: जी।
1: और फिर मेरी फैमिली भी इधर थी और यहाँ भी एक ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे यहाँ एक जॉब था, मैंने अप्लाई किया, हो गया
0: जी।
1: तो वापस बैक टू पवेलियन अपने शहर आ गए
0: जी। तो राम जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे थिएटर की बातें जान के। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से राम जी सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के बहुत ही जाने माने मिस्टर राम जी बाली जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया NSG के बारे में, हमें थिएटर के बारे में, अब थोड़ा थिएटर रिलेटेड ही मैं आपसे और चीज़ें पूछना चाहूँगी कि थिएटर ने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है?
1: थिएटर ने ज़िंदगी का सबक ये सिखाया है कि हमेशा मध्यम मार्ग पे चलो, एक्सट्रीम किसी भी विषय पे नहीं होना है, चाहे लाइफ में है, चाहे आर्ट में है, किसी भी चीज़ को लेके। हमेशा थिएटर आपको आपकी जो एजेस होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको सुकर्व करता है, ताकि आपको, क्योंकि लिटरेचर है उसमें, उसका सबसे बेस। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक 4 पेज की कहानी पढ़ के आप किसी के जीवन की पूरी हिस्ट्री समझ जाते हो, उसका इमोशन समझ जाते हो, ये कितना सस्ता सौदा है। नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे तब हमें एक सबक मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: हम किसी की जीवन जिंदगी के 4 पन्ने पढ़ते हैं 10-15 मिनट में, और हमें कितना सबक
0: समझ आया।
1: तो थिएटर में तो लिटरेचर तो उसका बेस है, तो लिटरेचर हमें, हमारी समझ को विस्तृत करता है, काम डाउन करता है।

0: और काफी कुछ सिखाया थिएटर ने
1: जी। और जैसे सर आज के डिजिटल युग में थिएटर की रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं?
0: मुझे लगता है कि थिएटर की रेलेवेंस इससे और बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए थिएटर कोई आज का नहीं है। थिएटर शायद जिस वक्त इंसान ने खाना खा लिया होगा उसी वक्त उसको कुछ करने की सूझी होगी, जिस वक्त रोटी का सवाल खत्म हो गया होगा वहीं से थिएटर शुरू हो गया होगा
1: जी।
0: चाहे कम्युनिटी में एक ट्राइबल एरिया में जंग चाहे भाषा नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने शिकार मार के खाया होगा फैमिली के साथ रात को बैठे होंगे आग जला के, तो शायद दिन की क्या घटना हुई होगी, शायद किसी ने एक्ट करके दिखाया होगा आज मेरे सर ऐसा हुआ, वहीं से थिएटर शुरू हुआ
1: जी।
0: जो इतना पुराना जिसकी जड़ें हैं। और आप देख लीजिए उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, सिनेमा तो अभी का है, 500 साल भी नहीं हुआ अभी।
1: अच्छा।
0: अभी देख लीजिए, ये तो हजारों साल अनंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना सनातन है
1: जी।
0: रंगमंच सनातन है, जहां मनुष्य है जहां दो लोग एक कर रहा है एक देख रहा है रंगमंच हो रहा है
1: जी।
0: है ना। और आप देख लीजिए उसकी टेक्नोलॉजी बदलती चली गई
1: जी।
0: मीडिया की पहले बड़े बड़े वो रिकॉर्ड आते थे, आज हम कैसे गाना सुन रहे हैं
1: जी।
0: फिर वीडियो कैसेट्स आते थे, फिर
1: सीडीज आ गई,
0: वो आई फ्लॉपी आई, फिर क्या क्या आया, आज वो लिंक में ही है फिल्म, है ना। ये सब का बहुत छोटा स्पैम है, 10 साल में 5 साल में चेंज हो जाता है
1: जी।
0: लेकिन रंगमंच एक जीवित व्यक्ति करता है और एक जीवित व्यक्ति उसके सामने बैठ के देखता है, दोनों सांस ले रहे होते उस वक्त। तो इसकी ये जो ग्रेटनेस है वो कोई मीडियम नहीं दे सकता
1: जी।
0: तो जब तक इसका ये जीवंतता वाली बात है कोई भी मीडिया कोई भी एआई इसको वो नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना हैंडीक्राफ्ट,
1: हाँ जी,
0: छपाई खाने में तो आप जो भी हमारी कुर्ती है शर्ट पहना है हजारों बन रहे हैं, जैसे उस पर कोई कारीगर अपने हाथ से आपका नाम लिख देता है कस्टमाइज हो जाता है
1: बिल्कुल,
0: उसकी वैल्यू
1: और उसका दाम भी बढ़ जाता है,
0: उसकी ब्रांडिंग अलग है। तो जस्ट लाइक दैट रंगमंच जितना ये टेक्नोलॉजी आएगी रंगमंच की महत्ता उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है यहाँ पे, क्लियर की है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्ले होता है और ये नुक्कड़ नाटक, इनमें क्या फर्क रहता है?
0: नुक्कड़ नाटक भी एक नाटक है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन वो नुक्कड़ पे होता है इसलिए नुक्कड़ नाटक है, उसकी कुछ सीमाएं हैं और सीमाओं के साथ साथ उसकी कुछ स्वतंत्रता भी है और उसकी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पे आपका बुलाया हुआ दर्शक नहीं है उस तरह का। नहीं तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, आप इनवाइट करते हैं या ऐड निकालते हैं, लोग आते हैं स्वतः आते हैं, मन से आते हैं, मन बना के आते हैं कि मैं नाटक देखने आज मंडी हाउस जाऊंगा या जाऊंगी, गाड़ी चला के जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, या फरीदाबाद में भी किसी हम जब सभागार में करते थे आप प्लान करते हो कि आज शाम को मुझे नाटक देखने जाना है। नुक्कड़ नाटक में वैसा नहीं है, नुक्कड़ नाटक आप सड़क पे जा रहे हो चाट पकौड़ी खा रहे हो, अचानक कोई डम डम डम बजने लगता है, तो क्या हो रहा है, शोर होता है, वो यहीं कॉर्नर में साइड पे चार लड़के या लड़कियां कुछ डफली बजा के कुछ एक जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं
1: जी।
0: तो उनका क्या, वो उसी वक्त वो स्पेस क्रिएट करते हैं, उसी वक्त वो मंच क्रिएट करते हैं, वहां मंच नहीं होता है, उसी वक्त वो दर्शक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो कोई एक इश्यू लेते हैं। उनका क्या है उस रंगमंच में जो बेसिक हम फर्क है वो इश्यू बेस्ड रंगमंच है और उसमें स्लोगन है
1: जी।
0: उसमें आर्ट भी है लेकिन आर्ट की मात्रा थोड़ी कम है, उसमें मैसेजिंग ज्यादा है बजाय इमोशन के
1: जी।
0: मेरा मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो इमोशनल सीन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो वो एक तरह का नारा है, वो कुछ बात कहना चाहते हैं ग्रुप, वो आता है 10 मिनट में हो हल्ला करता है, अपना एक कोरियोग्राफी करता है, अपने डायलॉग बोलता है, चला जाता है, वही फिर मार्केट फिर चालू हो जाती है वैसे की वैसे। लेकिन ये जो जो प्रोसिनियम रंगमंच की हम बात करें उसमें आर्ट है, एस्थेटिक है, म्यूजिक कहाँ थोड़ा कम आएगा कहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ एक पर्दा लहराना चाहिए, यहाँ से लाइट थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो ये एक कलेक्टिव वर्क है आर्ट का, आर्ट फॉर्म का एक गुलदस्ता है कहना चाहिए, जिसमें लिटरेचर भी है, मंच भी है, मेकअप भी है, कॉस्ट्यूम भी है, लाइटिंग भी है, लाइव म्यूजिक भी है, डायलॉग भी है, इमोशन भी है, है ना, एक एनवायरनमेंट है, ये बेसिक फर्क है मुझे जहां तक मेरी समझ।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने बताया। तो नुक्कड़ नाटक हमने जैसे अभी कुछ सालों पहले मतलब देखने शुरू किए हैं, इससे पहले तो या होते थे या आप ज्यादा लोगों के बीच में?
0: नहीं ऐसा नहीं है, नाट्य शास्त्र में भी वीथी नाटक की बात होती है, वीथी का, वीथी का मतलब गली होता है।
1: अच्छा।
0: तो वीथी नाट्य की बात है तो इट मींस कि तब भी होते होंगे उसका प्रारूप क्या रहता होगा ये मुझे नहीं मालूम
1: जी,
0: क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, लेकिन जब नाट्य शास्त्र की ही प्रैक्टिस बीच में मुगल काल और ये सब मतलब जो बहुत पहले खत्म हो गया, अब ये दोबारा रिवाइव हो रहा है इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो हम नहीं कह सकते कि पहले कितना हुआ, लेकिन हाँ ये इधर आज का जो नुक्कड़ नाटक है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये इमरजेंसी वगैरह के बाद जब सरकार बदली, जब चीज़ें आईं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ज़्यादा इसको अपनाया, प्रमोट किया, और इसका इतिहास है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है
1: जी। तो सर थिएटर और फिल्म में एक्टिंग करने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं हमने देखा, और अभी रिसेंटली केरला स्टोरीज 2 में आपका बहुत अच्छा रोल है उसमें, सो क्या अंतर रहता है दोनों चीज़ों में?
0: देखिए मुझे कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरीज गढ़ते हैं, बताते हैं, मुझे आज तक कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे लगता है एक्टिंग एक्टिंग है
1: जी।
0: रंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, ये मंच पे भी एक सीन हो सकता है कि एक आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, है ना, आप सवाल पूछ रही हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी को अगर कैमरा लगा दें जैसे पॉडकास्ट है फॉर एग्जांपल, क्या फर्क आ जाएगा बताइए? आप कोई अजीब से एक्सप्रेशन बना के थोड़ी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हाँ उसमें क्योंकि लेंस चेंज हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन और वो बहुत बड़े पर्दे पर दिखता है। अभी आपका जितना जितना जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही दिखेगा, और दूर से देखेंगे तो छोटा दिखेगा, मंच पे जो आगे बैठा होगा उसका क्षेत्रफल बड़ा दिखेगा, लेकिन सिनेमा में क्या सबको एक साथ दिखता है? वो लेंस की करामात है, वो एक टेक्निकलिटी है, उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को हाँ ये ध्यान रखना है कि अब आपका क्लोज लगा है तो मुझे ज्यादा, मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ तो वो फ्रेम में है ही नहीं, वो इतनी सी बात है, वो डायरेक्टर बोल देगा भाई हम आपका ना अभी आईज का ले रहे हैं
1: जी,
0: तो आप बस ये वाले डायलॉग को आपका एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप मंच पे भी आप वही रिएक्शन देते हैं लेकिन उसमें शायद आपका हाथ भी चलता है। तो मुझे छोटी सी टेक्निक हल्का सा फर्क है, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं लगता,
1: वो भी सिर्फ कैमरे को फेस करने वाली
0: चीज और है कि जो सिनेमा का एक्टर है वो रंगमंच नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी।
1: अच्छा।
0: कर सकता मतलब कर लेगा कोई भी, लेकिन वो उतना शायद अच्छा अभिनेता साबित ना हो मंच पे, लेकिन जो मंच का अभिनेता है जब वो सिनेमा करता है तो बहुत बेहतर अभिनेता साबित होता है।
1: अच्छा, ऐसा क्यों कि सिनेमा वाला नहीं कर पाएगा?
0: नहीं, उसको दिक्कत आएगी, मैं नहीं कह रहा कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना वो कॉन्टिन्यूटी में इमोशन को कैरी नहीं कर रहा है, हम 2 घंटे का प्ले कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं।
1: हाँ, वो सीन में कट करके
0: डायलॉग के बाद कट हो रहा है उसका बार बार, उसके सामने एक्टर नहीं है, उसके सामने कैमरा है
1: जी,
0: उसको एक्टर की आदत ही नहीं है, कम आदत है, समझ लो हमारे पास तो एक्टर ही एक्टर है, हम मंच में जब घुसे तो सामने एक्टर, दाएं एक्टर, बाएं एक्टर, हमारा कैमरा तो दर्शक है,
1: बिल्कुल लाइव ऑडियंस जो देख रही है,
0: नहीं हमें वहीं से देख रहा है ना, तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ भी कैमरा लगा देंगे, आपके कान के पास लगा देंगे, आपके कंधे के पीछे लगा देंगे,
1: हाँ जी,
0: तो वहां पे दर्शक मूव कर रहे हैं एक तरह से 360 डिग्री में
1: जी,
0: और रंगमंच पे एक्टर मूव कर रहा है तो उसको कट्स की आदत है, इमोशन के कट्स की आदत है, हम एक फ्लो में करते हैं तो हमें उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसका इमोशन का जो क्या कहते हैं उसका जो नमक आना चाहिए वो उसके थोड़ा सा एहसास ज्यादा है
1: जी।
0: मुझे ऐसा लगता है, और ये साबित हुआ है, ये हॉलीवुड तक के एक्टर्स में साबित हुआ है।
1: अच्छा,
0: जितने हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं सब थिएटर करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे यहाँ के कम करते हैं लेकिन वहाँ के तो करते ही, वो एक सीजन फिक्स करते हैं, हम 3 महीने नहीं करेंगे सिनेमा, 3 महीने हम जाएंगे अपने ग्रुप में थिएटर करेंगे, 20-50 शो करेंगे, वापस सिनेमा में आएंगे।
1: ये बहुत ही अच्छा एक फर्क आपने समझाया अभी, तो आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी दिए हैं, खुद से मतलब डायरेक्ट भी किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्ले है आपका, उसके बारे में बताइए।
0: इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो मैंने प्ले डायरेक्ट किए हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेरे बहुत करीब है अभिज्ञान शकुंतल कालिदास का, मुझे बनारस में रहते हुए संस्कृत नाटक करने का मौका मिला और मैंने कालिदास के 3 नाटक किए, कई बार किए हैं अब तो मैं जब भी अभिज्ञान करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने अगर मैं लिखे हुए प्लेस की बात करूँ तो मैंने लगभग अब तक 9-10 प्ले लिखे हैं, और उसमें मेरा सबसे प्रिय प्ले एक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है मैंने लिखी है, कोई बात चले।
1: अच्छा।
0: उसको मैंने 2010 में लिखा था, तो उसके कई शोज हम कर चुके, उसमें यशपाल शर्मा भी जो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा में, गंगाजल में जो मेन विलेन थे
1: जी।
0: वो भी उसमें एक्ट कर चुके हैं प्ले में, और वो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत फन है उसमें।
1: तो जैसे आपने प्ले की बात बताई, तो ये आपका कैसे रहता है कि आपको अलग अलग शहर में आप जाके करते हैं, इसका क्या चीज रहती है?
0: जब कोई प्रोडक्शन तैयार होता है तो अगर हम दिल्ली में जैसे ओपन किया तो जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं उनको पता रहता है कि अच्छा इतने प्ले आया है। वो थिएटर फेस्टिवल होते हैं कई शहरों में, लोग करते हैं तो इनवाइट करते हैं। गवर्नमेंट्स के भी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स होती हैं उनकी, उनके वो लोग भी फेस्टिवल्स करते हैं, तो जो थिएटर वर्ल्ड के एक अलग संसार है वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि किसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसको इनवाइट करते हैं।
1: और प्ले का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ घंटों का या कुछ दिनों का भी रहता है?
0: नहीं नहीं, दिनों का नहीं रहता है। क्या रहता है कि यूजुअली पहले ढाई ढाई घंटे के, तीन तीन घंटे के प्लेस होते थे जब हमने किया, अभी अभी भी होते हैं सवा दो घंटा, ढाई घंटा, एक घंटा 40 मिनट, मतलब ये इसको फुल लेंथ प्ले माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग माना जाता है। क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है तो अभी डेढ़ घंटे के भी नाटक होते हैं, डेढ़ से ढाई घंटे ज्यादातर नाटक होते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरवल रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं।
1: तो उसमें फुल म्यूजिक वगैरह सब रहता है?
0: एवरीथिंग सब होता है, वो पूरा सेटअप लेके चलना पड़ता है। कुछ चीजें जैसे किसी ने हमें मान लीजिए कि पटना में इनवाइट किया, तो बेसिक जो सेटअप है स्टेज का
1: जी
0: वो, और मैं आपको बता दूं कि कोई बात चले यशपाल शर्मा वाला प्ले आपके मानव रचना में भी हुआ है।
1: अच्छा।
0: मुझे अभी याद आया, जस्ट अभी याद आया।
1: अच्छा।
0: और यशपाल शर्मा ने ही किया है आपके स्टूडेंट्स के सामने
1: जी।
0: मुझे ये इस बात को हो गए कम से कम 8 साल हो गए होंगे।
1: अच्छा।
0: मिस्टर भल्ला ने इनवाइट किया था
1: जी जी,
0: तो
1: जी।
0: एक आपका अंदर ऑडिटोरियम है उसमें बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था।
1: वाओ, ये तो बात आपसे अभी मुझे
0: भी भूल गया था। अभी याद आया मुझे कि हाँ हमने किया है उसको, बॉम्बे से टीम आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ करने का
1: जी। तो साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे राम जी बाली सर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: जो बहुत बड़े एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं
1: जी।
0: और देखा जाए तो मैंने दिग्मांशु धूलिया जी के साथ सिनेमा में काफ़ी मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मेरी पहली फिल्म उनके साथ पान सिंह तोमर थी
1: जी।
0: और पान सिंह करने के बाद उनके साथ मेरा एक अलग बाउंडिंग बनी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ साबी और गैंगस्टर में भी एक छोटा सा रोल किया है, और एक यारा फिल्म उन्होंने बनाई थी दिग्मांशु सर ने, उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और सिर्फ अभिनय नहीं, मेरे को जब भी वो सिनेमा कुछ बनाते थे तो अक्सर मुझे डायलॉग में भी बुला लेते थे कि तुम थोड़ा सा एक्ट्रेस को हेल्प कर दो
1: जी।
0: तो बड़ा वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि दिग्मांशु धूलिया बहुत बड़ा नाम
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो मुझे
1: और अगर वो
0: कह रहे हैं कि हाँ, तुम जो एक्ट्रेस का डायलॉग चेक कर लो तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा मैं उनके साथ काफी काम किया है ऋषि भाई के साथ। हम उनको प्यासे सब जो एनएसजी के लोग हैं ऋषि भाई बुलाते हैं उनको, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और खोसला का घोसला बहुत शुरुआती फिल्म थी जब मैं जस्ट एनएसजी से पास आउट किया था, वो काफी आती है इसलिए लोग उसको ज्यादा जानते हैं। उसमें मैं एक बड़े रोल के लिए कास्ट हुआ था पहले, लेकिन फिर उस वक्त मैं बहुत यंग दिखता था। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला दिवाकर ने कि आई एम वेरी सॉरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइनल। उसमें एक बड़ा रोल कर रहा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी मुझे बहुत, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप छोटे लग रहे हो, लेकिन आप एक रोल है जरूर करो। वो एक छोटा सा आईपीएस का रोल, फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि आप करो। तो फिल्म बहुत आती है,
1: हाँ जी
0: हाँ, तो उसमें किया काम। फिर एक फिल्म है रागदेश, रागदेश में भी मैंने एक्टर्स को भी ट्रेन किया था उसमें, और एक रोल भी किया। और रागदेश की भी स्क्रीनिंग आपके यहाँ हुई थी मुझे अच्छे से याद है, हाँ, उसमें दिग्मांशु धूलिया की फिल्म, क्योंकि वो INA पे थी फिल्म, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। तो उस एक केस है, कोर्ट केस है, उसके ऊपर वो फिल्म थी। तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी मुझे अपनी फिल्म भी एक छोटी सी बनाई मैंने, जो एक हरियाणा में रह के ही बनाई, हरियाणवी फिल्म बनाई अज्जो नाम से।
1: अच्छा।
0: वो एक बच्ची और दादी,
1: वो शायद आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही,
0: नहीं अब उसको हो गया 5-1 साल हो गया।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और वो अभी स्टेज ऐप पे है वो फिल्म
1: जी।
0: और वो फरीदाबाद के ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मिस्टर प्रदीप मोहंती, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म नहीं बनाई थी
1: जी।
0: काम जरूर किया था, लेकिन कोई पहली बार जब आप पे ट्रस्ट करता है वो बहुत बड़ी बात होती है,
1: बड़ी बात।
0: और उन्होंने मौका दिया फिल्म की। उसमें डॉली आलूवालिया मेन रोल में थी, और उसमें यशपाल शर्मा ने भी एक कैमियो किया था, और स्वानंद किरकिरे ने गाना गाया है उसका टाइटल, अंतरा मित्रा ने गाना गाया है। और ठीक, अपने एनएसडी के काफ़ी लोगों ने मदद की उसमें मुझे। और इसके अलावा थिएटर में भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी को लेके एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक प्ले राजपाल यादव भाई को लेके किया था,
1: अच्छा।
0: चलो इश्क लड़ाएं के नाम से। उसके बाद मैंने हिमानी मैम के साथ, हिमानी शिपुर जी के लेके भी एक प्ले किया डायरेक्ट, उसमें हम दोनों ने मिलके एक्टिंग भी की। और यशपाल भाई वाला प्ले तो हमारा खूब चला, जिसका मैंने जिक्र किया कि आपके यहाँ भी हुआ है। और इस तरह लगे हैं, जो भी काम आता है कर लेते हैं, चाहे थिएटर का हो चाहे सिनेमा का हो। और बेसिक यह है कि रंगमंच से, आर्ट से जुड़े रहना है, यही प्रयास रहता है। और अभी एनएसडी में पढ़ा रहा हूँ तो इतना ही है
1: जी। नहीं, इतना ही नहीं है, बहुत बहुत कुछ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे आपने नेम लिया अभी दिग्मांशु धूलिया जी का, और हमने देखा पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी, और शायद नवाज सर के साथ भी, तो आप का मतलब कैसा रहता है जब इतने बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ वर्क करना होता है, क्या वो भी उतने डाउन टू अर्थ लोग
0: हैं? नहीं, ये सब लोग अपने दोस्त लोग हैं, सीनियर हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। नवाज भाई, जब नवाज भाई एनएसजी में थे तब हम श्रीराम सेंटर में थे, और बाद में मुझे भी एनएसजी आने का मौका मिला। वो सब सीनियर हमारे सीनियर हैं, और छोटे भाई कितना ही बिहेव रहता है उनका प्यार मिलता है। और पंकज बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा मेरा जूनियर है बट वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं। मतलब
1: जैसे आपने यशपाल जी की बात की, और राजपाल यादव,
0: ये सब लोग सब सीनियर हैं हमारे, एक कम्युनिटी है, एक हम तो एलुमनाई हैं एनएसजी के, तो ऐसा कुछ मतलब,
1: तो वही उसी प्यार से मिलना होता होगा, उसी प्यार से सब रहते होंगे। नहीं बहुत अच्छी बात लगती है कि एक सेलिब्रिटीज का भी अगर इतना डाउन टू अर्थ हो भी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
0: जी, जी।
1: तो सर अब

0: मैं बात करूंगी आपकी जो अभी रिसेंट जो फिल्म आई है केरला स्टोरीज में, हमने आपको देखा है केरला स्टोरी 2 में, वो कैसे आपको वो रोल मिला और क्या एक्सपीरियंस था उसका?
1: वो रोल मुझे ऐसे मिला, शायद उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, मुकेश छाबड़ा
0: जी,
1: बहुत बड़े नाम है उनका, उनके ऑफिस से कॉल आया रात को मुझे कि आप अपना सिर्फ इंट्रो भेज दो
0: जी।
1: तो कोई ऑडिशन जैसा नहीं हुआ मेरा, शायद मुकेश मुझे बहुत पुराना जानता है, इवन कई फिल्में मुकेश ने ही मुझे कास्ट किया, पान सिंह हो या दिल्ली क्राइम हो, और भी कई काम मुकेश को ध्यान रहता है क्योंकि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई में तो स्ट्रगल कर नहीं रहा, तो मुकेश को अचानक लगा होगा कि मैं शायद उसमें फिट हो सकता हूँ, तो मुकेश ने अपने ऑफिस में बोला तो उनके असिस्टेंट्स ने वो मंगवाया, तो वो मेरे को रोल जो मिला विदाउट ऑडिशन मिला, और शुरू में रिवील नहीं किया गया कि हम इस पे फिल्म ये सब्जेक्ट है।
0: ओके।
1: हाँ, कि जब सेट पे गए जब तब हमें स्क्रिप्ट वगैरह मिली तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे है, और वो चैलेंजिंग था क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़ में सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, इस तरह की फिल्में बनाना विपुल अमृत लाल शाह ने फिल्म प्रोड्यूस की, ये भी बहुत डेयरिंग है क्योंकि मुंबई का सीनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डोमिनेशन जिन लोगों का है इंडस्ट्री में वो अलग विचार के हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो अलग विचार के हैं, तो बहुत जल्दी आपको
0: क्रिटिसाइज भी करते हैं,
1: क्रिटिसाइज से कोई दिक्कत नहीं, लेबलिंग हो जाती है, फिर आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम होता है।
0: अच्छा,
1: तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा मुझे लगता है, तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया क्योंकि जो कामाख्या नारायण इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो नेशनल अवार्ड विनर है ऑलरेडी और बहुत एक्सपीरियंसड है, और बहुत और इशू बहुत सेंसिटिव है इसमें, थोड़ा सा बदलने से कुछ और कहानी हो जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं और दे दिया आपने, थोड़ा सा कुछ कर दिया, उन्होंने जितने बैलेंस तरीके से तीनों लड़कियों की स्टोरी रखी है आपको लगता नहीं कि किसकी स्टोरी को ज्यादा एम्फसाइज किया, किसको दबाया, ऐसा नहीं, सबको इक्वल स्पेस दिया है, इक्वल कैरेक्टर्स को इतना मौका दिया है, अदरवाइज बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे ध्यान दिया, नहीं तो हम तो उस

0: को तो बहुत देखनी जरूरी है,
1: बिल्कुल देखनी चाहिए।
0: हाँ जी। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम राम जी वाली सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में थिएटर के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत अच्छी बातें अभी आपने हमें बताई आपकी वेब सीरीज की, मूवीज की, आपके थिएटर पार्ट की। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी NSD से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आप अब मूवीज भी कर रहे हैं काफी, वेब सीरीज भी, और अभी NSD में आप प्रोफेसर भी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को NSD में एडमिशन लेना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी पता होता कि एक्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाए, तो क्या इसके स्टेप्स हैं, थोड़ा आप हमें बताइए।
1: देखिए, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारे टाइम में तो एक ही कोर्स था जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, और उसके लिए उस वक्त 10 नाटक करने होते थे और टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 सीट होती थी
0: जी।
1: अभी एक तो वो 10 नाटक अब 6 नाटक हो गए हैं
0: जी,
1: वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है वहाँ। दूसरा, अभी 20 सीट के अलावा 32 सीट्स हो गई हैं, तो सीट्स भी बड़ी हैं, और ये 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, और उसको करने के

0: लिए आप पहले अपने शहर में जो भी थिएटर हो रहा है उनके साथ जुड़िए, क्योंकि 6 नाटक करने के लिए अगर कायदे से करोगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
1: ओके,
0: है ना, रोज रोज नाटक कोई भी छोटे शहरों में होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी करना है तो दिल्ली में कई ग्रुप्स हैं जो नाटक रेगुलर करते हैं, आप दिल्ली आके ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। थोड़ी सी जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, वो करवाते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और हमारे स्कूल ने किया है कि अभी हमारे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स है, हमारे समय में ये नहीं था, और उसके लिए 4 नाटक चाहिए और
1: रजिस्ट्रेशन
0: है, और 20-20 सीट्स सारे सेंटर्स में है, तो 80 सीट्स और बढ़ गई
1: जी।
0: अगर आप उस नज़रिए से देखें तो, और वो बनारस जैसे हम बात कर रहे थे, बनारस में 1 सेंटर है, 1 सेंटर हमारा बेंगलुरु में है
1: जी।
0: 1 सेंटर हमारा सिक्किम में है और 1 सेंटर हमारा त्रिपुरा में है, तो ये 4 सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं। और तीसरी चीज, हमारे अब शॉर्ट टर्म कोर्स भी हमने शुरू किए हैं।
1: अच्छा।
0: जो पेड कोर्सेज हैं
1: जी,
0: कि अगर आपको 3 मंथ का कोर्स करना है तो वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद 50-60,000 कुछ उसका फी है, और वो हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं 3 मंथ के कोर्स।
1: बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएंगे या
0: ये 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आप अपने के किसी को है ही कि मैं कर लूं,
1: करना ही करना,
0: एज का भी फैक्टर नहीं है।
1: अच्छा,
0: किसी को लगा के अरे मैंने जवानी में सोचा था मैं नहीं कर पाया, चलो मैं 3 महीने का एक्टिंग कोर्स एनएसडी का कर लेता हूँ, है ना, उस तरह के बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी साइट पे वो सब है। और एक 1 ईयर कोर्स अभी हमारा बॉम्बे में चल रहा है, उसमें वो भी पेड कोर्स है।
1: अच्छा,
0: तो काफी अभी स्कोप है, और सारी जानकारी एनएसटी की जो वेबसाइट है उस पे सारी उपलब्ध है और सारा प्रोसेस भी उपलब्ध है उसमें।
1: बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया है और तो भी क्या उसको एक्टिंग करने का कहीं पर मौका मिल सकता है, एड एजेंसीज में या कहीं मूवी में कोई साइड रोल, तो किस तरीके से उसे अपना, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्या कराना चाहिए?
0: मैडम 90% जो लोग हैं वो नॉन ट्रेन्ड एक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर को काम नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, बॉम्बे में आप जाके देखिए, वहाँ पे कास्टिंग एजेंसियां हैं, आप उनसे मिलिए, बॉम्बे में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वो जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको मालूम है, आराम नगर की एक जगह है अंधेरी में, वो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बार बार मिलेंगे, फोटो शेयर करेंगे, आपका इंट्रो देंगे, थोड़ा ऑडिशन शूट करेंगे, फिर वो आपको कॉल करते हैं
1: जी।
0: तो वो सब ओपन मार्केट है, सब कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई एनएसडी का सर्टिफिकेट ही चाहिए, उल्टा है, बल्कि सर्टिफिकेट वालों को बहुत स्ट्रगल है और जो नॉन स्ट्रगल वाले एक्टर हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: सब कुछ
1: ये तो मुझे लगता है हर चीज में चाहिए।
0: हाँ, ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, इसमें हाँ उसको डिग्री नहीं चाहिए ना, जिसको जो एड बना रहा है,
1: हाँ जी।
0: आपका लुक उसको चाहिए, आपका लुक अगर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट है तो उसको कुछ नहीं चाहिए।
1: और अगर जैसे कोई यंग आर्टिस्ट जब रिजेक्शन फेस करता है, बहुत करते ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
0: मैं तो रिजेक्शन को उसकी पूंजी मानता हूँ
1: जी।
0: जब तक कोई एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमिलेट नहीं हुआ वो आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमिलेशन तो हमारी पूंजी है
1: जी।
0: तो बिना ह्यूमिलेशन कौन सा ऐसा काम है जो बिना ह्यूमिलेट हुए आप आगे बढ़ जाओगे? होगा ही होगा।
1: मैं थोड़ा यंग जनरेशन की बात, वो दिल पे लगा लेते हैं। बिल्कुल,
0: इस पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लुक सबसे पहले है, मैंने अभी आपको बताया।
1: हाँ जी।
0: आप फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा आप ये फाइल चला के दिखाइए, व्हाटएवर जो भी उसका। एक्टर को तो देखते ही नहीं आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट उसमें फिट नहीं हो, आप लाख अच्छे एक्टर हो, तो ये मन से नहीं लगाना चाहिए किसी भी यंग एक्टर को, क्योंकि ये फील्ड ही लुक का है, पहले लुक है, अगर आप थोड़े बहुत उसके लुक में हो तो उस जैसे वो 5-6 लोग छांट लेगा
1: जी।
0: फिर वो उनको टास्क देगा, अच्छा ये डायलॉग बोल के दिखाइए, ऑडिशन लेगा, फिर जो उसको सूट करेगा उसको कास्ट करेगा। इस तरह अगर हम नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो दुख होगा भी, लेकिन उसको कुछ चारा नहीं है, ये उसका प्रोसेस का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस है, आपको उससे बचना,
1: मतलब ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए,
0: ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। ऑडिशन दो, भूल जाओ, अगर आपका होगा आपको फोन करके ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा
1: जी।
0: आपने ऑडिशन दिया, आप अगले दिन बम्बई छोड़ के होनोलुलु चले गए, मान लीजिए वो आपको होनोलुलु से बुला लेगा,
1: हाँ जी,
0: कि सर आप सिलेक्ट हो गए आ जाइए, और आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए ऑडिशन देके, वो आपको बेइज्जत ही करेगा, फिर भाई साहब नहीं हुआ आप जाइए घर, क्या करें।
1: तो सर आपकी ये बात हमें तो बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में?
0: अपनी लाइफ में मुझे तो लगता है आरटीए हमें मोटिवेट करता है और दूसरों का अच्छा काम मोटिवेट करता है कि काश ये मैंने किया होता। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मैंने तो सब कर लिया, अब मैंने पा लिया है सत्य,
1: हाँ जी,
0: तो खत्म हो जाओगे। वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी दूसरे का काम देखते हो और आपको लगता है काश ये मैंने किया होता
1: जी,
0: वही मोटिवेट करता है।
1: बहुत अच्छी बात है आपने बताई है हमें। और सर अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। सबसे पहले थिएटर या सिनेमा?
0: थिएटर।
1: डायरेक्टर या एक्टर?
0: एक्टर।
1: स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन?
0: ये डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, क्या
1: जी,
0: हो रहा है।
1: जी जी। एनएसडी के दिन या आज का सफर?
0: एनएसडी के दिन।
1: एक वर्ड में थिएटर को अगर डिफाइन करना हो?
0: सत्य है।
1: और एक वर्ड में अगर सक्सेस के लिए कुछ बोलना हो?
0: मन की शांति।
1: वाओ, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, इसमें हर जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे, यंग पीढ़ी भी हमारी सुन रही है, मिडिल एज भी, और तो उनके लिए आप क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो पहले थिएटर देखना शुरू कीजिए, थिएटर को प्रमोट कीजिए, है ना, पहले उसकी एस्थेटिक को समझिए और लिटरेचर पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज का पढ़िए, वो आपको बहुत आनंद देगा। मैं बता रहा हूँ, किसी भी वेब सीरीज को देखने से ज़्यादा आनंद देगा। और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको थिएटर और अच्छे से समझ आएगा।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आशा करते हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सफलता मिले और फिर से हम आपको ऐसे ही बुलाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज एनएसडी के प्रोफेसर मिस्टर रामजी बाली जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें समझाई एनएसडी थिएटर और फिल्म जगत के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में, और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। भी देखिए, ये शो अगर आप रेगुलर सुनते हैं तो आपको पता होगा अच्छे से कि यहाँ पर हम बहुत सारी स्पेशल बातें करते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक मेहमान होते हैं जिनके साथ हम कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ उनकी एक्सपर्टीज से निकाल करके कुछ स्किल्स आप लोगों तक हम कन्वे कर पाए। आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है और मैं कहूँगा कि मेरे दिल के बहुत करीब होता है ये टॉपिक, एंड दिस इज अबाउट राइटिंग। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इशप्रीत सिंह। इशप्रीत फरीदाबाद से एक आर्टिस्ट हैं। इशप्रीत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आपको ये जानना है कि इशप्रीत कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको दो चीज़ें रेकमेंड करूंगा। एक साल गाना है, आप स्पॉटीफाई पे जाइए, आप साल डालेंगे इशप्रीत सिंह करके, वो गाना आपको ज़रूर सुनाई देगा। आई एम डैम श्योर आपने से कुछ लोगों ने ज़रूर उसको सुना होगा, बहुत खूबसूरत गाना है। दूसरा, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए सो यू शुड वॉच HR 51, जो कि स्टेज के ऊपर मौजूद है, एक मूवी जो फरीदाबाद की भाषा को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद की कहानी को कहती है और फरीदाबाद में रियल जो इश्यूज है चलता है जो उन्होंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया है वहाँ पर। यू शुड चेक इट आउट। आज हम इशप्रीत से बात करेंगे अबाउट राइटिंग। इसके दो तीन सेगमेंट्स मैं जरूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज एग्जैक्टली होता क्या, किसको हम राइटिंग बोलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स को लिखा कैसे जाता है। सेकेंड, अगर आप खुद राइटर बनना चाहते हैं आपको कैसे स्टार्ट करना होगा। थर्ड, अगर आपको काम ढूंढना है राइटिंग में, हाउ यू शुड अप्रोच पीपल, हाउ यू शुड पिच योर स्क्रिप्ट टू समवन, अगर आप किसी को काम पिच करना चाहते हो तो। बट ये सब बातें होंगी, पहले लेकिन इशप्रीत का स्वागत करेंगे। सो हाय इशप्रीत, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय सागर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
1: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव एन आर्टिस्ट हियर इन दिस स्टूडियो, एंड आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं।
2: शुक्रिया भाई, बिल्कुल।
1: सबसे पहले मैं आपके मुँह आपकी जुबानी जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप बताइए कि आप क्या करते हो, क्या डोमेन है आपका?
2: भाई मेरा डोमेन एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा स्ट्रेंजली लॉ का है। और उसकी कहानी ये है कि मैं 12th स्टैंडर्ड में था, बोर्ड की परीक्षाएं अभी ख़त्म हुई थी, एंड एक बार मैं अपने पेरेंट्स को स्कूल लेके गया उनको बताने कि मैं इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करना चाहता हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ। और फिर वो मेरे इंग्लिश टीचर से मिले और मेरे इंग्लिश टीचर ने आयरॉनिकली खुद ही बोल दिया कि ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, मेरी तरह बनना है क्या, ज्यादा से ज्यादा 30,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे इंग्लिश टीचर ने ही मुझे एक तरीके से मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा डिलेमा में डाल दिया कि ये फीजेबल ऑप्शन नहीं है, मतलब करियर वाइज ल्यूक्रेटिव नहीं है लिटरेचर को परस्यू करना। तो मेरे पेरेंट्स भी कहते कि लिटरेचर तो कभी भी आप पढ़ सकते हो, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैसे भी लिटरेचर को कभी इतना एज अ सब्जेक्ट तवज्जो नहीं दी गई स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी, सम काइंड ऑफ अ टर्शियरी थिंग कि आप ये साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ये कोई मेन स्ट्रीम काम नहीं होता, नौकरी ढूंढो पहले। तो मैं कंफ्यूज था क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही टारगेट था कि लिटरेचर पढ़ूंगा और लिटरेचर पढ़ाऊंगा, बस कोई मेरे आर्टिस्टिक एम्बिशंस भी नहीं थे उस समय स्कूल में। तो फिर मेरे दो दोस्त लॉ परस्यू करने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि अब तू कुछ समझ तो आ नहीं रहा तुझे, तुझे करना क्या लाइफ में, तो तुम्हारे साथ कोचिंग ले ले और सिलेक्शन हो गया तो लॉ स्कूल चला जाइए। एंड समहाउ उन दोनों का उस समय नहीं हुआ और मैं लॉ स्कूल चला गया, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया।
1: ओह वाओ।
2: हाँ, और सिम्बायसिस लॉ स्कूल में चला गया फिर 5 साल के लिए नोएडा। पुणे भी हो गया था बट पुणे एक तो काफ़ी दूर था घर से, और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि नोएडा में रहूँगा तो दिल्ली आना जाना लगा रहेगा और मैं नाटकों की दुनिया और उससे जुड़ा रहूँगा समहाउ, क्योंकि मेरे को मैंने बताया कि पढ़ना बहुत पसंद था और पढ़ने में नाटक भी आते हैं, वो भी लिटरेचर का एक पार्ट है। तो मैं 5 साल लॉ स्कूल में बिताए और मैं 5 साल मंडी हाउस आता जाता रहता था, वर्कशॉप्स करता था, नाटक देखता था। तो एक तरीके से आप ये कह लो मैं डबल लाइफ जी रहा था, एक साथ मैं लॉ कर रहा था और एक साथ मैं अपना लिटरेचर की पढ़ाई जो मैं नहीं कर पाया प्रोफेशनली या फिर ये कह लो अकेडमिकली, वो मैंने सिंसियरली खुद से की अलग से। और फिर करते करते लॉ की पढ़ाई चलती रही, साथ साथ मैं लिखता गया। यूजुअली मेरे मेरा परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड है, मैं परफॉर्म करता था। और फिर अचानक एक दिन मेरे किसी दोस्त ने बोला कि तू लिखता तो है ही, पहले मैं कविताएं लिखता था, तो उसने कहा कि कविताएं गाने भी तो बन सकती हैं, और मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं था अनलेस एंड अंटिल उसने बोला कि कविताएं क्या है, म्यूजिक तो कविताओं में भी होता है, तो एक बार ट्राई कर कि इसको कंपोज करवा। तो मैंने किसी से कंपोज करवाने की बजाय खुद ही कोशिश की गुनगुनाने की, और एक धुन मिली, मैंने ही धुन सोची और मैंने एक हमारी शहर का लड़का है रोहित, रोहित निगम, वेरी टैलेंटेड सिंगर। मैंने उसको इंस्टा पे अप्रोच किया, मैंने बोला भाई मैं लिखता हूँ, जबकि मेरा पहला गाना था वो, बट मैंने पोर्ट्रे ऐसे किया कि मैं राइटर हूँ इस लिखता हूँ। तो मैंने वो उसको घर पे बुलाया, मैंने वो धुन सुनाई, मैंने वो कविता गा के सुनाई, और वो मैंने गाने की तरह कभी ट्रीट नहीं की थी। हम स्टूडियो दोनों फर्स्ट टाइम गए, वो रिकॉर्ड हुआ लगभग 15 से 20 मिनट में, और वो गाना पहचान म्यूजिक करके एक लेबल है उन्होंने पिक किया, और वो मेरा पहला ही गाना था। एंड ओवर अ वीक ही उसके मतलब मिलियंस स्ट्रीम चले गए, और मेरी लाइफ मतलब वहां से कम्प्लीटली चेंज हो गई, आप ये कह सकते हो।
1: कौन सा गाना था?
2: सजना।
1: ओके
2: हाँ,
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ये आपका जो राइटिंग का सफर चला, आपने लॉ के बारे में बताया, ये सब ठीक है, और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे मध्यवर्गीय परिवारों की कहानी भी यही होती है सिमिलर, कि हम एक चीज़ बहुत मुश्किल होता है कि जो इंसान पिक कर पाए वो कर पाता है
2: जी,
1: हमें साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ करते रहना होता है दाल रोटी के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ राइटिंग एक कितना फिजिबल ऑप्शन है अभी तो, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंसड हो, और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस टाइम सोच रहा है कि मुझे राइटर बनना है, आपके हिसाब से कितना फिजिबल है वो, अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पर इसको देखूँ तो?
2: मैं ऑनेस्टली किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, पर ऑनेस्ट ट्रूथ, गॉड्स ट्रूथ जिसे बोलते हैं, वो यही है कि गुरबत का काम है राइटिंग इनिशियल डेज में, और ख़ासकर हमारे देश में। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग यूजुअली क्या बोल के फिल्म देखने जाते हैं, कि सलमान की फिल्म आ रही है, शाहरुख की फिल्म आ रही है, एज इफ उन्होंने ही वो डायरेक्ट किया और उन्होंने ही वो लिखी है। इन कंपेरिजन टू वेस्ट, वेस्ट जब वेस्ट में लोग क्या बोलते हैं कि नोलन की फिल्म आ रही है, स्कॉर्सेज़ी की फिल्म आ रही है, इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई फेस को ज़्यादा तवज्जो देता है और कोई फेस के पीछे जिसने वो पूरा काम किया उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री थोड़ी स्टार ऑब्सेस्ड कंट्री है, जो स्क्रीन पे आता है हमें मतलब ग्लैमर से ऑब्सेस्ड है हम, मे बी यहाँ तो हमारी रियल लाइफ बहुत डल है और बोरिंग है, हम फंसे रहते हैं, तो हमें ये देखने लोग बहुत पसंद है, लेकिन जो असली काम जाता है बिहाइंड द स्क्रीन उसको हमारा कंट्री अप्रिशिएट नहीं करता आज भी। आप किसी भी को पूछोगे कि किसी ने ये फिल्म लिखी, किसने डायरेक्ट की, तो हमें नाम नहीं पता होंगे, तो ये सैड रियलिटी है। तो आपको राइटिंग वाकई ही पसंद होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें एक्टिंग जैसा आरओआई नहीं है। इसमें आपको फेस करना पड़ेगा ये रियलिटी कि मैं करता रहूँगा एंड मे बी मैं पूरी लाइफ रिकॉग्नाइज ना हूँ। तो अगर आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, गुर्बत के लिए, और ख्याति आपको नहीं मिलेगी, तो आप जाओ इसमें, फिर आप अच्छे राइटर भी बनोगे क्योंकि आप किसी के लिए नहीं लिख रहे फिर।
1: बहुत सुंदर। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि डोंट चेज द फेम, आपको मिले ना मिले वो सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, मिल भी सकता नहीं मिल सकता, पॉइंट ये है कि आपको राइटिंग से अगर प्यार है और आप इस चीज के लिए तैयार हो कि बस मैं दाल चावल का जुगाड़ अपना कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, तो इशप्रीत कह रहे हैं कि शायद एक सही विकल्प हो सकता है। पर अगर आप सिंगल इस थॉट के साथ जा रहे हो कि दौलत शौहरत कमाऊंगा तो राइटर बन जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि वो एक गलत अप्रोच हो जाती है, ना आपकी राइटिंग में निखर के आएगा वो, ना वो चीज वैसे मिल।
2: और मैं रेफरेंस भी आपको देता हूँ, आप देखो चेखव था, एंटन चेखव, रशियन राइटर, काफ्का था, ठीक है, काफ्का बैरिस्टर था, लॉ पढ़ी हुई थी काफ्का ने, चेखव मेडिसिन का स्टूडेंट था, तो चेखव डॉक्टर था, काफ्का बैरिस्टर था, तो सबने अपना दिन का काम पकड़ रखा था और रात को राइटिंग छोड़ रखी थी। तो आप अपने दिन के लिए वही दाल चावल ढूंढो और रात के लिए आप अपनी कलम पकड़ो।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑलराइट, ऑन दिस नोट लेकिंग म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो कंटिन्यू करेंगे। स्पीड हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं। आगे फर्दर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कैसे लिखना होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ पाएं कि एक फिल्म लिखना, एक वेब सीरीज लिखना, एक गाना लिखना, एक कविता लिखना, कोई स्केच लिखना, इनकी अप्रोचेज क्या होती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील

0: वेलकम बैक अगेन। आई एम सेइंग अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पीड से आपको कहनी है या मुझसे कहनी है, कोई फीडबैक हो सकता है हमारे लिए, कोई प्यारा सा मैसेज हो सकता है, तो 8010781078 इस नंबर पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर शो को कंटिन्यू करेंगे। शो का नाम वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान है इशप्रीत सिंह। इशप्रीत, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं राइटिंग को थोड़ा समझना चाहता हूँ सिंपल शब्दों में। बहुत सारे लोग उस पार जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनको नहीं पता है टेक्निकल चीज़ें राइटिंग की। पहले तो मुझे बताइए कि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक राइटर जो है लिखता है। सब्जेक्टिव हो सकता है, उसमें आप अपना बता सकते हैं प्लीज।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये जानने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कॉलिंग कहाँ से आती है, कि आप राइटर हो भी या नहीं हो।
0: हाँ,
1: मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि राइटर शायद वो लोग बनते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हैं और हर दिन खत्म होते ही उन्हें लगता है कि ये दिन सही से नहीं जी पाए, तो वो उस दिन को दोबारा जीना चाहते हैं। अब वो कैसे जिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, वो निकल चुका है, तो मे बी आप लिखकर उस चीज को रिक्रिएट कर सकते हो। तो मुझे लगता है टेक्निक राइटिंग की कोई नहीं है, आप चाहे जितनी वर्कशॉप्स कर लो या कोर्सेज ले लो, वो आपको कभी राइटर नहीं बना पाएंगे। मुझे दो चीजें लगती हैं, एक तो रीडिंग और एक लिविंग। मतलब कि आप हर तरीके की चीज़ें पढ़ो, साहित्य से लेके जो घटिया मैगजीन्स होती हैं, इरोटिका भी पढ़ो और रशियन लिटरेचर भी पढ़ो। मतलब सबसे ऊंचे स्तर का लिटरेचर पढ़ो और सबसे निचले स्तर का लिटरेचर पढ़ो, उससे आपको हर तरीके की चीज़ पता चलेगी। जो दुनिया आपने नहीं भी जी है, आप वो दुनिया भी जी लोगे कि अच्छा 18वीं शताब्दी में रूस ऐसा था, लैटिन अमेरिका ऐसा था, चे गुवारा पॉलिटिक्स में क्यों गया जबकि वो तो मेडिसिन का स्टूडेंट था, उसके लिए आपको मोटरसाइकिल डायरीज पढ़नी पड़ेगी। तो आप समझोगे कि लोग कैसे बदलते हैं, जगहें कैसे बदलती हैं, हिस्ट्री आप समझोगे, ज्योग्राफी आप समझोगे। तो राइटिंग सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमारे लॉ के फील्ड में भी बोलते हैं नेवर स्टडी अ थिंग इन साइलोस, वैक्यूम में मत पढ़ो किसी चीज़ को। तो आप पढ़ो इतना कि आपको पूरा परिवेश समझ आए हर चीज़ का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। और दूसरा, आधा दिन आप पढ़ो और आधा दिन आप बाहर निकल के दुनिया के साथ इंटरेक्ट करो, क्योंकि सिर्फ किताबी बातें कभी आपकी राइटिंग में ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब तक आप ज़मीन पर उतर के ज़मीनी लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे। जिसे हम कहते हैं ना कैबिन आर्म चेयर राइटिंग, एसी में बैठ के कभी अच्छी राइटिंग नहीं होगी। इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि एसी में लिखना ख़राब है, आपको बाहर धूल धक्कड़ खाओ फिर बेशक आके एसी में लिखो, लेकिन आप बाहर निकलो। तो आप, मेरे लिए तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, रीडिंग, ट्रैवलिंग और टॉकिंग विद पीपल। ये तीन चीज़ें कोई भी इंसान पूरे शिद्दत के साथ अगर कर रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली लिखने का मन करेगा, क्योंकि जब आप इतनी दुनिया देख लेते हो, जब आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो, कहीं ना कहीं एक डिज़ायर आ जाती है कि मुझे अब अपनी वर्ल्ड के बारे में भी दुनिया को बताना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मैंने क्या सीखा इस जीवन में। और जैसे विनोद कुमार शुक्ल नहीं बोलते कि इतिहास की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हर इंसान अपना इतिहास लिखने लग जाए। तो हर इंसान को अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है राइटिंग प्रोफेशनली किसी को सीख नहीं भी नहीं करनी चाहिए, तो बेटर पर्सन बनने के लिए लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको अपने बारे में।
0: सो मिसिंग। अगर मैं बात करना चाहूँ, अपने पसंदीदा गाने की बात करना चाहूँगा मैं, साल की
1: जी,
0: क्या थॉट था, कैसे उस गाने को लिखा?
1: साल
0: प्रोसेस क्या था उस गाने का?
1: साल का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। साल गाना जो है, मैं उस समय लॉ स्कूल में था, अपने ग्रेजुएशन कर रहा था LLB, और उस समय मुझे एक लड़की पसंद थी, और समहाउ लास्ट इयर्स रह गए थे लॉ स्कूल के, और मैं बहुत इंट्रोवर्टेड और शाय इंसान हूँ इन जनरल भी अपनी लाइफ में, तो मैं कभी एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और तब तक ट्रेन निकल जाती है और फिर बाद में ये गाने रह जाते हैं। तो वो था कि कैसे, जो उसका कोरस है गाने का, कि पहले दिन देखा दिल हार गए, दूजे दिन देखा, कि आप दो दिन किसी से प्यार में पड़ते हो और उसमें आपके कितने साल चले जाते हैं, वो उसका कंसेप्ट था। कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पसंद आया, आपको कोई पसंद आता है, एक या दो दिन में ही आ जाता है पहली नज़र में, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बट कितना लंबा जाता है वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता भी नहीं है और फिर भी आप सालों साल उसकी इमेज लेके चलते हो। तो इस थॉट पर लिखा था वो गाना।
0: वाह यार।
1: हाँ, कि मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ वन और टू डेज बट इट परसिस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स अपनी इमेजिनेशन में, और आप होते भी नहीं उस पर्सन के साथ। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग लगता है वो इस थॉट से।
0: आई थिंक अगर इस पॉइंट से अगर आप देखते हो ना चीजों को, तो मेरे को ऐसा लगता है राइटिंग इज अ ब्लेसिंग।
1: हाँ,
0: या फिर क्या को क्या बना देते हो, हाउ यू एक्सप्रेस। जैसे अभी आपने ये चीज बताई तो होता हम सबके साथ है कि एक इंसान को भी देखा और शायद अपने आखिरी के 70-80 की एज में भी हम उस चेहरे को याद कर रहे होंगे, धुंधला सा वो कहीं याद होगा। ठीक है, सबके पास थॉट होता है, बट ये शब्द नहीं होते हमारे पास कि कितने साल निकाल दिए उन दो दिनों के चक्कर।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और HR 51 का प्रोसेस मैं जानना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट तो ठीक है, आपको लगा कि फरीदाबाद की आवाज बनना चाहिए, फरीदाबाद की कोई कहानी है जो आई नहीं उसको कहना चाहिए, बट एक फिल्म लिखना बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे लिखा, ड्राफ्ट कैसे होते हैं, स्टोरी होती है, स्क्रीन प्ले होता है, थोड़ा मुझे टेक्निकल वे में अगर आप समझा सकें इसको।
1: टेक्निकल वे में सिंपल है कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्टोरी स्क्रीन प्ले सेम चीज है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, और मोस्टली आपने क्रेडिट्स में देखा भी होगा कि डायलॉग का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, स्क्रीन प्ले का किसी और को दिया जाता है, और स्टोरी का किसी और को दिया जाता है। जैसे इस केस में HR 51 में तीनों चीजें मेरी थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। तो स्क्रीन प्ले ये है कि व्हाट इज प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या क्या प्ले हो रहा है, मतलब छोटे से छोटा एक्शन भी कि ईशप्रीत अब पानी का ग्लास पीने वाला है, तो इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन प्ले में जाती है कि ईशप्रीत इज गोइंग टू पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक स्क्रीन राइटर को ये भी लिखना होगा। डायलॉग इज अ डिफरेंट थिंग, डायलॉग है वार्तालाप, बस शब्दों का आदान प्रदान कि दो लोगों में क्या वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तू मेरे पास बैठा है, हाँ मैं तेरे पास बैठा हूँ, तेरे साथ बैठा हूँ, ये डायलॉग हो गया। उसके अलावा डायलॉग राइटर कभी भी स्क्रीन पे क्या चल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता कि अब ये गाड़ी ऑन करेगा, अब ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगी। तो डायलॉग ये हो गया, स्क्रीन प्ले अलग हो गया, स्टोरी हो गया ओवरऑल कहानी। अब जो कमर्शियल सीन में जो स्ट्रक्चर चलता है स्क्रीन प्लेस का, वो यूजुअली अमेरिकन स्टाइल का होता है, विच इज द 3-act स्ट्रक्चर, Act 1, Act 2, Act 3, क्योंकि लोग यूजुअली उसी से ग्रिप होते हैं। एक्ट वन में आप अपना प्रेमाइस सेट करते हो कि क्या दुनिया है, और एक्ट वन खत्म होते होते आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन डालनी होती है कि अब यहाँ से कहानी पलटने वाली है, कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है। एक्ट टू में आप आते हो, अब वो सब कुछ दिखता है जो उसके साथ बुरा होने वाला है। एक्ट थ्री में आप क्लाइमैक्स लिखते हो कि अब ये बचेगा या ये डूबेगा। तो इस तरीके से मोस्टली कहानियां जो कमर्शियल सीन में लिखी जाती हैं वो इस 3-act स्ट्रक्चर पे लिखी जाती हैं। और HR 51 के लिए भी मैंने यही फॉलो किया था, क्योंकि एक कमर्शियल OTT प्लेटफॉर्म है, इंडी प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था। तो यही है कि आप 3 हिस्सों में बांटो कहानी को, आप अपने वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाओ, वर्ल्ड में होता क्या है वो एक्ट टू में दिखाओ, और थर्ड में ये वर्ल्ड बचेगा या नहीं। सिंपल।
0: तो क्या उसको बोल सकते हैं बिगनिंग मिडिल एंड?
1: Yes, beginning, middle, end.
0: तो act one, act two, act three, same चीज़।
1: जी, जी।
0: Beginning, middle, end।
1: हाँ जी।
0: तो अपनी कहानी को establish करो, problem establish करो।
1: Yes।
0: Beginning में।
1: हाँ।
0: Middle में उसको जितना आप peak पे ले जा सकते हो उसको ले जाओ, क्या
1: हाँ,
0: चल रहा है।
1: हाँ।
0: और end में आप उसको conclude करते हो।
1: जी।
0: कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अधूरा हुआ, जो हुआ। So amazing.
1: स्क्रीन राइटिंग की किताबें भी हैं बहुत सारी, जैसे एक सेफ द कैट बहुत पॉपुलर किताब है, वो लोग पढ़ सकते हैं, तो वो ब्रिलियंट किताब है, सेव द कैट।
0: ठीक है, ठीक है। और अगर मैं गाने की बात करूं, गाने का तरीका क्या होता है, गाने कैसे लिखे जाते हैं?
1: गाना इंटायरली डिफरेंट है एक फिल्म से, एक कहानी से और एक नाटक से, क्योंकि गाने का स्ट्रक्चर भी होता है, मुखड़ा, अंतरा, ये सब वर्स, कोरस जिसे बोलते हैं, लेकिन गाना जैसे फिल्मों के लिए क्या है कि आप और फिल्में देख सकते हो, उनसे सीख के आप अपना प्लॉट लिख सकते हो। गाना इंटायरली फीलिंग के बेस पे वर्क करता है। म्यूजिक को लेके मेरा ये टेक है कि म्यूजिक अगर आप रेफरेंस पे बना रहे हो कि आज ये गाना हिट हुआ, अब हम इस सैंपल पे एक और गाना बनाते हैं, मुझे नहीं लगता वो वर्क करता है, या मेरे लिए तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। म्यूजिक उसी का अच्छा होगा जो चीज़ें दिल से फील करता है, जिसकी मेलोडी दिल से निकलती है, और जो सारी चीज़ें पर्सनली फील करता है, वो अच्छा म्यूजिक बनता है। और म्यूजिक में कभी भी मैंने आज तक की अपनी डिस्कोग्राफी में किसी भी गाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं सुना कि मैं लिरिक्स के लिए या कॉम्पोजिशन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर रिलाई करूं। म्यूजिक के लिए मैं इंटायरली अपनी फीलिंग्स पे और इंट्यूशन पे डिपेंड करता हूं, और जो मुझे आता है वो मैं लिखता हूं, और यूजुअली मैं मेलोडी के साथ ही लिखता हूं। एक धुन होती है, मैं उस पे हम करता हूं, और उस हमिंग पे मैं शब्द डालता हूं।
0: आपने गाना लिखा, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी धुन में ठीक है जा भी रहा है, बट अगर मीटर फिट नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, ये राइम नहीं हो पा रहा, राइम का तो खैर चलो गुलजार साहब ने वो खत्म ही कर दिया कि जरूरी नहीं है, लेकिन मीटर फिर भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि सुर आप कैसे अलाइन करते हो।
1: तो सागर भाई, इसमें दो चीजें हैं, एक जो मेरा पर्सनल काम है उसमें कभी मुझे आज तक मीटर या इन सब टेक्निकल चीजों की दिक्कत नहीं आई। उसका कारण यह है कि पहले मैं अपना काम कविता की तरह लिखता हूँ, फिर स्टूडियो में हम जाते हैं, लैरी होता है मोस्टली, और लैरी इतना क्रिएटिव स्पेस रखता है कि हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कि या तो वो इस तरीके की मेलोडी या इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन कर देगा कि वो फिट आ जाए, नहीं तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती कि शब्दों को घुसाना है या फिर टेक्निकली उसको साउंड करवाना है, फीलिंग्स पे चलते हैं मेरे पर्सनल काम। लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ घोस्ट राइटिंग भी करता हूँ, घोस्ट राइटिंग भी मैं अपनी ऑडियंस को बता देते हैं, घोस्ट राइटिंग वो होती है कि जहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो काम करना पड़ता है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडियो आप जाते हो, प्रोड्यूसर आपके सामने ऑन द स्पॉट बीट प्ले करता है और आपको वहीं पर गाना लिखना होता है, तो उतना आपको अपना कान पक्का करना होता है कि आप बीट का टेम्पो और बीपीएम समझ सको, बीट पर मिनट, कि अच्छा टक टक टक इसमें 4 शब्द आएंगे, टक टक टक टक टक इसमें 6 शब्द आएंगे, वो अच्छा टक टक टक इसमें 4 शब्द आएंगे, टक टक टक टक टक इसमें 6 शब्द आएंगे, उस हिसाब से वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो पैसों वाला काम जब होता है कि मुझे किसी ने हायर किया है, तो वहां पे मैं फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए कॉर्नर कर देता हूँ, वहाँ पे टेक्निक पे चलते हैं, लेकिन जो पर्सनल काम जितने भी होते हैं वो इंटायरली फीलिंग्स और इंट्यूशन पे ही होते हैं।
2: ओके, नाटक कैसे लिखे जाते हैं?
1: नाटक का भी बिल्कुल फिल्म, और क्योंकि आप देखो हर राइटिंग लगता है कि लिखना कितनी सिंपल क्रिया नहीं है, आसान क्रिया लगती है लिखना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर फॉर्मेट अलग अलग चीज एक्सपेक्ट करता है। नाटक जो है, नाटक थोड़े से सिमिलर है इस मामले में कहानियों, प्रोज और फिल्म से। नाटक के लिए आपको बड़े बड़े आप प्ले राइट्स को पढ़ो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर समझो। बहुत सारे प्लेज ऐसे रहते हैं कि जिनमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, सोलिलोलोकीज होती हैं, स्टेज पे कैरेक्टर जा रहा है और बस अपने से बात कर रहे हैं और कोई नहीं है स्टेज पे और ऑडियंस से बात कर रहे हैं, मोनोलॉग्स हैं। कुछ प्ले होते हैं जिसमें कास्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे शेक्सपियर के नाटक आप देख लो, कॉमेडी ऑफ एरर्स या फिर जूलियस सीजर, इतनी ज़्यादा कास्ट है, कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है नाटक अगर किसी को लिखने हैं ना, तो वो हैवी लिटरेचर पढ़े, जैसे महाभारत सबको रेफर करनी चाहिए, चाहे वो फिल्म का राइटर बनना चाहता है या नाटक के लिए तो मैं खासकर बोल रहा हूँ। महाभारत एक ऐसी चीज़ है कि महाभारत में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसे कोई भी लिटरेचर लिखा गया जो महाभारत से ग्रेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर्क, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट ट्विस्ट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नेचर। सारी चीज़ें जितनी भी एक ह्यूमन नेचर में होती हैं वो सारी महाभारत में है। महाभारत एक सिंगल बाइबल जैसे बोलते हैं ना, राइटर की बाइबल हो सकती है महाभारत। तो नाटक के लिए अब यही है कि आप हर कैरेक्टर की आर्क को समझो, कि हर कहानी के अंत तक जितने किरदार आपके नाटक में है, खासकर मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट या जो साइड सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वो जर्नी जब तक नाटक की खत्म हो रही है तो एंड तक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने उनमें परिवर्तन आया है। अगर आपके नाटक में या किसी भी कहानी में शुरुआत से लेकर अंत तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखी है, तो इसका मतलब वो कहानी कहने लायक थी ही नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है।
2: नहीं, दैट सो अमेजिंग क्योंकि कोई पॉइंट भी नहीं है उसका कि कुछ जियोगे नहीं आप।
1: बिल्कुल,
2: जीने के लिए यात्रा जरूरी होती है और यात्रा यही होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट वो पहुंचे और फॉर्मेट वही काम करता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में मोटा मोटे तो कुछ 8-10 ही कहानियां हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, उन्हीं पे पूरी दुनिया का सिनेमा टिका हुआ है कि लड़का लड़की मिलते हैं, या तो घर वाले मानते हैं या तो नहीं मानते हैं, या तो शादी होगी या तो नहीं होगी, या तो ग्रीड होगा कुछ बीच में, बस उसी में क्या नया आप ट्रीट कर सकते हो, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क।
1: क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है सागर भाई कि इमोशंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री सेम ही रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो नहीं कही जा चुकी, बस आप उसको हर नए समकालीन परिवेश में कैसे दोबारा से कह सकते हो बेहतर तरीके से, क्योंकि इमोशंस वही रहने वाले
2: हैं। मैंने एक प्ले पढ़ा था आषाढ़ का एक दिन,
1: बहुत सुंदर नाटक है मोहन राकेश का
2: है। मैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स कंसीडर करता हूँ अगर मुझसे कोई नाटकों के बारे में पूछेगा तो। मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड, ये दो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। एंड आषाढ़ का एक दिन में जब वो आप विरह वाला वो सीन देखते हो, मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि शायद पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ,
1: कालिदास का
2: और वो जब कालिदास आके अपना पूरा किस्सा बता रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता था पर मैं क्यों नहीं आ सका, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से टप टप टप टप आंसू गिर रहे हैं और मैं उस पूरे प्रसंग को पढ़ रहा हूँ। वो इतना सुंदर लम्हा था मेरे लिए कि ये क्या जी रहा हूँ यार मैं जिंदगी। तो विरह तो वहां से चला आ रहा है,
1: बिल्कुल
2: कालिदास के टाइम से,
1: बिल्कुल,
2: और आज तक भी वो विरह है, आज तक भी उस पर ही कहानियां कहीं जा रही है, तो वो सेम रहेगा, वही प्रेम, वही विरह, वही जुदाई, वही मिलन, ये चलता रहता है। बहरहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। और अब यह थोड़ा सा धंधे वंदे की बात करेंगे, कहीं से आप लोगों ने लिख लिया है, स्प्रीत की बात सुनकर आपने एक्ट वन एक्ट टू एक्ट थ्री लिखना शुरू कर भी दिया है, तो उसको पिच कैसे करोगे, काम कैसे लाना होता है, ये डिस्कस करेंगे अभी। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी को फिल्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कविता को गाना कैसे बनाया जाता है, नाटक कैसे लिखा जाता है, इंस्पिरेशन कहां से ली जाती है, राइटर किसको बनना चाहिए, रियलिटी चेक क्या होता है, ये तमाम सवाल अभी तक हम डीकोड कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं आपके काम धाम की, कि अगर आपने लिखना शुरू कर दिया है या आपने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख ली है, उसको आप अप्रोच कैसे करोगे। इसप्रीत, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। एक राइटर ने एक कहानी लिख लिया
1: जी,
0: उसको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स अभी बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी यात्रा शुरू होती है एक दूसरी, कि उसको बेचना है, सही लोगों तक पहुंचाना है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे अपनी कहानी को पिच करना होता है, क्या प्लेटफॉर्म है कोई, या कैसे होता है?
1: इसका अगर आपको वाकई प्रैक्टिकल आंसर चाहिए किसी बिगिनिंग राइटर के लिए, तो उसका सिंपल सा आंसर है बेशर्मी। पिचिंग में, पिच करने के लिए, कि आपने, आप अपनी नाटक, फिल्म, कविता, गाने, जो भी आपका फॉर्मेट है, उसको बिल्कुल सभ्यता के साथ लिखो और पिच करो बेशर्मी के साथ। बेशर्मी से मेरा मतलब ये है कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपके पास क्या बचता है कि आप जितने ऑफिसेस, जितने प्रोडक्शन हाउसेस, जितने म्यूजिक लेबल्स, उन सबकी आप लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, अब आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं, ठीक है, एक सेम सैम्पल मैसेज तैयार करो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, और वो धड़ाधड़ आप भेजते रहो। ना जाने कौन सा ऑफिस आपके लिए या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कल डोर खुल जाए। तो वही एक ट्रिक है, क्योंकि मेरा कोई भी, मेरी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंजीनियर्स का है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का है, और मैं एक ब्लैक शीप हूँ जिसने ये प्रोफेशन चूज किया है, तो मेरे लिए तो कोई कनेक्शन या कोई रेफरेंसेस थे नहीं। तो मेरी अभी तक तो यही अप्रोच चली है कि मैंने यही प्रिंटआउट्स या फिर ये कह लो लिस्ट निकाली, और मैंने सबको अपना काम भेजा। और मोस्टली अगर आपने काम अच्छा किया है ना सागर भाई, तो अगर आप 100 जगह भेज रहे हो, तो कोई ना कोई एक आपको पिक कर लेगा। ऐसा मुझे प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में मैंने पाया है, कि अभी भी इतनी खराब दुनिया नहीं हुई है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और 100 में से एक डोर भी ना खुले आपके लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपने काम पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मे बी माई वर्क इज सो बैड। तो एक तो आप आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी रखो अपने साथ, अपने साथ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आप इसमें पेशेंस रखो। पेशेंस दूसरा नंबर सबसे बड़ा फैक्टर है, कि अगर आपका 2-3 साल तक भी कुछ नहीं बन रहा है, आप अपनी राइटिंग मत स्टॉप करो। आप एटलीस्ट 10-12 स्क्रिप्ट्स अपने पास लिख कर रखो, या फिर 10-12 कविताएं, गाने, आपके पास अपना एक स्टॉक हो कि जब कभी मुझे मंडी में जाना पड़े तो मैं इसको बेच पाऊं। अगर आप खाली हो, आपका स्टॉक ही खाली है, एक स्क्रिप्ट आपकी कभी चली भी गई, आपके पास बाद में ऑफर करने के लिए कुछ हो ही ना, तो राइटर्स के लिए यही एक एडवाइस है कि आप मटेरियल अबंडेंस में रखो, कि कोई भी सोर्स आए वो आपको उठा ले और उसके लायक आपके पास काम हो। तो एक तो पिचिंग अपनी कोल्ड रखो, सबको काम भेजो, और शर्म मत करो काम मांगने में, या और नए लोगों से मिलो। और सिर्फ राइटर्स राइटर्स से ना मिले, राइटर्स राइटर्स को छोड़ के सबसे मिले।
0: हाँ, क्योंकि वो भी इवेंचुअली काम ढूंढ रहा होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पहले अपनी दुकान के बारे में सोचेगा।
1: बिल्कुल, बिजनेसमैन से मिलो।
0: हाँ,
1: आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो आर्ट्स के शौकीन होते हैं। मतलब बड़े वकील हो गए, बड़े जजेस हो गए।
0: हाँ,
1: जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, आपको पता है रोमन एम्पायर के टाइम पे प्रोस्टिट्यूट्स और आर्टिस्ट सबसे लो दर्जे के माने जाते थे, कि ये तो सर्कस है ना, इसको तो एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, और थ्रोन पे बैठ के या फिर ऊपर बालकनीज पे बैठ के देखते थे राजा या उनके जो आपके ये सब फेलो मैन होते हैं। तो आज भी वही है, देखते आर्टिस्ट को आज भी वैसे ही है। तो इसीलिए आप बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, आर्टिस्ट को छोड़ के, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली जब आर्टिस्ट के साथ ही बैठने लग जाते हैं ना, तो वो एक बबल में चले जाते हैं, प्योरिस्ट बन जाते हैं कि हम सारे तो बहुत कुछ एक नेक काम कर रहे हैं और हमें तवज्जो, फिर वो एक पिटी होल है, सेल्फ पिटी में जाते हैं फिर आर्टिस्ट। जब 4 आर्टिस्ट एक साथ बैठ के अपना करियर डिस्कस करते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को आइसोलेशन में रहना चाहिए, और आर्टिस्ट को छोड़ के सबसे इंटरेक्ट करना चाहिए। आर्टिस्ट के साथ तब मिलो जब आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, वरना सिर्फ आप आर्ट की बातें करोगे, आपके पास बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं होगी, वर्ल्ड कैसे रन करता है, यू विल बी अनअवेयर अबाउट इट।
0: हाँ, इधर देश और फिर रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स को बहुत माना जाता था, तो उनको थोड़ी तवज्जो दी जाती थी, या तो एक आर्टिस्ट ऐसा ग्लैडिएटर बन के दिखा दे कि मैं कुछ ऐसा लेके आ रहा हूँ,
1: बिल्कुल,
0: तो शायद वो हो सकता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बोली ग्लैडिएटर्स वाली, क्योंकि मैं और मेरा

0: और फेलो फ्रेंड है अंकुर हुड्डा, तो हम दोनों राइटर्स हैं, तो हम दोनों अक्सर ये बात करते हैं मजाक में कि पुराने राइटर्स को देख लो, चाहे वो हिंदी के हो, वेस्ट के हो, या हमेशा इतने ऐसे स्किनी से और इतने मतलब कमजोर से क्यों, फीबल से क्यों दिखते हैं कि गुर्बत में। और ये एक तो इमेज भी राइटर्स की ऐसी है कि ये वैसे ही होगा, तो थोड़ा बदलना चाहिए राइटर्स को भी। आप फिजिकली फिट रहो, जिसे कहते हैं ना वॉरियर राइटर बनो तो बेहतर है।
1: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे मेरे थिएटर कोच थे तुषार भैया, उन्होंने बात बोली थी कि हमारा माइंडसेट भी वही था कि थिएटर करेंगे यार ऐसे जिंदगी कटेगी, मंडी हाउस जाते थे, अच्छा लगता था, वो रोमांटिसाइज करते ना चीजों को। सो ही सेड कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाला किसने?
0: एग्जैक्टली,
1: कि एक राइटर बैठ के 10 रुपए के कुल्लड़ में चाय पिएगा, कुर्ता पहन के? एक राइटर अच्छा लुई वितोन के कपड़े पहन के स्टारबक्स में बैठ के क्यों नहीं लिख सकता?
0: बिल्कुल।
1: या एक एक्टर स्टारबक्स में क्यों नहीं बैठ सकता?
0: जी,
1: दैट शुड बी द क्वेश्चन,
0: राइट?
1: कि तुम थिएटर वालों को इतना रोमांटिसाइज, गरीबी को रोमांटिसाइज काहे कर रहे हो?
0: एग्जैक्टली,
1: क्योंकि तुम जो एग्जांपल सेट करोगे आगे उन्हीं को वही मिलेगा ना।
0: बिल्कुल।
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुझे किस्सा भी याद आ रहा है सलीम जावेद साहब का, पहले राइटर्स को क्रेडिट मिलता ही नहीं था।
0: एग्जैक्टली,
1: ठीक है। तो उन्होंने आपको याद होगा वो किस्सा कि उन्होंने जा जाके मूवीज के जो पोस्टर लगते थे सबके ऊपर पेंट कर
0: दिया और नाम लिख दिया,
1: नाम लिख दिया सलीम जावेद। तो वहां से एक बगावत शुरू हुई।
0: हाँ, तो राइटर्स इनहेरेंटली रेवोल्यूशनरी राइटर्स को होना चाहिए। भगत सिंह लिखते थे।
1: हाँ, भगत सिंह बहुत अच्छे राइटर थे।
0: भगत सिंह लिखते भी थे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब भी फोड़ा, लेनिन के फॉलोअर थे, जेल में भी लिटरेचर पढ़ रहे थे। तो देख रहे जो मैं वॉरियर राइटर वाली बात कह रहा था कि दोनों चीजें पॉसिबल है। और एक वो प्योरिटनिज्म छोड़ना पड़ेगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये परस्यू करूंगा।
1: हाँ, रिजिड नहीं हो सकता। चलिए, ओके, लेट्स टेक इट दिस वे। आप बोल रहे हो कि प्रोडक्शन हाउसेस के मुझे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे, मुझे फिर राइटिंग वहाँ पे पिच करनी है। मान कर चलो मेरी एक स्क्रिप्ट है जो मैं 100 पेज में लिखी है मैंने, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, 100 पेज पड़ेगा। मैं कैसे वो स्क्रिप्ट, वो इमोशन कन्वे करूँगा, मतलब व्हाट्स द प्रोसेस?
0: तो वेब सीरीज अगर आप लिख रहे हो, अगर आपका वेब सीरीज पिच करने का मन है, तो एक शो बाइबल टर्म है, शो बाइबल, विच इज लाइक 1 पेजर या 2 पेजर आप अपना एक बना लेते हो कि क्या प्लॉट है, मेजर चीजें क्या आपकी उसमें है, जिस्ट बता दे जो आपकी वेब सीरीज की। तो शो बाइबल आप प्रिपेयर करते हो वेब सीरीज के लिए। फिल्म्स के लिए हो गया सिनॉप्सिस, ठीक है, जिसे हम कहानियों के लिए समरी बोलते हैं। फिल्म के लिए हम यूजुअली बोलते हैं समरी, सिनॉप्सिस। और लॉग लाइन एक टर्म है, लॉग लाइन बहुत जरूरी होती है। बेशक आपने 100 पेज लिख लिए हैं, लेकिन अगर आपकी लॉग लाइन इज बेसिकली 1 लाइन दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर फिल्म, कि सुरेश 24 ईयर ओल्ड टेक्स अ कैब लेट एट नाइट एंड ट्रबल इंस्यूज, तो आपने एक्साइट भी कर दिया, आपने बता भी दिया कि सुबह 4 बजे सुरेश ने गाड़ी पकड़ी और अब पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो लोग एक लाइन पढ़कर फिल्म देखने आ जाते हैं। तो मैं ये राइटर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि नो मैटर आपकी 100-150 की स्क्रिप्ट कितनी, पेजेस की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका सिनॉप्सिस पावरफुल नहीं है, अगर आपका लॉग लाइन पावरफुल नहीं है, तो मे बी प्रोडक्शन हाउसेस देखे भी ना आपका फोल्डर खोल के।
1: स्क्रिप्ट अगर अच्छी है और सिनॉप्सिस उसको लिखने नहीं आते हैं, तो सिनॉप्सिस में क्या क्या एलिमेंट्स डालने होते हैं, क्या ध्यान में रखना होता है?
0: रेफरेंसेस, आप जितनी आपको फिल्में पसंद है जो आपने अब तक देखी है, वो सबकी लिस्ट बनाओ, IMDB पे जाओ, और उसका जब आप IMDB वो फिल्म का नाम लिखोगे तो वो लॉग लाइन खुद ब खुद नीचे लिखी आती है। आप कम से कम 100 फिल्मों की लॉग लाइन्स पढ़ डालो, गॉडफादर की पढ़ डालो, टैक्सी ड्राइवर की पढ़ डालो, रेजिंग बुल की देख लो कि ऐसा क्या था इन्होंने जो लिखा हुआ था, और आपको कुछ ना कुछ कैप्टिवेटिंग मिल जाएगा। तो जिसको नहीं भी आती वो बाकी फिल्मों का सहारा ले, बाकी फिल्मों से सीखे कि इन्होंने अपनी समरी कैसे लिखी, सिनॉप्सिस कैसे लिखा, लॉग लाइन कैसे लिखा, एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया। और आप जिस नेचर की फिल्म लिख रहे हैं उसकी आपको 10 फिल्में वैसी और मिल जाएंगी, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा।
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग। तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि राइटिंग को कैसे पिच करना होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि आपने कुछ लिखा, आपने काम कहीं पर भेजा, आपने लेकिन कहीं पर कॉपीराइट रजिस्टर नहीं कराया, किसी ने उसको उठा लिया, आपने जहाँ आइडिया भेजा, ये भी डर होता है ना कि वो एग्जैक्ट उस थॉट को उठा के लिखने लगे, भेजने लगे, कोई और राइटर उस पे काम करने लगे, शूट होने लगे। इस केस में राइटर क्या कुछ कर सकता है?
0: इसमें देखिए दो चीजें हैं, कॉपीराइट लॉ में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडिया और एक्सप्रेशन। आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में। तो लीगल सिस्टम में आइडियाज की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज अभी यहाँ बैठ कर मुझे कोई आइडिया सुनाया कि मैं इस फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं उस आइडिया की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और मैं आगे किसी को भेज देता हूँ, और उस पर वो फिल्म बना देता है, आप इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुझे अपना आइडिया सुनाया था और आइडिया लीगली कवर्ड नहीं होता। एक्सप्रेशन कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं, जो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक्सप्रेशन को तवज्जो देता है कि अगर यही आपने मेरे को लिख कर, आइडिया मतलब जो दिमाग में है, कागजी घोड़ा जो हवा में है, अभी घोड़ा दिख नहीं रहा है, और एक्सप्रेशन मतलब घोड़ा जब दिखने लग जाए, तो जब आप मुझे पेपर पे लिखकर अगर आपने मुझे कुछ हैंडओवर किया है या मुझे कोई ईमेल भेजी है कि ये मेरा ड्राफ्ट है और ये मैं कहीं आगे भेज देता हूँ, तो अगर ये चीज़ मैंने कॉपीराइट नहीं भी करवाई हुई, ये फिर भी कॉपीराइट वायलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं उसी पर आप क्लेम कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ी वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अब तो मैं क्लेम नहीं कुछ कर पाऊंगा मैं कि मेरा लीगल वायलेशन हुआ है क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवा रखा था। अगर आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में किसी को सेंड किया है, एक्सप्रेशन से मेरा मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आप लीगली उसका डिफेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉपीराइट सिर्फ रजिस्टर्ड चीज़ों का ही होता है, बट बेटर ये है कि आप रजिस्टर कॉपीराइट करवा लें क्योंकि उससे आपको एक लीगल टेनेसिटी मिलती है कि देखो ये मेरे कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाकर मैंने इसको रजिस्टर करवाया है और ये हर तरीके से मतलब परिपक्व है लीगली। इससे आपको आपका एडवोकेट भी बेटर पोजीशन में खुद को पाएगा डिफेंड करने के लिए आपको।
1: ऑलराइट,
0: क्योंकि जब आपको कॉपीराइट ऑफिस से ही आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो फिर तो वो विक्ट्री है ना, क्लियर लीगल विक्ट्री है फिर।
1: हाँ, फिर तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं।
0: दूसरी चीज में थोड़ा सा चीजें डाइसी हो जाती हैं जब आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से, अब तो AI भी आ गया है राइटर्स के लिए, तो अब आफत आने वाली है क्योंकि किसी भी तरीके से आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बेटर है कि आप कॉपीराइट करवा ही लें।
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। पांच ऐसी किताबें बताइए जो हर एक इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर किसी को राइटर बनना है तो।
0: क्योंकि हम अपनी ऑडियंस इंडिया में है तो हिंदी की किताबें कवर करना तो जरूरी है।
1: हाँ,
0: तो मेरे फेवरेट ऑथर हैं निर्मल वर्मा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और उनकी कोई ऐसी एक भी किताब नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो और इवन बार बार पढ़ी है। तो एक तो अभी एक ही उपन्यास बताऊंगा उनका, अंतिमारण्य, वो सबको पढ़ना चाहिए, सबको, अंतिमारण्य, ये एक उपन्यास हो गया। उसके अलावा वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय, बहुत भारी किताब है, बहुत हैवी किताब है, और लेकिन पढ़नी सबको चाहिए, मतलब रूस की एक तरीके से सबसे अकम्प्लिश्ड वर्क है, कैरेक्टर आर्क से लेके प्लॉट ट्विस्ट से लेके फैमिली फ्लो चार्ट सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, राइटिंग का आपका कोर्स है वॉर एंड पीस। तो अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस, फिर आपको पढ़नी चाहिए जॉन पॉल सार्त्र को पढ़ना चाहिए आपको, जॉन पॉल सार्त्र की एक किताब है द एज ऑफ रीजन, वो पढ़नी चाहिए, तीन किताबें हो गई। चौथा दोस्तोवस्की पढ़ना चाहिए, फिर से रशियन लिटरेचर, क्राइम एंड पनिशमेंट आपकी बाइबल बन सकती है, क्राइम एंड पनिशमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किताब है, और चार किताबें। और पांचवा ऑथर मेरा फेवरेट ऑथर है हरमन हेस,
1: ओके,
0: ये एक जर्मन स्विस ऑथर है जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे, World War 1 और 2, और उनसे परेशान होकर मेंटली हर तरीके से स्विट्जरलैंड चले गए थे छोड़कर, और इनकी एक बहुत ही सुंदर किताब है सिद्धार्थ, सिद्धार्था।
1: हाँ, I've heard about this book. हाँ,
0: मैं इनकी सारी, इनकी तीन किताबें पढ़ चुका हूँ, सिद्धार्था, स्टेपन वुल्फ और डेमियन, हरमन हेस कमाल के ऑथर हैं। तो पांच किताबें हो गई, अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस, क्राइम एंड पनिशमेंट, एज ऑफ रीजन और सिद्धार्था।
1: सिद्धार्थ का टेकअवे क्या है?
0: सिद्धार्थ का टेकअवे राइटर्स के लिए बेस्ट है। सिद्धार्थ का टेकअवे है कि सिद्धार्थ जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल में, वो गौतम बुद्ध से मिल लेता है लेकिन उनका फॉलोअर नहीं बनता।
1: ओके।
0: और वो चुनता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा और अपने रास्ते खुद बनाऊंगा, तो वो कुछ समय के लिए उनके सानिध्य में रहता है और छोड़ देता है। सिद्धार्थ एक वो किताब है कि जिसमें सिद्धार्थ नाम का लड़का
1: गौतम बुद्ध से मिलता है,
0: मिलता है लेकिन उनका भक्त नहीं बनता,
1: और नाम सिद्धार्थ है,
0: और नाम सिद्धार्थ है, और वो जीवन में सारी फॉलीज और वाइसेस परस्यू करता है, सारे पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है ये समझने के लिए कि मुझे किस तरीके की जिंदगी चाहिए अपने लिए।
1: सो अमेजिंग। आई एम डन विद माई क्वेश्चन जसप्रीत. हालांकि टॉपिक एक ऐसा है और क्योंकि मैं पर्सनल बहुत इंटरेस्ट रहता हूँ इस टॉपिक में, तो कई घंटों तक भी ये शो चल सकता है. बट क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा है तो मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं. अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री.
0: नहीं सागर भाई, यू आर अ वंडरफुल होस्ट और बहुत ही अच्छा लगा दिल से आपसे बात करके. एंड आई वुड लाइक टू कम अगेन.
1: श्योर मैन, डेफिनेटली वील डू द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस. आज के लिए इतना ही. मुझे उम्मीद है दोस्तों, जितना जॉय मुझे यहाँ मिला स्टूडियो में बैठ करके, जितना मज़ा मुझे आया आयुष्प्रीत के सामने बैठ करके, उतना आप तक हम कन्वे कर पाए होंगे क्योंकि एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है. तो बहुत बहुत ही सुंदर इंसान है आयुष्प्रीत. बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत सुंदर गाने कविताएँ और फिल्में लिखते हैं. इसके अलावा बहुत ही सुंदर सभ्य और हम्बल एक पर्सन जिसको हम बोलेंगे वो हैं. कि मैंने सिंपली इनको बोला कि यार आओगे आपके साथ एक शो करना है रेडियो पर, इज़्ज़त ठीक है भाई मैं आऊँगा, और वो आज यहाँ पर आ भी गए जब उन्हें टाइम मिला और बहुत इत्मीनान से इन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सो अगर आपने नहीं देखा है, HR 51 स्टेज के ऊपर मौजूद है, जाकर के प्लीज़ चेक करिए, आयुष्प्रीत का काम है. इसके अलावा मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा आपको साल नाम का गाना, अभी जाकर के स्पॉटिफाई यूट्यूब जहाँ आपका मन करे आयुष्प्रीत सिंह का, वो ज़रूर सुनिएगा. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जैसा मौसम है आपके चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर आएगी. सो थैंक यू सो मच आयुष्प्रीत कमिंग फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट.
0: थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच.
1: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, देखिए आज मैं अदरक की बात आपसे करने वाला हूँ। अब बात अदरक की हो या किसी भी फसल की हो, मिट्टी की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ती है। सबसे पहला कदम यही होता है कि हमारी मिट्टी कैसी हो। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी आपकी फसल उतनी अच्छी होगी। ये फसल अच्छे जल निकास वाली चिकनी, रेतीली और लाल यानी कि हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, खेत में पानी बिल्कुल खड़ा ना होने दें, क्योंकि खड़े पानी में ये ज़्यादा देर बच नहीं पाएगी। फसल की वृद्धि के लिए 6 से 6.5 pH वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें जो कि बहुत ज़रूरी है, उस खेत में अदरक की फसल कभी भी ना उगाएं जहां पिछली बार अदरक की फसल उगाई गई हो। जी, जिस खेत में या जिस ज़मीन में एक बार अदरक की खेती हो चुकी है उसमें दोबारा अदरक ना उगाएं और हर साल एक ही ज़मीन पर अदरक की फसल ना लगाएं। तो ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी मिट्टी के बारे में, अब बात आती है किस्मों के बारे में। अच्छी किस्म का आप इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। IISR वराधा, ये किस्म ताज़ा और सूखे अदरक की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। ये 200 दिनों में पक जाती है और इसकी औसतन पैदावार 90 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो अगर आप इस किस्म का यानी IISR वराधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल बेहतर हो सकती है और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए, बिजाई कैसे की जाए, तो बताऊंगा, ज़मीन की तैयारी के बारे में भी बताऊंगा और ये जो बिजाई होती है ना, बिजाई का तरीका भी आपके साथ साझा करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, अदरक की फसल के बारे में आज आपसे बात हो रही है, तो आइए अब बात कर लेते हैं जमीन की तैयारी के बारे में। भाई देखिए, खेत को 2-3 बार जोतना बहुत जरूरी होता है और सुहागे से समतल कर लेना चाहिए। अदरक की बिजाई के लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 1 मीटर चौड़े बेड बनाएं। 2 बैंडों के बीच 50 सेंटीमीटर का फासला जरूर रखें। और जब बात बिजाई की आती है तो अपना एक समय भी होता है फसल का। बिजाई का जो समय है, बिजाई मई जून के पहले सप्ताह में की जाती है। और अगर हम फासले की बात करें, पौधों में 15 से 20 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बीज की गहराई की बात सुन लीजिए। बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। और बिजाई का जो ढंग है, अदरक की बिजाई सीधे ढंग से और पनीरी लगाकर की जा सकती है। अब सवाल आता है कि भाई बीज कैसा होना चाहिए, क्योंकि बीज के ऊपर सब कुछ टिका होता है। तो बीज की मात्रा के बारे में आपसे बात करूंगा। और ये जो बीज होता है, इसमें कई तरह के रोग भी लग जाते हैं, तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आज बात हो रही है अदरक के बारे में, तो जरा बीज की बात भी सुन लीजिए। देखिए भाई, बिजाई के लिए ताजे और बीमार रहित गांठों का प्रयोग करें। बिजाई के लिए 480 से 720 किलो प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करके आप अपनी इस फसल की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बीज का उपचार भी जरूरी है। बिजाई से पहले गांठों को मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचार करें। गांठों को 30 मिनट के लिए घोल में भिगो दें। इससे क्या होगा, गांठों को फफूंदी से बचाया जा सकता है और उपचार के बाद गांठों को 3 से 4 घंटे के लिए छांव में सुखाना चाहिए। लेकिन जब तक किसी फसल को अच्छी खाद ना मिले, तब तक वो फसल बेहतर हो ही नहीं सकती। तो खाद के बारे में भी सुन लीजिए। मैं प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ, यूरिया 55 किलो, SSP 60 किलो और पोटाश 16 किलो। ये तो मैंने आपको खाद की बात बता दी, अब तत्व की बात कर लेते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन 25 किलो, फॉस्फोरस 10 किलो और पोटाश 10 किलो। इस तरह से खाद का इस्तेमाल करके, तत्व का इस्तेमाल करके अपनी अदरक की फसल को बेहतर बनाइए और मेरे साथ सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
2: किसान भाइयों, हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें जब खरपतवार लग जाती है तो हमारी फसल भी बर्बाद हो जाती है। बात अदरक की चल रही है तो इसके लिए बिजाई के 3 दिन के बाद एट्राजिन 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की नमी वाली मिट्टी पर स्प्रे कर दें। उन नदीनों को खत्म करने के लिए जो पहली नदीन नाशक स्प्रे के बाद पैदा होते हैं। बिजाई के 12 से 15 दिनों के बाद ग्लाइफोसेट 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। नदीन नाशक की स्प्रे करने के बाद खेत को हरी खाद से या धान की पराली से अच्छी तरह से ढक दें। जड़ों के विकास के लिए जड़ों में मिट्टी लगाएं। बिजाई के 50 या 60 दिनों के बाद पहली बार जड़ों में मिट्टी लगाएं और उसके 40 दिन के बाद दोबारा मिट्टी लगानी चाहिए। इस तरह से आप उस खरपतवार को, जो कि आपकी फसल को बर्बाद कर सकती है, उस खरपतवार को इस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए साथ साथ सिंचाई की बात भी कर लेते हैं। अदरक की फसल की सिंचाई वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर करें। बिजाई के बाद फसल को 50 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से ढक दें। प्रत्येक खाद डालने के बाद 20 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से फसल को दोबारा ढक दें। तो ये प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है, इसका ध्यान रखेंगे तो अदरक की आपकी फसल बेहतर हो सकती है। चलिए कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे पौधे की देखभाल कैसे करें, वो जो बीमारियां हैं हमारी फसल को लग जाती हैं उसकी रोकथाम कैसे करें, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं आपको बताऊँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। आइए दोस्तों अब उन बीमारियों की बात कर लेते हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। बात अदरक की चल रही है तो जड़ों का गलना अक्सर इसमें देखा जाता है। इस बीमारी को रोकने के लिए फसल को बिजाई के 30, 60 और 90 दिनों के बाद मैन को जेब 3 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्सिल 1.25 ग्राम प्रति लीटर में डुबो दें। इससे क्या होगा, जो बीमारी है जड़ों को गलाने वाली वो बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरी एक बीमारी है मुरझाना। इस बीमारी को रोकने के लिए बीमारी दिखने के तुरंत बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में पौधों को भिगो देना चाहिए। एक और बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस। अगर ये बीमारी आए तो हेक्साकोनोजोल 10 मिलीलीटर या मैनकोजेब 75 WP 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी प्लस 10 मिलीलीटर स्टिकर का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और बीमारी होती है यानी कि पत्तों पर धब्बे और उनका सड़ना। ये बीमारी भी बहुत खतरनाक होती है। अगर ये बीमारी आपको दिखे तो मैनकोजेब 30 ग्राम या कार्बन डाजिम 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर 15 से 20 दिनों के फासले पर स्प्रे करना चाहिए या प्रोपीकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का स्प्रे किया जा सकता है और इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये तो हो गई उन रोगों की बात जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो आपकी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। वो कौन कौन से कीट हैं उनका नाम बताऊंगा और कैसे उनसे अपनी फसलों को बचाया जा सकता है उसका तरीका भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदान।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हानिकारक कीट की और उनकी रोकथाम की। एक मक्खी होती है जो कहलाती है पौधे की मक्खी। अगर इस मक्खी का हमला खेत पर दिखे तो इसे रोकने के लिए एसीफेट 75 SP 15 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और 10 दिनों के बाद दोबारा स्प्रे करना चाहिए। ये तो रही पौधे की मक्खी की बात, लेकिन इसके अलावा एक कीट और होता है जो कहलाता है शाख का कीट। अगर शाख के कीट का हमला दिखे तो इसे रोकने के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्विनिल फॉस 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का स्प्रे किया जा सकता है। एक और कीड़ा होता है जो कहलाता है रस चूसने वाले कीड़े। इन्हें रोकने के लिए नीम से बने कीटनाशक जैसे कि आजादी रेक्टिन 0.3 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों फसल की कटाई की, तो इस बात को भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो आपकी अदरक की फसल है ना, 8 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर फसल का प्रयोग मसाले बनाने के लिए करना हो तो 6 महीने बाद कटाई करें, और अगर नए उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग करना हो तो फसल की कटाई 8 महीने के बाद करें। और जब पत्ते पीले हो जाएं और पूरी तरह सूख जाएं तब कटाई के लिए सही समय माना जाता है। गांठों को उखाड़कर बाहर निकालें और 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ करें, फिर 2 से 3 दिनों के लिए छांव में सुखा दें। देखिए किसान भाइयों, आज अदरक के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। अदरक के लिए जो ज़रूरी बातें थीं वो सारी बातें आपको बता दी हैं। कटाई के बारे में भी आपको बताया था, लेकिन कटाई के बाद भी कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे शुष्क अदरक के लिए अदरक की गांठों का सिर्फ ऊपर वाला छिलका ही उतारें और 1 सप्ताह के लिए धूप में सुखाना चाहिए। शुष्क अदरक की पैदावार हरे अदरक की 16 से 25% होती है। अब बात आती है स्टोर करने की। ताज़ी और बीमारी रहित गांठें चुनें और कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 40 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से 30 मिनट के लिए उपचार करें। अब आप सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे भाई, इससे गांठों को गलने से बचाया जा सकता है। हाँ, फिर गांठों को छांव में सुखा लें, गांठों को सही आकार के गड्ढे में भरें और ढकने के समय हवा के लिए 2 से 3 छेद जरूर रखें। गड्ढे भरने से पहले उनमें 1 इंच मोटी रेत की परत भी बिछा दें। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इन बातों का आप किस तरह से प्रयोग करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा वक्त जाने का हो चला है, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: अरे कुछ

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ आपके पास। सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी फिटनेस की। और यहाँ पर एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और अब एक खास देखिए हम बात कर रहे हैं टॉपिक पर, और वो है डिमेंशिया। जी हाँ, देखिए उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसमें याददाश्त का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। बढ़ती उम्र में लोगों में डिमेंशिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिमेंशिया को भूलने की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन उनके लक्षण और कुछ ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, इसकी वजह से व्यक्ति जो है, जिसे ये डिमेंशिया की शुरुआती दौरे में वो आए हैं, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है उन पर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकती है उनकी ज़िंदगी। इसीलिए डिमेंशिया के लक्षणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान देना उस पर ज़रूरी है। और सबसे पहले तो बात आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए डिमेंशिया की हम बात करें, डिमेंशिया के कारण व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर बात करें सिंपल प्लस माइनस की, अगर

0: करना पड़ सकता है। अब जैसे कोई अगर साधारण रेसिपी है अगर उसे फॉलो की जा रही है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या जब वो बना रहे हैं क्या इसका इस्तेमाल जो है अगर कड़छी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं उनको याद रहेगा या फिर अगला स्टेप क्या, क्योंकि फोकस नहीं है। और साथ ही ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है क्योंकि हर एक चीज़ जो कि फोकस उनका ले रही है तो ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान अगर पैकिंग की जाती है तो वो भी करने में दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर व्यक्ति के रोजमर्रा के रूटीन जो है अस्त व्यस्त हो जाना, ये कुछ इस तरह से होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं अक्सर सामाजिक गतिविधियां से कटने लगते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि सोशली उन्हें कनेक्ट कर रही है उससे वो हटने लगते हैं, और इनमें बातचीत करना, दोस्तों और परिवारों से कम्युनिकेट करना, बात करना, उनके साथ टाइम बताना, उसमें रुचि जो है वो खत्म हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मन करता था पहले अब वो खत्म हो जाता है और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सामाजिक जो मेल जोल है वो उससे बचने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण है कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर भी ले जाते हैं और इससे मानसिक समस्याओं का भी संकेत आने लगता है डिमेंशिया में। चलिए डिमेंशिया से जुड़ी और भी कुछ बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।
1: सिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही है हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में, एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके पास आ चुकी हूँ। टॉपिक है डिमेंशिया का। जी हाँ, इसके लक्षणों को पहचानने की कुछ आपको बातें जो है वो बता रही हूँ। देखिए, अगर डिमेंशिया को पहचानना है तो कहीं ना कहीं आपको हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। अगर आपके किसी क्लोज वन को जो है अगर डिमेंशिया की शिकायत है, या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो कुछ आपको लक्षण बता रही हूँ जिससे आपको पता लग सकता है। भाषा से जुड़ी समस्या डिमेंशिया का एक अहम लक्षण है, यानी कि व्यक्ति को शब्दों को याद रखने में दिक्कत होती है, और जैसे वाक्य अगर कोई बना रहे, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको बनाने में भी परेशानी हो सकती है, या बातचीत के दौरान गैर जरूरी शब्द बोलने वो लग जाते हैं। कई बार कोई ऐसे होता है कि सही शब्द नहीं वो ढूंढ पाते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, तो ये भी डिमेंशिया का ही एक लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति अपने सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाता है। वो गैस चूल्हे को छोड़ देता है, खुला हुआ छोड़ देता है, या फिर अगर कहीं वो जा रहे हैं, किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सही से जो है नियमों को पालन नहीं करेंगे, उसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, या फिर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पाते हैं या किसी को बता नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी और सारी खतरनाक स्थितियों में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गंभीर हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो है फाइनेंशियली डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा पैसे खर्चने लग जाए, धोखाधड़ी के शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाए, बिल भरना भूल जाना, या फिर अगर किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो बिना सब्जी लिए सिर्फ पैसे दे के आ जाना, या कहीं भी अगर जा रहे हैं कोई सामान खरीद रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के आ जाना, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट को सिर्फ लेना और जानबूझ के, देखिए ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि पैसे दिए हैं, वो वहाँ पर कहने लगेंगे कि हमने पैसे दे दिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ये सारी परेशानियां जो है वो होने लगेगी, क्योंकि भूलने की समस्या जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसे आम भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसके जो देखिए बहुत सारे लक्षण हैं, सिर्फ और सिर्फ भूलना ही नहीं बल्कि फोकस करना या फिर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट में दिक्कत आना, ये सारे भी लक्षण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ और भी होंगी बहुत सारी बातें, अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम करते हैं योगा, मेडिटेशन की बहुत सारी बातें। आज क्या है कुछ खास बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पतिबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बातें बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, और आज एक बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग के जरिए ना केवल हमारी बॉडी जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बल्कि मजबूती भी जो है वो आती है, और इसी के साथ साथ मन को भी शांति मिलती है, और हम जो है वो स्ट्रेस फ्री यानी कि जो तनाव मुक्त हैं ये भी हो सकते हैं। हालांकि योग का पूरा फायदा उठाने के लिए केवल आसन करना ही काफी बिल्कुल भी नहीं है। योग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको योग करने से पहले ध्यान में रखनी है, यानी कि योगा की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और मंडे टू संडे ये हमारा टाइम है, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। फिलहाल सेगमेंट का टाइम हो गया है और सेगमेंट हमारा चल रहा है स्ट्रेच प्लीज। योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, योग करने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आपका पेट जो है वो खाली हो। खाना खाने के तुरंत बाद योग करने से बॉडी में भारीपन महसूस हो सकता है और पाचन में समस्या आ सकती है। योगासन करते टाइम आपकी बॉडी को जो है वो मोड़ना या घूमना या स्ट्रेच करना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और ऐसे में अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो कुछ असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए योग करने से कम 2 घंटे पहले अगर आप कुछ खा लें तो सही है, क्योंकि तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको भूख लग रही है तो योगा से पहले आप हल्के स्नैक्स ले सकते हैं, फल या जूस ले सकते हैं, लेकिन जो हैवी खाना है या कोई हैवी अगर लंच कर रहे हैं या सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो ना करें आप। इसी के साथ साथ वार्म अप जरूरी है। योगा आसन शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। वार्म अप आप करने से आपकी बॉडी को का जो तापमान है ये बढ़ता है और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इसमें चोट लगने का खतरा भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इससे होता यह है कि वार्म अप करने से आपकी जो बॉडी है योगासन के लिए तैयार हो जाती है और आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योगा करते टाइम आरामदायक और ढीले कपड़े जरूर आप पहने। टाइट कपड़े पहनने से बॉडी को सही तरीके से मोड़ना और स्ट्रेच करना जरा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आरामदायक कपड़े पहने। आप आराम से हिले डुल से सकते हैं और योगासन को आप सही तरीके से कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि जब हम काफी भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। सूती कपड़े योगा के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं और शरीर में हवा लगने में काफी मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको जो है ये सूती कपड़े जरूर पहनने हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। आज बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी, और आपको बता रही हूँ हमारे सेगमेंट स्ट्रेच फेज में योगा के बारे में। देखिए, योग जब भी आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को, आपके मन को बड़ी शांति मिलती है और फायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन योग करने से पहले कुछ बातें जो है उनका ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि आपको हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं ताकि पसीना अगर आए तो वो सोख जाए, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शुरुआत करनी जरूरी है। यानी कि योग करते टाइम धीरे धीरे शुरुआत करना जो है ये सही माना जाता है। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो देखिए, ये तो ज़रूरी है कि आप आराम से अपने जो स्पीड है उसका आराम से लेकर चले। ये बहुत टाइम बाद अगर आप कर रहे हैं तब भी इस मामले में भी आपको आराम से ही शुरुआत करनी है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप ज़बरदस्ती अगर कोई योगा आसन जो है आपसे नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा वो कठिन आसन है तो आप उसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे इंजरी आपको हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आसान आसनों से आपको शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे जो है मतलब आप बेसिक टू एडवांस लेकर के जाइए कि आपको बेसिक पहले आसन करने हैं, धीरे धीरे जो बहुत ही हल्के आसन हैं या फिर आसानी से जो हो जाते हैं वो आसन करने हैं, और उसके बाद आपको जो है एडवांस होना है। यानी कि कुछ ऐसे आसन जो कि मुश्किल हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। योग करते टाइम आपकी सीमाओं का आपको ख्याल रखना है, जबरदस्ती आपको अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। योग करने का मकसद बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना है। इसीलिए योग करने से पहले आपको खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, आरामदायक और हल्के कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं, वार्म अप जरूर करना है, और खाली पेट योगा जो है वो करना है आपको, भरे पेट।

0: के लिए
1: को बढ़ने और कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कहानी भी है। हर लिसनर्स का फीडबैक, हर गेस्ट की बात और हर कैंपेन का अनुभव हमें और भी ज्यादा बेहतर बनाता गया। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे उन कामों की और उन कैंपेन की जिन्होंने समाज में सचमुच बदलाव लाने का काम किया है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का का फाउंडेशन डे स्पेशल की प्रोग्राम चल रहा है और अब तक हमने रेडियो मानव रचना की पहचान और उसकी 17 सालों की जर्नी के बारे में बात की।

लेकिन किसी भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की पहचान, जो उसकी असली पहचान है, उसके इम्पैक्ट से होती है। तो चलिए जानते हैं कि रेडियो मानव रचना ने समाज में किस तरह का अपना योगदान दिया है। दोस्तों, रेडियो मानव रचना का उद्देश्य हमेशा सिर्फ प्रोग्राम्स को बनाना ही नहीं रहा है, बल्कि हमारा मकसद रहा है कि लोगों तक जरूरी जानकारी भी पहुंचे और उन्हें जागरूक भी बनाए। इसी सोच के साथ पिछले 17 सालों में कई ऐसे कैंपेन्स और इनिशिएटिव चलाए गए हैं जिन्होंने समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला है। हेल्थ अवेयरनेस को ही ले लीजिए, डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर कई ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डायबिटीज, कैंसर अवेयरनेस, विमेन हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी गई। आज भी हमारे साथ हेल्थ बेस्ड शोज लिसनर्स के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एजुकेशन भी हमारे फोकस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। करियर गाइडेंस हो, स्किल डेवलपमेंट हो और रीडिंग अवेयरनेस जैसे विषयों पर भी कई प्रोग्राम्स और कैंपेन भी चलाए गए हैं। साथ ही हाल ही में नेशनल रीडिंग कैंपेन के तहत किताबों से मुलाकात, ज्ञान की सौगात जैसे प्रयासों ने लोगों को पढ़ने की आदत के प्रति प्रेरित किया है। विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी रेडियो मानव रचना ने महिलाओं की सफलता की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिला प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि उनकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, वाटर कन्वर्जेशन और सोशल अवेयरनेस से जुड़े कई प्रोग्राम्स भी लगातार आपके लिए प्रसारित किए गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एनजीओस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के माध्यम से लिसनर्स को सही और उपयोगी जानकारी भी मिलती रही है। सबसे खास बात तो ये है कि रेडियो मानव रचना ने लोकल टैलेंट को भी हमेशा प्रोत्साहन दिया है। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को अपनी बात रखने का और अपना हुनर दिखाने का भी मौका दिया गया है। इसी वजह से ये रेडियो स्टेशन सिर्फ एक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक मजबूत माध्यम भी बन गया है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे रेडियो मानव रचना के उन गर्व के पलों की जिन्होंने स्टेशन का नाम देश और एशिया स्टार तक पहुंचाया। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और प्रोग्राम लेकर आ गई हूं ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम रेडियो मानव रचना 107.8 FM के 17 साल पूरे होने और 18वीं में प्रवेश करने की खुशी में मना रहे हैं फाउंडेशन डे स्पेशल। ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई हूं, कर रहे हैं आज हम बहुत सारी बातें और आज रेडियो मानव रचना के बारे में भी हम बहुत सारी बातें जान भी रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन पलों की जिन पर लिसनर्स हर आरजे और पूरी रेडियो मानव रचना की टीम को गर्व है। दोस्तों, हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, लगन और मजबूत टीम का साथ होता है। रेडियो मानव रचना की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड हमेशा हमारे लिसनर्स का प्यार और उनका भरोसा रहा है, लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे माइलस्टोन भी आए हैं जिन्होंने हमारा नाम देश ही नहीं बल्कि एशिया तक पहुंचाया। सबसे यादगार उपलब्धियां में से एक थी 150 घंटे 1 मिनट और 20 सेकंड का नॉनस्टॉप लाइव रेडियो शो ऑन सस्टेनेबिलिटी। इस अनोखे मैराथन ब्रॉडकास्ट में हमारे 5 रेडियो जॉकी ने लगातार लाइव प्रोग्राम्स को होस्ट किया। इस दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs पर देश के कई एक्सपर्ट्स ने अपने विचार को साझा किया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं थी बल्कि एनवायरमेंट और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक जन आंदोलन था। इसी उपलब्धि के लिए रेडियो मानव रचना को इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया था। इस खास मौके पर रेडियो मानव रचना ने अपने इंटरनेट रेडियो को भी लॉन्च किया जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए लिसनर्स हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकता है, उसे सुन सकता है। आज टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाते हुए हम FM के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर मेडल तक ही सीमित नहीं होते हैं। हमारे लिए हर सक्सेसफुल अवेयरनेस कैंपेन, हर इम्पैक्टफुल इंटरव्यू, हर सोशल इनिशिएटिव और हर वो लिसनर जिसने हमारे किसी प्रोग्राम से कुछ नया सीखा है एक अलग ही अचीवमेंट है। जब कोई स्टूडेंट अपनी पहली रेडियो रिकॉर्डिंग करता है, जब कोई डॉक्टर हमारे प्लेटफॉर्म से हेल्थ अवेयरनेस फैलाता है और जब कोई पुलिस ऑफिसर साइबर सेफ्टी का संदेश देता है, तब हमें लगता है कि रेडियो मानव रचना अपनी असली उद्देश्य को पूरा कर रहा है। 17 सालों का ये सफर हमें ये सिखाता है कि जब नीयत समाज की भलाई के लिए हो और कम्युनिटी का साथ हो, तब हर सपना सच हो सकता है। चलिए, वक्त हो गया है अब अगले सेगमेंट पर जाने का, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज ये रेडियो मानव रचना का फाउंडेशन डे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी हां, 10 जुलाई को हमने अपने 17 साल पूरे कर लिए हैं और अब हम 18वें में प्रवेश कर रहे हैं। और आज मैं आपसे इसके बारे में बात कर रही हूं क्योंकि हमारा शो संडे आप सुन पाते हैं, संडे लेकर आती हूं मैं संडे शाम 4 से 5, जिसमें हम करते हैं इस ट्रेंडिंग तड़का में ट्रेंड की बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने रेडियो मानव रचना की जर्नी को जाना, उसके इम्पैक्ट को और उसके अचीवमेंट्स के बारे में भी बात की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रेडियो पर जो आवाज़ आप तक पहुँचती है उसके पीछे कितनी मेहनत और कितने लोगों का योगदान होता है? जब हम रेडियो सुनते हैं तो लगता है कि आरजे बस माइक के सामने बैठकर बात करता रहता है, लेकिन असल में एक प्रोग्राम के ऑन एयर होने से पहले बहुत सारी प्लानिंग और टीम वर्क होती है। एक अच्छे शो की शुरुआत होती है रिसर्च से। जी हाँ, टीम टॉपिक चुनती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करती है और फिर लिसनर्स के लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल कॉन्टेंट तैयार करती है। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट राइटिंग का काम। हर शो को ऐसा बनाया जाता है कि लिसनर्स को जानकारी भी मिले और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, टेक्निकल चेक्स का प्रोसेस भी शुरू होता है। साउंड क्वालिटी से लेकर टाइमिंग तक हर छोटी बात का ध्यान रखा जाता है आप तक कोई भी प्रोग्राम पहुंचाने से पहले। रेडियो मानव रचना की खास बात तो ये है कि यहाँ सिर्फ स्टूडियो के अंदर ही काम नहीं होता है, बल्कि हमारी टीम कम्युनिटी के बीच भी जाकर काम करती है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एनजीओस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम और स्पेशल ब्रॉडकास्ट भी करती है। कई बार आउटडोर ब्रॉडकास्ट के जरिए हम सीधे लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनकी आवाज़ को दुनिया तक लेकर जाते हैं। आज के समय में रेडियो का काम सिर्फ एफएम तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब कंटेंट और इंटरनेट रेडियो भी इस सफर का हिस्सा बन चुका है। इसलिए आज का रेडियो प्रोफेशनल एक साथ कंटेंट क्रिएटर, कम्युनिकेटर और स्टोरी टेलर की भूमिका भी निभाता है। और सबसे खास बात, रेडियो मानव रचना ने सालों से स्टूडेंट को सिखाने और अपनी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म दिया है। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ ट्रेनिंग ली है, माइक संभाला है, कंटेंट बनाना सीखा है और मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, जब भी आप रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो याद रखिएगा कि उसके पीछे एक पूरी टीम का जुनून, उनकी मेहनत और उनकी पूरी समर्पण होती है। शायद इसी वजह से रेडियो आज भी दिलों को जोड़ने का सबसे खूबसूरत माध्यम बन चुका है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ट्रेंडिंग तड़का। ट्रेंडिंग तड़का का ये बहुत ही खास फाउंडेशन डे स्पेशल एपिसोड आज आप सुन रहे हैं। आज के इस खास सफर में हमें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम की कहानी को शुरुआत से लेकर आज तक महसूस किया है। हमने जाना कि कम्युनिटी रेडियो होता क्या है, हमारी जर्नी कैसी रही, समाज पर हमारा क्या प्रभाव रहा और ऐसे कुछ यादगार अचीवमेंट्स ने हमें देश और एशिया स्टार तक पहुंचा दिया। और अब वक्त है आगे देखने का।

17 साल पूरे करना एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन रेडियो मानव रचना के लिए किसी मंजिल का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। और आज हम गर्व के साथ 18वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, और इस नए साल के साथ हमारे सपने और जिम्मेदारियां दोनों और भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। आने वाले समय में भी रेडियो मानव रचना का उद्देश्य वही रहेगा, कम्युनिटी को जोड़ना, जागरूक बनाना और आवाज को एक मंच देना। हम और भी ज्यादा अधिक अवेयरनेस कैंपेन लेकर आएंगे, एजुकेशनल इनिशिएटिव चलाएंगे, हेल्थ प्रोग्राम्स और यूथ सेंट्रिक कंटेंट भी लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि हर लिसनर्स को लगे कि ये स्टेशन उनका अपना स्टेशन है, यहाँ उनकी बात सुनी जाती है और उनके विचारों को महत्वता भी दी जाती है। दोस्तों, रेडियो की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उसके लिसनर्स में होती है। आपका प्यार, आपका फीडबैक, आपका सुझाव और आपका भरोसा ही हमें हर दिन बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर आज रेडियो मानव रचना 17 सालों का सफर तय कर पाया है तो उसमें आप सबका बराबर का योगदान है। मैं इस मौके पर रेडियो मानव रचना की पूरी टीम, मैनेजमेंट, वॉलंटियर्स, फॉर्मर और हमारे आरजेस, प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल इंटर्न, गेस्ट और सबसे खास हमारे लिसनर्स को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबने मिलकर इस स्टेशन को सिर्फ एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ही नहीं बल्कि एक परिवार बनाया है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले साल और भी ज्यादा यादगार, प्रेरणादायक और सफल होंगे, हम इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। 17 साल के इस खूबसूरत सफर और 18वें साल की एक नई शुरुआत के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और ले रही हूं आपसे इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जो विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे हैं, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है जब आप और हम मिलकर इसमें पुलिस का साथ देते हैं। हम कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार अपनी कोशिशों से पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे प्यार से बात नहीं करते, पर क्या आपने देखा है कि वो 12-14 घंटे किस तरीकों से सड़कों पर खड़े रहकर बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरीके का कोई झगड़े का मामला, हर जगह पुलिस पहुंचती है और कोशिश करती है कि चीजों को वहीं पर सॉर्ट किया जाए। किसी की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, अक्सर पुलिस ही आती है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परेशानियां होती हैं उनसे, तो आप तो इधर उधर मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर पर से मैं ट्रैफिक की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक तो हम सब अपने सामने 2400 घंटे देखते हैं। हम सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं के लिए भी निकलें, हमें ट्रैफिक दिखता ही दिखता है। और उन ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी निभाती है ट्रैफिक पुलिस। कैसे? ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो या फिर बारिश हो रही हो, ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा सड़कों पर दिख जाएगी। बारिश में भी घुटनों घुटनों पानी भरा हो और आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो या बारिश में फंस गए हो, तो पुलिस वाला ही आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल कर लाता है। जी हाँ, लेकिन इस बढ़ते हुए एक्सीडेंट और ट्रैफिक पे जो मैनेज हो रही है आजकल, या फिर हम कहें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वायलेट करने लगे हैं लोग, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठा रही है, खासतौर पर से फरीदाबाद पुलिस, इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयवीर सिंह जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी। तो जयवीर जी, आपने हाल ही में ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के साथ निभानी शुरू की है, उठाई है।
3: जी मैम।
2: तो मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी।
3: जी मैम।
2: मैं सवाल वो पूछूंगी जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं।
3: जी।
2: हम फरीदाबाद की बात करते हैं, और कुछ साल पहले फरीदाबाद शहर में लोगों को सीट बेल्ट लगाने में भी दिक्कत होती थी।
3: जी मैम।
2: यहाँ पर अक्सर वो लोग देखे जाते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच के सीट बेल्ट लगाते थे।
3: जी मैम।
2: उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाते थे।
3: जी मैम।
2: अगर बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं तो भी हेलमेट दिल्ली बॉर्डर के पास ही लगाया जाता था।
3: यस मैम।
2: लेकिन अब ये ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़कें एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
3: जी मैम।
2: जहाँ पर लगातार हाईवे पर एक के बाद एक 7 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जहां पर सूरजकुंड रोड इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि आप गुड़गांव जाएं या फिर दिल्ली जाएं, आपको ट्रैफिक तेज रफ्तार से चलता हुआ मिलेगा।
3: जी मैम।
2: तो ऐसी परिस्थिति में जयवीर जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हम जैसे नॉर्मल नागरिक करते हैं और ट्रैफिक को खराब कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं?
3: जी मैम। ड्राइविंग करता है तो आदमी का आजकल स्ट्रेस में बहुत रहता है या फोन पे बिजी रहता है।
2: जी।
3: वो अपने फोन पे बिजी होने के कारण सीट बेल्ट भी लगानी ध्यान नहीं रहती उनको। पहली गलती ये करता है।
2: जी।
3: और फिर वो सीट बेल्ट भी लगाता है, फिर ध्यान फोन पे, जैसे फोन पे चला जाता है, वहाँ पकड़ से फोन आ गया या दोस्त आ गया, जैसे ऑफिस जा रहा है वहाँ से आ गया, तो ये चीज, इसके लिए हम उसको रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का चलान करते हैं।
2: जी जी। यानी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करते हैं।
3: और जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था उसका चलान करते हैं हम, और स्पीड में है तो उसका चलान करते हैं। और हमें ये लगता है भाई नशे में लगता है तो उसको चेक करके उसको, अगर उसका नशे का संबंधित है वो चालान भी करते हैं हम।
2: जी जी जयवीर जी, नशे की आपने बात करी है तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ पर जो ठेके खुले हुए हैं जिनको भाषा में सिंपल भाषा में कहते हैं या फिर अंग्रेजी में आप वाइन शॉप्स भी कह सकते हैं, दूर से जगमगाती हुई दिख जाती है, ऐसा लगता है कोई फाइव स्टार होटल खुला हुआ है और वहाँ पर धड़ल्ले से आपको गाड़ियां दिख जाएंगी खड़ी।
3: जी मैम,
2: क्या जयवीर जी आपको लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है शहर में अपराध और ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स बढ़ने का?
3: जी मैम।
2: तो पुलिस इसको रोकने के लिए क्या करे?
3: पुलिस जैसे मैम ये रोड पे आते हैं तो हम जैसे नाका लगाते हैं।
2: जी जी,
3: जैसे जिला पुलिस के द्वारा, जैसे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा सप्ताह में एक दिन या दो दिन जैसी भी आवश्यकता है तो जैसे CIA है, जिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मिलके हम जैसे पूरी नाइट को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक नाका लगाते हैं
2: जब मेन टाइम होता है लोगों के पी के जाने का।
3: उस टाइम हम उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, जो जो भी ड्रिंक करे मिलता है तो हम उसका उनका भारी से भारी चालान करते हैं।
2: कितना चालान होता है सर इसमें? क्या गाड़ी इंपाउंड करने का भी कुछ सिस्टम है या सिर्फ चालान करके?
3: चालान ही का सिस्टम है,
2: चालान का ही सिस्टम। सो लोग डरते हैं इससे क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार चालान 10,000-15,000 दे दिया उसके बाद फिर से वही चीज चल रही है।
3: वैसे ये डरते नहीं मैम, आजकल फिर एक ये हो गया मैम जैसे चालान कर देते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं तो ये बात देखते हैं कोर्ट लगेगी।
2: हाँ
3: तो कोर्ट में जैसे माफ हो जाता है,
2: कोर्ट में माफ हो जाता है, चलिए ठीक है आप आधा दे दीजिए।
3: हाँ आधा दे दीजिए।
2: जी जी जी।
3: हाँ इसलिए फिर भाई आजकल क्या है जैसे माँ बाप की कमाई यूज करते हो ना कि अपनी उसमें दुख महसूस होता है तो ये माँ बाप जैसे बाप दादा है उनकी कमाई के लिए थोड़ा तो ही नहीं देते अपनी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपराध भी बढ़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, माता पिता ने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, पैसे काफी दे दिए हैं, फोन अच्छे हैं उनके पास, तो उनको ये अफसोस नहीं होता कि हमारी जेब से 10-15,000 रुपए चलाएं।
3: ये मायने नहीं रखते
2: जी, ये मायने नहीं
3: रखते, उनके लिए मायने नहीं रखते।
2: जी जी,
3: उनके जो जैसे कई बार पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स सॉरी फील करते हैं, बच्चे सॉरी फील नहीं करते, उनको कहते हैं आप चालान करिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को दुख होता है, बच्चों को दुख नहीं होता। सो बहुत सारी बातें दोस्तों सुरक्षा संवाद में चलती रहेंगे, हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं फरीदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078, या फिर आप ये सारी बातचीत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग रील्स के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रेडियो मानव रचना और फेसबुक पर भी, और इसके साथ साथ हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगी, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको मिल जाएगी सारी बातचीत ट्रैफिक इंचार्ज जयवीर सिंह के साथ हुई। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ और आपसे कुछ पहेलियां पूछ रही हूँ आज ना। आज की हमारी पहली पहेली, क्योंकि अभी सेगमेंट जो है वो चल रहा है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आज की पहेली बड़ी आसान सी जिसका जवाब आपको देना है। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। इसका हिंट है कि दादी नानी के नुस्खा है जो है ये काफी पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो इसका जवाब जो दिया है हमारे पास, हमारे लिस्नर बहुत ही तेजी से जवाब जो है देते हैं, जिनका नाम है अल्तमश। और अल्तमश ने जवाब जो है वो दिया है। अल्तमश जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। और भी बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं और यहाँ पर मतलब जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि इतनी फटाफट जवाब आता है

0: मैं हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम सुरक्षा संवाद एक ऐसा प्रोग्राम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस सीरीज में बहुत सारी बातें हम करते हैं पुलिस अधिकारियों से मिलकर, कभी ट्रैफिक के बारे में, कभी महिला सुरक्षा के बारे में, कभी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो कभी किसी और मुद्दे के बारे में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वो है ट्रैफिक यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद श्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ जारी हैं, आइए जानते हैं और भी कुछ खास पहलू। तो जयवीर जी, जब हम बच्चों और पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं अंडर एज ड्राइविंग की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल हैं, महंगी महंगी फीस है और इन स्कूलों के बाहर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे, स्कूल वाले प्रशासन मना करता है कि बच्चे स्कूटी या बाइक ना लाएं, लेकिन अब बच्चे स्कूटी बाइक से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र में गाड़ियां भी ले आते हैं, खासतौर पर से एग्जाम वाले दिन कि आज तो 3 घंटे में बाहर निकलेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जयवीर जी क्या किया जा रहा है?
1: ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा था, इनको मैम अपना इनका जैसे लाइसेंस नहीं है, अतः इन पर फाइन करते हैं। माँ बाप को जो पेरेंट्स को हो उनको भी बुला गए, कभी कभी समझाते भी हैं और चलान भी करते हैं, जो उसके बाद भी बावजूद नहीं जैसे बार बार चलान जाते हैं तो गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेते हैं और माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है,
0: FIR वगैरह दर्ज हो जाती है। FIR
1: माँ बाप का, इसमें दोष माँ बाप का ज्यादा माना जाता है, ना कि बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा नाबालिग रहता है, तो उसकी बजाय पेरेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई होती
0: यानी
1: है।
0: आपने हाँ, गाड़ी हाँ, दी क्यों बच्चे?
1: हाँ, बच्चे को क्यों, उसमें गलती पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को थोड़ा समझाए गाइड
0: जी,
1: तब जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए।
0: जी जी, तो इन बच्चों को सर आपने देखा है कि इन बच्चों को डर लगता है पुलिस से या नहीं लगता?
1: नहीं, आजकल क्या है मैम, जो पहले पिटाई वाला था ना, स्कूल का लाले या पुलिस का लाले, वो तो रहा नहीं, नियम अनुसार जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं
0: जी,
1: कार्रवाई में वो इतना डरते नहीं
0: हाँ। मतलब उनको लगता है कि चलो पेरेंट्स पे ये चीज हो रही है, हम तो बचे हुए
1: हैं। हाँ, पेरेंट्स से ही परेशान होते हैं वो
0: वैसे।
1: हाँ,
0: तो देखिए दोस्तों, बहुत ही एक विडंबना है आज के टाइम में, आयरनी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और अगर बच्चे पे कोई, बच्चे की गलती से वो फंसते भी हैं तो पेरेंट्स ही फंसते हैं। और इसमें भी बच्चे को कई बार अफसोस नहीं होता है, उसे ये ग्लानी नहीं होती है, उसे ये तकलीफ नहीं होती कि उसके पेरेंट्स ही इस चीज़ में फंस रहे हैं, वो नहीं फंस रहा है। सो ये जिम्मेदारी जो है ये बच्चे की भी बनती है, सिर्फ पेरेंट्स की या स्कूल की नहीं बनती है कि आप गाड़ी ना दें। बच्चे को इस तरीके से समझाएं और मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस मामले में जरूरी है, थोड़ी सी तो देखिए कठोरता चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे तब तक चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कई केसेस में नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो जयवीर जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा शहर को और ज्यादा बेहतर बनाने की। हेलमेट और सीट बेल्ट
1: जी मैम
0: पहनना कितना जरूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझाया, घर वालों ने भी कई बार समझाया, पर लोग समझते नहीं है।
1: ये बहुत जरूरी है मैम, हेलमेट पहनना, जैसे टू व्हीलर पर चलता है वह उसका पैर भी फिसल जाता है या कोई और कोई ओवरटेक कर देते हैं उसको, तो चोट लगनी ही है उसको मैम, तो हेलमेट तो बहुत जरूरी है। उसमें जैसे हमारा सिर बच जाता है तो जान बच जाती है, अगर जो हेलमेट नहीं है तो उसमें जान भी जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है।
0: जयवीर जी, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं स्कूटर के या बाइक के आगे बैठे होते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए कोई हेलमेट नहीं होता है और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है? एक पुलिस अधिकारी हैं आप और ट्रैफिक इंचार्ज हैं, क्या सोल्यूशन है इसका?
1: जी मैम, बच्चे को भी पीछे बैठा जैसे उस पर अलाउड ही 2 आदमी अलाउड है, ये अनऑथराइज है भाई, जैसे 3-3, 4-4 जैसे 3 राइडिंग का हम चलान करते हैं।
0: अच्छा, मतलब चलान हाँ, कर सकते हाँ, हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में दो बच्चे बैठे हैं।
1: हाँ, 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: ओके,
1: अगर तो 3 बैठे हैं तो 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: पर फिर वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आप सोच के कई बार छोड़ भी देते होंगे।
1: हाँ, वैसे उसमें थोड़ा
0: समझा के। तो इसमें क्या बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं मार्केट में?
1: बिल्कुल मिलते हैं,
0: मिलते हैं बच्चों के हेलमेट। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ के बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो उनका हेलमेट जरूर लेंगे।
1: 14-15 साल का बच्चा है उसका तो हेलमेट मिल जाता है।
0: जी जी
1: हाँ हाँ,
0: तो वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत सेफ है, ना गर्मी लगेगी और ना ही कोई एक्सीडेंट होने का।

0: खतरा होगा।
1: आजकल तो ये जैसे भाई ऐप आ रहे हैं, ओला है, उबर है, टैक्सी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ है ना
0: जी,
1: दो से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने वो फोर व्हीलर व्हीकल को ज्यादा।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक बाइक पे पांच जने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है।
1: हाँ, ये बहुत खतरनाक है
0: जी। जेबी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज स्पीड होती है कि आप उनको देख के डर जाते हैं, आपके साथ से निकलते हैं, और स्कूटी वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर वाले, वो घबरा जाते हैं और बहुत बार वो गिर भी जाते हैं इस चक्कर में कि कोई गाड़ी वाला इतनी तेज निकला है। और ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट लोग समझते नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है, जैसे 50 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो इंटरसेप्टर कैसे पकड़ता है?
1: वो जैसे हम ये मोबाइल ये वाकी टाकी सेट होते हैं मैम
0: जी,
1: उसी टाइम हम कॉल कर देते हैं भाई, जो भी जैसे भाई यहाँ से अंखीर चौक है या बाटा चौक है, जहाँ भी जाओ कंट्रोल में मैसेज कर देते हैं भाई इस नंबर की गाड़ी है, बाइक है, अगर इसको अपना हाँ पकड़ लो, इसको इम्पाउंड कर लो। तो जैसे सभी जो नाके हैं, जेडो हैं, एरिया सभी सक्रिय हो जाता है, उस पर जहाँ भी जिधर कभी आते हैं वहीं वो कंट्रोल कर देते हैं
0: जी। जी, ये जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये इनका काम ओवर स्पीडिंग पकड़ना होता है।
1: ओवर स्पीडिंग है, जैसे जाम लग रहा है मैम, वहाँ पे भी जैसे भाई एक मुलाजिम की ड्यूटी है या दो की है, वो उनसे काम नहीं चलता, व्हीकल से तरफ जाता है तो वो गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं, जो भी नजदीक है ना उसको हम मैसेज कर देते हैं, फोन भी कर देते हैं और वायरलेस साइट पर भी मैसेज दे देते हैं।
0: तो इंटरसेप्टर जो है वैसे ओवर स्पीडिंग पकड़ने के लिए उसमें कैमरास वगैरह लगे होते हैं।
1: हाँ, उसमें जैसे अगर जो उसका कंट्रोल में आता है ठीक नहीं, तो उससे वीटी भी कर देते हैं भाई, अगला जो अगला ट्रैफिक पॉइंट है वो जैसे हम बैरियर लगाते हैं, बैरियर लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ,
0: तो ये गाड़ी जो है इसे पकड़ना है।
1: हाँ हाँ, इसे पकड़ना है
0: तो ये नजर में रखने के लिए।
1: हाँ, कंट्रोल से वीटी हो जाती है सभी के पास भाई, इस नंबर की गाड़ी है तो ये राउंड अप करनी है
0: जी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप वीआईपी मूवमेंट में भी काफी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के भी निकल जाते हैं आज के टाइम में
1: जी मैम,
0: सिर्फ बचने के लिए
1: जी मैम,
0: वो आगे जाके पकड़े जाते हैं, तो उनके साथ सुलूक क्या होता है?
1: सुलूक तो मैम जो अपना नियम अनुसार कार्रवाई है वही होती है
0: जी, जी।
1: हाँ, उसके FIR होती है और जो चलान है ज्यादा से ज्यादा होता है उसका
0: जी जी।
1: हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है पूरी,
0: मतलब FIR वगैरह होगी, फिर उसके बाद जो है वो केस चलेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ठीक है, ये बात तो होगी जी ओवर स्पीडिंग की, लेकिन आगे बात करते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को
1: जी मैम,
0: सर क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मैम, जैसे भाई अपना टू व्हीलर पर चला है तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए, अगर तो 18 साल से ऊपर है तो अपना लाइसेंस बनवाओ, DL बनवाओ, उसके बाद ही व्हीकल चलाना चाहिए रोड पे
0: जी जी जी।
1: और अपना जैसे फोर व्हीलर पर है तो सीट बेल्ट लगाओ और आउट स्पीड में नहीं चलाओ,
0: जो स्पीड है
1: हाँ हाँ, रॉन्ग साइड में मत चलाओ।
0: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 8010781078 पर पूछ सकते हैं। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: तो दोस्तों बातें चल रही हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जयबीर सिंह जी जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं और NIT एरिया की पूरी देखरेख करते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में आइए जानते हैं कुछ और ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई बातें और कैसे एक आम इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी और उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। सर अब मैं चालान की बात पूछना चाहूंगी आपसे। 2025-26 में बहुत चालान कटे हैं, बहुत ज्यादा। तो कुछ आंकड़ा मुझे देंगे, फरीदाबाद में कितने चालान कटे हैं पिछले 3-4 महीनों में?
1: हाँ जी मैम, ये मैम जैसे टोटल ऑफेंस चालान है ये जनवरी महीने में 57,866 है।
0: 57,000 चालान, ये सिर्फ फरीदाबाद का आंकड़ा?
1: हाँ ये ऑफेंस इन चालान है, जो टोटल चालान है वह 52,690 है मैम
0: जी।
1: और ये फरवरी महीने के जो टोटल ऑफेंस इन चालान है ये 45,200 है।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो टोटल चालान है ये 40,807 है।
0: मतलब आपने एक महीने में 57,000 के आसपास, जनवरी की बात मैं करूं जिसमें हाँ, न्यू ईयर भी आता है हाँ और सिक्योरिटी भी बहुत होती है 26 जनवरी को लेके,
1: जी मैम,
0: उस दौरान आपने 57,000 चालान जो है वो करे,
1: जी मैम।
0: तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सिर्फ फरीदाबाद के।
1: हाँ, फरीदाबाद ही है मैम।
0: तो आप दोस्तों सुन रहे हैं कि 57,000 चालान अगर एक शहर में और आपके अपने शहर में एक महीने में चालान हो रहे हैं तो कितने लोग ट्रैफिक के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब जाके ये चालान होते हैं।
1: टोटल तो मैम ये 32,99,400 है मैम
0: कैश जो कलेक्ट किया आपने।
1: हाँ, जो टोटल कैश है मैम
0: जी,
1: जो इतने रुपए के
0: जी, यानी टोटल अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करूं तो 32 लाख के आसपास पैसा जो है वो चालान जो है वो किए गए, मतलब
1: 32,99,400
0: यानी आप 33 लाख के आसपास मान लें कि इतना पैसा का चालान जो है, इतने रुपए का चालान जो है वो किया गया है। अब मैं आपसे जयबीर जी एक और चीज पूछना चाहूंगी, चालान को लेकर लोगों में इस टाइम इतना डर नहीं है?
1: जी मैम,
0: डर इसलिए भी नहीं है जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि 4-5 चालान हो गए, 6 चालान हो गए, जब गाड़ी बेचेंगे तब उसको माफ करवा लें। ये ज्यादातर लड़कों के दिमाग में, मैं कहूँ यंग लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है।
1: जी मैम,
0: सो इसको कैसे रोका जाए या चालान की प्रक्रिया क्या है आज की तारीख में? अगर सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका और चालान बनाया,
1: जी मैम,
0: तो पहली बात तो चालान रेड लाइट जंपिंग का है कितना? 5,000 है।
1: हाँ, 5,000 मैम।
0: 5,000 चालान है। अब 5,000 चालान को मैं वहाँ कैसे पे करूँ? अगर मेरे पास 5,000 नहीं है तो मैं कैसे पे कर सकती हूँ?
1: वो मैम अब तो जैसे या तो चालान ब्रांच है हमारी, जैसे अपना DCP ऑफिस है ना सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है उसमें चालान ब्रांच है
0: जी,
1: वहाँ जाके भर सकते हैं आप।
0: अच्छा, वहाँ जाकर मैं चालान भर सकती हूँ
1: जी मैम।
0: ओके,
1: और अब ये जैसे QR है ये कम काम कर रहा है, हमारी जो मशीन है ना वहाँ भी जमा करा सकते, जो हम मौके पर जो चालान करते हैं इंटरनेट कम चलने की वजह से कई बार काम कम करता है, उसकी बजाय चालान ब्रांच में जो ट्रैफिक पुलिस है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: और जो मौके पर भी जमा कराना चाहो तो मौके पर भी हो जाता है, कई बार इंटरनेट की वजह से सर्वर
0: रुक जाता,
1: हाँ,
0: सर्वर
1: रुक जाता है। और बाकी जैसे कोर्ट की में जाना चाहता है तो कोर्ट में भी, और जैसे कोर्ट लगती है स्पेशल
0: जी जी
1: 2-3 महीने में
0: तो उसका नोटिस आता है उस व्यक्ति के पास कि आपके चालान बचे हैं वो बकाया
1: नहीं, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अखबार में भी निकाल देते हैं भाई इस तारीख की
0: अदालत लग रही है तो आप वहाँ पहुँचे।
1: हाँ, अपना जो चालान भरना चाहो तो भर सकता है अपना, वहाँ जज साहब के सम्मुख पेश हो गए तो जो भी उसकी वे गलती है जो भी वो सॉरी फील करता है तो उसमें कुछ उसके उनके माफ कर देते हैं
0: जी जी जी। यानी अगर आपके चालान ऑलरेडी कट चुके हैं, आपको फाइन जो है वो लगाया गया है और आपने अभी तक वो फाइन नहीं भरा है तो आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं किसी वजह से तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अखबार में ऐड देखते रहिए, अगर कोई ऐसी ट्रैफिक की अदालत का जहां पर चालान जो है वो आपको सबमिट कराने हैं, फाइन जमा करना है, इसका कोई ऐड आपको दिखता है लोकल अखबार में तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएं और वहां पर जाकर अपने चालान भरें। शायद यही वजह है जयबीर जी के लोगों में डर थोड़ा कम हो गया है कि चालान का अमाउंट जो है वो 5,000 से 2,500 हो जाएगा।
1: जी जी मैम
0: जी, ये दिक्कत है। तो लोगों में बेसिकली मुझे लगता है कि डर कम हो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से भी हल्के में ले लेते हैं
1: जी मैम
0: ट्रैफिक रूल्स को
1: जी मैम।
0: पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने एरिया को, क्योंकि आप एनआईटी के ट्रैफिक इंचार्ज है और एनआईटी में वो सारी सड़कें आती हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक होता है। नीलम फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, बाटा फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, ओल्ड कांडर पास भी एनआईटी में आता है, और ऐसी परिस्थिति में कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है आपका?
1: इस समय हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुलाजिम लगा के और गाड़ी को रोक रोक के, जैसे बत्ती पे है तो वो रोक रोक के चलाते हैं, जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं से नहीं घुसे और नियम अनुसार ही चले
0: जी। और जयवीर जी, अगर कोई व्यक्ति अपने सामने कोई अपराध होते हुए देख रहा है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, जैसे मैं आज आपको आज का अपना किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं सुबह ऑफिस आ रही थी सूरज कुंड रोड से और अचानक से अनखीर वाले गोल चक्कर पे आगे एक ऑटो वाला अचानक से आ गया, तो सबकी गाड़ियां रुक गईं।
1: जी मैम।
0: लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल एक वैगनआर थी।
1: जी मैम।
0: और उस वैगनआर वाले ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया कि मुझे निकलना है, रास्ता दो।
1: जी मैम।
0: और बजाता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाता जा रहा है, आसपास वाले सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसको आगे निकलने का रास्ता मिला, वो आगे गया और उसने पीछे वाले सबको देख के जोर जोर से शीशे के अंदर से ही अपनी गालियां देना शुरू कर दिया।
1: जी मैम।
0: बदतमीजी करी।
1: जी मैम।
0: अब गाड़ी का नंबर भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत तेज आगे निकला और बहुत सारे लोगों रैश ड्राइव करता हुआ ओवर स्पीडिंग में आगे निकल गया। अब ऐसे में अगर मेरे जैसी कोई महिला है और वो फंसना नहीं चाहती किसी चक्कर में कि भाई उसको कल को कोई परेशान करे या कोई पुलिस स्टेशन में बुलाए, तो वो क्या करे?
1: जी मैम, उसकी वीडियो बना के और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है।
0: पर सर, जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उस टाइम, तो क्या करना चाहिए? अब गाड़ी का नंबर मुझे याद,
1: नंबर नोट करके उसकी डिटेल लेकर जाती है मैम।
0: जी,
1: हमारे पास भी निकल आएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, मशीन हमारे पास, उसका जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, वो सभी निकल आएगा और उसके अपने बयान दिए जाएंगे, जैसे जो अपना DCP की साहब की जीमेल आईडी है उस पे डाल सकते हो आप।
0: जी जी।
1: फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस,
0: मतलब मैं उस पे अपनी कंप्लेंट।
1: हाँ हाँ, तो उस पे फिर उसको गाड़ी का राउंड अप करेंगे, उस पर जो जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी नियम अनुसार।
0: जी, यानी मतलब अगर मामला सुबह का भी है तो दोपहर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा कोई फोन नंबर जो आप देना चाहें जिसपे कॉल करके हम ये सारी जो सिचुएशन है बता सकते हैं?
1: हाँ हाँ, ये हमारा जैसे PS ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद का नंबर है 01292225999।
0: जी, तो दोस्तों अगर आप फरीदाबाद शहर में हैं और आप किसी तरीके का ऐसा ट्रैफिक वॉयलेट होते हुए देख रहे हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में कॉल करना है 01292225999। सिंपल सा नंबर है, 3 बार 2 फिर 5 और 3 बार 9, बहुत सिंपल सा नंबर है। इस नंबर को आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपको दिखे ऐसी परिस्थिति कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, राह चलते रोड रेज कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी को टक्कर मार गया है, या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 01292225999। तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tanum
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद और ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या चालान करना ही सही है कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है मुझे भी लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम आप सड़कों पर जाते हुए देखते हैं सुबह भी शाम भी दोपहर भी जो रॉन्ग साइड जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं चाहे एक्सप्रेस वे हो चाहे गलियां चाहे हाईवे कहीं पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और जब इनका चालान काटा जाता है तो फिर ये इधर उधर फोन मिलाना शुरू कर देते हैं आपके भी नोन को इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें जरूर बताइएगा 8010781078 पर या फिर आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन होते हुए देखें तो 112 पे कॉल भी कर सकते हैं खुद भी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं अगर आपको कोई शख्स ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ मिलता है तो बस आपको ये बातचीत ये जानकारी या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया फरीदाबाद पुलिस ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर डालनी है या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी नंबर आपको असाइन किया जाएगा जो भी पुलिस अधिकारी आप तक पहुंचेंगे उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं फिलहाल बात चल रही है बहुत सारी ट्रैफिक से जुड़ी हुई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जयवीर सिंह ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयवीर जी ट्रैफिक की बात तो हमने कर ली है और बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है बीच में एक बहुत बड़े वकील थे जिनकी डेथ हो गई रॉन्ग साइड गाड़ी आने की वजह से और अक्सर एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर होते रहते हैं तो ऐसे में एक्सप्रेस वेज के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रॉन्ग साइड कोई आएगा तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी
2: बिल्कुल मैम
1: तो क्या ऐसा होगा या हो रहा है
2: हाँ हो रहा मैम जैसे वहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है गाड़ी रहती है इंटरसेप्टर वगैरह जो रॉन्ग साइड मिलता है उसका चालान करते हैं अगर जो किसी कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तुरंत क्रेन को बुला के अपना साइड में करवा के जो लोकल पुलिस से बुला के ना उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसकी वजह से
1: तो रॉन्ग साइड गाड़ियों को क्या आप इंपाउंड कर रहे हैं अभी क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है हमारे देश में
2: हाँ। ये जो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलती है वो हमारे DCP साहब के आदेश के अनुसार उन गाड़ियों को हम राउंड अप कर रहे हैं
1: जी बिल्कुल तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं फरीदाबाद पुलिस भी अब स्ट्रिक्ट हो गई है रॉन्ग साइड को लेकर तो अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं खासतौर पर से एक्सप्रेस वे से जो कि सबसे खतरनाक होता है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं क्योंकि वहां पर गाड़ियां 100, 80, 110 की स्पीड में चलती हैं
2: जी मैम
1: वहां से अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को चालान तो देना ही पड़ेगा जो कि काफी हैवी चालान है पेनल्टी काफी हैवी है इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है यानी इंपाउंड भी कर सकती है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी पर FIR आप पर FIR दर्ज कर सकती है ये हाल ही में अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा जिसमें 22 और 23 मई के सिर्फ दो दिन में 1170 FIR हो चुकी है रॉन्ग साइड वालों की बाकी चीजों की हम बात नहीं करें हम सिर्फ रॉन्ग साइड की बात करें क्योंकि रॉन्ग साइड एक ऐसा रूल ब्रेक है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 110 गुना बढ़ जाते हैं
2: जी मैम
1: आप सीधे सीधे अपनी रोड पे चल रहे हैं आप अपनी धुन में आराम से चल रहे हैं सामने से अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है तो इसीलिए रॉन्ग साइड को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस लेके चल रही है चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या कोई और पुलिस हो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है इसलिए क्यों ऐसी गलती करें जिससे जो है आपको ही नुकसान हो तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर जी अब चलते चलते लोगों से कुछ जानकारी देना
2: जैसे उनको स्पेशल अभियान चला जाता है समझाया भी जाता है भाई रॉन्ग साइड में कितना मतलब खुद को भी कैजुअल्टी है और आगे से आने वाला हाथ अपना टारगेट करके चलता है
1: जी
2: और वो एकदम व्हीकल दिखता है सहम जाता है
1: जी बिल्कुल
2: और
1: बिल्कुल।
2: स्पीड में गाड़ी रहती है उस कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसको भी और खुद को भी और आसपास है तो उसको दूसरे व्हीकल आगे पीछे उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।
1: जी तो मैं बस जयबीर जी आपसे अब ये चाहूंगी चलते चलते आप हमें थोड़े चालान का अमाउंट बता दें।
2: जी मैम,
1: कुछ चालान ऐसे होते हैं जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, कितना उसका चालान है, या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग निकल लेते हैं।
2: ज्यादातर 5,000 के चालान है मैम।
1: जी
2: जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन

0: हायर भी होती है और उनका भारी चालान किया जाता है।
1: जी जी, यानी इसमें
0: का, हाँ,
1: इसमें एफआईआर का सीधा,
0: हाँ, एफआईआर का, इसका सीधा एफआईआर का वो।
1: इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है गाड़ी चलाते हुए, इसका कितना चालान है?
0: इसमें मैम 10,000 का चालान है और 184 सैंक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है।
1: जी, यानी 10,000 का चालान है सिर्फ फोन का इस्तेमाल करने।
0: जी मैम।
1: जी, अगर आप अपना फोन का इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए, जो कि बहुत कॉमन है, तो 10,000 रुपए का चालान आप पर हो सकता है। इसके साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात आपने करी थी, बहुत बड़ा अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाया भी जाता है, अक्सर सैटरडे संडे नाइट को बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पकड़े भी जाते हैं।
0: जी मैम।
1: सो ऐसे में कितना चालान होता है?
0: इसमें मैम 185 सेक्शन 185-88 के तहत एफआईआर भी होती है,
1: सीधा एफआईआर,
0: हाँ, उसमें कोर्ट उनका कोर्ट में पेशी होती है और वहीं उनका भरा जाता है, अमाउंट भरा जाता है।
1: जी, एक समस्या और है जयवीर जी, जो मुझे लगता है पूरे देश में गलत पार्किंग करना, इतनी गलत पार्किंग हो रही है मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कितना?
0: इसमें 500 से 1500 तक अमाउंट का चालान का है।
1: यानी आपने अगर गलत गाड़ी पार्क,
0: जैसे हम देख भाई कहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है ना, 500 से 1500 तक चालान रहता है।
1: जी जी,
0: तो ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं।
1: जी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं, एक तो अगर मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ना लेके जाएं, दूर खड़ी करें।
0: जी मैम।
1: और अगर आप किसी वजह से लेके भी जा रहे हैं, सो आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा रास्ता रुका तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इसके साथ साथ जयवीर जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीट बेल्ट का ना लगाना।
0: जी मैम।
1: तो फरीदाबाद में इसका कितना चालान है?
0: इसका मैम 1000 रुपए चालान है, जो सीट बेल्ट लगाता है ना।
1: जी जी,
0: 1000 रुपए चालान है।
1: जी, 1000 रुपए चालान है। और एक समस्या और बहुत बड़ी है जो यंगस्टर्स के साथ देखी गई है, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ मजाक करना।
0: जी मैम।
1: गाड़ी का नंबर अगर 8055 है तो उसको ऐसे फॉन्ट में लिखवाएंगे कि वो बॉस दिखता है।
0: जी मैम।
1: और गाड़ी के नंबर ऐसे डिजाइन से बनाए जाएंगे, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो नहीं लगवाते,
0: नहीं लगाते मैम।
1: तो इसका कितना चालान है और क्या कार्रवाई होती
0: है? इसका 500 से 1500 रुपए तक चालान है।
1: सिर्फ 500 से 1500 रुपए चालान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो गलत नंबर की, जो नंबर प्लेट एक्सचेंज कर ली जाती है, बदल दी जाती है, इसकी वजह से भी होते हैं, और बाद में ये चीज जो है वो खुल के आती है। सो
0: इनको जैसे अभियान भी चलाते हैं, चेक भी करते हैं कि जैसे आरसी के साथ भी मिलान करते हैं, जैसे मशीन में नंबर डालते हैं तो उसको पता भी लग जाता है भाई इस बंदे की है और दूसरे का नाम है ये।
1: जी जी, क्योंकि गाड़ी के शीशे पे जो नंबर लिखा हुआ वो अलग होता है और गाड़ी की नंबर प्लेट पे नंबर है वो अलग होता है, तो ऐसे में नकली नंबर। जी जी
0: जी,
1: तो बहुत सारे चालान और उनके अमाउंट हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप इस चीज को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने शहर को और अपनी जिंदगी को थोड़ा सेफ बनाएंगे। जयवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए।
0: जी मैम।
1: और आपने जानकारी दी, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम। जी मैम, वेलकम।
1: तो दोस्तों बहुत सी बातें हमने आपके साथ की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ट्रैफिक पुलिस की बात आती है ना, तो ये दो तरफा बातें होती हैं। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है या फिर स्ट्रिक्टनेस जो है वो ही चीजों को कंट्रोल कर पाती है। ये बात आज की नहीं है, ये बात बरसों पुरानी भी है, क्योंकि जब भगवान राम को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा था, बिने नमानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिन हुई न प्रीत। समझे आप, यानी भय के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती है, कई चीजें आसानी से ठीक नहीं हो सकती हैं। तो चालान और स्ट्रिक्टनेस अगर ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है तो उसको समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे देश में लगभग 2.25 लाख लोग हर साल अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं, और 4 से 5 लाख घायल हो जाते हैं, और घायल भी ऐसे जो कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, उनके रूल्स को फॉलो करिए। ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही आपको इन सब रूल्स को समझना है और इन्हें फॉलो करना है। बस अपना ख्याल रखिए। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ, आपकी सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत और वार्तालाप। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity। आप सभी को पता है ये एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। न सिर्फ जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि दुनिया के कोने कोने में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी मानवता को जिंदा रखा हुआ है। आज के ऐसे युग में जहाँ हम कहते हैं कि लोग अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं, वहाँ इस मानवता को जिंदा रखते हुए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ के साथ इंडिविजुअल्स के लिए ढेर सारे काम करने वाले ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए इस प्रोग्राम के बाद जल प्रहरी। आप ही देख रहे हैं कि आज के जमाने में पानी कितना ज्यादा स्केयरसिटी में आ गया है, मतलब अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो कहलाते भी हैं जल प्रहरी। तो आज जल प्रहरी के जो CEO हैं अनिल सागर जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, मैं रेडियो के सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ और आप खुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे काम अच्छे काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करें, और अच्छा कर पाए ना कर पाए कम से कम बुरा ना होने दें ये भी कोशिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है।
1: वाकई बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी आपने। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जल प्रहरी, समझ में आता है कि आप प्रहरी बन गए हैं। वैसे तो हमारे अगर देखा जाए तो थल सेना, जल सेना और साथ के साथ हमारी वायु सेना अलग अलग किस्म के प्रहरी बन रहे हैं, बट सही मायने में तो जल के प्रहरी बनना भी जरूरी हो गया है। तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसी और इसके पीछे की क्या कहानी है?
2: देखिये मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक दिन हम लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पानी पी करके छोड़ देते हैं आधा गिलास। हमारी सोसाइटी में ना एक ऐसा माना जाता है कि अगर फूड को प्लेट में छोड़ देंगे, पानी को या कोक को या कोई भी ड्रिंक अगर हम थोड़ा छोड़ देंगे तो इट मींस दैट वी आर रिच, वी आर यू नो इन अ डिफरेंट स्वैग। तो वो स्वैग नहीं है। हमने जब वो देखा तो हमने 3 गिलास को मिलाया और वो पूरा 1 गिलास पानी बन गया। सो वी थॉट यार ये पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं कि वो डेलिब्रेटली जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में भी हो सकता है कर रहे हो। तो हमें लगा कि इस पे कुछ काम किया जाए। हमने ये बात तब के जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बताई और उनसे कहा कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और बोला कि ये काम तो हमें करना चाहिए, आप करना चाहते वेरी गुड। तो खैर हमने संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, बोला वेरी गुड आप लोग करिए। हमने लगभग मैं और हमारी टीम, हमारे कुछ मित्र, हमने पूरे देश में अलग अलग जा करके लोगों को ढूंढा, देखा वो कैसे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हम जब राजस्थान के एक गांव में गए हमें पता चला, हमें लोगों ने बताया कि एक लेडी का की शादी हुई और शादी के जब वो आए तो पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, और थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो एक डकैत है, क्राइम करता है, और वो घर से चला गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि अपने गांव में जो पानी का सोर्स था, पानी की जो बावड़ी थी, तालाब था, उसको जिंदा किया और वहां पर खेती की। 8-10 साल बाद जब उसका हस्बैंड आया और उसने देखा कि उसके गांव में खेती हो रही है, जहां चंबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं होता था, डकैती क्राइम ही एक साधन था, तो उसने तय किया कि नहीं यार अब तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ही क्विट डकैती। आज की तारीख में वो पूरा इलाका बहुत ही अच्छे से ग्रीन है, वहां पर खेती हो रही है, वहां पर लोग हैप्पी हैं। वो खुद जो डकैत था उसको भी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस थे उसमें पनिशमेंट के बाद कुछ छूट दे दी और आज वो दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं जो हमने ढूंढे और उनको हमने जो नाम दिया, क्योंकि वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो जो रक्षा करता है वो प्रहरी है, और वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए उनको हमने हम सब ने एक नाम दिया जल प्रहरी, और इस तरह से शुरुआत हो गई।
1: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। और इनफैक्ट जल प्रहरी तो हम सबको बनने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और हम कहते रहते हैं कि 3/4 हमारा जो अर्थ है ये पानी है और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं या फिर मैं रिवर्स और पॉन्ड्स की बात करूं, पानी हर जगह काफी कम है, तो इसे बचाना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे अनिल जी से करेंगे ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड फील लाइक।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। जी हाँ, जल प्रहरी एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पानी को बचाने के अलग अलग तरीके कोशिश की जाती है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। अनिल जी, अब अगला सवाल, और वो सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पानी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसकी तरफ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम इंडिविजुअल्स का नहीं है, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इंडिविजुअल अप्रोच से ही हम पानी को सही ढंग से बचा पाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की कोशिश करते हैं?
1: बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हुआ कि जब 2019 में हम पहला जल प्रहरी किया तो बहुत सारे लोगों का हौसला जो था वो बहुत बढ़ गया, उनके भीतर बड़ा उत्साह था, बहुत सारी जगह उनकी न्यूज पब्लिसिटी हुई। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के टाइम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सभी को टारगेट्स दिए हुए सभी डैम्स को कि आपको ये अमृत सरोवर बनाने हैं, ये इनको रिवाइव करना है। अब ऐसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें फोन किया कि आप लोगों ने जो जल प्रहरी किया था तो हमें कोई ऐसा बंदा बताइए ना, कि क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, लेबर घरों में थी तो प्रोसेस नहीं काम कर रहा था, गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एंड दैट IAS ऑफिसर वर वेरी स्मार्ट, ही सेड कि वो काम हम करना चाहते हैं, हम वाटर अथॉरिटी को रिजुविनेट करवाना चाहते हैं। तो हमने एक दो जो जल प्रहरी थे उनका कॉन्टैक्ट दिया और वो उन्होंने एक वाटर बॉडी को रिजुविनेट करवाया। आपको जान करके अच्छा लगेगा, हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुननी चाहिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो प्रोजेक्ट करीबन 30-35 लाख रुपए का बताया गया। जब जल प्रहरी को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम इस तालाब को बना सकते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते। बोले कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने बताया कि आप हम

0: 50 लोग हैं, लेकिन अभी कोरोना में तो 7-8 लोग आ पाएंगे, और आप यहाँ पर हमारे लिए खाने का और रहने का अरेंजमेंट करवा दो। और 20 लीटर तेल लगेगा जेसीबी मशीन से, इतने दिन जेसीबी मशीन काम करेगी, पर कुल मिला के करीबन 30-35 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो जब जूनियर ऑफिसर ने ये सब सुना और उसने सीनियर ऑफिसर को बताया, तो सीनियर ऑफिसर ने हंस करके कहा कि या तो ये लोग फ्रॉड है या फिर ये वास्तव में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है कोई नहीं, एक रिस्क लेते हैं, एंड वो रिस्क लिया उसने, और उस रिस्क को लेने के बाद वो वाटर बॉडी 7 डे में वो वाटर बॉडी तैयार हो गई, एंड ह्यूज वाटर बॉडी, अच्छी वाटर बॉडी वो तैयार हो गई। थोड़े दिन बाद जब बारिश आई तो उसमें पानी भी आ गया, जब पानी आ गया तो जो सीनियर ऑफिसर था वो उसको देखने गया, उसने देखा और जो जूनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ये कुल 37,000 रुपए में तैयार हुई है, तो सब ने उनके लिए क्लैपिंग की। सो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज आ रहे हैं, ऐसे ये लोग पानी की रक्षा करते हैं। या आप यकीन मानिए, हम कोई भी क्या बैंक में बिना पैसा रख करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं? भावना जी, आप कर सकती हैं?
1: वाकई नहीं।
0: तो हम पानी कैसे यूज कर रहे हैं? ये तो हमारा जो डिपॉजिट है हम उससे सिर्फ विड्रॉ कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक दिन सोच लीजिए कि अगर सुबह आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। बस श्रोता से, हर लिसनर से मेरा एक ही सवाल है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, मॉर्निंग में अगर आपको पानी नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए आज से विड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट भी शुरू कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए, उसी से बहुत भला हो सकता है। आप कर सकते हैं, आप करते हैं, आप जाने अनजाने पानी खराब भी करते हैं और जाने अनजाने आप पानी बचाते भी हैं। तो बस उसका प्रहरी बनना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा।
1: नहीं बड़ा, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब जब तक पानी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक के लिए आप ये सोचिए कि अभी हम ये कहते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो रेड मार्क है, और पूरा दिल्ली NCR भी मैं अगर कहूँ तो इसी एरिया में आता है, लेकिन क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं? एक्चुअली यस, पॉन्डमैन ने तो ये प्रूव किया हुआ है। भाई रमेश जी तो हमेशा ये कहते हैं कि आप मुझे एक जगह दीजिए और लाइए आपके पॉन्ड्स को, मैं वापस रिवाइव कर दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरत ये है कि क्या हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हैं और हम कॉन्शियसली सोसाइटी में जी रहे हैं, या आप एक मोबाइल फोन की जिंदगी जी रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, या नहीं सुना रही आपको एक प्यारा सा गाना, और वापस लौट कर यही आना। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO है जल प्रहरी। अनिल जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम ना एक मोबाइल फोन जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ जो भी मोबाइल में दिखता है, सोशल मीडिया पर दिखता है, हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इससे बिल्कुल
1: अनजान है,
0: एक्चुअली अनजान है। सो एक बड़ा जरूरी सवाल, इतनी अवेयरनेस है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार से लेकर इंडिविजुअल्स तक, हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पानी को बचाइए, कंजर्व करिए, लेकिन उसके बाद भी ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। आप लोग इस अवेयरनेस को कैसे पहुंचा रहे हैं जन जन तक?
1: देखिए, हम लोग जो है हर बार हम जब जल रही का आयोजन करते हैं उससे पहले पूरे साल घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और खासतौर से हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब 2025 का हमने जल प्रहरी आयोजित किया तो हमारे साथ सिंगानिया यूनिवर्सिटी थी, सिंगानिया यूनिवर्सिटी के डीसी मनोज कुमार जी, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया। हमारे साथ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल था, उनकी जो प्रिंसिपल थी इत्तफाक से वो फरीदाबाद भी रहती हैं, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया, और इन बच्चों को हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, जिन प्रहरियों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो आखिर कर कैसे रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपने देखा होगा एक ये जो आजकल शादियों के टाइम आपने बैंड वाले देखे होंगे, हमारा एक जल प्रहरी है वो बैंड का बैंड बाजा बजाता है। अब आप सोचिए वो कैसे जल प्रहरी हो सकता है, बट यू नो व्हाट ही डू, जिस दिन उसके पास काम नहीं होता है वो अपनी साइकिल लेता है, वो गरीब है, बहुत गरीब है, साइकिल लेता है और उसमें कुछ नल टोटियां प्लास्टिक की या लोहे की डाल लेता है और वो लेकर के निकल जाता है, जो पब्लिक जो टूटी लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो उनमें से पानी टपकता है, वो उनको चेंज कर देता है। सो कैन यू बिलीव दिस, एक आदमी जो खुद बेचारा 200-500 रुपए कमाता है दिहाड़ी, और वो महीने में 1500 रुपए इस तरीके से खर्च करके जल प्रहरी बने।
0: वंडरफुल।
1: तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी ये चाह ले कि मुझे ये करना है, तो वो फिर किसी भी अवेयरनेस और किसी भी उसकी उसको जरूरत नहीं होती है। ये आयर, ये लाइट, ये मन में जो मानवता की राह पर जो चले का जो एक बीज हमारे अंदर रोपित होता है, हमने ये सब कहानियां सुनी हुई है दादाजी से, नानी से, और इवन मोबाइल फोन में भी अगर हम उसको भी देख के अलर्ट हो जाएं, बिकॉज लोग कहते हैं हमारा शरीर जो है वो 2/3 वाटर है। आपने सुना होगा कि जब हमारे बॉडी में इन दिनों में खासतौर से जब हम ह्यूमिडिटी है तो वी फील अनकंफर्टेबल, किस लिए? बिकॉज पानी खो रहा है, जैसे ही हम पानी पी लेते हैं हम खो जाते हैं। तो जब हम बॉडी के पानी की रक्षा करते हैं, हम उसके प्रहरी हैं, तो हमें समाज के पानी की भी रक्षा करना चाहिए।
0: वाकई भाई, बड़ी खूबसूरत सी कहानी, और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करने वालों को ना तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना उन पर ध्यान दे रहे हैं, और पानी को बर्बाद कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो हमारे पास अबंडेंस में है। बहुत सारे लोग अक्सर ना जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि अरे मैडम, आप हमेशा पानी पानी की बात करते हैं, बट क्या आपको पता नहीं है कि हमारे सागर में, या फिर कहना चाहिए हमारे ओशंस में इतना पानी है, जब कभी भी चाहेंगे इसे रिफाइन करेंगे, नमक भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। लेकिन ना लोगों को शायद आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पोर्टेबल वाटर है, जिसे पिया जा सकता है, उस पानी में और हमारे समुद्र के पानी में बहुत डिफरेंस है, और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर जो पानी है जो हमें हमारे नदियों से मिल रहा है, जो हमें हमारे तालाबों से मिल रहा है, उस सारे पानी को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर इंसान इसे रियलाइज़ करें। हम वीडियोस देखते हैं, हम अलग अलग किस्म के कहना चाहिए कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना चाहिए, या हर इंसान या हर इंडिविजुअल को इसे कैसे अपनाना चाहिए, करेंगे इसके बारे में बात, छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मनोरंजन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जिनके साथ, वो है अनिल सागर जी और सीईओ है जल प्रहरी। जल प्रहरी एक बहुत खास संस्था है, न सिर्फ जल को बचाने के बारे में बात करती है लेकिन आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इस जल को बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही कल है। बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जो हम सुनते हैं लेकिन क्या हम इन पर अमल करते हैं? उसी दिन करते हैं ना जिस दिन पानी नहीं आता है। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी मुझे बताइए, हर इंसान इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है?
1: देखिए, अभी आप बता रहे थे कि पानी की प्रॉब्लम जो कोस्टल एरियाज है, हमारे एक जलप्रहरी हैं अनिरुद्ध तोड़कर, अब वो महाराष्ट्र से हैं
0: जी।
1: ग्राउंड वाटर सोर्स पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जितने अब हम बड़े हैरान होते थे, सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो महाराष्ट्र से हमारे पास आते थे जलप्रहरी के, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन। हमने देखा कि महाराष्ट्र में वास्तव में बहुत पानी का दोहन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, जबकि वहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, कोस्टल एरिया है वहाँ पर, इसके बावजूद पानी की कमी है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है। आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं वो उनको याद आ जाएगा। आप अगर मान लीजिए दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं या फरीदाबाद में हैं, तो आपने देखा होगा किसी गाँव के साथ में एक पॉन्ड था, तालाब था, वो तालाब लोगों ने कब्जा किया, उस पर कूड़ा डाल करके, मलबा डाल करके, और आपने उस पर कुछ नहीं किया। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जब सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है आज की तारीख में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आपका फोन, और मुझे लगता है आपके पास आरजे भावना है। आप आरजे भावना को बताएं कि आपके इलाके में ये वाटर बॉडी है और वो उसको ऐसे लोग किल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने देने का माहौल बनने की जरूरत है, उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत जागरूक तो हुए हैं लोग। मैंने अभी तक किसी भी गांव में जहां मैं गया हूं ये नहीं सुना कि किसी ने तालाब को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हों, और जो आदमी एफर्ट्स करता है वही जल प्रहरी।

0: ही होता है और वो उसको सब पूरे गांव वाले लोग पागल कहते हैं, क्योंकि गांव वालों की नजर में तालाब जो है उसको कब्जा करके उस पॉन्ड को फिल करके उस पर मकान बनाने का या प्लॉट बेचने का साधन है। लेकिन नहीं, वो भूल रहे हैं वो उनकी लाइफ लाइन है। आप सोचो अगर यमुना दिल्ली और NCR में न हो तो पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम इन छोटे छोटे पॉन्ड्स को रिचार्ज नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है भावना कि पानी को लेकर के हमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है और इसमें अपने एक एक छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। आप पानी को वेस्ट ना होने दें। मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी तो इस अभियान से जुड़ी हुई है, उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो 3 बार चलाने के 4 बार चलती है और 4 बार फ्रेश वाटर लेती है। उन्होंने उसको पानी को बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक बना के काम करती है ताकि उसका पानी वेस्ट ना हो। तो मुझे लगता है एक होम मेकर ये कर सकती है कि वो पानी वेस्ट ना हो उसका ध्यान रख सकती है, बच्चे फ्लश करते टाइम ध्यान रख सकते हैं, अननेसेसरी पानी गिर रहा हो स्कूल कॉलेज में तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट को बोल करके उस टैप को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो या कहीं खुला हुआ है टैप तो उसको बंद कर सकते हैं। बहुत सारे साधन है और अगर फिर भी ना मिले कोई साधन तो जल प्रहरी को संपर्क करें या फिर भावना RJ भावना को संपर्क करें, हम बताएंगे।
1: वाकई बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के और खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है कि भाई अगर आपके घर में RO है और उससे फिल्टर हुआ पानी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भाई आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उस पानी को जरूर बचाइए। जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं अनिल जी के साथ, अनिल सागर जी जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं वाटर कंजर्वेशन के? हम पानी को क्यों नहीं सही तरीके से बचा पा रहे हैं? एक चैलेंज जो मुझे नजर आया है इतने सालों में, माइंडसेट। आप मुझे बताइए बाकी क्या चैलेंजेस हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है लालच
0: जी।
1: दूसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही, क्योंकि सामने जिसके घर के सामने पॉन्ड है उसको ये लालच है कि मैं इसको खत्म करके और अपना प्लॉट बड़ा कर लूं। ब्यूरोक्रेसी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब पॉन्ड बनाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसके बहुत सारे जो टेक्निकल पहलू होते हैं वो उसे उतना अच्छे से नहीं पता होते हैं, तो कई बार वहां पर जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको काम करने से रोकता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। कई बार फंड्स की प्रॉब्लम होती है। मजेदार बात ये है कि भावना, आप पानी का बिजनेस करें तो आपके पास फंड्स की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन आप पानी बचाने का काम करें तो आपको पैसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे और फंड्स की बहुत क्राइसिस होती है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी जो बात आपने कही है, माइंडसेट। जब तक हम छोटी सी गाड़ी लेते हैं जो कि कुछ लाख की होती है, उसमें कोई स्क्रैच मार जाए तो हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज हमारी जिंदगी छीन सकती है, वाटर, पानी, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं अरे छोड़ो, खत्म हो गया, कोई नहीं, 20 लीटर वाली दूसरी बॉटल मंगवा लेंगे, या 100 रुपए की ये ले लेंगे, या 50 रुपए की हम ये मंगवा लेंगे। बट मुझे लगता है नहीं, आप अगर पानी बचाने के एफर्ट्स शुरू करेंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करेंगे, आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा।
0: और इसमें एक चीज आप जरूर जोड़ सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है और लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता, या इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, या फिर एक बहुत बड़ी अमाउंट लग जाएगी और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो अकेले मेरे करने से क्या होगा, ये तो सरकार की या फिर प्रशासन का काम है। ये एक बहुत गलत सोच है। इंडिविजुअली आप अपने घर की यूनिट से शुरू करते हुए इंस्टीट्यूशंस तक, ऑफिसेस तक, जितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं, और खासतौर पर वो जल जो आपको डायरेक्टली आसमान से मिलता है और जो कि सड़कों को फ्लड कर देता है, कहीं किसी शहर को वेनिस बना देता है, तो कहीं देखिए तो किसी किसी शहर को पूरी की पूरी तरीके से डुबो देता है। लेकिन इस पानी को अगर आप न सिर्फ जमीन में जाने दें तो ये
1: आपकी गोद में उतार दें,
0: एग्जैक्टली, तो ये आपके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा और आपकी वाटर बॉडीज को भी रिचार्ज करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में आप जरूर न सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, और समय समय पर हम आपको हमारे प्रोग्राम्स में तो ये बताते ही रहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। अनिल जी, वैसे तो आप अपने काम में काफी व्यस्त रहते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका खास इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के बारे में जब लोग सुन रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा लग रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके इस इनिशिएटिव के साथ क्या कोई जुड़ सकता है और क्या इसे रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आसपास पानी कैसे बचा सकता है, एक जल प्रहरी कैसे बन सकता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल अपने सही का रहन एक बहुत ही सरल तरीका है। आपके घर के आसपास जहां भी आप एक ऐसा पिट बना सकते हैं घर के सामने, जहां आप अपनी छत से पानी को धरती माँ की गोद में उतार सकते हैं, वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये संभव नहीं, आपके इलाके में कोई भी बोरवेल है वो डेड है, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके में अगर कोई छोटा सा तालाब है और वो गंदा है, तो एक दिन आइए ना, एक दिन आउटिंग करते हैं, तालाब के साथ बातें करते हैं, तालाब को जिंदा करते हैं। यकीन मानिए, तालाब जिंदा होगा तो आप खुद मुस्कुराएंगे और देखेंगे कि बहुत अच्छा हो गया है। आपके इलाके में कोई नहर है, छोटी नदी है, उसमें कोई कचरा डालता है, आप उसे रोकिए, हाथ जोड़कर रोकिए। अगर नहीं मानता है तो आप उठा दीजिए वो कचरा। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद लोग वहां पर डालना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप पानी को बचाने को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत बात कर सकते हैं। आप कहीं पानी वेस्ट होते हुए देखते हैं तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और आपको जहां भी लगता है आप जल प्रहरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल सकते हैं। हम जरूर, हमारे जल प्रहरी इन सब कामों में बहुत तेजी से सक्रिय हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे लोग काम करते हैं और सरकार के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले से बहुत चीजें बदली हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि काम करने वाले 1,500-1,00,000 होंगे, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, यूं कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ों हैं। तो वो करोड़ों हाथ अगर जुड़ जाएंगे खराब ना होने, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस सिर्फ खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्रकृति और पानी रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। हमने कोरोना में ये सब देख लिया है कि पानी कितना जरूरी था, हमारा प्रकृति कितनी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल भाई, बहुत ही खास तरीके से हमें अनिल जी ने बताया है कि हम कितनी इम्पोर्टेंट जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें यूं ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक दिन हमारे पास होंगे ही नहीं, और फिर हम जिएंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी ये है कि आज से ही हम इन्हें कंजर्व करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि लिसनर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, वो ये याद कर लें कि अगर पानी नहीं होगा स्विमिंग पूल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बहुत सी किताएं बदल जाएंगी। बहुत पहले कबीर ने कह दिया था कि बिन पानी सा सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो न मोती रहेगा, न मानस रहेगा, और ना बर्गर और पिज्जा के लिए चून यानी आटा होगा, फ्लोर होगा, मुद्दा होगा। तो चाहे आप पिज्जा बनाएं या बर्गर या कुछ भी, एक रोटी बनाएं या चावल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपको पानी चाहिए। और अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज, आज के बाद भी जल प्रहरी से

0: water. Thank you. And say water bodies also.
1: Exactly. बहुत अच्छा लगा नील जी आपसे बात करके. तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी और उन्हें मोटिवेट किया जल प्रहरी बनने के लिए.
0: थैंक यू भावना. और मैं आपसे भी प्लेज चाहूंगा कि आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल हैं और एक्टिवली इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे, हम साथ साथ मिलकर चलते रहे मानवता की राह पर.
1: वाकई दोस्तों मैं तो बन गई हूँ जल प्रहरी, क्या आप बनेंगे मेरे साथ? और अगर हाँ किया है तो बस जुड़ जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, बट तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनते रहेंगे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन. फील गुड, फील लाइव.

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो, यूं तो कम बोलती थी लेकिन

0: मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था, वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पा लूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहां खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है। दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: રેડિયો 107.8 એફએમ પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा. एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आते हैं उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की मेहनत और हिम्मत, जिन लोगों ने सफलता को बड़े ही लगन से हासिल किया है और एक मिसाल कायम करती है. और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है. आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, जिनकी आवाज ने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ के लोक कला से रूबरू कराया है. जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है पंडवानी की महान कलाकार तेजन बाई. जी हाँ, तेजन बाई जी की आज हम बात करने वाले हैं. दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी की शुरुआत किसी बड़े शहर या फिर बड़े मंच से नहीं होती है, बल्कि कई बार ना एक छोटे से गांव से निकली हुई आवाज ही दुनिया भर में गूंज जाती है. तेजन बाई जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के एक साधारण से परिवार में जन्मी तेजन बाई बचपन से ही कहानियों और लोकगीतों के बीच पली बड़ी. उनके घर में धन दौलत भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध थी. बचपन में जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब तेजन बाई महाभारत की कहानियों को बड़े ध्यान से सुना करती थी. जी हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत के प्रसंग अपने नाना से सुने और वहीं से उनके अंदर पंडवानी के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ. पंडवानी यानी महाभारत की कहानियों को गीत, संगीत और अभिनय के माध्यम से सुनाने की एक अनोखी लोक कला. छोटी सी उम्र में ही तेजन बाई को एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता इस कला से सिर्फ शौक के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी भर के सफर के लिए है. लेकिन दोस्तों, सपने देखना एक बात है और उन्हें पूरा करना दूसरी. उस दौर में पंडवानी की दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी. समाज की सोच भी कुछ अलग थी, लेकिन तेजन बाई के अंदर एक अलग ही जज्बा था. उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी आवाज, अपनी कला के दम पर एक नई पहचान बनाएंगी. यही था उनकी जिंदगी का पहला कदम, एक सपना, एक जुनून और कुछ कर दिखाने का हौसला. अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से सपने ने संघर्षों के बीच अपनी राह बनानी शुरू की और कैसे तेजन बाई ने समाज की बंदिशों को चुनौती दी. बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड, फील लाइव.
2: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
3: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ ऐसे लोगों की कहानी, उनकी जर्नी जो आपको मोटिवेट करती है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तेजन बाई की। जी हाँ, तेजन बाई जो की अपनी कला से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई के बचपन में पंडवानी और महाभारत के प्रति एक गहरा लगाव पैदा हो गया था। लेकिन किसी भी सफलता की कहानी में सिर्फ सपने नहीं होते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। जी हाँ, और तेजन बाई जी का सफर भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों आज से कई साल पहले समाज की सोच अलग थी। कुछ कलाएं और कुछ मंच ऐसे माने जाते थे जहां पर महिलाओं की जगह नहीं थी। पंडवानी भी उनमें से एक थी। इस लोक कला में अधिकतर पुरुष ही प्रस्तुति देते थे, लेकिन तेजन बाई जी ने इस परंपरा को चुनौती देने का साहस दिखाया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों में पंडवानी गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में दम था, उनके अंदाज में अलग ही जादू था और सबसे खास बात थी उनका अटूट आत्मविश्वास। लेकिन हर कोई उनके इस फैसले से खुश नहीं था। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। समाज के कुछ लोगों को लगता था कि एक महिला को इस तरह मंच पर आकर महाभारत की कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन तेजन बाई जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जितनी रुकावटें आईं उतना ही उनका हौसला मजबूत होता गया। वो लगातार अपनी कला को निखारती रहीं, सिखाती रहीं और प्रस्तुतियां देती रहीं। धीरे धीरे लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। जब वो मंच पर आती थी तो दर्शक सिर्फ गाना नहीं सुनते थे बल्कि महाभारत के प्रांतों को उनके अभिनय के माध्यम से जीते जागते हुए महसूस करते थे। उनकी आवाज और उनकी कहानी सुनाने की कला लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ तेजन बाई जी के सफर का वो मोड़ जहां पर संघर्ष धीरे धीरे पहचान में बदलने लगा। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे सेगमेंट में हम जानने वाले हैं इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें, उनकी अनोखी प्रस्तुतियां, उनके बड़े कला जगत के ऊपर भी हम ध्यान देने वाले हैं, उस पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। सुने बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे स्नेहा। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई जी ने सामाजिक बंदिशों और आलोचनाओं का सामना करते हुए अपनी कला को जिंदा रखा, लेकिन जब लगन सच्ची हो और प्रतिभा असाधारण हो तो एक ना एक दिन दुनिया उसे जरूर पहचानती है। तेजन बाई जी के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जी हाँ, लगातार प्रस्तुतियों और अपनी अलग पहचान के दम पर तेजन बाई जी ने धीरे धीरे लोक कला के जगत में मशहूर होने लगी थी। उनकी पंडवानी प्रस्तुति सिर्फ गीत या फिर कहानी नहीं होती बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती थी। जब वो महाभारत के किरदारों को अपनी आवाज और अभिनय से पेश करती थी तो दर्शक पूरी तरह से कहानी का हिस्सा बन जाते थे। इसी दौरान उनकी प्रतिभा पर कई कला प्रेमियों और विशेषज्ञों की नजर पड़ी और उनकी कला को बड़े मंचों तक पहुंचने का मौका भी मिला। ये वो समय था जब गांव और स्थानीय कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहने वाली तेजन बाई की आवाज राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगी। जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास। वो मंच पर किसी भी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्भर नहीं रहती थी। महाभारत की कहानियाँ उनके मन और यादों में बसती थी, इसी वजह से उनकी प्रस्तुति में एक प्राकृतिक प्रभाव और जज्बा नजर आता था जो लोगों को बहुत पसंद आता था। दोस्तों, सफलता अक्सर तब मिलती है जब तैयारी और अवसर एक साथ मिलते हैं। तेजन बाई जी ने सालों तक अपनी कला को निखारा था और जब बड़ा मौका मिला तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अब लोग उन्हें सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे। उनकी पहचान बढ़ रही थी और उनके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी और पंडवानी को एक नई ऊर्जा भी मिल रही थी इसी के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: Shimaru Vintage से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

जो अपनी नाटकीय अंदाज, ऊर्जा और अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। तीजनबाई जी ने इसी शैली को अपनाया और उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस समय अधिकतर महिला कलाकार वेदामती शैली में प्रस्तुति देती थी, जहां पर गायक बैठकर कहानी सुनाता था, लेकिन तीजनबाई जी ने परंपरा से हटकर कपालिक शैली को अपनाया, जहां पर कलाकार खड़े होकर पूरी ऊर्जा के साथ कहानी को जीवंत करता है। जब तीजनबाई जी मंच पर आती थी तो उनके हाथ में एक साधारण सा तंबूरा होता था, लेकिन उनकी कल्पना और अभिनय की ताकत उस तंबूरे को कभी अर्जुन का धनुष बना देती, तो कभी भीम की गधा और कभी किसी योद्धा की तलवार, और बस यही देखकर जो दर्शक थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आवाज में इतनी गहराई और इतनी ताकत थी कि महाभारत के युद्ध वीरता, दुख और भावनाएं जैसे आंखों में सामने जीवित हो उठती थी। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, बल्कि हर किरदार को अपने अंदर उतार कर उसे जीती थी। यही वजह थी कि उनकी हर प्रस्तुति एक यादगार अनुभव बन जाती थी। सबसे खास बात तो ये थी कि तीजनबाई जी ने कभी अपनी लोक कला की असली रूह को नहीं बदला। उन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए उनमें अपनी रचनात्मक और अपना अंदाज जोड़ा। इसी ने उन्हें एक कलाकार से बढ़कर एक प्रेरणा बना दिया। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने से भी मिलती है। तीजनबाई जी ने दुनिया को दिखाया, अगर आप अपनी कला में विश्वास रखते हैं तो आप अपनी एक नई पहचान खुद बना सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई जी ने अपनी अनोखी

सीखी कबालिक शैली के जरिए पंडवानी को एक नई पहचान दी। लेकिन उनका सफर यहीं तक सीमित नहीं था, अब समय था छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को दुनिया के मंच तक पहुंचाने का। दोस्तों, जब किसी कलाकार की कला दिल से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तेजन बाई जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के अलग अलग राज्यों में उनकी प्रस्तुतियां बेहद सराही जाने लगी। हर जगह लोग उनकी आवाज, उनके अभिनय और उनकी कहानी सुनने के अंदाज से प्रभावित होते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याती देश के सीमाओं से बाहर तक पहुंचने लगी। जी हाँ, उन्होंने विदेशों में भी भारत की लोक संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में उन्होंने पंडवानी की प्रस्तुतियां दी है। जो लोग छत्तीसगढ़ या फिर पंडवानी के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, वो लोग भी तेजन बाई जी की कला के दीवाने हो गए। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी लोक कला जो कभी गांव में चौपालों और स्थानीय मंचों तक सीमित थी, वही कला अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक तालियां बटोर रही थी। ये सिर्फ तेजन बाई जी की व्यक्तिगत सफलता ही नहीं थी, बल्कि भारत की लोक परंपराओं की भी जीत थी। उन्होंने दुनिया को ये भी दिखाया कि हमारी लोक कलाओं में कितनी गहराई, कितनी समृद्धि और कितनी कहानियां छुपी हुई है। भाषा अलग हो सकती थी, लेकिन उनकी प्रस्तुति की भावनाएं हर दिल तक पहुंच जाती थी। इसीलिए विदेशी दर्शक भी उनकी कला से उतने ही प्रभावित होते थे जितने भारत के लोग। तेजन बाई जी का सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपने हुनर पर भरोसा रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी मंच आपसे दूर नहीं रहता। उन्होंने कभी अपनी पहचान बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी असली पहचान को ही दुनिया तक पहुंचाया। और यही वजह है कि आज तेजन बाई जी को सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि भारत सांस्कृतिक दूत के रूप में भी देखा जाता है। वक्तों के एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं तेजन बाई जी की। जी हाँ दोस्तों, अब तक के सफर में हमने देखा कि कैसे तेजन बाई जी ने संघर्षों का सामना किया, अपनी अलग पहचान बनाई और पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहुंचाया। और जब किसी व्यक्ति का योगदान इतना विशेष हो तो उसकी मेहनत को सम्मान भी मिलता है। तेजन बाई जी का जीवन इस बात का जीता जागता हुआ उदाहरण है। दोस्तों, तेजन बाई जी ने अपनी कला के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को जीवित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ी तक भी पहुंचाया। उनके इस अमूल्य योगदान को देश ने समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। जी हाँ, साल 1988 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये उनके लिए ही नहीं बल्कि पंडवानी और छत्तीसगढ़ की लोक कला के लिए भी गर्व का पल था। और इसके बाद भी उनकी उपलब्धियों का सफर अभी और भी तेजी से आगे बढ़ा। फिर आया साल 1985 जिसमें उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, जो भारत में परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार उनकी कला की गहराई और उनके योगदान की राष्ट्रीय पहचान का प्रमाण था। लेकिन सफर यही नहीं रुका। फिर आया साल 2003 जिसमें तेजन बाई जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान ने साफ कर दिया कि तेजन बाई जी की कला अब सिर्फ एक लोक कला ही नहीं रही थी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। और फिर आया साल 2019 जब उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। एक गांव की लड़की जिसे कभी समाज की बंदिशों का सामना करना पड़ा था, आज देश के सर्वोत्तम सम्मानों में से एक की अधिकारी बन चुकी थी। दोस्तों, इन पुरस्कारों की सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि ये सिर्फ मेडल या फिर सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, ये उन सालों की तपस्या, संघर्ष और लगन और समर्पण का सम्मान होता है जो किसी व्यक्ति ने अपने सपने को सच करने के लिए दिए होते हैं। तेजन बाई जी की उपलब्धियां हमें ये सिखाती है कि जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ करते हैं तो सफलता और सम्मान दोनों आपके कदम चूमती है। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुनो हार्दिक, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों, आज के इस खास सफर में हमने तेजन भाई जी के जीवन के कई रंग देखे। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, बचपन से कला के प्रति लगाव था उनका, सामाजिक बंदिशों का सामना भी करा, अपनी एक अलग पहचान भी बनाई, देश और दुनिया के मंचों पर भारत लोक कला की प्रस्तुति भी की और फिर देश के सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया उन्हें। लेकिन दोस्तों, किसी भी सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे मिलने वाली सीखें। अब बात करते हैं तेजन भाई जी की लाइफ से हमें क्या सक्सेस मंत्र मिलता है। तो सबसे पहला जो सक्सेस मंत्र है वो है, अपने हुनर पर भरोसा रखिए। कई बार लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने टैलेंट पर विश्वास है तो कोई भी आपकी राह को रोक नहीं सकता। तेजन भाई जी ने भी यही किया। दूसरा सक्सेस मंत्र है, संघर्ष से कभी मत घबराइए। हर बड़े सपने के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। उन्होंने विरोध देखा, कठिन परिस्थितियां भी देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी और इसी लगन ने उन्हें सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तीसरी सीख है, अपनी आदतों को कभी मत भूलिए। आज जब दुनिया ग्लोबल होने की बात करती है, तेजन भाई जी हमें ये याद दिलाती है कि असली पहचान अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से जुड़ी होती है। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं बल्कि उसे ही अपनी ताकत बना लिया। चौथा सक्सेस मंत्र है कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। जी हाँ, सफलता पाने के बाद भी तेजन भाई जी ने अपनी कला को लगातार निखारा। ये हमें बताता है कि ग्रोथ का सफर कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, तेजन भाई जी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है बल्कि ये हौसले, आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही व्यक्ति की कहानी के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी से दुनिया को एक नया सक्सेस मंत्र दिया है और एक मोटिवेशनल जर्नी दी है। तब तक के लिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बाय।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारु विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। एंड दिस शो इज रियली स्पेशल क्योंकि यहाँ पर हम आपको एजुकेट करते हैं। सो हम आपको बताते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। वी टॉक अबाउट डिफरेंट केस स्टडीज, वी टॉक अबाउट कंपनीज, वी टॉक अबाउट फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ दैट कंपनी, वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड सो ऑन। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपको एजुकेट करते हैं, आपको साथ साथ एक रोड मैप के तौर पे हम बताते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है दुनिया में, सो दैट अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो यू गेट दैट आइडिया। सो दिस इज अ रियली स्पेशल एपिसोड। अगेन हम लेकर के आए हैं एक और केस स्टडी, करेंगे डिस्कस, बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, देन विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मारवाष्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अब दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry we are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योरटेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नज़र आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है।

तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो सारी इंश्योरेंस कंपनी जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो है वो हमें टिक करने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव।

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले ही बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज

होते हैं वो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर और IRDA जो है वो आपको तंग ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अभी तक आप इंडस्ट्री को समझ गए हैं, तमाम चीजें आप जान चुके हैं। आइए अब शो को आगे लेकर चलते हैं। फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की जो हमारी कंपनी है वो है ग्राम कवर। ग्राम कवर नाम से काफी कुछ आपको पता लगता है, राइट? क्या है ग्राम कवर? इंश्योरटेक के बारे में आप जान चुके हैं। सो बेसिकली ग्राम कवर एक इंडियन इंश्योरटेक स्टार्टअप है जो 2016 में स्टार्ट हुआ, नोएडा से स्टार्ट हुआ, और टेक इनेबल्ड इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है ये, जहां पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है जो इंडिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉब्लम है, विच इज द लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस इन रूरल इंडिया। देखिए, अर्बन फोकस जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, बट ग्राम कवर ने यहाँ पर डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा है ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली फार्मर्स, रूरल फैमिलीज, डेयरी फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम FPO बोलते हैं, उनके साथ अलाइन हो सके। ये काम करता है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ताकि सेम प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बट उनकी जो नीड है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि फसलों का इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सब कुछ तो होता ही है। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ, ग्राम कवर ने एक, आप कह सकते हो, लाइसेंस इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम किया, लेकिन एक कैटेगरी के ऊपर भी ध्यान दिया जहां पर उन्होंने कस्टमर्स को इंश्योरर्स से मिलवाया और उनके हिसाब से इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मॉडिफाई कराए। तो एग्जैक्टली गैप था जिसको भरा इस कंपनी ने। सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ ग्राम कवर। देखिए, ग्राम कवर से पहले क्या होता था, इंश्योरेंस इंडिया में एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम थी, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी जो है फोकस करती थी सिटीज के ऊपर और रूरल कस्टमर्स जो हैं वो नहीं ले पाते थे, उनके लिए इंश्योरेंस एक, आप कह सकते हैं, एलियन बॉडी हो गया था या बहुत महंगा हो जाता था, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ले पाते थे। सो फार्मर्स को मल्टीपल रिस्क जो है फेस करने पड़ते थे, अगर फसल खराब हो गई तो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, या लाइफ स्टॉक जो है वो खराब हो गया, या फसल खराब हो गई, या कीड़े लग गए फसल में, या मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस की जरूरत तो सबको है ना। एंड देयर वर अ फ्यू रीजंस एज वेल, ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत लिमिटेड एजेंट्स हुआ करते थे, उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड थे, प्रीमियम कन्फ्यूजिंग हुआ करते थे, क्लेम बहुत मुश्किल थे, सो पीपल डिड नॉट इवन ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसलिए यहां पर इसे गैप को फिल किया ग्राम कवर ने। आई होप इट हेल्प्स। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा है गानों के साथ आपको। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं आइडिया क्या था ग्राम कवर के पीछे। सो आइडिया वॉज रियली सिंपल। एक सिंपल रियलिटी को ऑब्जर्व किया गया। देखिए, रूरल इंडिया डजंट लाइक रिस्क, इट लैक्स एक्सेस टू प्रोटेक्शन। ठीक है, कंपनी के जो फाउंडर हैं जतिन सिंह, उन्होंने ऑलरेडी स्काईमेट वेदर सर्विसेज जो है बिल्ड किया हुआ था, जो आप कह सकते हो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट वेदर फॉरकास्टिंग कंपनीज में कंसीडर किया जाएगा। प्राइवेट था ये, ठीक है। तो जब उन्होंने क्लोजली काम किया एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के साथ, ठीक है, वेदर डेटा उन्होंने कंपाइल किया, तो इन्हें एक चीज दिखाई दी कि कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है वेदर। फार्मर्स की इनकम को, पूरी इनकम, चार चार महीने, छह छह महीने की जो उनकी लागत होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ओवरनाइट। तो ऐसे में वेदर फॉरकास्टिंग कुड वार्न फार्मर्स, बट वार्निंग्स अलोन कुडंट कंपेंसेट फाइनेंशियल लॉसेस। इसलिए फार्मर्स को जरूरत थी इंश्योरेंस की। दैट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राम कवर। तो यहां पर इन्होंने वेट करना ठीक नहीं समझा कि इंश्योरेंस ऑफिसर्स में जाएं वो करें। ग्राम कवर ने क्या किया, सिंपल, इंश्योरेंस को डायरेक्टली गांव में ले गए। अमूमन ऐसा होता है ना कि गांव में इंश्योरेंस आएगा, कंपनी खुलेगी, ब्रांच खुलेगी, कोई एजेंट आएगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है, या फिर गांव वाले वहां पर जाएंगे। इन्होंने बीच में वो जो सफर था उसको छोटा कर दिया और खुद काम करना शुरू कर दिया उनके लिए। ग्राम कवर फॉलोज अ फिजिटल मॉडल, बेसिकली फिजिकल प्लस डिजिटल, इट बिकम्स फिजिटल। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एवरीथिंग ऑनलाइन जैसे कि बाकी और कंपनीज करती हैं, इन्होंने टेक, लोकल इंश्योरेंस एडवाइजर्स, विलेज एंटरप्रेन्योर्स, फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, एनजीओस, इन सबको कंपाइल किया।

एक फार्मर को कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा या सिर नहीं खपाना पड़ेगा, एक एजेंट होगा जो ट्रस्टेड होगा, जो उनको सही से ब्रीफ करेगा, एक लोकल एडवाइजर होगा जो सब यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करेगा, पॉलिसी जो है डिजिटल इशू की जाएगी, क्लेम्स जो है डिजिटली सपोर्ट किए जाएंगे. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन एंड दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग जो इस कंपनी ने करी. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड ग्राम कवर एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक. Stay tuned, feel good, feel live.

0: हटा दो।
1: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। बात करते हैं ग्राम कवर कैसे अलग है, व्हाट मेक्स ग्राम कवर डिफरेंट। देखिए, बहुत सारे जो इंश्योरेंस स्टार्टअप्स हैं वो इंश्योरेंस सेल करते हैं, बट ग्राम कवर यहाँ पर एक्सेस सेल करता है। इसका सबसे बड़े डिफरेंशिएटर्स हैं कुछ। फर्स्ट इज रूरल फर्स्ट अप्रोच। यहाँ पर मोस्टली इंश्योरटेक जो कंपनीज हैं वो अर्बन कस्टमर्स के साथ स्टार्ट होती हैं, ग्राम कवर जो है गाँव से स्टार्ट होती है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, सो दे आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। जो वहाँ पर वहाँ की लाइवलीहुड के हिसाब से चीज़ें हैं वैसे इन्होंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे क्रॉप का इंश्योरेंस, लाइव स्टॉक आपके पास है उसका इंश्योरेंस, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, यूनिक बट गांव में जाकर आप देखेंगे तो जरूरी है। 60% से ज्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है, लगभग लगभग इतना आप बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर आया, टेक विद ह्यूमन ट्रस्ट। तो यहां पर इन्हें एक ऐसा इंसान भी दिया गया जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी देख सके और उनका एक्सप्लेन भी कर सके। तो ग्राम कवर ने लोगों को एलिमिनेट नहीं किया, इंक्लूड किया, लोकल एजेंट्स को जो है एम्पावर किया, टेक के साथ उनको अलाइन किया और साथ साथ लोगों की हेल्प करी। वहां पर ट्रस्ट फैक्टर हो गया, टेक फैक्टर हो गया, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है उसको लो किया, तो टेक की मदद से यहां पर रिमोट विलेजेस तक पहुंचा जाना आसान हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लोकल एजेंट्स अपने साथ जोड़े जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। B2B2C मॉडल है इनका, तो यहाँ पर ये कंपनीज के साथ भी डील करते हैं और फार्मर्स के साथ भी डील करते हैं। B2B भी है, B2C भी है, FPOs के साथ काम करते हैं, कोऑपरेटिव्स के साथ काम करते हैं, एग्री कंपनीज के साथ काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं और डायरेक्टली फार्मर्स के साथ भी काम करते हैं। सो दैट इज अ यूनिक मॉडल, सो इट मेक्स कस्टमर एक्विजिशन फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझा पाया हूँ। आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। बिना किसी देरी के बात करते हैं ग्राम कवर के फाउंडर्स की। पहला नाम है जतिन सिंह, रोल है फाउंडर एंड डायरेक्टर। ग्राम कवर के पहले इन्होंने स्काईमेट वेदर सर्विसेज एक कंपनी स्टार्ट करी, जो जानी जाती है प्राइवेट वेदर इंटेलिजेंस कंपनी के तौर पर। उस लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। इनका एक्सपीरियंस जो है वेदर फॉरकास्टिंग में रहा, बट वहां पर इन्होंने देखा कि गैप है, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, जो कि फार्मर्स के द्वारा बियर किया जाता है। सो विच इवेंचुअली लेड टू द आइडिया ऑफ ग्राम कवर। इनकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्होंने मास्टर्स की डिग्री की इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी। एंड इनकी एक्सपर्टीज है एग्रीकल्चर, वेदर इंटेलिजेंस, क्लाइमेट रिस्क, रूरल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा नाम आता है ध्यानेश भट्ट, को फाउंडर एंड CEO। ध्यानेश भट्ट इस कंपनी को लीड करते हैं, इसके ऑपरेशंस एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी पार्ट को। पब्लिक इंटरव्यूज बताते हैं कि इनके जो फोकस एरिया हैं वो हैं रूरल इंश्योरेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक लेड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप। एंड यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज है बात करूँ, और भी कुछ फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, जिसमें अगला नाम जो आता है वो ऋषभ गर्ग का आता है, जिनको CTO के तौर पर जाना जाता है। ये यहाँ पर जो फिजिटल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल, उसको इनेबल करने में इन्होंने हेल्प करी है। सो गर्ग ने ये पूरा जो टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है इसको डिजाइन किया है, और फिजिकल जो वहां पर एजेंट्स हैं उनके हिसाब से इसको अलाइन किया गया है। अगला नाम आता है नीलम कुमार गुप्ता। नीलम कुमार गुप्ता इज अ फाउंडेशनल मेंबर ऑफ द कोर टीम। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनिशियली ऑपरेशनल पार्ट में रहा, टेक पार्ट में रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में रहा, पूरी कंपनी को खड़ा करने में रहा। और भी कुछ लोग हैं जो इनिशियली इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उनको क्रेडिट जाना चाहिए, जिसमें नलिन रावल हैं, स्वरूप बेरिया हैं एंड ऋषि राज वशिष्ठ भी हैं। तो कंपनी दोस्तों ऐसे बनती है, कंपनी ओवरनाइट नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन रिजल्ट आपको समटाइम्स ओवरनाइट नजर आता है, बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो इनके काफी सारे फेलियर्स रहे होंगे अपने अपने, इनके फेल्ड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बहुत सारी लर्निंग रही होगी, तब जाकर के लोग यहां तक पहुंचे और ये कंपनी बिल्ड कर पाए। दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्राम कवर। आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, फील गुड फील लाइफ। अगला पॉइंट आता है हमारा ग्राम कवर में, ग्रोथ ड्राइवर्स, ह्यूज अनटैप्ड रूरल मार्केट। भारत की रूरल पॉपुलेशन को अभी भी बहुत कम टैप कर पाए हैं लोग, याद रखिएगा। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनडिजर्व्ड इंश्योरेंस मार्केट्स में कंसिडर किया जाएगा इंडिया की रूरल पॉपुलेशन को। यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी इनके पास रहा, ठीक है, क्योंकि स्कीम्स ऐसी बहुत सारी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने अवेयरनेस तो बढ़ाई कि फसलों का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे आप कह सकते हैं एक पीआर या मार्केटिंग वाला काम कर दिया सरकार ने। तो वहां पर कंपनियां एक प्रोडक्ट लेकर, सोल्यूशन लेकर कि देखो जी, लोगों को बहुत मुश्किल नहीं हुई क्योंकि सरकार ऑलरेडी अवेयर कर रही थी। तीसरा पॉइंट आता है स्मार्टफोन एडॉप्शन। इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया, गांव गांव पहुंचा, तो लोगों को समझ में आया कि भाई बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पर ट्रस्ट किया जा सकता है इस फोन पे। और जिन कंपनीज को बात समझ में आ गई, उन्होंने स्मार्टफोन के जरिए ही अपने पूरे पूरे पोर्टल्स प्लेटफॉर्म तैयार करके रख दिए। पार्टनरशिप मॉडल बहुत अच्छा है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो इन्होंने खुद ने अपने ब्रांचेज नहीं खोली, खुद ने अपना प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया, कंपनीज की मदद से फार्मर्स को वहां पर अलाइन किया और उनको उनके हिसाब के प्रोडक्ट्स दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस ऑन ट्रस्ट। लोकल एडवाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके सामने एक बंदा मौजूद नहीं है तो थोड़ा सा वहां पर लैक हो सकता है, बट अगर सामने एक बंदा मौजूद है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपर बता रहा है, जिसको आप जानते हैं, घर से जानते हैं, तो आई थिंक इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ टूडेज कंपनी ग्राम कवर। मैटर करती है, हर एक प्रॉब्लम मैटर करती है, हर एक गैप मैटर करता है, इट्स जस्ट कि आप कितना फिगर आउट कर पाते हो। अब आप मुझे बताइए आपको आज की स्टडी कैसी लगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, अपने शो को यहाँ पर पार्क करता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम ऑल इज वेल, और ऑल इज वेल में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उस विषय पर हमने कई बार बात करी है, लेकिन इस प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि हर घर में हर कोई परेशान रहता है। मौसम जैसे ही बदलता है, फ्लू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। और आप भी देख सकते हैं कि आपके आसपास वाले क्लिनिक्स में पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है। पर मौसम बदलते ही ऐसा होता क्यों है? रीजन क्या है? ये फ्लू आखिर आता कहाँ से है और क्यों हमें इतना परेशान करता है हर बार, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि हमारे खास मेहमान हैं आज के। सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
4: सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम फ्लू की बात कर रहे हैं और अब जैसे कि बारिश का सीजन आ गया है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जैसे कि हर साल होती है, सो हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन लगी होती है फ्लू के पेशेंट्स की। अब ये फ्लू एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये बताएं, और फिर ये मौसम बदलने के साथ इतना ज्यादा क्यों आ जाता है?
5: तो मैम, बेसिकली मौसम बदलने से फ्लू का रिलेशन ये है कि जब मौसम बदलना कहते हैं, मतलब समर्स के बाद जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो वायरस जो एयर में हमारा सस्पेंडेड होता है, इसके लिए परफेक्ट एनवायरमेंट है टू ग्रो एंड टू स्प्रेड। क्यों? क्योंकि वायरस फ्लरिशेज और आई वुड से थ्राइव्स इन अ लो टेम्परेचर एनवायरमेंट। वो गर्मियों में आप कभी नहीं देखोगे कि अप्रैल मई में किसी को फ्लू हो रहा है, अनलेस उसका कोल्ड एक्सपोजर ना हुआ हो। तो यूजली वायरस जो होते हैं, यही फ्लू के जड़ के कारण होते हैं, वायरस इन्फेक्शन जिन्हें हम कहते हैं। तो जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है सीजन चेंज पे, तब ये ज्यादा आप देखते हो कि 1-2 सेकेंड, 2-3 स्प्रेड करता है, ये जंप करता है। तो यूजली मैम कॉमन वायरसेस होते हैं हमारे पूरे सस्पेंडेड एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, सच एज राइनो वायरस करके होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यूजली राइनो एंड इन्फ्लुएंजा आर द मोस्ट कॉमनली कॉजिंग वायरसेस कॉजिंग फ्लू इन्फेक्शंस।
4: अक्सर हम देखते हैं कि ये जो बुखार है या ये जो सीजनल फ्लू है, ये अपने साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स लाता है। तो सीजनल फ्लू और नॉर्मल बुखार जो कभी वैसे ही हो गया, उन दोनों को डिफरेंस कैसे पहचाने?
5: मैम, जो वायरल का जो इन्फेक्शन का जो फीवर होता है, यूजली मैम अगर सपोज करो कि वायरस का ना बेसिकली प्रॉपर्टी होती है अपने आप को चेंज करता रहता है, जिसको हम कहते हैं हमारी साइंटिफिक भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये मैम जैसे बार बार हर साल दो साल में अपना अपने एक मेम्ब्रेन को या अपने आउटर कवरिंग को ही चेंज करता रहता है टू बी एबल टू अवॉइड और इवेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब ताकि शरीर में ये आराम से स्प्रेड कर पाए। तो जब एक नया एंटीजेनिक ड्रिफ्ट से चेंज हुआ वायरस आपको अटैक करेगा, तो आपका फीवर एक हाई ग्रेड का आएगा, 101, 102, मे बी शायद कन्वेंशनल पैरासिटामोल को ये रिस्पॉन्स भी ना दे, बहुत ज्यादा आपको बॉडी एक होगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपसे काम नहीं होगा, सर दर्द होगा, ये सारी चीजें। और अगर ये अपर रेस्पिरेटरी के माध्यम से आएगा, यानी नाक से या गले से, तो गले में दुखन होती है, नाक का बहना होता है। और अगर ये थोड़े समय अनट्रीटेड रहे, तो ये नीचे भी अपने आपको ट्रांसग्रेस करता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ, ये फिर ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, जैसे कि खांसी में बलगम, और जो ऑलरेडी जो पीड़ित लोग होते हैं, जैसे एस्थमा या सीओपीडी, या जिनको निमोनिया पहले हो चुका है, जिनका स्ट्रक्चरली लंग डिजीज है, तो उनमें ये सांस की भी प्रॉब्लम कर देता है।
4: यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ के साथ चलती रहती हैं, और ये मुझे लगता है कि आज के समय में जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे आपने कहा कि गर्मी से थोड़ा ठंडा होता है, ये बहुत कॉमनली होता है। आप अपने ऑफिस में अपने आसपास लोगों को देखेंगे जिनको खांसी आ रही है और 4-5 दिन से नॉनस्टॉप आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इलाज आप खुद घर में कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? क्योंकि आपका इलाज अगर कहीं उल्टा पड़ गया तो प्रॉब्लम क्या बढ़ सकती है, ऐसी बातें भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वक्त है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और नॉलेज पार्टनर है हमारे SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आज फ्लू के बारे में, वो फ्लू जो मौसम बदलते ही हो जाता है और आपको लगभग एक हफ्ता तक तो परेशान करता ही है। कई बार ये ज्यादा भी हो सकता है या फिर इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा समय तक हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार ये बहुत कॉमन है और हम इनको बहुत लाइटली भी लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान से सोचा है कि ये मौसम बदलते ही आखिर हो क्यों जाता है, सर्दियों में या फिर ठंडे मौसम में ही क्यों होता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर रोहित, मौसम बदलते ही फ्लू हो जाता है, आपने कहा कि ये ठंडे मौसम में ही होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, अभी तक हम 41-42 के बीच में थे और अब अचानक से ये जो वेदर है ये 30 के आसपास पहुंच गया है, ठंड हो गई है, AC का इस्तेमाल लोग थोड़ा कम करने लगे हैं, अब ऐसे में बीमार बहुत कॉमनली हुआ जा रहा है। सो ये क्यों ऐसा वायरस, ये वायरस क्या है जो सिर्फ और सिर्फ ठंडे मौसम में ही होता है?
1: तो मैम, इसको समझने के लिए ना बेसिकली आप समझो कि अगर कोई वायरस पार्टिकल सस्पेंडेड है एयर में, मतलब मैं कहीं बैठा हूँ जहाँ पे किसी को है इन्फेक्शन, उसने खांसी करी, छींका या बात करी और उससे उसके वायरस जो है एयर ड्रॉपलेट से सस्पेंड हो गए एयर में। अब वो मैंने इनहेल करे या तो मेरे नोज के नोज की लेयर पे जाके उन्होंने डिपॉजिट हुआ या फिर मेरे गले की लेयर पे जाके डिपॉजिट हुए। अब क्योंकि अगर मैम सपोज करो वेदर थोड़ा कूल है या वेदर चेंजिंग है तो मेरी बॉडी एज इट इज स्ट्रेस में है, जो अडेप्ट करने में एनर्जी खर्च कर रही है टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वेदर। अब इस चक्कर में मैम क्या होता है, हमारी जो बैरियर मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे गले में या नाक में जो प्रोटेक्ट करते हैं हमको, वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो मैम वो जो अटैच्ड वायरस पार्टिकल है वो अगर मैम उसको वहाँ पे एक बैरियर अगर वीक मिलेगा तो इजीली मैम वो वहाँ से फिर ट्रांसफर होके वो अंदर चला जाएगा, जिससे फिर वो एक बारी सिस्टमिक उसने अपना एक बारी बेसिकली अपना प्रेजेंस जमा लिया तो फिर वहाँ पे मैम वो सिस्टमिकली स्प्रेड करके वो कहीं पे भी कुछ भी इन्फेक्शन जैसे होता है वो कर सकता है। इसके साथ क्या होता है मैम कि जब आपका फिर बॉडी अब वेदर से अडेप्ट हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब वायरस को भी एक हल्का सा ही वायरस, कोई भी अगर सपोज करो अगर एक राइनो वायरस है या कोई भी वायरस है उसको भी अगर लड़ने में अगर एनर्जी जा रही है तो जो थोड़े से जो घातक वायरस हैं वो भी सस्पेंडेड हैं, वो भी अटैच थे, अब उन्होंने भी एंट्री गेन कर ली तो इस चक्कर में मैम एक वायरस ने गेट खोल दिया दूसरे ज्यादा घातक वायरस के लिए कि उसकी एंट्री हो जाने पे अब मेजर सिम्टम्स उसकी वजह से आते हैं।
0: ओके, तो इसलिए मैम ये शुरुआत में था उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम आगे वालों से।
1: यूजुअली मैम यूजुअली यही पैथोफिजियोलॉजी होती है एक बीमारी वायरस इन्फेक्शन की। तो जब आपको मैम सर्दियां होती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हमेशा हैंड हाइजीन, जिससे कि आप अपने हाथ से अपने नाक पे या मुंह पे आप वो वायरस को ट्रांसफर ना करें। जब आप एक पब्लिक स्पेस पे हैं, चेंजिंग वेदर है, कोल्ड है और देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब लोग पीड़ित हैं तो अपना मास्क पहन के रखें। ये प्लस जब आप घर पहुंचे आपको लग रहा है आज आपका गला हल्का सा दुख रहा है, प्लस मैम ये वायरस का क्या है कि ये डजंट लाइक हॉट एनवायरनमेंट एट ऑल, ये उसमें फ्लरिश नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन जब आप देखते हो कि लोग स्टीमिंग क्यों करते हैं, कि जब आप बाहर से आए हो अंदर अभी तो आप इट इज एडवाइजेबल कि आप एक क्विक 5-3 मिनट्स का एक सेशन नेजली या ओरली एक अच्छा स्टीम का सेशन करोगे तो आपको चांस प्रोग्रेस करने का बीमारी का कम हो जाता है।
0: बिल्कुल, सो यही चीज़ें जो थी कोविड में जनरली हमें कही जाती थी कि आप स्टीम लीजिए, गागल्स कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी गर्म चीज़ों से इस वायरस को खतरा है वो ख़त्म हो जाता है और ठंडी चीज़ों में ये पनपता है। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो मौसम अगर ठंडा है तो फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ऐसे में आपको खुद को, अगर आप इन्वायरमेंट वाइज गर्म नहीं रख पा रहे हैं तो अपने आप को एटलीस्ट वो चीज़ें या थेरेपीज दीजिए जिससे आपकी बॉडी गर्म रह सकती है, जैसे कि आप गागल्स कीजिए, स्टीम लीजिए या हल्का गुनगुना पानी भी पीजिए तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर मुखर्जी, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लू होने के। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको जो फ्लू है वो आगे जाकर कई बार निमोनिया में भी बदल जाता है, विच इज़ वेरी रिस्की। बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई है पर बच्चों की थैंकफुली वैक्सीनेशन है, सो उससे निमोनिया जो है बच्चों में आजकल काफ़ी रुक रहा है।
1: तो यूजली मैम आपने देखा होगा जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बिलो द एज ऑफ 5 or 6-7 ईयर्स हम लोग उनकी वैक्सीनेशन बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं। दैट इज द रीजन जिस घर में बच्चे वैक्सीनेटेड हैं दे डोंट फॉल वेरी सिक और क्रिटिकली सिक नहीं होते, उनको एक पासिंग वायरल फ्लू इन्फेक्शन होता है एंड देन दे आर एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। एल्डरलीज में बात करूं मैम तो एज वी एज वी फॉरगेट अबाउट वैक्सीनेशंस, वी रिलाई ओनली ऑन आवर बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे हम लोग अपना बाहर निकलना कम करेंगे, डाइट थोड़ी ध्यान रखेंगे, बट वैक्सीनेशन में बहुत ही क्रिटिकल है इस चीज में, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन जो आपके अंदर आने वाला है उसकी अगर प्रेपरेशन मैंने अगर आपकी बॉडी को करवाई है तो एटलीस्ट कुछ तो फाइट माउंट करेगा बॉडी, तो एटलीस्ट कल को इन्फेक्ट अगर आप होते भी हो तो सिवियरली इन्फेक्ट नहीं हो गए आप.
0: ओके,
1: तो यूजली वैक्सीनेशन का रोल ये नहीं है प्रिवेंट करना इन्फेक्शन, इट इज टू लेसन द लोड ऑफ इन्फेक्शन इंसल्ट जो होने वाला है एंड टू प्रिपेयर योर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्वेडिंग वायरस पैथोजन. तो ये वैक्सीनेशन का मैम अपना प्रिंसिपल है. एंड यूजली आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि हु शुड टेक केयर मोस्ट इन दीज सिचुएशन, सो मैम आई वुड सजेस्ट एनीबॉडी हु हैज इम्यूनिटी, हुज इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे कि एस्थमेटिक्स हो गए, या कोई अगर सीओपीडी का पेशेंट है, या फिर किसी को अगर पुराना लंग का इन्फेक्शन बार बार होता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको लंग्स के लिए दवाइयों के लिए बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, इनको तो प्राइमरली इनको वैक्सीनेट ईयरली जुलाई में होना ही चाहिए, सो दैट ये जो नेक्स्ट 8-9 months है चेंजिंग वेदर के, इसमें इनकी बॉडी थोड़ी प्रिपेयर्ड रहे.
0: बिल्कुल,
1: डायबिटिक्स हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, इन सबको
0: इनको ज्यादा चांसेस होते हैं बार बार इन्फेक्शन होने के. और डॉक्टर साहब, क्या बार बार इन्फेक्शन होता है, जैसे अभी बरसातों में हुआ एक बार, फिर 3-4 महीने बाद सर्दी आएगी, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इन्फेक्शन.

0: रखना जरूरी है. दूसरा मैम अपना एक्सरसाइज करनी जरूरी है, क्योंकि ये यूजली रेस्पिरेटरी अफ्लिक्शन होता है, तो आपको अपना कार्डियो और पल्मोनरी जो थ्रेशोल्ड है वो अच्छे से हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए, ताकि अपनी एक्सरसाइज करते रहोगे तो अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होगा, बॉडी रिकवर कर जाएगी. डाइट हो गया, एक्सपोजर टू एनी आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स, बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए,
1: खासतौर पर से बदलते मौसम में ठंड आने पर या हल्का ठंडा मौसम होने पर. तभी कहा जाता है कि अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि डाइट का असर सीधा आपकी बॉडी को ठीक फील कराने में होता है. बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. खास तौर पर से हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि आजकल लोग खुद ही मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का या तो वक्त नहीं होता या फिर डॉक्टर की लंबी लाइन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं. बट एक्चुअली में करना क्या चाहिए, इस सिंपल से दिखने वाले फ्लू में आपको क्या करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आप किसी भी शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं. दुनिया के किसी भी कोने में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातचीत चल रही है फ्लू के बारे में. फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फिर और कोई वायरस जब अटैक करता है बॉडी पे तो आप हो जाते हैं बीमार. लगभग एक हफ्ता इसका असर रहता है इन जनरल केसेस. लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए, ये कोल्ड और कफ बढ़ जाए, तो ये निमोनिया भी बन सकता है. अब ये निमोनिया बन सकता है या फिर आप इसको लेकर ज़्यादा सतर्क हैं और खुद ही दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है? हर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में धड़ल्ले से मिल रही एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में शायद आपने विस्तार से कभी सोचा नहीं होगा. तो आज सोचिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. तो डॉक्टर रोहित, मेडिकेशन की बात करते हैं. जनरली क्या होता है, जब बुखार होता है तो हम पैरासिटामोल ले लेते हैं. एक दो दिन तक तो हम इसी से ही काम चला लेते हैं. खांसी जुकाम होते हैं तो खुद ही जाकर दवाइयाँ जो है वो कफ सिरप लेकर आते हैं और पीना शुरू कर देते हैं. अब जब 3 दिन तक इन चीज़ों का असर नहीं दिखता, फिर हम केमिस्ट के पास जाके जनरल केसेस में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं. 3 दिन का वो कोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, आपको थोड़ी नींद भी आती है, आप थोड़ा थका हुआ भी फील करते हैं, पर 3 दिन के बाद आप काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर सकते हैं. क्या ये तरीका ठीक है केमिस्ट के पास जाकर दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स लेने का फ्लू में?
1: तो यूजली मैम, कभी भी किसी को फ्लू होगा तो पहले जो सबसे प्रमुख सिम्टम आएगा वो बॉडी एक आएगा, फॉलोड बाय फीवर होगा, थोड़ा सा गले में दर्द होगा या फिर नाक का स्टफीनेस हो जाना होगा. तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि फर्स्ट डे यू शुड लाइन अप आउटसाइड अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक. आप इसको बेसिक मैनेज कर सकते हो एक पैरासिटामॉल से. हमारे घर पे होना ही चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स, पैरासिटामॉल होनी चाहिए. हमारे पास स्टीम के लिए कार्बोल की कैप्सूल्स आती हैं, जो मेंथॉल होता है जिनके अंदर. आप क्लोव भी डाल सकते हो, आप जीरा डाल सकते हो. ये सारे देसी नुस्खे हैं जिनसे आपके गले में अटका हुआ जो बलगम है वो क्विकली इसको बाहर निकालेगा, जिसको म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहते हैं हम लोग. So it helps in doing that. जिससे initial viral load neutralize हो जाता है और वो expel हो जाता है. At least basic जो हम कर सकते हैं. अगर मैं assume करो ये fever day 1, day 2, day 3 तक अगर persist कर रहा है, यानी high grade fever है, 101, 102 का है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसके बाद अब आप फार्मेसी पे जाके अपनी दवाई लो. आई वुड सजेस्ट यू रीच योर जो आपका हाउस होल्ड डॉक्टर है, ही विल प्रॉब्ली मे बी स्टार्ट यू ऑन मे बी एन एंटीबायोटिक. बिकॉज इफ बाई day 3 द फीवर इज नॉट सेटलिंग एंड इट इज ओनली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स हेल्प. आप उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ सकते. तो मे बी ही विल स्टार्ट यू ऑन अ बेसिक एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री. एंड अज्यूम करें मैम कि उसके बाद भी day 4, day 5 हो गया, 2 दिन एंटीबायोटिक के भी हो गए, फीवर सेटल नहीं हो रहा है, खांसी है, देन आई वुड सजेस्ट टू मे बी प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन सच एज ब्लड टेस्ट और अ चेस्ट एक्सरे. आप अपने आप से नहीं करा सकते ये, क्योंकि ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही डिस्कस करने के बाद आप नतीजे पे आते हो कि किसी को एक्सरे कराना है या नहीं कराना है. आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन करानी है, करानी है, एंटीबायोटिक कौन सी स्टार्ट करनी है. हर क्लास ऑफ पेशेंट के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है. इट इज नॉट लाइक वन शू फिट्स ऑल. कोई किडनी पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई एज ग्रुप अलग है, कोई फीमेल है, कोई प्रेगनेंसी में है. सो एवरी एंटीबायोटिक हैज टू बी चोजन एग्जैक्टली एज पर द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. दवाई मैम कभी भी क्लिनिक फार्मेसी से डायरेक्टली जाके आप एक फार्मासिस्ट की सजेशन से तो नहीं लेनी चाहिए.
0: ये रिस्की हो जाता है बहुत सारे केसेस में. और बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि ये आदत ही होती है कि मेडिकल स्टोर से जाके ले लिया और उसके बाद काम पे चले गए.
1: हम 10 में से 9 बार आप शायद निकल जाओगे, बट एक बार अगर आप उसमें अगर आप फंस गए तो दैट विल लीड टू सम ऑर द अदर इवेंचुअलिटी, जिसमें आपको फिर मेजर कोई प्रॉब्लम होने का चांस है.
0: इसमें क्या नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आपको ये सारी आदत पड़ गई कि आप खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं?
1: तो मैम हर बारी तो बॉडी माउंट नहीं कर पाएगी वो फाइट जो जरूरी है. एक ना एक दिन मैम वो इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जब शुरू में होता है तो वो सेल्फ लिमिटिंग ही होता है. और अगर कोई बहुत ही घातक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए या बी है, वो भी चेंज्ड इन्फ्लुएंजा ए बी जो अभी नया सीजन में आया है, तो मैम वो हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करा के निमोनिया तक प्रोग्रेस करा दे. आपको इनिशियली पता ही नहीं चलेगा कि निमोनिया हुआ है नहीं हुआ है, और आप एंटीबायोटिक ले रहे थे किसी के कहने पर जिसने एग्जामिन भी नहीं किया. तो बाय द टाइम यू रीच टू अ डॉक्टर हु इज इन अ हॉस्पिटल और वो एक्सरे कराता है, तो आपको पैच दिखना शुरू हो जाता है एक्सरे पे. इन दैट केस नाउ यू आर नोवेयर. मतलब अब आपको इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे आपको एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल्स एडवाइज हो जाएंगी, आपके ब्लड टेस्ट बढ़ जाएंगे, आपके शायद मे बी CT कराना हो, बलगम की जांच करानी हो. तो ये अननेसेसरली अवॉइड हो सकता है अगर आप टाइमली एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डॉक्टर से अगर आप लो.
0: जी बिल्कुल, यानी एक अच्छे डॉक्टर से मिलना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी हो या छोटी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. डॉक्टर रोहित, मैं जानना चाहती हूँ कुछ कफ सिरप्स के बारे में, कफ सिरप या फिर कुछ ऐसे सिरप्स जिनको हम खांसी जुकाम में इस्तेमाल करते हैं, हम खुद जाते हैं और खुद खरीद लेते हैं। अब बहुत सारे कफ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है, आपको नींद आती है, और ऐसे में अगर आपको खांसी जुकाम है और आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं या एंटी एलर्जिक कोई दवाई आपने ले ली, तो उसके बाद आप ना ड्राइव कर सकते हैं ना आप काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि खांसी जुकाम की दवाइयों में इतनी ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है?
1: तो मैम, हर कफ सिरप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स केमिकल्स जो होते हैं ना, उनका अलग एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो जैसे मैम, एक ड्रग है, लेट्स से ए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ड्रग है ए जो कफ सिरप ब्रांड के नाम से आता है, वो उसका काम है बलगम को निकालना, सांस की नलकियों को खोलना और बेसिकली कफ को सेंट्रली दिमाग से सप्रेस करना। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पेशेंट के लिए हुआ। दूसरा होता है मैम जो ड्राई कफ होता है, लेट्स से वो एक ड्राई कफ किसी रीजन से है जिसमें कोई बलगम ही नहीं बनता है, तो उसको मैम हम लोग सप्रेस फिर अगेन सेंट्रली करते हैं, यानी ब्रेन से करते हैं, तो वो थोड़ा ड्राउजी करता है। अब इस सोचो मैम, इस ब्रांड की दवाई को मैंने वो दे दिया उस पेशेंट को जिसको खांसी बलगम वाली थी, तो ये मैम ये कौन डिसाइड करेगा किसको कौन सी लेनी है? तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। अब एक फार्मासिस्ट को इतनी नॉलेज तो होगी नहीं, वो तो मे बी शायद जो दवाई सबसे ज्यादा निकल रही है, चल रही है, जो पड़ी हुई है शेल्फ में, वो दे देगा आगे। अब उस पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली कि पुरानी उसको कोई मेडिकल बैकग्राउंड है कि नहीं है, उसका वर्किंग ऑक्यूपेशन कैसा है, बहुत ही क्लिनिकल या फिर बहुत ही प्रिसीजन वाला है, तो उसको बी ब्रांड की दवाई देनी ही नहीं है। सो मैम, एक और ब्रांड की दवाई आती है जो सी होती है, तो इस ब्रांड ऑफ सी मेडिसिन में मैम किसी किसी को बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। तो ये जब होती है तो बता के रखना होता है पेशेंट को कि हाथ में कंपन, घबराहट, दिल का धड़कन बढ़ जाना, महसूस होना हो, तो ये बंद होनी चाहिए। अब पेशेंट ने अगर एक दो चम्मच लिया और ये हो रही है, तो उसके बाद उसको दोबारा डोज नहीं लेनी, ये बताना होता है। तो मैम ये सारी चीजें एक डॉक्टर के साथ बैठ के टेबल पे कंसल्ट हो सकती हैं। ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेके घर आ जाओगे एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर अ डे और टू, एंड बाय डे टू यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे प्रोग्रेस कर चुकी है मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट है। तो जो बीमारी का साइड इफेक्ट जो था वो तो अलग, अब एक दवाई का भी साइड इफेक्ट आ गया। तो ये चीजें मैम,
0: तो ये तभी खुद से जो दवाइयां ले लेते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो दवाई है, आपके घर में बच्चा या बड़ा बीमार है, उसको वो प्रिस्क्राइब की गई है, जरूरी नहीं है कि वो ही कफ सिरप आपको भी सूट करे। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत सारी और भी बातें हैं, आगे बात करेंगे वायरल या फ्लू को लेकर वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है और किस उम्र में लगानी चाहिए, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में, खास तौर पर से फ्लू बदलते मौसम में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर किसी को कभी ना कभी तो परेशान करती है। लेकिन अगर ये फ्लू बहुत ज्यादा होता है तो फिर इसका सोल्यूशन है वैक्सीनेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए वैक्सीन हैं मार्केट में, लेकिन वैक्सीन अगर आपने लगवाई नहीं है तो फिर कैसे बच पाएंगे। सो यही सारी बातें हम जान रहे हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी से, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर रोहित, वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन जो है वो अपने आप में एक रामबाण कहते हैं जिसको, कि अगर आपने लगवा ली तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि किस उम्र में लगवानी चाहिए। जैसे बच्चों में जनरली इन्फ्लुएंजा के डोजेज लगी होती हैं और आजकल जो चार्ट बन रहा है उसमें निमोनिया की भी वैक्सीन होती है, लेकिन बड़ों में आते आते आजकल जो हमारी जनरेशन है इनको शायद बचपन में हम लोगों को नहीं लगी है सारी वैक्सीन्स। तो क्या उम्र होती है फ्लू से बचने की वैक्सीन की और कितने ड्यूरेशन में लगवानी चाहिए?
1: मैम, बच्चों में तो खैर वैक्सीनेशन फ्लू की कवर होती ही है, अप टू द एज ऑफ 5 तक तो चलती ही है। उसके बाद मैम आई वुड सजेस्ट जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं ईयरली एक वैक्सीन हमारी जुलाई में लग जानी चाहिए बच्चों को, सो दैट उनको रिपीटेड ईयरली इन्फेक्शंस ना हो, स्पेशली उन बच्चों में जिनको एस्थमा है या जिनको एलर्जी है या जिनको कोई भी ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से वो शायद उनकी इम्यूनिटी डाउन है, या मे बी शायद स्टेरॉइड्स पे हैं या मे बी शायद किसी और मेडिसिन पे हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी लो चल रही है, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि मैम ग्रोथ
0: ज्यादा लोगों में आ जाते हैं
1: मैम, जहाँ पे ग्रोथ अगर हैम्पर नहीं चाहिए अपने बच्चे की, जिसमें है कि 12 महीने उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, एक क्लासिकल ग्राफ अपवर्ड रहे, तो आप नहीं चाहोगे बच्चा कभी भी ज्यादा समय के लिए बीमार रहे। तो आपको वैक्सीनेशन करा के अगर एक वो आपको एक प्रॉब्लम फ्री पीरियड मिल रहा है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। रही बात मैम अबव 18, तो यूजली मैम अबव 18 का अब इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो फिजिशियंस हैं वो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि ईयरली जुलाई में लगा लेनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोफेशन कैसा है, आपका वर्क कल्चर कैसा है, या फिर आपकी इम्यून बॉडी का क्लिनिकल हिस्ट्री कैसी है। अगर आप डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, रिपीटेडली डायलिसिस पे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, या आपका पब्लिक इवेंट्स पे आपका रहता है एक्सपोजर रहता है, तो यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड सो दैट टू अवॉइड कि आपका कभी भी सिवियर इन्फेक्शन ना हो। यूजुअली मैम इसकी कोई एज नहीं डिफाइंड है इसमें, इट इज एडवाइजेबल एज पर पेशेंट टू पेशेंट। यू कैन हैव एनीबॉडी टेक द वैक्सीन एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल, जिसमें ये है कि बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कल को इन्फेक्शन होगा तो बहुत सिवियर नहीं होगा, बहुत ही माइल्ड होगा, ओपीडी बेसिस पे ही या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन पे या घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: यूजली मैम वैक्सीनेशन का अप टू द एज ऑफ 60-65 तक यही रहता है, बट अब 65 के अगर ऊपर चले जाते हो तो डिपेंडिंग ऑन अगेन ऑन हिस्ट्री मैम, सपोज करो किसी को किडनी डिजीज ही नहीं है, एस्थमा नहीं है, डायबिटिक नहीं है, दैट मींस वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, बट स्टिल इट डजंट मीन कि उसको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। नाउ ही हैज एज्ड, हिज ऑर्गन्स हैव एज्ड,
0: सो ऑलरेडी वो एक इम्यूनिटी तो वीक
1: हो ही गई है, सो इवन दे शुड टेक वैक्सीन, जो कि हमारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, जो मैम एवरी सेकेंड और थर्ड ईयर हमारी वैक्सीन का जो स्ट्रेन होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये लोग हमेशा अपडेटेड वैक्सीन जो होती है अपने डॉक्टर से पता करके कौन सा स्ट्रेन का वैक्सीन लगवाना है वो जुलाई अगस्त में लग जाना चाहिए।
0: यानी हर साल आपको ये लगवा लेना चाहिए, और एज कोई भी हो, आप बच्चों की जो उम्र है 10-11 साल से शुरू करके हम 70 तक आराम से 70-75 जैसे भी डॉक्टर,
1: as long as you are my life, I would say कि वैक्सीन अगर लग जाए तो कोई आपको नुकसान है ही नहीं वैक्सीन का।
0: बिल्कुल, यानी वैक्सीन लगवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासतौर पर से फ्लू से बचने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो देखा है अभी तक फ्लू हर किसी को कभी ना कभी तो इफ़ेक्ट करता ही है, और उस इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जो कि बहुत ईजिली आपके डॉक्टर लगा सकते हैं आपको और बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी तरफ तो ज़रूर बढ़ लेना चाहिए।
1: एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मैम, जैसे मेरी डेली प्रैक्टिस में जैसे मैं निमोनिया के पेशेंट्स देखता हूँ, तो मैंने अगर मैं एक कंपैरेटिव एक ग्रुप्स बनाऊं पीपल हु आर वैक्सीनेटेड वर्सेस पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो जो अधिकतर लोग जो एडमिट होते हैं 99% जो लोग होते हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप से होते हैं, 1% या 2% होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हो, या उनका शायद कोई अंडरलाइन कोमॉर्बिड डिजीज जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर या रिकरेंट किडनी की वजह से डायलिसिस हो या हॉस्पिटल एक्सपोजर है, तो वो कभी निमोनिया की गिरफ्त में आ गए और वो एडमिट हो गए। नहीं तो 99% मैम वही लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, क्योंकि पहले वायरस अंदर आता है फिर वो बैक्टीरिया को अंदर आने देता है और फिर वो अंदर बैक्टीरिया जो है पूरा अपना निमोनिया की तरफ उसको ले जाता है पेशेंट।
0: जी बिल्कुल, यानी वैक्सीन के बहुत से फायदे हैं, तो आगे कोई प्रॉब्लम बड़ी ना हो उससे बचने के लिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं टीनएजर्स की या बच्चों की, अगर इनको हम फ्लू की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे जिससे बच्चा जो है वो दो चार दिन या फीवर आएगा? जनरली वैक्सीन्स में ये होता है।
1: हम यूजली ये वैक्सीन्स ना लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं, बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि इनके अंदर एक वायरस पार्टिकल होता है जो लाइव होता है, बट वो बहुत ही उसको सबड्यू कर दिया गया होता है कि ताकि वो क्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं करा सकता, बट सब क्लिनिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि हल्का सा बॉडी एक आध दिन का या मे बी रनिंग नोज हो। इट इज सो एज टू चैलेंज द बॉडी। जब बॉडी चैलेंज होती है तभी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो यूजली मैम ये उस पेशेंट में अगर आप लगाओगे जिसको कोई अगर एलर्जी है तो बहुत देख के लगाना होता है, बता के लगाना होता है। अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आप उसको लगाओ, मे बी एक दिन का उसको आप बता सकते हो कि घर पे अगर ये सिम्टम्स आएंगे तो एक पैरासिटामोल लेनी है। और कोई इसका मैम थर्ड साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई।
0: बिल्कुल, यानी बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब साइड इफेक्ट ही किसी चीज के इतने खास नहीं है और आप इससे बच भी पा रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो इसकी तरफ बढ़ना जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद एक खास सोल्यूशन आपके लिए, कैसा होना चाहिए लाइफस्टाइल, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें चल रही हैं फ्लू के बारे में। फ्लू यानी मौसम बदलते ही होने वाला इन्फेक्शन, जो कि बहुत ईजिली आपको कोल्ड का फीवर दे सकता है, बॉडी एक दे सकता है, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित मुखर्जी हैं, हमारे खास मेहमान, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। सो डॉक्टर रोहित, अब मैं चलते चलते आपसे सिर्फ दो तीन चीज़ें ही जानना चाहती हूँ कि आखिर जब किसी को फ्लू हो जाता है सो वो ऐसी सबसे बड़ी गलती क्या करता है जो बहुत नेगेटिव हो जाती है उसके लिए।
1: मैम, यूजली जो मैं ओपीडी में इनकाउंटर करता हूँ, जो सबसे बड़ी गलतियाँ लेके पेशेंट मेरे पास आते हैं कि खुद ही सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं भाई, डे 3, 4, 5, 6, 7 तक करते हैं, फिर एक लोकल क्वैक के पास जाके कोई बहुत ही भारी एंटीबायोटिक लेके उसको लेके आते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते और वो तब तक प्रोग्रेस कर चुकी होती है बीमारी टू दी स्टेज ऑफ निमोनिया और मे बी समथिंग एल्स, जहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ ऐसी ना करें। जैसे मैंने बताया कि डे 2 तक घर पे अपना बेसिक फर्स्ट एड केयर, पैरासीटामोल, स्टीमिंग, बाय डे 3 अपना लोकल डॉक्टर को दिखा के, बाय डे 5 तक है तो फिर इन्वेस्टिगेट करके इसको हम लोग टाइमली चेक करके इसको प्रोग्रेस नहीं होने देंगे फिर हम। सेकेंड मिस्टेक है मैम कि जो मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग कभी कभार जब हमें जो एडल्ट मेल्स हैं वो कहते हैं कि सर कभी कभार हमने ब्रांडी ले ली या रम ले लिया, तो मैम वो इट्स आई वुडंट से इट्स क्या कहते हैं इट्स मिथ है, लेकिन मैम ये चीज़ कोई कोई डिफाइंड या फिर कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ब्रांडी से या रम से कहीं पे भी फ्लू ट्रीट होता है। इनफैक्ट रादर अल्कोहल ओनली गोज ऑन टू डिप्रेस योर इम्यूनिटी साइकिल, जो थोड़ा सा भी फाइट करने की जो माउंट करने की कोशिश कर रही थी वो सप्रेस हो जाता है, जिससे कि अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑनस्लॉट, नेक्स्ट वायरल का जो है बैक्टीरियल इन्वेजन है वो और ईजी हो जाता है बॉडी के लिए। थर्ड में मिस्टेक है कि आप अपना क्या कहते हैं खुद ही घर पे आप इसको वेट कर रहे हो, या आप एस्थमेटिक हो या फिर आपकी कोई इम्यूनिटी आपकी वीक है, स्टेरॉइड्स पे हो, डायलिसिस पे हो, सीओपीडी पेशेंट है और आपके डॉक्टर्स के कहने पे भी आपकी जो दवाइयाँ हैं वो ठीक से नहीं चल रही हैं, आप ले नहीं रहे हो घर पे, तो ये चीज़ों से मैम आपका अंडरलाइंग लंग का जो आपका प्रिजर्व है रिजर्व है वो पुअर होता जाता है, जिससे अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो आपका बिल्कुल ही सांस जो है फूलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो दवाइयाँ लिखी हैं डॉक्टर से वो बिना उनके बोले बताए कम भी नहीं करनी, बंद तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये तीन चीजें
0: जी, यानी दवाइयां मिस ना करें और साथ ही अल्कोहल की तरफ ना जाएं। ब्रांडी जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये ठंड में ले लेनी चाहिए ठीक रहता है, तो जब आप ठीक हैं तब अगर ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जब आप बीमार हैं और फिर इसको ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए? जैसे अक्सर हमने देखा है स्कूल जाते हुए बच्चों को पेरेंट्स छुट्टी नहीं करवाते हैं कि अटेंडेंस कम हो जाएगी, लेकिन उनको कोल्ड कफ रहता है, तो क्या ये ठीक है?
1: मैम मेरी राय यही है कि बच्चे अगर बात कर रहे हैं घर पे, हम लोग जो कर सकते हैं मैम उनकी डाइट में उनका विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के उनका विटामिन डी पूरा रखना ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक रखना ज़रूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में होने चाहिए, ना कि फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड। डेफिनेटली मैम अगर बच्चे को कोई फीवर विद अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे छींकें हैं, खांसी है, उनको मैम अवॉइड करना चाहिए भेजना स्कूल, ताकि दूसरे बच्चों को ना हो, नहीं तो आप देखें मैम इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन कि एक को होता है और पूरी क्लासरूम इज caught in the grip of viral infections. Secondly, मैं कहूँगा कि हमारे जो घर पे हम जो चीज़ें कर सकते हैं टू सेव ourselves फ्रॉम दिस वेरी कॉमन इन्फेक्शन विच मे प्रोसीड टू अ सीरियस इन्फेक्शन, कि हम लोग मैम अपना एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, अपनी मेडिसिन अगर कोई चल रही हैं तो टाइमली लेते रहें, वैक्सीनेट बिल्कुल कराना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। एंड लास्ट थिंग इज कि अगर कभी घर पे अगर हम लोग आते हैं बाहर से किसी पब्लिक गैदरिंग से या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, जब सीजन चेंज चल रहा है, जब पता है कि आसपास लोग खांस रहे थे, तो एक क्विक सेशन ऑफ स्टीमिंग विद मे बी क्लोव और मे बी जीरा, ये हम करके 5 to 7 minutes करके ये हम लोग अपने आप को थोड़ा सा एटलीस्ट प्रोटेक्शन इम्पेयर कर सकते हैं, अपने इम्पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे कोई वायरल लॉज हुआ था तो वो डीनेचर हो जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए।
0: बिल्कुल, यानी वायरल को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप जनरली अवॉइड कर जाते हैं प्लीज़ मत कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। सो डॉक्टर रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपने बहुत जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है ना वायरस को लेकर, वायरल इन्फेक्शंस को लेकर, फ्लू को लेकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चीज़ें आपने बताई कि किस प्रोसेस से ठीक होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
0: तो फिलहाल फ्लू के बारे में बात हमने कर ली है, उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने मैसेजेस में बता सकते हैं अपनी राय 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते प्रोग्राम ऑल इज वेल में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। फील गुड फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय जगत की एक बेहद सम्मानित हस्ती, जिनका नाम है राम जीवाली। राम जीवाली सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वहीं एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप थिएटर वाला के माध्यम से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, कई चर्चित नाटक भी लिखे हैं और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच को एक नई पहचान देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको वर्ष 2011 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा यंग प्लेराइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर, playwright and teacher, he is also a talented actor who has appeared in films, web series and television projects such as Delhi Crime, Commando, Sahib Biwi or Gangster 3 and recently The Kerala Story 2, where he portrayed the role of Neha's father. थिएटर के प्रति इनकी लगन, स्टूडेंट्स को दिया गया इनका मार्गदर्शन और कला के प्रति इनका समर्पण इनके एक कंप्लीट थिएटर पर्सनालिटी को बनाता है। आज हम इनके सफर, इनके अनुभवों और थिएटर से लेकर सिनेमा तक की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज ज्वाइन मी इन गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्टर, प्ले राइट, डायरेक्टर, थिएटर मेंटर एंड एनएसडी प्रोफेसर श्री राम जी बाली जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
5: शुक्रिया बहुत बहुत।
4: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई?
5: मेरे सफर की शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ रामलीला से हुई है। जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे आसपास काफी रामलीलाएं होती थी
4: जी।
5: तो बहुत छोटे थे तो देखने जाते थे, थोड़े से बड़े हुए थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई
4: जी। मतलब आपका बचपन से ही रुझान एक्टिंग की तरफ ही था?
5: एक्टिंग की तरफ रुझान था बचपन से ही, और सिनेमा देखते थे तो उससे ही प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ का कोई फोक थिएटर तो हमने देखा नहीं था। तो और फोक थिएटर के नाम पे हमारे आसपास अगर कुछ हो रहा था तो वो रामलीला थी
4: जी। जी जी। तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एक्टिंग में हो या कोई ऐसी चीज में हो जिसके प्रति आपका थोड़ा और इंटरेस्ट आया और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है, या ये खुद एक मन से आए, एक बच्चे का ये था भाव?
5: मुझे लगता है कि ये बच्चे के मन का भाव ही था
4: जी,
5: जो आगे आया। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे किसी की ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई जुड़ा हुआ हो
4: जी।
5: और मैं बहुत सिनेमा से बहुत मैं कहूँ प्रभावित था, बहुत इंस्पायर था। तो उन दिनों ये राजेश खन्ना और इन लोगों की फिल्में, आराधना और ये टीवी पे आती थी और या चित्रहार आते थे, तो उसी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे लगा
4: जी। तो सर, जैसे एनएसडी तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और क्या ये आपका कुछ बचपन का ही सपना था कि आपने एनएसडी जाना है, या धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला इन सब चीजों के बारे में?
5: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि एक्टिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है। बचपन में तो रामलीला करते रहे और एक्टिंग का मन में जैसे जैसे रामलीला की, बड़ी बड़े लोगों के साथ काम किया तो लगा कि इसमें बहुत मजा सा आता है, कुछ ये अलग चीज है
4: जी।
5: अच्छा, मैं गा नहीं सकता था, मुझे डांस नहीं आता था, तो लगता ये मैं कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस का अंदर कहीं रहा होगा। और मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, स्कूल्स में छोटी छोटी स्किट्स होती थी
4: जी।
5: तो एक दो दोस्त थे उनके साथ मिलकर हम करते थे, तो वो कहीं रहा। और बाद में आते आते जब हम 10th 12th तक पहुंचे तो किसी एक दोस्त ने, जो मेरे थोड़े बड़े थे, सीनियर थे, कॉलेज और दिल्ली जाते थे पढ़ने, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो फिर तो ट्रेनिंग लो। और उन्होंने फिल्मी कलियां और इस तरह की, जब हम कॉमिक्स किराए पे लेते थे, वो जमाना था, तो उस वक्त वो फिल्मी कलियां में कुछ एक्टर्स के इंटरव्यूज आते थे कि कोई एफटीआई से पास आउट है
4: जी।
5: कोई एनएसडी से पास आउट है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं एनएसडी करूंगा, क्योंकि कुछ सोर्स ही नहीं था, कुछ कनेक्शन ही नहीं था, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, लेकिन उनको पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, चेस की भी लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं
6: जी।
5: तो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए, तो ऐसा हो गया पॉसिबल।
6: वो एक लाइन पकड़ ली फिर आपने?
5: हाँ, वो पकड़ी गई। वो ऐसे कि मेरे एक दोस्त थे, पता चला कि एनएसडी तो हम सोच ही नहीं पाते कि इतने नसीरुद्दीन शाह, इनके नाम
6: बहुत
5: सुनते
6: बड़े
5: थे।
6: बड़े एक्टर,
5: हाँ, राज बब्बर, ये लोग निकले हैं, तो हम कहाँ सोचते थे कि फरीदाबाद के, तब इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी दिल्ली से कि कहाँ कौन जाएगा एक्टिंग कोर्स करेगा। बड़ी मुश्किल से एक दिन मेरे को किसी ने उसका एड्रेस ला के दिया एनएसडी का, मेरे एक दोस्त ने
6: जी।
5: तो मैं 12th में था, तो मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा और वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है।
6: अच्छा।
5: तो मैं बड़ा उदास हुआ और नाराज भी हुआ कि अरे ग्रेजुएशन करेंगे तो इतनी एज हो जाएगी, फिर हीरो कब बनेंगे, तो मतलब जो भाव होता है एक छोटे,
6: मतलब वो 3 साल ग्रेजुएशन
5: करेंगे फिर वो, हाँ करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
6: और तब तक मूड बदल जाए, ये
5: मूड
6: भी
5: बदल जाए, या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी हमारी कि मतलब कि हम कहीं भी जब आँख खुलेगी तभी कोई कोर्स कर लेंगे टाइप, सर्वाइवल वाली जिंदगी थी कि कैसे सर्वाइवल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी
6: जी। तो अब जैसे आप एनएसडी में एक प्रोफेसर हैं, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर और आर्टिस्ट इन दोनों रोल्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं?
5: मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि मुझे एनएसडी पास किए ही 20-25 साल हो गए हैं, और मैं 2001 में एनएसडी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक्टिंग का, और ऐसा संयोग रहा कि 2001 से निकलने के बाद से मुझे अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में हम करते रहे घूम घूम के, तो वो एक तरह की टीचिंग ही होती है
6: जी।
5: जब हम किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके साथ थिएटर की बेसिक्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो वो टीचिंग का ऐसा अनकॉन्शियसली कहना चाहिए कि वो आ गई, नेचर में आ गई
6: जी।
5: और फिर मुझे बाद में अभी 2018 से लेके मैं 5 साल में को बनारस का डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला एनएसडी का, तो वहाँ फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब देखना था और एकेडमिक्स भी देखना था, तो वो टीचिंग वो फिर अनोइंगली आ गई, तो ऐसा कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। और एनएसडी की टीचिंग बहुत डिफरेंट है, एनएसडी की वो स्टीरियोटाइप टीचिंग नहीं है, इसीलिए वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है। वहाँ हम 2+2=4 नहीं पढ़ाते,
6: अच्छा
5: वहाँ 2+2=5 भी हो जाता है और 3 भी हो जाता है।
6: तो जैसे आपने बोला टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंट होता है?
5: डिफरेंट ये कि वो हमारा जो कोर्स है वो मशहूर ही इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का है और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, तो ज्यादातर हमारा 80% तो प्रैक्टिस होती है
6: जी।
5: और हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, 20% थ्योरी है, बाकी जो है सब परफॉर्मेंस करना है, करके सीखना है, क्या गलती हो रही है, अलग अलग एक्टिंग के मेथड्स हैं, है ना, अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं, तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जो अलग अलग रीजन से आती हैं, तो वो तो करने से होगा
6: जी।
5: वो कोई ब्लैकबोर्ड पे लिखने से वाली हमारे वहाँ की टीचिंग का फलसफा वहाँ है ही नहीं
6: जी। तो जैसे आपने बताया बनारस में भी आपको डायरेक्टर रहने का मौका मिला 5 साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
5: वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था शुरू में जब हम गए
6: जी।
5: और दूसरी बात मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूँगा कि वो नाट्यशास्त्र पे बेस्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट है,
6: अच्छा
5: एनएसडी का है, लेकिन हम पूरी जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो पूरी हमारी एंशियंट, जो 4,000-5,000 साल पुराना जो हमारे पास एक मेथड है
6: जी,
5: उस पे बेस्ड वो ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके तैयार करना था। तो और इत्तेफाकन मैंने वहाँ जाने से पहले कई संस्कृत प्लेस किए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा वहाँ एज ए डायरेक्टर सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक बहुत आज़ादी मिली उस सेंटर को डेवलप करने में और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मिलकर काम करने में कि कैसे उसको शेपअप कैसे करें, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। नाट्यशास्त्र ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम सब समझ गए हैं, और उस पर अभी भी उसकी बहुत लेयर्स हैं, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मैं उसको अपना एक अच्छा गोल्डन टाइम मानता हूँ अपने 5 साल जो मैंने वहाँ निदेशक के तौर पर काम किया।
6: तो फिर जब आप वहां से यहाँ आए दिल्ली दोबारा, तो कुछ मिस नहीं किया वहां का आपने?
5: ऑब्वियसली जब आप एक नया सेंटर या नई चीज बनाते हैं वो एक आपके बेबी की तरह होता है, जब वो जीरो से शुरू करते हैं, आज वहाँ कई अच्छी चीज़ें हैं, एक स्टूडियो बनाया, मतलब एक शेपअप हुआ। उसके बाद हमारे अंदर एक थिएटर वालों को आदत रहती है कि एक वर्कशॉप खत्म अब आगे बढ़ना है
6: जी।
5: तो हम अब फंसते नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा मिस नहीं होता। हाँ, वो शहर भी गजब है,
6: शहर जैसे बहुत अच्छा है ना, बनारस बिल्कुल।
5: और बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं तो वो तो हमेशा लगता ही है, लेकिन हमेशा थिएटर कहता है कि आगे बढ़ो
6: जी।
5: और फिर मेरी फैमिली भी इधर थी, और यहाँ भी एक ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे यहाँ एक जॉब था, मैंने अप्लाई किया, हो गया
6: जी।
5: तो वापस बैक टू पवेलियन अपने शहर आ गए
6: जी। तो राम जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे थिएटर की बातें जान के। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से राम जी सर के साथ अपने इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के बहुत ही जाने माने मिस्टर राम जी बाली जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया NSD के बारे में, हमें थिएटर के बारे में, अब थोड़ा थिएटर रिलेटेड ही मैं आपसे और चीज़ें पूछना चाहूँगी कि थिएटर ने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है?
1: थिएटर ने ज़िंदगी का सबक ये सिखाया है कि हमेशा मध्यम मार्ग पे चलो, एक्सट्रीम किसी भी विषय पे नहीं होना है, चाहे लाइफ में है, चाहे आर्ट में है, किसी भी चीज़ को लेके। हमेशा थिएटर आपको आपकी जो एजेस होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको सुकर्व करता है, ताकि आपको, क्योंकि लिटरेचर है उसमें, उसका सबसे बेस। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक 4 पेज की कहानी पढ़ के आप किसी के जीवन की पूरी हिस्ट्री समझ जाते हो, उसका इमोशन समझ जाते हो। ये कितना सस्ता सौदा है। नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे तब हमें एक सबक मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: हम किसी की जीव जिंदगी के 4 पन्ने पढ़ते हैं 10-15 मिनट में, और हमें कितना सबक
0: समझ भी आ।
1: तो थिएटर में तो लिटरेचर तो उसका बेस है, तो लिटरेचर हमें, हमारी समझ को विस्तृत करता है, काम डाउन करता है, और काफी कुछ सिखाया थिएटर ने
0: जी। और जैसे सर, आज के डिजिटल युग में थिएटर की रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं?
1: मुझे लगता है कि थिएटर की रेलेवेंस इससे और बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए, थिएटर कोई आज का नहीं है। थिएटर शायद जिस वक्त इंसान ने खाना खा लिया होगा, उसी वक्त उसको कुछ करने की सूझी होगी। जिस वक्त रोटी का सवाल खत्म हो गया होगा, वहीं से थिएटर शुरू हो गया होगा। चाहे कम्युनिटी में, एक ट्राइबल एरिया में, चाहे भाषा नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने शिकार मार के खाया होगा, फैमिली के साथ रात को बैठे होंगे आग जला के, तो शायद दिन की क्या घटना हुई होगी, शायद किसी ने एक्ट करके दिखाया होगा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं से थिएटर शुरू हुआ
0: जी।
1: जो इतना पुराना है, जिसकी जड़ें हैं। और आप देख लीजिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, सिनेमा तो अभी का है, 500 साल भी नहीं हुआ अभी।
0: अच्छा।
1: अभी देख लीजिए, ये तो हजारों साल, अनंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सनातन है
0: जी।
1: रंगमंच सनातन है, जहां मनुष्य है, जहां 2 लोग एक कर रहा है, एक देख रहा है, रंगमंच हो रहा है
0: जी,
1: है ना। और आप देख लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी बदलती चली गई
0: जी।
1: मीडिया की, पहले बड़े बड़े वो रिकॉर्ड आते थे, आज हम कैसे गाना सुन रहे हैं
0: जी।
1: फिर वीडियो कैसेट्स आते थे,
0: फिर सीडीज आ गई,
1: वो आई, फ्लॉपी आई, फिर क्या क्या आया, आज वो लिंक में ही है फिल्म, है ना। ये सब का बहुत छोटा स्पैम है, 10 साल में, 5 साल में चेंज हो जाता है
0: जी।
1: लेकिन रंगमंच एक जीवित व्यक्ति करता है और एक जीवित व्यक्ति उसके सामने बैठ के देखता है, दोनों सांस ले रहे होते हैं उस वक्त। तो इसकी ये जो ग्रेटनेस है, वो कोई मीडियम नहीं दे सकता
0: जी।
1: तो जब तक इसका ये जीवंतता वाली बात है, कोई भी मीडिया, कोई भी AI इसको वो नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट,
0: हाँ जी,
1: छपाई खाने में तो आप जो भी हमारी कुर्ती है, शर्ट पहना है, हजारों बन रहे हैं, जैसे ही उस पर कोई कारीगर अपने हाथ से आपका नाम लिख देता है, कस्टमाइज हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उसकी वैल्यू
0: और उसकी उसका दाम भी बढ़ जाता है,
1: उसकी ब्रांडिंग अलग है। तो जस्ट लाइक दैट, रंगमंच, जितना ये टेक्नोलॉजी आएगी, रंगमंच की महत्ता उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है, यहाँ पे क्लियर की है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्ले होता है और ये नुक्कड़ नाटक, इनमें क्या फर्क रहता है?
1: नुक्कड़ नाटक भी एक नाटक है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन वो नुक्कड़ पे होता है, इसलिए नुक्कड़ नाटक है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाओं के साथ साथ उसकी कुछ स्वतंत्रता भी है, और उसकी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पे आपका बुलाया हुआ दर्शक नहीं है उस तरह का। नहीं तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, या एड निकालते हैं, लोग आते हैं, स्वतः आते हैं, मन से आते हैं, मन बना के आते हैं कि मैं नाटक देखने आज मंडी हाउस जाऊंगा या जाऊंगी, गाड़ी चला के जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, या फरीदाबाद में भी किसी, हम जब सभागार में करते थे, आप प्लान करते हो कि आज आपको नाटक देखने जाना है। नुक्कड़ नाटक में वैसा नहीं है। नुक्कड़ नाटक, आप सड़क पे जा रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, अचानक कोई डम डम डम बजने लगता है, तो क्या हो रहा है, शोर होता है, वो यहीं कॉर्नर में साइड पे 4 लड़के या लड़कियां कुछ डफली बजा के कुछ एक जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं
0: जी।
1: तो उनका क्या, वो उसी वक्त वो स्पेस क्रिएट करते हैं, उसी वक्त वो मंच क्रिएट करते हैं, वहां मंच नहीं होता है, उसी वक्त वो दर्शक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो कोई एक इशू लेते हैं। उनका क्या है, उस रंगमंच में जो बेसिक हम फर्क है, वो इशू बेस्ड रंगमंच है, और उसमें स्लोगन है
0: जी।
1: उसमें आर्ट भी है, लेकिन आर्ट की मात्रा थोड़ी कम है उसमें, मैसेजिंग ज्यादा है बजाय इमोशन के
0: जी।
1: मेरा मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो इमोशनल सीन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो वो एक तरह का नारा है।

0: थे या आप ज्यादा लोगों के बीच में?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। नाट्य शास्त्र में भी वीथी नाटक की बात होती है। वीथी का मतलब गली होता है।
0: अच्छा,
1: तो वीथी नाट्य की बात है, तो इट मीन्स कि तब भी होते होंगे। उसका प्रारूप क्या रहता होगा ये मुझे नहीं मालूम
0: जी,
1: क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है। लेकिन जब नाट्य शास्त्र की ही प्रैक्टिस बीच में मुगल काल और ये सब, मतलब जो बहुत पहले खत्म हो गया, अब ये दोबारा रिवाइव हो रहा है इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो हम नहीं कह सकते कि पहले कितना हुआ। लेकिन हाँ, ये इधर आज का जो नुक्कड़ नाटक है उसकी अगर हम बात करें, तो वो ये इमरजेंसी वगैरह के बाद जब सरकार बदली, जब चीज़ें आईं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ज़्यादा इसको अपनाया, प्रमोट किया, और इसका इतिहास है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है
0: जी। तो सर, थिएटर और फिल्म में एक्टिंग करने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं हमने देखा, और अभी रिसेंटली केरला स्टोरीज 2 में आपका बहुत अच्छा रोल है उसमें, सो क्या अंतर रहता है दोनों चीज़ों में?
1: देखिए, मुझे कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरीज गढ़ते हैं, बताते हैं, मुझे आज तक कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे लगता है एक्टिंग एक्टिंग है
0: जी।
1: रंग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, ये मंच पे भी एक सीन हो सकता है कि एक आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, है ना, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसी को अगर कैमरा लगा दें, जैसे पॉडकास्ट है फॉर एग्जाम्पल, क्या फर्क आ जाएगा बताइए? आप कोई अजीब से एक्सप्रेशन बना के थोड़ी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, हाँ, उसमें क्योंकि लेंस चेंज हो जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन, और वो बहुत बड़े पर्दे पे दिखता है। अभी आपका जितना जितना जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही दिखेगा, और दूर से देखेंगे तो छोटा दिखेगा, मंच पे जो आगे बैठा होगा उसका क्षेत्रफल बड़ा दिखेगा। लेकिन सिनेमा में क्या सबको एक साथ दिखता है? वो लेंस की करामात है, वो एक टेक्निकलिटी है, उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को हाँ ये ध्यान रखना है कि अब आपका क्लोज लगा है तो मुझे ज्यादा, मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ तो वो फ्रेम में है ही नहीं, वो इतनी सी बात है। वो डायरेक्टर बोल देगा, भाई हम आपका ना अभी आईज का ले रहे हैं
0: जी,
1: तो आप बस ये वाले डायलॉग को आपका एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप मंच पे भी आप वही रिएक्शन देते हैं, लेकिन उसमें शायद आपका हाथ भी चलता है। तो मुझे छोटी सी टेक्निक, हल्का सा फर्क है, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं लगता।
0: वो भी सिर्फ कैमरे को फेस करने वाली
1: चीज और है कि जो सिनेमा का एक्टर है वो रंगमंच नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी।
0: अच्छा,
1: कर सकता मतलब कर लेगा कोई भी, लेकिन वो उतना शायद अच्छा अभिनेता साबित ना हो मंच पे। लेकिन जो मंच का अभिनेता है जब वो सिनेमा करता है तो बहुत बेहतर अभिनेता साबित होता है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों कि सिनेमा वाला नहीं कर पाएगा?
1: नहीं, उसको दिक्कत आएगी, मैं नहीं कह रहा कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना, वो कॉन्टिन्यूटी में इमोशन को कैरी नहीं कर रहा है। हम 2 घंटे का प्ले कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं।
0: हाँ, वो सीन में कट करके
1: डायलॉग के बाद कट हो रहा है उसका बार बार, उसके सामने एक्टर नहीं है, उसके सामने कैमरा है
0: जी।
1: उसको एक्टर की आदत ही नहीं है, कम आदत है, समझ लो। हमारे पास तो एक्टर ही एक्टर है, हम मंच में जब घुसे तो सामने एक्टर, दाएं एक्टर, बाएं एक्टर, हमारा कैमरा तो दर्शक है,
0: बिल्कुल लाइव ऑडियंस जो देख रही है,
1: नहीं हमें वहीं से देख रहा है ना। तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ भी कैमरा लगा देंगे, आपके कान के पास लगा देंगे, आपके कंधे के पीछे लगा देंगे,
0: हाँ जी,
1: तो वहां पे दर्शक मूव कर रहे हैं एक तरह से 360 डिग्री में
0: जी,
1: और रंगमंच पे एक्टर मूव कर रहा है, तो उसको कट्स की आदत है, इमोशन के कट्स की आदत है। हम एक फ्लो में करते हैं, तो हमें उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसका इमोशन का जो क्या कहते हैं, उसका जो नमक आना चाहिए, वो उसके थोड़ा सा एहसास ज्यादा है
0: जी।
1: मुझे ऐसा लगता है, और ये साबित हुआ है, ये हॉलीवुड तक के एक्टर्स में साबित हुआ है।
0: अच्छा,
1: जितने हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं सब थिएटर करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे यहाँ के कम करते हैं, लेकिन वहाँ के तो करते ही हैं। वो एक सीजन फिक्स करते हैं, हम 3 महीने नहीं करेंगे सिनेमा, 3 महीने हम जाएंगे अपने ग्रुप में थिएटर करेंगे, 20-50 शो करेंगे, वापस सिनेमा में आएंगे।
0: ये बहुत ही अच्छा एक फर्क आपने समझाया अभी। तो आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी दिए हैं, खुद से मतलब डायरेक्ट भी किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्ले है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो मैंने प्ले डायरेक्ट किए हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेरे बहुत करीब है अभिज्ञान शकुंतल कालिदास का। मुझे बनारस में रहते हुए संस्कृत नाटक करने का मौका मिला, और मैंने कालिदास के 3 नाटक किए, कई बार किए हैं अब तो मैं जब भी अभिज्ञान करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने अगर मैं लिखे हुए प्लेस की बात करूँ तो मैंने लगभग अब तक 9-10 प्ले लिखे हैं, और उसमें मेरा सबसे प्रिय प्ले एक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है मैंने लिखी है, कोई बात चले। अच्छा। उसको मैंने 2010 में लिखा था, तो उसके कई शोज हम कर

0: चुके, उसमें यशपाल शर्मा भी जो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा में, गंगा जल में जो मेन विलेन थे
1: जी,
0: वो भी उसमें एक्ट कर चुके हैं प्ले में, और वो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत फन है उसमें।
1: तो जैसे आपने प्ले की बात बताई, तो ये आपका कैसे रहता है कि आपको अलग अलग शहर में आप जाके करते हैं, इसका क्या चीज रहती है?
0: जब कोई प्रोडक्शन तैयार होता है तो अगर हम दिल्ली में जैसे ओपन किया तो जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं उनको पता रहता है कि अच्छा एक नया प्ले आया है, वो थिएटर फेस्टिवल होते हैं कई शहरों में लोग करते हैं तो इनवाइट करते हैं, गवर्नमेंट्स के भी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स होती हैं उनकी उनके वो लोग भी फेस्टिवल्स करते हैं, तो जो थिएटर वर्ल्ड के एक अलग संसार है वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि किसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसको इनवाइट करते हैं।
1: और प्ले का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ घंटों का या कुछ दिनों का भी रहता है?
0: नहीं नहीं, दिनों का नहीं रहता है। क्या रहता है कि यूजुअली पहले ढाई ढाई घंटे के, तीन तीन घंटे के प्लेस होते थे जब हमने किया, अभी अभी भी होते हैं सवा दो घंटा, ढाई घंटा, एक घंटा 40 मिनट, मतलब ये इसको फुल लेंथ प्ले माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग माना जाता है, क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है तो अभी डेढ़ घंटे के भी नाटक होते हैं, डेढ़ से ढाई घंटे ज्यादातर नाटक होते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरवल रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं।
1: तो उसमें फुल म्यूजिक वगैरह सब रहता है?
0: सब होता है, वो पूरा सेटअप लेके चलना पड़ता है, कुछ चीजें जैसे किसी ने हमें मान लीजिए कि पटना में इनवाइट किया तो बेसिक जो सेटअप है स्टेज का
1: जी।
0: वो और मैं आपको बता दूं कि कोई बात चले, यशपाल शर्मा वाला प्ले आपके मानव रचना में भी हुआ है।
1: अच्छा।
0: मुझे अभी याद आया, जस्ट अभी याद आया।
1: अच्छा।
0: और यशपाल शर्मा ने ही किया है आपके स्टूडेंट्स के सामने
1: जी।
0: मुझे ये इस बात को हो गए कम से कम 8 साल हो गए होंगे।
1: अच्छा।
0: मिस्टर भल्ला ने इनवाइट किया था
1: जी जी,
0: तो एक आपका अंदर ऑडिटोरियम है उसमें शो किया था, बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था।
1: वाओ, ये तो बात आपसे अभी
0: मुझे भी अब भूल गया था।
1: हाँ।
0: अभी याद आया मुझे कि हाँ हमने किया है उसको, बॉम्बे से टीम आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ करने का
1: जी। तो साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे राम जी बाली सर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर जगती के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ हमारे शो में, और डेफिनेटली जो लिसनर्स आज ये शो सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत चीजें थिएटर से रिलेटेड समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से क्या क्या होता है पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने। तो अभी तक हमने बात की आपके टीचिंग स्टूडेंट्स और आपके प्लेस के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब जो चीज़ लाना चाहूँगी, फिल्म एंड स्क्रीन वर्क जो आप करा है, जैसे थिएटर से फिल्म और वेब सीरीज़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने काफ़ी वेब सीरीज़ भी की हैं, थिएटर तो हमें पता ही है, उसमें तो आपकी है ही महारत हासिल। तो अपनी वेब सीरीज़ के बारे में बताइए और उसके बाद में आपकी मूवीज़ के बारे में पूछूँगी।
1: मैंने डेली क्राइम एक वेब सीरीज़, बहुत चर्चित वेब सीरीज़ रही, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें जो बहुत बड़े एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं
0: जी।
1: और देखा जाए तो मैंने दिग्मांशु धूलिया जी के साथ सिनेमा में काफ़ी मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मेरी पहली फिल्म उनके साथ पान सिंह तोमर थी
0: जी।
1: और पान सिंह करने के बाद उनके साथ मेरा एक अलग बाउंडिंग बनी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ साबिर गैंगस्टर में भी एक छोटा सा रोल किया है, और एक यारा फिल्म उन्होंने बनाई थी दिग्मांशु सर ने, उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और सिर्फ अभिनय ही नहीं, मेरे को जब भी वो सिनेमा कुछ बनाते थे तो अक्सर मुझे डायलॉग में भी बुला लेते थे कि तुम थोड़ा सा एक्ट्रेस को हेल्प कर दो
0: जी।
1: तो बड़ा वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि दिग्मांशु धूलिया बहुत बड़ा नाम
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अगर वो मुझे
0: और अगर वो
1: कह रहे हैं कि हाँ, तुम जरा एक्टर्स का डायलॉग चेक कर लो तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा मैं उनके साथ काफी काम किया है, त्रिशु भाई के साथ। हम उनको प्यासे सब जो एनएसजी के लोग हैं त्रिशु भाई बुलाते हैं उनको, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और खोसला का घोसला बहुत शुरुआती फिल्म थी जब मैं जस्ट एनएसजी से पास आउट किया था, वो काफी आती है इसलिए लोग उसको ज्यादा जानते हैं। उसमें मैं एक बड़े रोल के लिए कास्ट हुआ था पहले, लेकिन फिर उस वक्त मैं बहुत यंग दिखता था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला दिवाकर ने कि आई एम वेरी सॉरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइनल। उसमें एक बड़ा रोल कर रहा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी मुझे बहुत, प्रोड्यूसर कह रहे कि आप छोटे लग रहे हो, लेकिन आप एक रोल है जरूर करो। वो एक छोटा सा आईपीएस का रोल, फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि आप करो। तो फिल्म बहुत आती है
0: हाँ जी,
1: हाँ, तो उसमें किया काम। फिर एक फिल्म है रागदेश, रागदेश में भी मैंने एक्टर्स को भी ट्रेन किया था उसमें, और एक रोल भी किया। और रागदेश की भी स्क्रीनिंग आपके यहाँ हुई थी मुझे अच्छे से याद है, हाँ, उसमें दिग्मांशु धूलिया की फिल्म, क्योंकि वो INA पे थी फिल्म, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, तो उस एक केस है, कोर्ट केस है, उसके ऊपर वो फिल्म थी, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी मुझे अपनी फिल्म भी एक छोटी सी बनाई मैंने, जो एक हरियाणा में रह के ही बनाई, हरियाणवी फिल्म बनाई अज्जो नाम से।
0: अच्छा।
1: वो एक बच्ची और दादी,
0: वो शायद आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही,
1: नहीं अब उसको हो गया 5-1 साल हो गया।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वो अभी स्टेज ऐप पे है वो फिल्म
0: जी।
1: और वो फरीदाबाद के ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मिस्टर प्रदीप मोहंती
0: जी।
1: वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म नहीं बनाई थी
0: जी।
1: काम जरूर किया था, लेकिन कोई पहली बार जब आप पे ट्रस्ट करता है वो बहुत बड़ी बात होती है,
0: बड़ी बात।
1: और उन्होंने मौका दिया फिल्म की, उसमें डॉली आलूवालिया मेन रोल में थी, और उसमें यशपाल शर्मा ने भी एक कैमियो किया था, और स्वानंद किरकिरे ने गाना गाया है उसका टाइटल, अंतरा मित्रा ने गाना गाया है, और ठीक अपने एनएसडी की काफ़ी लोगों ने मदद की उसमें मुझे। और इसके अलावा थिएटर में भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी को लेके एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक प्ले राजपाल यादव भाई को लेके किया था।
0: अच्छा।
1: चलो इश्क लड़ाएं के नाम से, और उसके बाद मैंने हिमानी मैम के साथ, हिमानी शिपुर जी के लेके भी एक प्ले किया डायरेक्ट, उसमें हम दोनों ने मिल के एक्टिंग भी की। और यशपाल भाई वाला प्ले तो हमारा खूब चला, जिसका मैंने जिक्र किया कि आपके यहाँ भी हुआ है, और इस तरह लगे हैं जो भी काम आता है कर लेते हैं, चाहे थिएटर का हो चाहे सिनेमा का हो। और बेसिक यह है कि रंगमंच से, आर्ट से जुड़े रहना है, यही प्रयास रहता है। और अभी एनएसडी में पढ़ा रहा हूँ तो रही हैं।
0: जी जी, नहीं इतना ही नहीं है, बहुत बहुत कुछ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे आपने नेम लिया अभी तिग्मांशु धूलिया जी का, और हमने देखा पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी, और शायद नवाज सर के साथ भी, तो आप का मतलब कैसा रहता है जब इतने बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ वर्क करना होता है, क्या वो भी उतने डाउन टू अर्थ लोग
1: हैं? ये सब लोग अपने दोस्त लोग हैं, सीनियर हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। नवाज भाई, जब नवाज भाई एनएसजी में थे तब हम श्रीराम सेंटर में थे, और बाद में मुझे भी एनएसजी आने का मौका मिला, वो सब सीनियर हमारे सीनियर हैं, और छोटे भाई कितना ही बिहेव रहता है उनका प्यार मिलता है। और पंकज बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा मेरा जूनियर है बट वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं। मतलब
0: जैसे आपने यशपाल जी की बात की और राजपाल यादव,
1: ये सब लोग सब सीनियर हैं हमारे, एक कम्युनिटी, एक हम सब एलुमनाई हैं एनएसजी के, तो ऐसा कुछ मतलब,
0: तो वही उसी प्यार से मिलना होता होगा, उसी प्यार से सब रहते होंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात लगती है कि एक सेलिब्रिटीज का भी अगर इतना डाउन टू अर्थ हो भी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
1: जी, जी।
0: तो सर, अब मैं बात करूंगी आपकी जो अभी रिसेंट जो फिल्म आई है केरला स्टोरीज में, हमने आपको देखा है केरला स्टोरी 2 में, वो कैसे आपको वो रोल मिला और क्या एक्सपीरियंस था उसका?
1: वो रोल मुझे ऐसे मिला, शायद उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, मुकेश छाबड़ा
0: जी,
1: बहुत बड़े नाम है उनका, उनके ऑफिस से कॉल आया रात को मुझे कि आप अपना सिर्फ इंट्रो भेज दो
0: जी।
1: तो कोई ऑडिशन जैसा नहीं हुआ मेरा, शायद मुकेश मुझे बहुत पुराना जानता है, इवन कई फिल्में मुकेश ने ही मुझे कास्ट किया, पान सिंह हो या दिल्ली क्राइम हो, और भी कई काम मुकेश को ध्यान रहता है, क्योंकि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई में तो स्ट्रगल कर नहीं रहा, तो मुकेश को अचानक लगा होगा कि मैं शायद उसमें फिट हो सकता हूँ, तो मुकेश ने अपने ऑफिस में बोला, तो उनके असिस्टेंट्स ने वो मंगवाया, तो वो मेरे को रोल जो मिला विदाउट ऑडिशन मिला, और शुरू में रिवील नहीं किया गया कि हम इस पे फिल्म, ये सब्जेक्ट है।
0: ओके।
1: हाँ, कि जब सेट पे गए जब तब हमें स्क्रिप्ट वगैरह मिली, तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे है, और वो चैलेंजिंग था क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़ में सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। इस तरह की फिल्में बनाना, विपुल अमृत लाल शाह ने फिल्म प्रोड्यूस की, ये भी बहुत डेयरिंग है, क्योंकि मुंबई का सीनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डोमिनेशन जिन लोगों का है इंडस्ट्री में वो अलग विचार के हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो अलग विचार के हैं, तो बहुत जल्दी आपको
0: क्रिटिसाइज भी करते हैं,
1: क्रिटिसाइज से कोई दिक्कत नहीं, लेबलिंग हो जाती है, फिर आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम होता है।
0: अच्छा,
1: तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा मुझे लगता है, तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि जो कामाख्या नारायण इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने, वो नेशनल अवार्ड विनर है ऑलरेडी, और बहुत एक्सपीरियंस है, और बहुत, और इशू बहुत सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा बदलने से कुछ और कहानी हो जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं और दे दिया आपने, थोड़ा सा कुछ कर दिया, उन्होंने जितने बैलेंस तरीके से तीनों लड़कियों की स्टोरी रखी है, आपको लगता नहीं कि किसकी स्टोरी को ज्यादा एम्फसाइज किया, किसको दबाया, ऐसा नहीं, सबको इक्वल स्पेस दिया है, इक्वल कैरेक्टर्स को इतना मौका दिया है, अदरवाइज बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे ध्यान दिया, नहीं तो हम तो उस तरह से कोई बहुत स्टार तो हम लोग है नहीं है, हम लोग तो छोटे मोटे एक्टर हैं
0: जी।
1: और उसी में उन्होंने फिर भी मौका दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला।
0: नहीं, हमने आपका रोल देखा, बहुत ही एकदम मतलब सिंपल सोबर जो एक्टिंग आपकी थी उसमें, नेहा जो लड़की के फादर का रोल आपने किया, बहुत अच्छी मूवी भी इवन बहुत अच्छी है, मुझे तो लगता है सभी को ये देखनी चाहिए जरूर, इवन गर्ल्स को तो बहुत देखनी जरूरी है,
1: बिल्कुल देखनी चाहिए।
0: हाँ जी। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम राम जी वाली सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में थिएटर के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत अच्छी बातें अभी आपने हमें बताई आपकी वेब सीरीज की, मूवीज की, आपके थिएटर पार्ट की। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी NSD से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आप अब मूवीज भी कर रहे हैं काफी, वेब सीरीज भी, और अभी NSD में आप प्रोफेसर भी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को NSD में एडमिशन लेना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी पता होता कि एक्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाए, तो क्या इसके स्टेप्स हैं, थोड़ा आप हमें बताइए।
1: देखिए, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारे टाइम में तो एक ही कोर्स था जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, और उसके लिए उस वक्त 10 नाटक करने होते थे और टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 सीट होती थी
0: जी।
1: अभी एक तो वो 10 नाटक अब 6 नाटक हो गए हैं
0: जी,
1: वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है वहाँ। दूसरा, अभी 20 सीट के अलावा 32 सीट्स हो गई हैं।
0: अच्छा।
1: तो सीट्स भी बड़ी हैं और ये 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, और उसको करने के लिए आप पहले अपने शहर में जो भी थिएटर हो रहा है उनके साथ जुड़िए, क्योंकि 6 नाटक करने के लिए अगर कायदे से करोगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
0: ओके।
1: है ना, रोज रोज नाटक कोई भी छोटे शहरों में होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी करना है तो दिल्ली में कई ग्रुप्स हैं जो नाटक रेगुलर करते हैं, आप दिल्ली आके ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। थोड़ी सी जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, वो करवाते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और हमारे स्कूल ने किया है कि अभी हमारे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स है, हमारे समय में ये नहीं था, और उसके लिए 4 नाटक चाहिए और
0: रिलैक्सेशन
1: है, और 20 सीट्स सारे सेंटर्स में है, तो 80 सीट्स और बढ़ गई।

0: जी
1: अगर आप उस नजरिए से देखें तो। और वो बनारस जैसे हम बात कर रहे थे, बनारस में एक सेंटर है, एक सेंटर हमारा बेंगलुरु में है
0: जी,
1: एक सेंटर हमारा सिक्किम में है और एक सेंटर हमारा त्रिपुरा में है। तो ये चार सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं। और तीसरी चीज, हमारे अब शॉर्ट टर्म कोर्स भी हमने शुरू किए हैं।
0: अच्छा।
1: जो पेड कोर्सेज हैं
0: जी,
1: कि अगर आपको 3 मंथ का कोर्स करना है तो वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद 50-60,000 कुछ उसका फी है। और वो हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं 3 मंथ के कोर्स।
0: बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएंगे या
1: ये 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है? ये आप अपने के किसी को है ही कि मैं कर लूं,
0: करना ही करना,
1: एज का भी फैक्टर नहीं है।
0: अच्छा,
1: किसी को लगा के अरे मैंने जवानी में सोचा था मैं नहीं कर पाया, चलो मैं 3 महीने का एक्टिंग कोर्स एनएसडी का कर लेता हूँ, है ना, उस तरह के बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी साइट पे वो सब है। और एक 1 ईयर कोर्स अभी हमारा बॉम्बे में चल रहा है, उसमें वो भी पेड कोर्स है।
0: अच्छा,
1: तो काफी अभी स्कोप है। और सारी जानकारी एनएसटी की जो वेबसाइट है उस पे सारी उपलब्ध है और सारा प्रोसेस भी उपलब्ध है उसमें।
0: बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया है और तो भी क्या उसको एक्टिंग करने का कहीं पर मौका मिल सकता है, एड एजेंसीज में या कहीं मूवी में कोई साइड रोल? तो किस तरीके से उसे अपना, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्या कराना चाहिए?
1: मैडम 90% जो लोग हैं वो नॉन ट्रेन्ड एक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर को काम नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। बॉम्बे में आप जाके देखिए, वहाँ पे कास्टिंग एजेंसियां हैं, आप उनसे मिलिए। बॉम्बे में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वो जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको मालूम है। आराम नगर की एक जगह है अंधेरी में, वो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बार बार मिलेंगे, फोटो शेयर करेंगे, आपका इंट्रो देंगे, थोड़ा ऑडिशन शूट करेंगे, फिर वो आपको कॉल करते हैं
0: जी।
1: तो वो सब ओपन मार्केट है, सब कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई एनएसडी का सर्टिफिकेट ही चाहिए, उल्टा है। बल्कि सर्टिफिकेट वालों को बहुत स्ट्रगल है और जो नॉन स्ट्रगल वाले एक्टर हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कुछ
0: ये तो मुझे लगता है हर चीज में चाहिए।
1: हाँ, ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, इसमें हाँ उसको डिग्री नहीं चाहिए ना, जिसको जो एड बना रहा है
0: हाँ जी।
1: आपका लुक उसको चाहिए, आपका लुक अगर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट है तो उसको कुछ नहीं चाहिए।
0: और अगर जैसे कोई यंग आर्टिस्ट जब रिजेक्शन फेस करता है, बहुत करते ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: मैं तो रिजेक्शन को उसकी पूंजी मानता हूँ
0: जी।
1: जब तक कोई एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमिलेट नहीं हुआ वो आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमिलेशन तो हमारी पूंजी है
0: जी।
1: तो बिना ह्यूमिलेशन कौन सा ऐसा काम है जो बिना ह्यूमिलेट हुए आप आगे बढ़ जाओगे? होगा ही होगा।
0: मैं थोड़ा यंग जनरेशन की बात, वो दिल पे लगा लेते हैं। बिल्कुल,
1: इस पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लुक सबसे पहले है, मैंने अभी आपको बताया।
0: हाँ जी।
1: आप फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये फाइल चला के दिखाइए, व्हाटएवर जो भी उसका। एक्टर को तो देखते ही नहीं, आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट उसमें फिट नहीं हो। आप लाख अच्छे एक्टर हो तो ये मन से नहीं लगाना चाहिए किसी भी यंग एक्टर को, क्योंकि ये फील्ड ही लुक का है, पहले लुक है। अगर आप थोड़े बहुत उसके लुक में हो तो उस जैसे वो 5-6 लोग छांट लेगा
0: जी।
1: फिर वो उनको टास्क देगा, अच्छा ये डायलॉग बोल के दिखाइए, ऑडिशन लेगा, फिर जो उसको सूट करेगा उसको कास्ट करेगा। इस तरह अगर हम नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो दुख होगा भी, लेकिन उसको कोई चारा नहीं है, ये उसका प्रोसेस का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस है, आपको उससे बचना।
0: मतलब ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए,
1: ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। ऑडिशन दो, भूल जाओ, अगर आपका होगा आपको फोन करके ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा
0: जी।
1: आपने ऑडिशन दिया, आप अगले दिन बंबई छोड़ के होनोलुलु चले गए, मान लीजिए वो आपको होनोलुलु से बुला लेगा
0: हाँ जी,
1: कि सर आप सिलेक्ट हो गए आ जाइए, और आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए ऑडिशन देके, वो आपको बेइज्जती करेगा फिर, भाई साहब नहीं हुआ आप जाइए घर, क्या करें।
0: तो सर आपकी ये बात हमें तो बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में?
1: अपनी लाइफ में मुझे तो लगता है आर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, और दूसरों का अच्छा काम मोटिवेट करता है कि काश ये मैंने किया होता। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मैंने तो सब कर लिया, अब मैंने पा लिया है सत्य,
0: हाँ जी,
1: तो खत्म हो जाओगे। वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी दूसरे का काम देखते हो और आपको लगता है काश ये मैंने किया होता
0: जी,
1: वही मोटिवेट करता है।
0: बहुत अच्छी बात है आपने बताई है हमें। और सर अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। सबसे पहले थिएटर या सिनेमा?
1: थिएटर।
0: डायरेक्टर या एक्टर?
1: एक्टर।
0: स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन?
1: ये डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है।
0: जी जी। एनएसडी के दिन या आज का सफर?
1: एनएसडी के दिन।
0: एक वर्ड में थिएटर को अगर डिफाइन करना हो?
1: सत्य है।
0: और एक वर्ड में अगर सक्सेस के लिए कुछ बोलना हो?
1: मन की शांति।
0: वाओ, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, इसमें हर जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे, यंग पीढ़ी भी हमारी सुन रही है, मिडिल एज भी, और तो उनके लिए आप क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो पहले थिएटर देखना शुरू कीजिए, थिएटर को प्रमोट कीजिए, है ना, पहले उसकी एस्थेटिक को समझिए और लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज का पढ़िए, वो आपको बहुत आनंद देगा, मैं बता रहा हूँ, किसी भी वेब सीरीज को देखने से ज़्यादा आनंद देगा। और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको थिएटर और अच्छे से समझ आएगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आशा करते हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सफलता मिले, और फिर से हम आपको ऐसे ही बुलाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज NSG के प्रोफेसर मिस्टर रामजी बाली जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें समझाई NSD थिएटर और फिल्म जगत के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में, और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto. Main hu RJ Sagar, aaya hu lekar ke show Voice of Youth. Is time aap log sun rahe hain Radio Manav Rachna 107.8 FM. भी देखिए, ये शो अगर आप रेगुलर सुनते हैं तो आपको पता होगा अच्छे से कि यहाँ पर हम बहुत सारी स्पेशल बातें करते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक मेहमान होते हैं जिनके साथ हम कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ उनके एक्सपर्टीज से निकाल करके कुछ स्किल्स आप लोगों तक हम कन्वे कर पाए। आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है और मैं कहूँगा कि मेरे दिल के बहुत करीब होता है ये टॉपिक, एंड दिस इज अबाउट राइटिंग। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इशप्रीत सिंह। इशप्रीत फरीदाबाद से एक आर्टिस्ट हैं। इशप्रीत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आपको ये जानना है कि इशप्रीत कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो मैं आपको दो चीज़ें रेकमेंड करूंगा। एक साल गाना है, आप स्पॉटिफाई पे जाइए, आप साल डालेंगे इशप्रीत सिंह करके, वो गाना आपको ज़रूर सुनाई देगा। आई एम डैम श्योर आपने से कुछ लोगों ने ज़रूर उसको सुना होगा, बहुत खूबसूरत गाना है। दूसरा, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए, सो यू शुड वॉच HR 51, जो कि स्टेज के ऊपर मौजूद है, एक मूवी जो फरीदाबाद की भाषा को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद की कहानी को कहती है, और फरीदाबाद में रियल जो इश्यूज हैं चलता है जो उन्होंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया है वहाँ पर। यू शुड चेक इट आउट। आज हम इशप्रीत से बात करेंगे अबाउट राइटिंग। इसके दो तीन सेगमेंट्स में मैं जरूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज एग्जैक्टली होता क्या, किसको हम राइटिंग बोलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स को लिखा कैसे जाता है। सेकेंड, अगर आप खुद राइटर बनना चाहते हैं आपको कैसे स्टार्ट करना होगा। थर्ड, अगर आपको काम ढूंढना है राइटिंग में, हाउ यू शुड अप्रोच पीपल, हाउ यू शुड पिच योर स्क्रिप्ट टू समवन, अगर आप किसी को काम पिच करना चाहते हो तो। बट ये सब बातें होंगी, पहले लेकिन इशप्रीत का स्वागत करेंगे। सो हाय इशप्रीत, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय सागर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
1: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव एन आर्टिस्ट हियर इन दिस स्टूडियो, एंड आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं।
2: शुक्रिया भाई, बिल्कुल।
1: सबसे पहले मैं आपके मुंह आपकी जुबानी जानना चाहूंगा, प्लीज आप बताइए कि आप क्या करते हो, क्या डोमेन है आपका?
2: भाई मेरा डोमेन एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा स्ट्रेंजली लॉ का है। और उसकी कहानी ये है कि मैं 12th स्टैंडर्ड में था, बोर्ड की परीक्षाएं अभी ख़त्म हुई थी, एंड एक बार मैं अपने पेरेंट्स को स्कूल लेके गया उनको बताने कि मैं इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करना चाहता हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ। और फिर वो मेरे इंग्लिश टीचर से मिले और मेरे इंग्लिश टीचर ने आयरोनिकली खुद ही बोल दिया कि ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, मेरी तरह बनना है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे इंग्लिश टीचर ने ही मुझे एक तरीके से मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा डिलेमा में डाल दिया कि ये फीजेबल ऑप्शन नहीं है, मतलब एज करियर वाइज ल्यूक्रेटिव नहीं है लिटरेचर को परस्यू करना। तो मेरे पेरेंट्स भी कहते कि लिटरेचर तो कभी भी आप पढ़ सकते हो, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैसे भी लिटरेचर को कभी इतना एज अ सब्जेक्ट तवज्जो नहीं दी गई, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी सम काइंड ऑफ अ टर्शरी थिंग, कि आप ये साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ये कोई मेन स्ट्रीम काम नहीं होता, नौकरी ढूंढो पहले। तो मैं कन्फ्यूज था क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही टारगेट था कि लिटरेचर पढ़ूंगा और लिटरेचर पढ़ाऊंगा, बस कोई मेरे आर्टिस्टिक एम्बिशंस भी नहीं थे उस समय स्कूल में। तो फिर मेरे दो दोस्त लॉ परस्यू करने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि अब तू कुछ समझ तो आ नहीं रहा तुझे, तुझे करना क्या लाइफ में, तो तुम्हारे साथ कोचिंग ले ले और सिलेक्शन हो गया तो लॉ स्कूल चला जाइए। एंड समहाउ उन दोनों का उस समय नहीं हुआ और मैं लॉ स्कूल चला गया, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया।
1: ओह वाओ।
2: हाँ, और सिम्बायसिस लॉ स्कूल में चला गया फिर 5 साल के लिए नोएडा। पुणे भी हो गया था, बट पुणे एक तो काफ़ी दूर था घर से, और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि नोएडा में रहूँगा तो दिल्ली आना जाना लगा रहेगा और मैं नाटकों की दुनिया और उससे जुड़ा रहूँगा समहाउ, क्योंकि मेरे को मैंने बताया कि पढ़ना बहुत पसंद था और पढ़ने में नाटक भी आते हैं, वो भी लिटरेचर का एक पार्ट है। तो मैं 5 साल लॉ स्कूल में बिताए और मैं 5 साल मंडी हाउस आता जाता रहता था, वर्कशॉप्स करता था, नाटक देखता था। तो एक तरीके से आप ये कह लो मैं डबल लाइफ जी रहा था, एक साथ मैं लॉ कर रहा था और एक साथ मैं अपना लिटरेचर की पढ़ाई जो मैं नहीं कर पाया प्रोफेशनली या फिर ये कह लो अकेडमिकली, वो मैंने सिंसियरली खुद से की अलग से। और फिर करते करते लॉ की पढ़ाई चलती रही, साथ साथ मैं लिखता गया। यूजुअली मेरे मेरा परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड है, मैं परफॉर्म करता था। और फिर अचानक एक दिन मेरे किसी दोस्त ने बोला कि तू लिखता तो है ही, पहले मैं कविताएं लिखता था, तो उसने कहा कि कविताएं गाने भी तो बन सकती हैं, और मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं था अनलेस एंड अंटिल उसने बोला कि कविताएं क्या है, म्यूजिक तो कविताओं में भी होता है, तो एक बार ट्राई कर कि इसको कंपोज करवा। तो मैंने किसी से कंपोज करवाने की बजाय खुद ही कोशिश की गुनगुनाने की, और एक धुन मिली, मैंने ही धुन सोची, और मैंने एक हमारी शहर का लड़का है रोहित, रोहित निगम, वेरी टैलेंटेड सिंगर. मैंने उसको इंस्टा पे अप्रोच किया, मैंने बोला भाई मैं लिखता हूँ, जबकि मेरा पहला गाना था वो, बट मैंने पोर्ट्रे ऐसे किया कि मैं राइटर हूँ इस लिखता हूँ. तो मैंने वो उसको घर पे बुलाया, मैंने वो धुन सुनाई, मैंने वो कविता गा के सुनाई, और वो मैंने गाने की तरह कभी ट्रीट नहीं की थी. हम स्टूडियो दोनों फर्स्ट टाइम गए, वो रिकॉर्ड हुआ लगभग 15 से 20 मिनट में, और वो गाना पहचान म्यूजिक करके एक लेबल है उन्होंने पिक किया, और वो मेरा पहला ही गाना था. एंड ओवर अ वीक ही उसके मतलब मिलियंस स्ट्रीम चले गए, और मेरी लाइफ मतलब वहां से कम्प्लीटली चेंज हो गई, आप ये कह सकते हो.
1: कौन सा गाना था?
2: सजना.
1: ओके.
2: हाँ,
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. ये आपका जो राइटिंग का सफर चला, आपने लॉ के बारे में बताया, ये सब ठीक है. और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे मध्यवर्गीय परिवारों की कहानी भी यही होती है सिमिलर, कि हम एक चीज बहुत मुश्किल होता है कि जो इंसान पिक कर पाए वो कर पाता है
2: जी.
1: हमें साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ करते रहना होता है दाल रोटी के लिए. मैं ये जानना चाहता हूँ राइटिंग एक कितना फिजिबल ऑप्शन है अभी तो, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंसड हो, और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस टाइम सोच रहा है कि मुझे राइटर बनना है, आपके हिसाब से कितना फिजिबल है वो, अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पर इसको देखूँ तो.
2: मैं ऑनेस्टली किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, पर ऑनेस्ट ट्रूथ, गॉड्स ट्रूथ जिसे बोलते हैं, वो यही है कि गुरबत का काम है राइटिंग इनिशियल डेज में, और खासकर हमारे देश में. आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो लोग यूजुअली क्या बोल के फिल्म देखने जाते हैं, कि सलमान की फिल्म आ रही है, शाहरुख की फिल्म आ रही है, एज इफ उन्होंने ही वो डायरेक्ट किया और उन्होंने ही वो लिखी है. इन कंपेरिजन टू वेस्ट, वेस्ट जब वेस्ट में लोग क्या बोलते हैं कि नोलन की फिल्म आ रही है, स्कॉर्सेज़ी की फिल्म आ रही है, इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई फेस को ज़्यादा तवज्जो देता है और कोई फेस के पीछे जिसने वो पूरा काम किया उसको ज़्यादा तवज्जो देता है. तो मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री थोड़ी स्टार ऑब्सेस्ड कंट्री है. जो स्क्रीन पे आता है हमें मतलब ग्लैमर से ऑब्सेस्ड है हम, मे बी यहाँ तो हमारी रियल लाइफ बहुत डल है और बोरिंग है, हम फंसे रहते हैं, तो हमें ये देखने लोग बहुत पसंद है. लेकिन जो असली काम जाता है बिहाइंड द स्क्रीन, उसको हमारा कंट्री अप्रिशिएट नहीं करता. आज भी आप किसी भी को पूछोगे कि किसी ने ये फिल्म लिखी, किसने डायरेक्ट की, तो हमें नाम नहीं पता होंगे. तो ये सैड रियलिटी है. तो आपको राइटिंग वाकई ही पसंद होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ. इसमें एक्टिंग जैसा आरओआई नहीं है. इसमें आपको फेस करना पड़ेगा ये रियलिटी कि मैं करता रहूंगा एंड मे बी मैं पूरी लाइफ रिकॉग्नाइज ना हूं. तो अगर आप रेडी हो उस चीज के लिए, गुर्बत के लिए, और ख्याति आपको नहीं मिलेगी, तो आप जाओ इसमें. फिर आप अच्छे राइटर भी बनोगे क्योंकि आप किसी के लिए नहीं लिख रहे फिर.
1: बहुत सुंदर. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि डोंट चेज द फेम. आपको मिले ना मिले वो सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, मिल भी सकता नहीं मिल सकता. पॉइंट ये है कि आपको राइटिंग से अगर प्यार है और आप इस चीज के लिए तैयार हो कि बस मैं दाल चावल का जुगाड़ अपना कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, तो इसप्रीत कह रहे हैं कि शायद एक सही विकल्प हो सकता है. पर अगर आप सिंगल इस थॉट के साथ जा रहे हो कि दौलत शोहरत कमाऊंगा तो राइटर बन जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि वो एक गलत अप्रोच हो जाती है. ना आपकी राइटिंग में निखर के आएगा वो, ना वो चीज वैसे मिल.
2: और मैं रेफरेंस भी आपको देता हूँ. आप देखो चेखव था, एंटन चेखव, रशियन राइटर. काफ्का था, ठीक है, काफ्का बैरिस्टर था, लॉ पढ़ी हुई थी काफ्का ने. चेखव मेडिसिन का स्टूडेंट था, तो चेखव डॉक्टर था, काफ्का बैरिस्टर था. तो सबने अपना दिन का काम पकड़ रखा था और रात को राइटिंग छोड़ रखी थी. तो आप अपने दिन के लिए वही दाल चावल ढूंढो और रात के लिए आप अपनी कलम पकड़ो.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ऑलराइट, ऑन दिस नोट लेकिन म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो कंटिन्यू करेंगे. स्प्रीत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं. आगे फर्दर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कैसे लिखना होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ पाएं कि एक फिल्म

0: वेलकम बैक अगेन। आई एम सेइंग अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो स्पीड से आपको कहनी है या मुझसे कहनी है, कोई फीडबैक हो सकता है हमारे लिए, कोई प्यारा सा मैसेज हो सकता है, तो 8010781078 इस नंबर पर अपनी बात जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल इसी नोट पर शो को कंटिन्यू करेंगे। शो का नाम वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान है इशप्रीत सिंह। इशप्रीत, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं राइटिंग को थोड़ा समझना चाहता हूँ सिंपल शब्दों में। बहुत सारे लोग उस पार जो हमारी आवाज सुन रहे हैं उनको नहीं पता है टेक्निकल चीजें राइटिंग की। पहले तो मुझे बताइए कि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक राइटर जो है लिखता है। सब्जेक्टिव हो सकता है, उसमें आप अपना बता सकते हैं प्लीज।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये जानने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कॉलिंग कहाँ से आती है, कि आप राइटर हो भी या नहीं हो।
0: हाँ,
1: मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि राइटर शायद वो लोग बनते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हैं और हर दिन खत्म होते ही उन्हें लगता है कि ये दिन सही से नहीं जी पाए, तो वो उस दिन को दोबारा जीना चाहते हैं। अब वो कैसे जिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, वो निकल चुका है, तो मे बी आप लिखकर उस चीज को रिक्रिएट कर सकते हो। तो मुझे लगता है टेक्निक राइटिंग की कोई नहीं है, आप चाहे जितनी वर्कशॉप्स कर लो या कोर्सेज ले लो, वो आपको कभी राइटर नहीं बना पाएंगे। मुझे दो चीजें लगती हैं, एक तो रीडिंग और एक लिविंग। मतलब कि आप हर तरीके की चीजें पढ़ो, साहित्य से लेके जो घटिया मैगजीन्स होती हैं, इरोटिका भी पढ़ो और रशियन लिटरेचर भी पढ़ो। मतलब सबसे ऊंचे स्तर का लिटरेचर पढ़ो और सबसे निचले स्तर का लिटरेचर पढ़ो, उससे आपको हर तरीके की चीज़ पता चलेगी। जो दुनिया आपने नहीं भी जी है, आप वो दुनिया भी जी लोगे कि अच्छा 18वीं शताब्दी में रूस ऐसा था, लैटिन अमेरिका ऐसा था, चे गुवारा पॉलिटिक्स में क्यों गया जबकि वो तो मेडिसिन का स्टूडेंट था, उसके लिए आपको मोटरसाइकिल डायरीज पढ़नी पड़ेगी। तो आप समझोगे कि लोग कैसे बदलते हैं, जगहें कैसे बदलती हैं, हिस्ट्री आप समझोगे, ज्योग्राफी आप समझोगे। तो राइटिंग सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमारे लॉ के फील्ड में भी बोलते हैं नेवर स्टडी अ थिंग इन साइलोस, वैक्यूम में मत पढ़ो किसी चीज़ को। तो आप पढ़ो इतना कि आपको पूरा परिवेश समझ आए हर चीज़ का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। और दूसरा, आधा दिन आप पढ़ो और आधा दिन आप बाहर निकल के दुनिया के साथ इंटरेक्ट करो, क्योंकि सिर्फ किताबी बातें कभी आपकी राइटिंग में ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब तक आप ज़मीन पर उतर के ज़मीनी लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे। जिसे हम कहते हैं ना कैबिन आर्म चेयर राइटिंग, एसी में बैठ के कभी अच्छी राइटिंग नहीं होगी। इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि एसी में लिखना ख़राब है, आपको बाहर धूल धक्कड़ खाओ फिर बेशक आके एसी में लिखो, लेकिन आप बाहर निकलो। तो आप, मेरे लिए तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, रीडिंग, ट्रैवलिंग और टॉकिंग विद पीपल। ये तीन चीज़ें कोई भी इंसान पूरे शिद्दत के साथ अगर कर रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली लिखने का मन करेगा। क्योंकि जब आप इतनी दुनिया देख लेते हो, जब आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो, कहीं ना कहीं एक डिज़ायर आ जाती है कि मुझे अब अपनी वर्ल्ड के बारे में भी दुनिया को बताना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मैंने क्या सीखा इस जीवन में। और जैसे विनोद कुमार शुक्ल नहीं बोलते कि इतिहास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हर इंसान अपना इतिहास लिखने लग जाए। तो हर इंसान को अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है राइटिंग प्रोफेशनली किसी को सीख नहीं भी नहीं करनी चाहिए, तो बेटर पर्सन बनने के लिए लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको अपने बारे में।
0: सो मिसिंग। अगर मैं बात करना चाहूँ, अपने पसंदीदा गाने की बात करना चाहूँगा मैं, साल की
1: जी,
0: क्या थॉट था, कैसे उस गाने को लिखा?
1: साल
0: प्रोसेस क्या था उस गाने का?
1: साल का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। साल गाना जो है, मैं उस समय लॉ स्कूल में था, अपने ग्रेजुएशन कर रहा था LLB, और उस समय मुझे एक लड़की पसंद थी, और समहाउ लास्ट इयर्स रह गए थे लॉ स्कूल के, और मैं बहुत इंट्रोवर्टेड और शाय इंसान हूँ इन जनरल भी अपनी लाइफ में, तो मैं कभी एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और तब तक ट्रेन निकल जाती है और फिर बाद में ये गाने रह जाते हैं। तो वो था कि कैसे, जो उसका कोरस है गाने का, कि पहले दिन देखा दिल हार गए, दूसरे दिन देखा, कि आप दो दिन किसी से प्यार में पड़ते हो और उसमें आपके कितने साल चले जाते हैं, वो उसका कंसेप्ट था। कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पसंद आया, आपको कोई पसंद आता है, एक या दो दिन में ही आ जाता है पहली नज़र में, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बट कितना लंबा जाता है वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता भी नहीं है और फिर भी आप सालों साल उसकी इमेज लेके चलते हो। तो इस थॉट पर लिखा था वो गाना।
0: वाह यार।
1: हाँ, कि मतलब इट इज अ मैटर ऑफ वन और टू डेज बट इट परसिस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स अपनी इमेजिनेशन में, और आप होते भी नहीं हो उस पर्सन के साथ। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग लगता है वो इस थॉट से।
0: आई थिंक अगर इस पॉइंट से अगर आप देखते हो ना चीजों को, तो मेरे को ऐसा लगता है राइटिंग इज अ ब्लेसिंग।
1: हाँ,
0: कि आप यार क्या को क्या बना देते हो, हाउ यू एक्सप्रेस, जैसे अभी आपने ये चीज बताई तो होता हम सबके साथ है कि एक इंसान को कभी देखा और शायद अपने आखिरी के 70-80 की एज में भी हम उस चेहरे को याद कर रहे होंगे, धुंधला सा वो कहीं याद होगा, ठीक है सबके पास ये थॉट होता है, बट ये शब्द नहीं होते हमारे पास कि कितने साल निकाल दिए उन दो दिनों के चक्कर,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और HR 51 का प्रोसेस मैं जानना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट तो ठीक है, आपको लगा कि फरीदाबाद की आवाज बनना चाहिए, फरीदाबाद की कोई कहानी है जो आई नहीं उसको कहना चाहिए, बट एक फिल्म लिखना बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे लिखा, ड्राफ्ट कैसे होते हैं, स्टोरी होती है, स्क्रीन प्ले होता है, थोड़ा मुझे टेक्निकल वे में अगर आप समझा सके इसको।
1: टेक्निकल वे में सिंपल है कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्टोरी स्क्रीन प्ले सेम चीज है। स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, और मोस्टली आपने क्रेडिट्स में देखा भी होगा कि डायलॉग का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, स्क्रीन प्ले का किसी और को दिया जाता है, और स्टोरी का किसी और को दिया जाता है। जैसे इस केस में HR 51 में तीनों चीजें मेरी थी, स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। तो स्क्रीन प्ले ये है कि व्हाट इज प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या क्या प्ले हो रहा है, मतलब छोटे से छोटा एक्शन भी कि ईशप्रीत अब पानी का ग्लास पीने वाला है, तो इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन प्ले में जाती है कि ईशप्रीत इज गोइंग टू पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक स्क्रीन राइटर को ये भी लिखना होगा। डायलॉग इज अ डिफरेंट थिंग, डायलॉग है वार्तालाप, बस शब्दों का आदान प्रदान कि दो लोगों में क्या वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं,

0: अब अपने वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाओ, वर्ल्ड में होता क्या है वो एक्ट टू में दिखाओ, और थर्ड में ये वर्ल्ड बचेगा या नहीं, सिंपल।
1: तो क्या उसको बोल सकते हैं बिगनिंग मिडल एंड?
0: यस, बिगनिंग मिडल एंड।
1: एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री सेम चीज़।
0: जी जी,
1: बिगनिंग मिडल एंड।
0: हाँ जी,
1: तो अपनी कहानी को एस्टैब्लिश करो, प्रॉब्लम एस्टैब्लिश करो।
0: यस,
1: बिगनिंग में।
0: हाँ,
1: मिडिल में उसको जितना आप पीक पे ले जा सकते हो उसको ले जाओ, क्या चल रहा है।
0: हाँ,
1: और एंड में आप उसको कंक्लूड करते हो
0: जी
1: कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अधूरा हुआ, जा हुआ। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग।
0: स्क्रीन राइटिंग की किताबें भी हैं बहुत सारी, जैसे एक सेव द कैट बहुत पॉपुलर किताब है, वो लोग पढ़ सकते हैं, तो वो ब्रिलियंट किताब है, सेव द कैट।
1: ठीक है, ठीक है। और अगर मैं गाने की बात करूं, गाने का तरीका क्या होता है, गाने कैसे लिखे जाते हैं?
0: गाना इंटायरली डिफरेंट है एक फिल्म से, एक कहानी से और एक नाटक से, क्योंकि गाने का स्ट्रक्चर भी होता है, मुखड़ा, अंतरा, ये सब, वर्स, कोरस जिसे बोलते हैं। लेकिन गाना जैसे फिल्मों के लिए क्या है कि आप और फिल्में देख सकते हो, उनसे सीख के आप अपना प्लॉट लिख सकते हो। गाना इंटायरली फीलिंग के बेस पे वर्क करता है। म्यूजिक को लेके मेरा ये टेक है कि म्यूजिक अगर आप रेफरेंस पे बना रहे हो कि आज ये गाना हिट हुआ, अब हम इस सैंपल पे एक और गाना बनाते हैं, मुझे नहीं लगता वो वर्क करता है, या मेरे लिए तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। म्यूजिक उसी का अच्छा होगा जो चीज़ें दिल से फील करता है, जिसकी मेलेडी दिल से निकलती है, और जो सारी चीज़ें पर्सनली फील करता है, वो अच्छा म्यूजिक बनता है। और म्यूजिक में कभी भी मैंने आज तक की अपनी डिस्कोग्राफी में किसी भी गाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं सुने कि मैं लिरिक्स के लिए या कॉम्पोजिशन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर रिलाई करूँ। म्यूजिक के लिए मैं इंटायरली अपनी फीलिंग्स पर और इंट्यूशन पर डिपेंड करता हूँ, और जो मुझे आता है वो मैं लिखता हूँ, और यूजुअली मैं मेलेडी के साथ ही लिखता हूँ। एक धुन होती है, मैं उस पर हम करता हूँ, और उस हमिंग पे मैं शब्द डालता हूँ।
1: आपने गाना लिखा, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी धुन में ठीक है, जा भी रहा है, बट अगर मीटर फिट नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, या राइम नहीं हो पा रहा है, राइम का तो खैर चलो गुलजार साहब ने वो खत्म ही कर दिया कि जरूरी नहीं है, लेकिन मीटर फिर भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि सुर आप कैसे अलाइन करते हो।
0: तो सागर भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक जो मेरा पर्सनल काम है, उसमें कभी मुझे आज तक मीटर या इन सब टेक्निकल चीज़ों की दिक्कत नहीं आई। उसका कारण यह है कि पहले मैं अपना काम कविता की तरह लिखता हूँ, फिर स्टूडियो में हम जाते हैं, लैरी होता है मोस्टली, और लैरी इतना क्रिएटिव स्पेस रखता है कि हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, कि या तो वो इस तरीके की मेलेडी या इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन कर देगा कि वो फिट आ जाए, नहीं तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि शब्दों को घुसाना है या फिर टेक्निकली उसको साउंड करवाना है, फीलिंग्स पे चलते हैं मेरे पर्सनल काम। लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ घोस्ट राइटिंग भी करता हूँ, घोस्ट राइटिंग भी मैं अपनी ऑडियंस को बता देते हैं, घोस्ट राइटिंग वो होती है कि जहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो काम करना पड़ता है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडियो आप जाते हो, प्रोड्यूसर आपके सामने ऑन द स्पॉट बीट प्ले करता है, और आपको वहीं पर गाना लिखना होता है, तो उतना आपको अपना कान पक्का करना होता है कि आप बीट का टेम्पो और बीपीएम समझ सको, बीट पर मिनट, कि अच्छा टक टक टक इसमें चार शब्द आएंगे, टक टक टक टक टक इसमें छह शब्द आएंगे, उस हिसाब से वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो पैसों वाला काम जब होता है कि मुझे किसी ने हायर किया है, तो वहां पे मैं फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए कॉर्नर कर देता हूं, वहां पे टेक्निक पे चलते हैं, लेकिन जो पर्सनल काम जितने भी होते हैं वो इंटायरली फीलिंग्स और इंट्यूशन पे ही होते हैं।
1: ओके, नाटक कैसे लिखे जाते हैं?
0: नाटक का भी बिल्कुल फिल्म, और क्योंकि आप देखो हर राइटिंग लगता है कि लिखना कितनी सिंपल क्रिया नहीं है, आसान क्रिया लगती है लिखना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर फॉर्मेट अलग अलग चीज एक्सपेक्ट करता है। नाटक जो है, नाटक थोड़े से सिमिलर है इस मामले में कहानियों, प्रोज और फिल्म से। नाटक के लिए आपको बड़े बड़े आप प्ले राइट्स को पढ़ो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर समझो। बहुत सारे प्लेज ऐसे रहते हैं कि जिनमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, सोलिलोक्वीज होती हैं, स्टेज पे कैरेक्टर जा रहा है और बस अपने से बात कर रहा है, और कोई नहीं है स्टेज पे और ऑडियंस से बात कर रहा है, मोनोलॉग्स हैं। कुछ प्ले होते हैं जिसमें कास्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे शेक्सपियर के नाटक आप देख लो, कॉमेडी ऑफ एरर्स, या फिर जूलियस सीजर, इतनी ज़्यादा कास्ट है, कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है नाटक अगर किसी को लिखने हैं ना, तो वो हैवी लिटरेचर पढ़े, जैसे महाभारत सबको रेफर करनी चाहिए, चाहे वो फिल्म का राइटर बनना चाहता है या नाटक के लिए, तो मैं खासकर बोल रहा हूँ। महाभारत एक ऐसी चीज़ है कि महाभारत में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसे कोई भी लिटरेचर लिखा गया है जो महाभारत से ग्रेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर्क, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट ट्विस्ट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नेचर। सारी चीज़ें जितनी भी एक ह्यूमन नेचर में होती हैं वो सारी महाभारत में है। महाभारत एक सिंगल बाइबल जैसे बोलते हैं ना, राइटर की महाभारत बाइबल हो सकती है महाभारत।

0: तो नाटक के लिए अब यही है कि आप हर कैरेक्टर की आर्क को समझो, कि हर कहानी के अंत तक जितने किरदार आपके नाटक में हैं, खासकर मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट या जो साइड सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वो जर्नी जब तक नाटक की खत्म हो रही है तो एंड तक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने उनमें परिवर्तन आया है। अगर आपके नाटक में या किसी भी कहानी में शुरुआत से लेकर अंत तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखी है तो इसका मतलब वो कहानी कहने लायक थी ही नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है।
1: नहीं, दैट सो अमेजिंग क्योंकि कोई पॉइंट भी नहीं है उसका कि कुछ जियोगे नहीं आप।
0: बिल्कुल,
1: जीने के लिए यात्रा जरूरी होती है और यात्रा यही होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट वो पहुंचे और फॉर्मेट वही काम करता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में मोटा मोटे तो कुछ 8-10 ही कहानियां हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, उन्हीं पे पूरी दुनिया का सिनेमा टिका हुआ है कि लड़का लड़की मिलते हैं, या तो घर वाले मानते हैं या तो नहीं मानते हैं, या तो शादी होगी या तो नहीं होगी, या तो ग्रीड होगा कुछ बीच में, बस उसी में क्या नया आप ट्रीट कर सकते हो, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क।
0: क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है सागर भाई कि इमोशंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री सेम ही रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो नहीं कही जा चुकी, बस आप उसको हर नए समकालीन परिवेश में कैसे दोबारा से कह सकते हो बेहतर तरीके से, क्योंकि इमोशंस वही रहने वाले
1: हैं। मैंने प्ले पढ़ा था आषाढ़ का एक दिन,
0: बहुत सुंदर नाटक है मोहन राकेश का।
1: मैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स कंसीडर करता हूँ अगर मुझे कोई नाटकों के बारे में पूछेगा तो। मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड, ये दो मेरे फेवरेट लेजेंड्स हैं। एंड आषाढ़ का एक दिन में जब वो आप विरह वाला वो सीन देखते हो, मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि शायद पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ,
0: कालिदास का
1: और वो जब कालिदास आके अपना पूरा किस्सा बता रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता था पर मैं क्यों नहीं आ सका, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से टप टप टप टप आंसू गिर रहे हैं और मैं उस पूरे प्रसंग को पढ़ रहा हूँ। वो इतना सुंदर लम्हा था मेरे लिए कि ये क्या जी रहा हूँ यार मैं जिंदगी। तो विरह तो वहां से चला आ रहा है कालिदास के टाइम से,
0: बिल्कुल,
1: और आज तक भी वो विरह है, आज तक भी उस पे ही कहानियां कही जा रही हैं, तो वो सेम रहेगा, वही प्रेम, वही विरह, वही जुदाई, वही मिलन, ये चलता रहता है। बहरहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आके बात करेंगे। और अब भैया थोड़ा सा धंधे वंदे की बात करेंगे, कहीं से आप लोगों ने लिख लिया है, इशप्रीत की बात सुनकर आपने एक्ट वन एक्ट टू एक्ट थ्री लिखना शुरू कर भी दिया है, तो उसको पिच कैसे करोगे, काम कैसे लाना होता है, ये डिस्कस करेंगे अभी। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: Once again, welcome back. I'm RJ Sagar, show voice of youth. हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर इशप्रीत सिंह और यहाँ पर हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मोटा मोटी इशप्रीत को समझाया है वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, हमने तमाम चीज़ें जानी है, हमने जानने की कोशिश करी है एट द सेम टाइम कि अलग अलग फॉर्मेट्स को कैसे अप्रोच करना होता है, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी को फिल्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कविता को गाना कैसे बनाया जाता है, नाटक कैसे लिखा जाता है, इंस्पिरेशन कहां से ली जाती है, राइटर किसको बनना चाहिए, रियलिटी चेक क्या होता है, ये तमाम सवाल अभी तक हम डीकोड कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं आपके काम धाम की कि अगर आपने लिखना शुरू कर दिया है या आपने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख ली है उसको आप अप्रोच कैसे करोगे। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। एक राइटर ने एक कहानी लिख लिया
1: जी,
0: उसको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स अभी बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी यात्रा शुरू होती है एक दूसरी कि उसको बेचना है, सही लोगों तक पहुंचाना है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे अपनी कहानी को पिच करना होता है, क्या प्लेटफॉर्म है कोई या कैसे होता है?
1: इसका अगर आपको वाकई प्रैक्टिकल आंसर चाहिए किसी बिगिनिंग राइटर के लिए तो उसका सिंपल सा आंसर है बेशर्मी। पिचिंग में पिच करने के लिए कि आपने आप अपनी नाटक, फिल्म, कविता, गाने, जो भी आपका फॉर्मेट है उसको बिल्कुल सभ्यता के साथ लिखो और पिच करो बेशर्मी के साथ। बेशर्मी से मेरा मतलब ये है कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपके पास क्या बचता है कि आप जितने ऑफिसेस, जितने प्रोडक्शन हाउसेस, जितने म्यूजिक लेबल्स, उन सबकी आप लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, अब आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं, ठीक है, एक सेम सैम्पल मैसेज तैयार करो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए और वो धड़ाधड़ आप भेजते रहो। ना जाने कौन सा ऑफिस आपके लिए या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कल डोर खुल जाए। तो वही एक ट्रिक है, क्योंकि मेरा कोई भी, मेरी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंजीनियर्स का है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का है, और मैं एक ब्लैक शीप हूँ जिसने ये प्रोफेशन चूज किया है, तो मेरे लिए तो कोई कनेक्शन या कोई रेफरेंसेस थे नहीं। तो मेरी अभी तक तो यही अप्रोच चली है कि मैंने यही प्रिंटआउट्स या फिर ये कह लो लिस्ट निकाली और मैंने सबको अपना काम भेजा। और मोस्टली अगर आपने काम अच्छा किया है ना सागर भाई, तो अगर आप 100 जगह भेज रहे हो तो कोई ना कोई एक आपको पिक कर लेगा। ऐसा मुझे प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में मैंने पाया है कि अभी भी इतनी खराब दुनिया नहीं हुई है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और 100 में से एक डोर भी ना खुले आपके लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने काम पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मे बी माई वर्क इज सो बैड। तो एक तो आप आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी रखो अपने साथ, अपने साथ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आप इसमें पेशेंस रखो। पेशेंस दूसरा नंबर सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आपका 2-3 साल तक भी कुछ नहीं बन रहा है, आप अपनी राइटिंग मत स्टॉप करो। आप एटलीस्ट 10-12 स्क्रिप्ट्स अपने पास लिख कर रखो या फिर 10-12 कविताएं, गाने आपके पास अपना एक स्टॉक हो कि जब कभी मुझे मंडी में जाना पड़े तो मैं इसको बेच पाऊं। अगर आप खाली हो, आपका स्टॉक ही खाली है, एक स्क्रिप्ट आपकी कभी चली भी गई, आपके पास बाद में ऑफर करने के लिए कुछ हो ही ना, तो राइटर्स के लिए यही एक एडवाइस है कि आप मटेरियल अबंडेंस में रखो कि कोई भी सोर्स आए वो आपको उठा ले और उसके लायक आपके पास काम हो। तो एक तो पिचिंग अपनी कोल्ड रखो, सबको काम भेजो और शर्म मत करो काम मांगने में, या और नए लोगों से मिलो। और सिर्फ राइटर्स राइटर्स से ना मिले, राइटर्स राइटर्स को छोड़ के सबसे मिले।
0: हाँ, क्योंकि वो भी इवेंचुअली काम ढूंढ रहा होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पहले अपनी दुकान के बारे में सोचेगा।
1: बिल्कुल, बिजनेसमैन से मिलो।
0: हाँ,
1: आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आर्ट्स के शौकीन होते हैं। मतलब बड़े वकील हो गए, बड़े जजेस हो गए।
0: हाँ,
1: जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, आपको पता है रोमन एम्पायर के टाइम पे प्रोस्टिट्यूट्स और आर्टिस्ट सबसे लो दर्जे के माने जाते थे कि ये तो सर्कस है ना, इसको तो एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, और थ्रोन पे बैठ के या फिर ऊपर बालकनीज पे बैठ के देखते थे राजा या उनके जो आपके ये सब फेलो मैन होते हैं। तो आज भी वही है, देखते आर्टिस्ट को आज भी वैसे ही है। तो इसीलिए आप बड़े लोगों के साथ उठो बैठो आर्टिस्ट को छोड़ के, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली जब आर्टिस्ट के साथ ही बैठने लग जाते हैं ना तो वो एक बबल में चले जाते हैं, प्योरिस्ट बन जाते हैं कि हम सारे तो बहुत कुछ एक नेक काम कर रहे हैं और हमें तवज्जो, फिर वो एक पिटी होल है, सेल्फ पिटी में जाते हैं फिर आर्टिस्ट। जब 4 आर्टिस्ट एक साथ बैठ के अपना करियर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को आइसोलेशन में रहना चाहिए और आर्टिस्ट को छोड़ के सबसे इंटरेक्ट करना चाहिए। आर्टिस्ट के साथ तब मिलो जब आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो। वरना सिर्फ आप आर्ट की बातें करोगे, आपके पास बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं होगी, वर्ल्ड कैसे रन करता है, यू विल बी अनअवेयर अबाउट इट।
0: हाँ, इधर देश और फिर रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स को बहुत माना जाता था, तो उनको थोड़ी तवज्जो दी जाती थी। या तो एक आर्टिस्ट ऐसा ग्लैडिएटर बन के दिखा दे
1: हाँ
0: कि मैं कुछ ऐसा लेके आ रहा हूँ,
1: बिल्कुल,
0: तो शायद वो हो सकता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बोली ग्लैडिएटर्स वाली, क्योंकि मैं और मेरा एक और फेलो फ्रेंड है अंकुर हुड्डा, तो हम दोनों राइटर्स हैं, तो हम दोनों अक्सर ये बात करते हैं मजाक में कि पुराने राइटर्स को देख लो, चाहे वो हिंदी के हो, वेस्ट के हो, या हमेशा इतने ऐसे स्किनी से और इतने मतलब कमजोर से क्यों, फीबल से क्यों दिखते हैं कि गुरबत में। और ये एक तो इमेज भी राइटर्स की ऐसी है कि ये वैसे ही होगा, तो थोड़ा बदलना चाहिए राइटर्स को भी। आप फिजिकली फिट रहो, जिसे कहते हैं ना वॉरियर राइटर बनो तो बेहतर है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे मेरे थिएटर कोच थे तुषार भैया, उन्होंने बात बोली थी कि हमारा माइंडसेट भी वही था कि थिएटर करेंगे यार, ऐसे जिंदगी कटेगी, मंडी हाउस जाते थे,
1: जी
0: अच्छा लगता था, वो रोमांटिसाइज करते ना चीज़ों को। सो ही सेड कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाला किसने है
1: एग्जैक्टली
0: कि एक राइटर बैठ के 10 रुपए की कुल्हड़ में चाय पिएगा, कुर्ता पहन के।
1: हाँ।
0: एक राइटर अच्छा लुई वितोन के कपड़े पहन के स्टारबक्स में बैठ के क्यों नहीं लिख सकता?
1: बिल्कुल।
0: या एक एक्टर स्टारबक्स में क्यों नहीं बैठ सकता?
1: हाँ, जी,
0: दैट शुड बी द क्वेश्चन।
1: राइट,
0: कि तुम थिएटर वालों को इतना रोमांटिसाइज, गरीबी को रोमांटिसाइज काहे कर रहे हो?
1: एग्जैक्टली
0: क्योंकि तुम जो एग्जांपल सेट करोगे आगे उन्हीं को वही मिलेगा ना।
1: बिल्कुल।
0: सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुझे किस्सा भी याद आ रहा है सलीम जावेद साहब का। पहले राइटर्स को क्रेडिट मिलता ही नहीं था।
1: एग्जैक्टली
0: ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने आपको याद होगा वो किस्सा कि उन्होंने जा जाके मूवीज के जो पोस्टर लगते थे सबके ऊपर पेंट कर दिया,
1: कर दिया था, नाम लिख दिया,
0: नाम लिख दिया सलीम जावेद। तो वहां से एक बगावत शुरू हुई।
1: हाँ, तो राइटर्स इनहेरेंटली रेवोल्यूशनरी राइटर्स को होना चाहिए। भगत सिंह लिखते थे।
0: हाँ, भगत सिंह बहुत अच्छे राइटर थे।
1: भगत सिंह लिखते भी थे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब भी फोड़ा, लेनिन के फॉलोअर थे, जेल में भी लिटरेचर पढ़ रहे थे। तो देख रहे जो मैं वॉरियर राइटर वाली बात कह रहा था कि दोनों चीजें पॉसिबल है। और एक वो प्योरिटनिज्म छोड़ना पड़ेगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये परस्यू करूंगा।
0: हाँ, रिजिड नहीं हो सकता। चलिए ओके, लेट्स टेक इट दिस वे। आप बोल रहे हो कि प्रोडक्शन हाउसेस के मुझे ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे, मुझे फिर राइटिंग वहाँ पे पिच करनी है। मान कर चलो मेरी एक स्क्रिप्ट है जो मैं 100 पेज में लिखी है मैंने, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, 100 पेज पड़ेगा। मैं कैसे वो स्क्रिप्ट, वो इमोशन कन्वे करूंगा, मतलब व्हाट्स द प्रोसेस?
1: तो वेब सीरीज अगर आप लिख रहे हो, अगर आपका वेब सीरीज पिच करने का मन है, तो एक शो बाइबल टर्म है, शो बाइबल, विच इज लाइक 1 पेजर या 2 पेजर आप अपना एक बना लेते हो कि क्या प्लॉट है, मेजर चीजें क्या आपकी उसमें है, जिस्ट बता दे जो आपकी वेब सीरीज की। तो शो बाइबल आप प्रिपेयर करते हो वेब सीरीज के लिए। फिल्म्स के लिए हो गया सिनॉप्सिस, ठीक है, जिसे हम कहानियों के लिए समरी बोलते हैं। फिल्म के लिए हम यूजुअली बोलते हैं समरी, सिनॉप्सिस। और लॉग लाइन एक टर्म है, लॉग लाइन बहुत जरूरी होती है। बेशक आपने 100 पेज लिख लिए हैं, लेकिन अगर आपकी लॉग लाइन इज बेसिकली 1 लाइन दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर फिल्म कि सुरेश अ 24-year-old टेक्स अ कैब लेट एट नाइट एंड ट्रबल इंस्यूज, तो आपने एक्साइट भी कर दिया, आपने बता भी दिया कि सुबह 4 बजे सुरेश ने गाड़ी पकड़ी और अब पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो लोग एक लाइन पढ़कर फिल्म देखने आ जाते हैं। तो मैं ये राइटर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि नो मैटर आपकी 100-150 की स्क्रिप्ट, कितनी पेजेस की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका सिनॉप्सिस पावरफुल नहीं है, अगर आपका लॉग लाइन पावरफुल नहीं है, तो मे बी प्रोडक्शन हाउसेस देखे भी ना आपका फोल्डर खोल के।
0: स्क्रिप्ट अगर अच्छी है और सिनॉप्सिस उसको लिखने नहीं आते हैं, तो सिनॉप्सिस में क्या क्या एलिमेंट्स डालने होते हैं, क्या ध्यान में रखना होता है?
1: रेफरेंसेस, आप जितनी आपको फिल्में पसंद है जो आपने अब तक देखी है वो सबकी लिस्ट बनाओ, IMDB पे जाओ, और उसका जब आप IMDB वो फिल्म का नाम लिखोगे तो वो लॉग लाइन खुद ब खुद नीचे लिखी आती है। आप कम से कम 100 फिल्मों की लॉग लाइन्स पढ़ डालो, गॉडफादर की पढ़ डालो, टैक्सी ड्राइवर की पढ़ डालो, रेजिंग बुल की देख लो कि ऐसा क्या था इन्होंने जो लिखा हुआ था, और आपको कुछ ना कुछ कैप्टिवेटिंग मिल जाएगा। तो जिसको नहीं भी आती वो बाकी फिल्मों का सहारा ले, बाकी फिल्मों से सीखे कि इन्होंने अपनी समरी कैसे लिखी, सिनॉप्सिस कैसे लिखा, लॉग लाइन कैसे लिखा, एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया। और आप जिस नेचर की फिल्म लिख रहे हैं उसकी आपको 10 फिल्में वैसी और मिल जाएंगी, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा।
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग। तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि राइटिंग को कैसे पिच करना होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि आपने कुछ लिखा, आपने काम कहीं पर भेजा, आपने लेकिन कहीं पर कॉपीराइट रजिस्टर नहीं कराया, किसी ने उसको उठा लिया, आपने जहाँ आइडिया भेजा, ये भी डर होता है ना कि वो एग्जैक्ट उस थॉट को उठा के लिखने लगे या भेजने लगे, कोई और राइटर उस पर काम करने लगे, शूट होने लगे, इस केस में राइटर के कुछ कर सकता है?
1: राइट, इसमें देखिए दो चीजें हैं कॉपीराइट लॉ में, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडिया और एक्सप्रेशन। आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में। तो लीगल सिस्टम में आइडियाज की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज अभी यहाँ बैठकर मुझे कोई आइडिया सुनाया कि मैं इस फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं उस आइडिया की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और मैं आगे किसी को भेज देता हूँ और उस पर वो फिल्म बना देता है, आप इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुझे अपना आइडिया सुनाया था और आइडिया लीगली कवर्ड नहीं होता। एक्सप्रेशन कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं, जो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक्सप्रेशन को तवज्जो देता है कि अगर यही आपने मेरे को लिख कर, आइडिया मतलब जो दिमाग में है, कागजी घोड़ा जो हवा में है, अभी घोड़ा दिख नहीं रहा है, और एक्सप्रेशन मतलब घोड़ा जब दिखने लग जाए, तो जब आप मुझे पेपर पे लिखकर अगर आपने मुझे कुछ हैंडओवर किया है या मुझे कोई ईमेल भेजी है कि ये मेरा ड्राफ्ट है और ये मैं कहीं आगे भेज देता हूँ, तो अगर ये चीज़ मैंने कॉपीराइट नहीं भी करवाई हुई, ये फिर भी कॉपीराइट वायलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं उसी पर आप क्लेम कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अब तो मैं क्लेम नहीं कुछ कर पाऊंगा मैं कि मेरा लीगल वायलेशन हुआ है क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवा रखा था। अगर आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में किसी को सेंड किया है, एक्सप्रेशन से मेरा मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आप लीगली उसका डिफेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉपीराइट सिर्फ रजिस्टर्ड चीज़ों का ही होता है, बट बेटर ये है कि आप रजिस्टर कॉपीराइट करवा लें क्योंकि उससे आपको एक लीगल टेनेसिटी मिलती है कि देखो ये मेरे कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाकर मैंने इसको रजिस्टर करवाया है और ये हर तरीके से मतलब परिपक्व है लीगली। इससे आपको आपका एडवोकेट भी बेटर पोजीशन में खुद को पाएगा डिफेंड करने के लिए आपको।
0: ऑलराइट,
1: क्योंकि जब आपको कॉपीराइट ऑफिस से ही आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो फिर तो वो विक्ट्री है ना, क्लियर लीगल विक्ट्री है फिर।
0: हाँ, फिर तो आप उसको चैलेंज कर सकते।
1: दूसरी चीज में थोड़ा सा चीजें डाइसी हो जाती हैं जब आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से, अब तो AI भी आ गया है राइटर्स के लिए, तो आफत आने वाली है क्योंकि किसी भी तरीके से आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बेटर है कि आप कॉपीराइट करवाई लें।
0: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। पांच ऐसी किताबें बताइए जो हर एक इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर किसी को राइटर बनना है तो।
1: क्योंकि हम अपनी ऑडियंस इंडिया में है तो हिंदी की किताबें कवर करना तो जरूरी है।
0: हाँ,
1: तो मेरे फेवरेट ऑथर हैं निर्मल वर्मा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और उनकी कोई ऐसी एक भी किताब नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो और इवन बार बार पढ़ी है। तो एक तो अभी एक ही उपन्यास बताऊंगा उनका, अंतिमारण्य, वो सबको पढ़ना चाहिए, सबको, अंतिमारण्य, ये एक उपन्यास हो गया। उसके अलावा वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय है, बहुत भारी किताब है, बहुत हैवी किताब है, और लेकिन पढ़नी सबको चाहिए। मतलब रूस की एक तरीके से सबसे अकम्प्लिश्ड वर्क है, कैरेक्टर आर्क से लेके प्लॉट ट्विस्ट से लेके फैमिली फ्लो चार्ट सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। राइटिंग का आपका कोर्स है वॉर एंड पीस, तो अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस। फिर आपको पढ़नी चाहिए जॉन पॉल सात्र को पढ़ना चाहिए आपको। जॉन पॉल सात्र की एक किताब है द एज ऑफ रीजन, वो पढ़नी चाहिए। तीन किताबें हो गई, चौथा दोस्तोवस्की पढ़ना चाहिए, फिर से रशियन लिटरेचर। क्राइम एंड पनिशमेंट आपकी बाइबल बन सकती है, क्राइम एंड पनिशमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किताब है। और चार किताबें, और पांचवा ऑथर मेरा फेवरेट ऑथर है हरमन हेस।
0: ओके,
1: ये एक जर्मन स्विस ऑथर है जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे, वर्ल्ड वॉर वन और टू, और उनसे परेशान होकर मेंटली हर तरीके से स्विट्जरलैंड चले गए थे छोड़कर, और इनकी एक बहुत ही सुंदर किताब है सिद्धार्थ, सिद्धार्था।
0: हाँ, I've heard about this book. हाँ,
1: मैं इनकी सारी, इनकी तीन किताबें पढ़ चुका हूँ, सिद्धार्था, स्टेपन वुल्फ और डेमियन। हरमन हेस कमाल के ऑथर हैं। तो पांच किताबें हो गई, अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस, क्राइम एंड पनिशमेंट, एज ऑफ रीजन और सिद्धार्थ।

0: था।
1: सिद्धार्थ का टेकअवे क्या है?
0: सिद्धार्थ का टेकअवे राइटर्स के लिए बेस्ट है। सिद्धार्थ का टेक अवे है कि सिद्धार्थ जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल में, वो गौतम बुद्ध से मिल लेता है लेकिन उनका फॉलोअर नहीं बनता,
1: ओके
0: और वो चुनता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा और अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। तो वो कुछ समय के लिए उनके सानिध्य में रहता है और छोड़ देता है। सिद्धार्थ एक वो किताब है कि जिसमें सिद्धार्थ नाम का लड़का
1: गौतम बुद्ध से मिलता है
0: लेकिन उनका भक्त नहीं बनता,
1: और नाम सिद्धार्थ है,
0: और नाम सिद्धार्थ है, और वो जीवन में सारी फॉलीज और वाइसेस परस्यू करता है, सारे पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है ये समझने के लिए कि मुझे किस तरीके की जिंदगी चाहिए अपने लिए।
1: सो अमेजिंग। आई एम डन विद माई क्वेश्चन सुप्रीत। हालांकि टॉपिक एक ऐसा है और क्योंकि मैं पर्सनल बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इस टॉपिक में, तो कई घंटों तक भी ये शो चल सकता है, बट क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा है तो मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
0: नहीं सागर भाई, यू आर अ वंडरफुल होस्ट और बहुत ही अच्छा लगा दिल से आपसे बात करके, एंड आई वुड लाइक टू कम अगेन।
1: श्योर मैन, डेफिनेटली वील डू द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों, जितना जॉय मुझे यहाँ मिला स्टूडियो में बैठ करके, जितना मज़ा मुझे आया हर्षप्रीत के सामने बैठ करके, उतना आप तक हम कन्वे कर पाए होंगे क्योंकि एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है। तो बहुत बहुत ही सुंदर इंसान है हर्षप्रीत, बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत सुंदर गाने कविताएँ और फिल्में लिखते हैं, इसके अलावा बहुत ही सुंदर सभ्य और हम्बल एक पर्सन जिसको हम बोलेंगे वो हैं। कि मैंने सिंपली इनको बोला कि यार आओगे आपके साथ एक शो करना है रेडियो पर, इससे ठीक है भाई मैं आऊँगा, और वो आज यहाँ पर आ भी गए जब उन्हें टाइम मिला, और बहुत इत्मीनान से इन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपने नहीं देखा है, HR 51 स्टेज के ऊपर मौजूद है, जाकर के प्लीज़ चेक करिए, हर्षप्रीत का काम है। इसके अलावा मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा आपको साल नाम का गाना, अभी जाकर के स्पॉटिफाई यूट्यूब जहाँ आपका मन करे हर्षप्रीत सिंह का, वो ज़रूर सुनिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जैसा मौसम है आपके चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर आएगी। सो थैंक यू सो मच हर्षप्रीत फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट।
0: थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, देखिए, आज मैं अदरक की बात आपसे करने वाला हूँ। अब बात अदरक की हो या किसी भी फसल की हो, मिट्टी की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ती है। सबसे पहला कदम यही होता है कि हमारी मिट्टी कैसी हो। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, आपकी फसल उतनी अच्छी होगी। ये फसल अच्छे जल निकास वाली चिकनी, रेतीली और लाल, यानी कि हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, खेत में पानी बिल्कुल खड़ा ना होने दें, क्योंकि खड़े पानी में ये ज़्यादा देर बच नहीं पाएगी। फसल की वृद्धि के लिए 6 से 6.5 pH वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें जो कि बहुत ज़रूरी है, उस खेत में अदरक की फसल कभी भी ना उगाएं जहां पिछली बार अदरक की फसल उगाई गई हो। जी, जिस खेत में या जिस ज़मीन में एक बार अदरक की खेती हो चुकी है, उसमें दोबारा अदरक ना उगाएं और हर साल एक ही ज़मीन पर अदरक की फसल ना लगाएं। तो ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी मिट्टी के बारे में। अब बात आती है किस्मों के बारे में। अच्छी किस्म का आप इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। IISR वराधा, ये किस्म ताज़ा और सूखे अदरक की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। ये 200 दिनों में पक जाती है और इसकी औसतन पैदावार 90 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो अगर आप इस किस्म का, यानी IISR वराधा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फसल बेहतर हो सकती है और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई, ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए, बिजाई कैसे की जाए। तो बताऊंगा, ज़मीन की तैयारी के बारे में भी बताऊंगा और ये जो बिजाई होती है ना, बिजाई का तरीका भी आपके साथ साझा करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, अदरक की फसल के बारे में आज आपसे बात हो रही है, तो आइए अब बात कर लेते हैं जमीन की तैयारी के बारे में। भाई देखिए, खेत को 2-3 बार जोतना बहुत ज़रूरी होता है और सुहागे से समतल कर लेना चाहिए। अदरक की बिजाई के लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 1 मीटर चौड़े बेड बनाएं। 2 बैंडों के बीच 50 सेंटीमीटर का फासला ज़रूर रखें। और जब बात बिजाई की आती है तो अपना एक समय भी होता है फसल का। बिजाई का जो समय है, बिजाई मई जून के पहले सप्ताह में की जाती है। और अगर हम फासले की बात करें, पौधों में 15 से 20 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बीज की गहराई की बात सुन लीजिए। बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए और बिजाई का जो ढंग है अदरक की

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाई, आज बात हो रही है अदरक के बारे में, तो जरा बीज की बात भी सुन लीजिए। देखिए भाई, बिजाई के लिए ताजे और बीमार रहित गांठों का प्रयोग करें। बिजाई के लिए 480 से 720 किलो प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करके आप अपनी इस फसल की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बीज का उपचार भी जरूरी है। बिजाई से पहले गांठों को मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचार करें। गांठों को 30 मिनट के लिए घोल में भिगो दें। इससे क्या होगा, गांठों को फफूंदी से बचाया जा सकता है और उपचार के बाद गांठों को 3 से 4 घंटे के लिए छांव में सुखाना चाहिए। लेकिन जब तक किसी फसल को अच्छी खाद ना मिले, तब तक वो फसल बेहतर हो ही नहीं सकती। तो खाद के बारे में भी सुन लीजिए। मैं प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ, यूरिया 55 किलो, SSP 60 किलो और पोटाश 16 किलो। ये तो मैंने आपको खाद की बात बता दी, अब तत्व की बात कर लेते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन 25 किलो, फास्फोरस 10 किलो और पोटाश 10 किलो। इस तरह से खाद का इस्तेमाल करके, तत्व का इस्तेमाल करके अपनी अदरक की फसल को बेहतर बनाइए और मेरे साथ सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
2: किसान भाइयों, हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें जब खरपतवार लग जाती है तो हमारी फसल भी बर्बाद हो जाती है। बात अदरक की चल रही है तो इसके लिए बिजाई के 3 दिन के बाद एट्राजिन 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की नमी वाली मिट्टी पर स्प्रे कर दें। उन नदीनों को खत्म करने के लिए जो पहली नदीन नाशक स्प्रे के बाद पैदा होते हैं। बिजाई के 12 से 15 दिनों के बाद ग्लाइफोसेट 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। नदीन नाशक की स्प्रे करने के बाद खेत को हरी खाद से या धान की पराली से अच्छी तरह से ढक दें। जड़ों के विकास के लिए जड़ों में मिट्टी लगाएं। बिजाई के 50 या 60 दिनों के बाद पहली बार जड़ों में मिट्टी लगाएं और उसके 40 दिन के बाद दोबारा मिट्टी लगानी चाहिए। इस तरह से आप उस खरपतवार को, जो कि आपकी फसल को बर्बाद कर सकती है, उस खरपतवार को इस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए साथ साथ सिंचाई की बात भी कर लेते हैं। अदरक की फसल की सिंचाई वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर करें। बिजाई के बाद फसल को 50 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से ढक दें। प्रत्येक खाद डालने के बाद 20 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से फसल को दोबारा ढक दें। तो ये प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है, इसका ध्यान रखेंगे तो अदरक की आपकी फसल बेहतर हो सकती है। चलिए कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे पौधे की देखभाल कैसे करें, वो जो बीमारियां हैं हमारी फसल को लग जाती हैं उसकी रोकथाम कैसे करें, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं आपको बताऊँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। आइए दोस्तों अब उन बीमारियों की बात कर लेते हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। बात अदरक की चल रही है तो जड़ों का गलना अक्सर इसमें देखा जाता है। इस बीमारी को रोकने के लिए फसल को बिजाई के 30, 60 और 90 दिनों के बाद मैन को जेब 3 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्सिल 1.25 ग्राम प्रति लीटर में डुबो दें। इससे क्या होगा, जो बीमारी है जड़ों को गलाने वाली वो बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरी एक बीमारी है मुरझाना। इस बीमारी को रोकने के लिए बीमारी दिखने के तुरंत बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में पौधों को भिगो देना चाहिए। एक और बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस। अगर ये बीमारी आए तो हेक्साकोनोजोल 10 मिलीलीटर या मैनकोजेब 75 WP 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी प्लस 10 मिलीलीटर स्टिकर का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और बीमारी होती है यानी कि पत्तों पर धब्बे और उनका सड़ना। ये बीमारी भी बहुत खतरनाक होती है। अगर ये बीमारी आपको दिखे तो मैनकोजेब 30 ग्राम या कार्बन डाजिम 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर 15 से 20 दिनों के फासले पर स्प्रे करना चाहिए या प्रोपीकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का स्प्रे किया जा सकता है और इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये तो हो गई उन रोगों की बात जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो आपकी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। वो कौन कौन से कीट हैं उनका नाम बताऊंगा और कैसे उनसे अपनी फसलों को बचाया जा सकता है उसका तरीका भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्य।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हानिकारक कीट की और उनकी रोकथाम की। एक मक्खी होती है जो कहलाती है पौधे की मक्खी। अगर इस मक्खी का हमला खेत पर दिखे तो इसे रोकने के लिए एसीफेट 75 एसपी 15 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और 10 दिनों के बाद दोबारा स्प्रे करना चाहिए। ये तो रही पौधे की मक्खी की बात, लेकिन इसके अलावा एक कीट और होता है जो कहलाता है शाख का कीट। अगर शाख के कीट का हमला दिखे तो इसे रोकने के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्विनिल फॉस 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का स्प्रे किया जा सकता है। एक और कीड़ा होता है जो कहलाता है रस चूसने वाले कीड़े। इन्हें रोकने के लिए नीम से बने कीटनाशक जैसे कि अजादी रेक्टिन 0.3 ईसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों फसल की कटाई की, तो इस बात को भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो आपकी अदरक की फसल है ना, 8 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर फसल का प्रयोग मसाले बनाने के लिए करना हो तो 6 महीने बाद कटाई करें, और अगर नए उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग करना हो तो फसल की कटाई 8 महीने के बाद करें। और जब पत्ते पीले हो जाएं और पूरी तरह सूख जाएं तब कटाई के लिए सही समय माना जाता है। गांठों को उखाड़कर बाहर निकालें और 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ करें, फिर 2 से 3 दिनों के लिए छांव में सुखा दें। देखिए किसान भाइयों, आज अदरक के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। अदरक के लिए जो जरूरी बातें थी वो सारी बातें आपको बता दी हैं।

कटाई के बारे में भी आपको बताया था, लेकिन कटाई के बाद भी कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे शुष्क अदरक के लिए अदरक की गांठों का सिर्फ ऊपर वाला छिलका ही उतारें और एक सप्ताह के लिए धूप में सुखाना चाहिए। शुष्क अदरक की पैदावार हरे अदरक की 16-25% होती है। अब बात आती है स्टोर करने की। ताज़ी और बीमारी रहित गांठें चुनें और कार्बेंडाज़िम प्लस मैनकोज़ेब 40 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से 30 मिनट के लिए उपचार करें। अब आप सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे भाई, इससे गांठों को गलने से बचाया जा सकता है। हाँ, फिर गांठों को छांव में सुखा लें, गांठों को सही आकार के गड्ढे में भरें और ढकने के समय हवा के लिए 2-3 छेद ज़रूर रखें। गड्ढे भरने से पहले उनमें 1 इंच मोटी रेत की परत भी बिछा दें। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इन बातों का आप किस तरह से प्रयोग करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा वक्त जाने का हो चला है, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।
1: पल भर

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना।

गुजरे कैसे बताऊं आचार्य जरा आ लहरा किया जरा आंखों से दिल में समा आचार्य।

से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानवरच 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम ट्रेंडिंग तड़का। लेकर आ जाती हूँ हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 ये प्रोग्राम, जिसमें हम करते हैं बहुत सारी ट्रेंड की बातें। साथ ही लेकर आती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से और प्यारे प्यारे से गाने भी, और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज का एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं एक ऐसे सफर का जश्न जो सिर्फ सालों का हिसाब नहीं है, बल्कि हजारों कहानियों, लाखों मुस्कुराहटों और अनेक यादों का संगम है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM ने अपने 17 साल सफलता से पूरे कर लिए हैं, और अब हम गर्व के साथ अपने 18वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा 18th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है। जी हाँ, और आज मैं आपसे ये खास बात इसलिए करने आई हूँ क्योंकि हमारे रेडियो मानव रचना का ये बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है। दोस्तों, ये हमारा 18th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है, और इसी खुशी के मौके पर हम सब अपने सभी श्रोताओं, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स, गेस्ट और कम्युनिटी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं। 10th जुलाई 2009, जी हाँ 10 जुलाई 2009 को शुरू हुआ था ये सफर, आज एक मजबूत पहचान बन चुका है। रेडियो मानव रचना सिर्फ एक रेडियो स्टेशन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर आवाज को सुनने और समझने की कोशिश की जाती है। यहाँ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जानकारी, जागरूकता और प्रेरणा और सामाजिक बदलाव की बातें भी होती है। पिछले 17 सालों में हमने अनेक मुद्दों को उठाया है, कई अभियानों का हिस्सा भी बने हैं, और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास भी किया है। कभी हेल्थ अवेयरनेस की बात हुई है तो कभी एजुकेशन की, कभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई तो कभी एनवायरमेंट कॉन्वर्सेशन की। हमारा उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, समाज को जोड़ना, जागरूक बनाना और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देना। और आज जब हम अपने सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर प्रोग्राम, हर इंटरव्यू, हर कैंपेन और हर लिसनर की याद दिल को खुशी से भर देती है। ये सफलता सिर्फ रेडियो मानव रचना की नहीं है, बल्कि आप सबकी भी है। आपके प्यार, भरोसे और साथ ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, आज के स्पेशल फाउंडेशन डे एपिसोड में हम मिलकर याद करेंगे रेडियो मानव रचना की कहानी को, उसकी उपलब्धियों को और उसके सामाजिक योगदान को, और वो सारे खास पल जिन्होंने सफल को यादगार बनाया है। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे स्नेहा, और आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता क्या है और रेडियो मानव रचना की पहचान इतनी खास क्यों है। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड विद रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूं मैं आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक। साथ ही हम करते हैं बहुत सारी बातें, चाहे बात हो हमारे देश की या बात हो विदेश की, या बात हो हमारे सोशल मीडिया की या हमारी सोसाइटी की। हर टॉपिक को हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज थोड़ा सा खास दिन है, क्योंकि आज ना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेशन है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM की। जी हाँ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM की 17 साल पूरे होने और 18वें साल में प्रवेश करने की खुशी में ये एपिसोड लेकर आई हूँ। पिछले सेगमेंट में हमने इस खास सफर का जश्न मनाया और अब बात करते हैं उस पहचान की जो हमें सबसे अलग बनाती है, यानी कि आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, अक्सर जब हम रेडियो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना गाने, एंटरटेनमेंट और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज आते होंगे, लेकिन कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा अलग होता है। कम्युनिटी रेडियो का मतलब होता है कम्युनिटी की आवाज। जी हाँ, कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के साथ काम करना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM भी इसी सोच पर काम करता है। इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाना है, उसकी समस्याओं को समझना और सामाजिक बदलाव में योगदान देना है। इसीलिए कम्युनिटी रेडियो का अक्सर बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी कहा जाता है। फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होने के नाते रेडियो मानव रचना ने हमेशा लोकल इश्यूज और लोकल वॉइसेस को इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी बात भी रखते हैं, डॉक्टर्स अपनी हेल्थ टिप्स भी देते हैं, पुलिस ऑफिसर साइबर सेफ्टी की भी बात करते हैं, रोड सेफ्टी के बारे में भी जागरूक करते हैं, टीचर्स एजुकेशन की बात करते हैं और सोशल वर्कर सामाजिक मुद्दों पर भी रोशनी डालते हैं। कम्युनिटी रेडियो की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि यहाँ हर इंसान की आवाज मायने रखती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, सीनियर सिटीजन हो या किसी गांव या फिर कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी को अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका मिलता है। रेडियो मानव रचना ने पिछले 17 सालों में सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर की भूमिका ही नहीं निभाई है, बल्कि कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स के बीच एक मजबूत ब्रिज का काम भी किया है। हेल्थ अवेयरनेस से लेकर विमेन एम्पावरमेंट तक, एनवायरमेंटल कैंपेन से लेकर यूथ डेवलपमेंट तक, हर मुद्दे पर लोगों को जोड़ने और जागरूक बनाने का काम किया है। और शायद इसी वजह से रेडियो मानव रचना सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद और आसपास के लोगों की अपनी आवाज बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है अगले सेगमेंट का, जहां पर हम जानेंगे रेडियो मानव रचना की 17 सालों की यादगार जर्नी और उन माइलस्टोन के बारे में जिन्होंने इस सफर को और ज्यादा खास बनाया है। पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइट।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के 17 साल पूरे होने और 18वें साल में प्रवेश करने की खुशी को। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की खासियत को समझा और अब बात करते हैं उस सफर को याद करने की जिसने रेडियो मानव रचना को इतनी खास पहचान दी है। दोस्तों 10 जुलाई 2009 को जब ये रेडियो मानव रचना 107.8 FM की शुरुआत हुई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये स्टेशन एक दिन इतने सारे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। एक छोटी सी शुरुआत के साथ निकला ये सफर आज हजारों श्रोताओं, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी मेंबर के प्यार से एक मजबूत परिवार बन चुका है। इन 17 सालों में बहुत कुछ बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लोगों की जरूरतें बदली, कम्युनिटी के तरीके भी बदले, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है रेडियो मानव रचना का उद्देश्य। हमारा लक्ष्य हमेशा समाज को जोड़ना, जागरूक बनाना और हर आवाज को मंच देना रहा है। इस दौरान रेडियो मानव रचना ने अनेकों प्रोग्राम भी शुरू किए, हेल्थ एक्सपर्ट के साथ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, एजुकेशन और करियर गाइडेंस सेशन भी लिए, वुमेन एम्पावरमेंट पर चर्चाएं भी की, यूथ सेंट्रिक शोज भी लेकर आया, साथ ही एनवायरमेंटल कैंपेन्स भी किए, सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव और कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज लगातार चलती रही है। हर शो के पीछे एक ही सोच रही है, जानकारी को लोगों तक आसान और प्रभावित तरीके से पहुंचाना। समय के साथ रेडियो मानव रचना ने डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। ट्रेडिशनल FM ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ इंटरनेट रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर के लिसनर्स तक पहुंचाने का सफर भी शुरू हुआ। आज हमारे प्रोग्राम सिर्फ रेडियो तक ही सीमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये 17 साल सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है बल्कि सीखने, बढ़ने और कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कहानी भी है। हर लिसनर्स का फीडबैक, हर गेस्ट की बात और हर कैंपेन का अनुभव हमें और भी ज्यादा बेहतर बनाता गया। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे उन कामों की और उन कैंपेन की जिन्होंने समाज में सचमुच बदलाव लाने का काम किया है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का का फाउंडेशन डे स्पेशल की प्रोग्राम चल रहा है और अब तक हमने रेडियो मानव रचना की पहचान और उसकी 17 सालों की जर्नी के बारे में बात की, लेकिन किसी भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की पहचान, जो उसकी असली पहचान है, उसके इम्पैक्ट से होती है। तो चलिए जानते हैं कि रेडियो मानव रचना ने समाज में किस तरह का अपना योगदान दिया है। दोस्तों, रेडियो मानव रचना का उद्देश्य हमेशा सिर्फ प्रोग्राम्स को बनाना ही नहीं रहा है, बल्कि हमारा मकसद रहा है कि लोगों तक जरूरी जानकारी भी पहुंचे और उन्हें जागरूक भी बनाए। इसी सोच के साथ पिछले 17 सालों में कई ऐसे कैंपेन्स और इनिशिएटिव चलाए गए हैं जिन्होंने समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला है। हेल्थ अवेयरनेस को ही ले लीजिए, डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर कई ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डायबिटीज, कैंसर अवेयरनेस, विमेन हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी गई। आज भी हमारे साथ हेल्थ बेस्ड शोज लिसनर्स के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एजुकेशन भी हमारे फोकस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। करियर गाइडेंस हो, स्किल डेवलपमेंट हो और रीडिंग अवेयरनेस जैसे विषयों पर भी कई प्रोग्राम्स और कैंपेन भी चलाए गए हैं। साथ ही हाल ही में नेशनल रीडिंग कैंपेन के तहत किताबों से मुलाकात, ज्ञान की सौगात जैसे प्रयासों ने लोगों को पढ़ने की आदत के प्रति प्रेरित किया है। विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी रेडियो मानव रचना ने महिलाओं की सफलता की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिला प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि उनकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, वाटर कन्वर्जेशन और सोशल अवेयरनेस से जुड़े कई प्रोग्राम्स भी लगातार आपके लिए प्रसारित किए गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एनजीओस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के माध्यम से लिसनर्स को सही और उपयोगी जानकारी भी मिलती रही है। सबसे खास बात तो ये है कि रेडियो मानव रचना ने लोकल टैलेंट को भी हमेशा प्रोत्साहन दिया है। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को अपनी बात रखने का और अपना हुनर दिखाने का भी मौका दिया गया है। इसी वजह से ये रेडियो स्टेशन सिर्फ एक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक मजबूत माध्यम भी बन गया है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे रेडियो मानव रचना के उन गर्व के पलों की जिन्होंने स्टेशन का नाम देश और एशिया स्टार तक पहुंचाया। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम रेडियो मानव रचना 107.8 FM के 17 साल पूरे होने और 18वीं में प्रवेश करने की खुशी में मना रहे हैं फाउंडेशन डे स्पेशल। ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई हूँ, कर रहे हैं आज हम बहुत सारी बातें और आज रेडियो मानव रचना के बारे में भी हम बहुत सारी बातें जान भी रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन पलों की जिन पर लिसनर्स हर आरजे और पूरी रेडियो मानव रचना की टीम को गर्व है। दोस्तों, हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, लगन और मजबूत टीम का साथ होता है। रेडियो मानव रचना की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड हमेशा हमारे लिसनर्स का प्यार और उनका भरोसा रहा है, लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे माइलस्टोन भी आए हैं जिन्होंने हमारा नाम देश ही नहीं बल्कि एशिया तक पहुँचाया। सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक थी 150 घंटे 1 मिनट और 20 सेकंड का नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो ऑन सस्टेनेबिलिटी। इस अनोखे मैराथन ब्रॉडकास्ट में हमारे 5 रेडियो जॉकी ने लगातार लाइव प्रोग्राम्स को होस्ट किया। इस दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs पर देश के कई एक्सपर्ट्स ने अपने विचार को साझा किया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं थी बल्कि एनवायरमेंट

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंग ढंग बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम्हें ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर अब तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र, अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता है, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? क्या अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो कोई झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था। अकबर
फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न चलती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई। अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाकर बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी। साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पर गया उसी ने कहा, हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी हैं हम, लेकिन कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते। जिसके पास हम गए उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर था, आदमी के सिर की कीमत क्या है? 2 पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे? तो जिसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ। सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है?

ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ। तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सकोगे। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता, जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात।
सोते जागते मेरा हृदय खुला था। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्र धनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्वभुजे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब ये है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि अभी झुके हो, अब बिल्कुल मिट जाना। मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया।
आप पर पूरा ईमान आ गया है, लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी। फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिक है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई। मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी। तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है। नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ,
कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का ना हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है। लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जज भी होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जज गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था, तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होगा, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर तो भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण हो। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते।
तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा कर

0: धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां है। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होने पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात, तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते
1: तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी। और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते ना कुछ। पानी का क्या मूल्य। और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सच्चा है और बोले अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है। बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकरी, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना, इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साथ और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसे कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है, जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी

दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते हैं। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इज़राइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड, जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना, सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful, actually. अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम, यू नो, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे attitude.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है एक्चुअली, ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए जरूरी
5: है. वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे. ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सिस्टर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे इस शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या।
4: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? This I will have to ask, because otherwise मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ with this thought कि मैं victim, you know, और वो जीवन फिर quality बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं victim हूँ, एक incident था, over, I have to move ahead. Victim वाली feeling से बाहर निकलना होगा. और बहुत important बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीजें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीजें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहां वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
4: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, because it's kind of a vicious circle. Again, शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें कोशिश कर सकते?
5: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
4: वही हो रही होती है,
5: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
4: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
5: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
4: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
5: right? But we're not really helping.
4: Yes,
5: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर के हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनी वन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाई सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है. यू नो, तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
5: ओम शक्ति.
4: ओम शक्ति.